नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। बिहार के वैशाली जिले के राघोपुर दियारा इलाके में कल रात एक नाव दुर्घटना में 13 लोगों की मृत्यु हो गई।

0: मृतकों में अधिकांश नाबालिग हैं। जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने बताया कि नाव में 15 से 20 लोग सवार थे। ये सभी एक भोज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। 6 लोगों को बचा लिया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2,00,000 रुपए और घायल को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी प्रत्येक मृतक के परिजन को 4,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे कल विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेले में शामिल होंगी। इस मेले का आयोजन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। संस्कृति मंत्रालय आज से नई दिल्ली में बृहत्तर भारत विश्व में भारत के सांस्कृतिक संबंध विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। ये सम्मेलन बृहत्तर भारत परिषद की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस सम्मेलन में शामिल होंगे। 3 दिन के इस सम्मेलन में 50 देशों के प्रतिनिधि, राजदूत और विद्वान भारत के साथ दुनिया के विभिन्न देशों के ऐतिहासिक और वर्तमान सांस्कृतिक संबंधों पर विचार विमर्श करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज विशेष अभियान के 6ठे चरण के अंतर्गत 1 दिन का स्वच्छता और लंबित मामलों के निपटारे का विशेष अभियान चलाएगा। यह अभियान 2 से 31 अक्टूबर तक चल रहे विशेष अभियान के क्रियान्वयन चरण का हिस्सा है। अभियान के अंतर्गत कार्यस्थलों पर श्रमदान के माध्यम से सफाई, स्वच्छता अभियान और ई कचरे के निपटान जैसी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता सही दिशा में आगे बढ़ रही है और व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के व्यापार मंत्री इस समझौते पर काम कर रहे हैं और व्यापार समझौते को लेकर बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है। एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है और हर देश को अमेरिका के साथ अपने संबंधों को नए सिरे से आकलन कर उनमें आवश्यक बदलाव करने होंगे। नई दिल्ली में बिम्स्टेक देशों की गृह मंत्रियों की पहली बैठक कल दिल्ली घोषणा अपनाने के साथ संपन्न हुई। दिल्ली घोषणा में बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित सभी तरह के आतंकवाद की कड़ी निंदा की।
1: बिम्स्टेक देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप आतंकवाद तथा हिंसक उग्रवाद को व्यापक तथा निरंतर प्रयासों से रोकने, उनका मुकाबला करने और उन्हें समाप्त करने का संकल्प दोहराया। सदस्य देशों ने एक दूसरे से जुड़े, संकटों का सामना करने में सक्षम, सुरक्षित, विकसित और समृद्ध बिम्स्टेक क्षेत्र के निर्माण के लिए क्षेत्रीय सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। देशों ने सदस्य राष्ट्रों में हुए आतंकवादी हमलों के पीड़ितों, उनके परिवारों और प्रभावित देशों की सरकारों के प्रति गहरी संवेदना और एकजुटता व्यक्त की। साथ ही आतंकवादी हमलों के दोषियों को संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत दंड दिलाने का आह्वान किया। समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक।
0: कांगो में इबोला के प्रकोप से अब तक 9,000 से अधिक लोग संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 4,381 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार संक्रमण 7 प्रांतों के 65 स्वास्थ्य क्षेत्रों तक फैल चुका है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने चिंता जताई है कि समुदायों में संक्रमण फैलना जारी है। अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने बैंक ऑफ अमेरिका पर मनी लॉन्ड्रिंग और प्रतिबंधों से जुड़े नियमों के कथित उल्लंघन के लिए $1,20,00,000,000 का जुर्माना लगाया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार ये उसके इतिहास का तीसरा सबसे बड़ा जुर्माना है। और डेनमार्क ओपन बैडमिंटन में तन्वी शर्मा और किदाम्बी श्रीकांत ने दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। तन्वी ने पहले दौर में जापान की नात्सुकी निदाइरा को हराया। वहीं किदाम्बी श्रीकांत ने भी फ्रांस के अर्ना मर्कले को हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। वे दूसरे दौर में फ्रांस के ही एलेक्स लेनियर का सामना करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जब

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। झरोखा सुनिए विविध भारती से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का लिखा जोखा। अब से कुछ देर बाद सुबह 6:35 पर श्री रामचरितमानस का अंकत भाग 341 सुनवाया जाएगा। संगीत सरिता कार्यक्रम में आज से एक नई श्रृंखला शुरू हो रही है, राग समय चक्र। कलाकार हैं गायिका मंजरी आलेगांवकर। आज सुनेगा इस श्रृंखला की पहली कड़ी। ये कार्यक्रम शाम 6:45 पर दोबारा सुना जा सकता है। सुबह 7 भूले बिसरे गीत, 7:30 पर हम हैं राही प्यार के, 8 समाचार प्रभात, 8:15 पर त्रिवेणी, 8:30 पर आप सुनेंगे चित्रलोक, सुबह 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम होता है। आज ये कार्यक्रम केंद्रित है कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया पर। ये कार्यक्रम रात 9:30 पर दोबारा सुना जा सकता है। सुबह 10 सेलुलॉइड के सितारे कार्यक्रम में अभिनेता चंदन रॉय से अनुराधा उपाध्याय की बातचीत का दूसरा भाग सुना जा सकता है। प्रस्तुत करता है जुबैर खान। सुबह 11 रंग तरंग, 12 हिंदी में समाचार, 12:05 पर यादों की महफिल, सुरीला सफर कार्यक्रम दिन में 1 होगा। 2:15 पर दोपहर समाचार, 2:30 पर सदाबहार नगमे, दिन में 3 सखी सहेली कार्यक्रम होगा। आज के विषय हैं विश्व मानक दिवस, शब्द आपके विचार, शब्द हमारा विचार आपके। इस श्रृंखला में प्रार्थना शब्द पर बातें होंगी, साड़ियों का संसार। इस श्रृंखला में पूचमपल्ली इकत जो कि तेलंगाना की साड़ी है इसकी बातें, शकरकंद के व्यंजनों और भी बहुत सारी बातें। आज के मेहमान कार्यक्रम में शाम 4 फिल्म लेखक और निर्देशक डॉक्टर विशाल चतुर्वेदी से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा भाग सुनवाया जाएगा। प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। छाया गीत शाम 5 5:30 पर तराने नए पुराने कार्यक्रम होगा। 6:35 पर संध्या रंजन। आपको बता दें कि विविध भारती के कार्यक्रम आपके रेडियो सेट के अलावा इंटरनेट स्ट्रीमिंग DTH पर उपलब्ध हैं। आप हमें न्यूज ऑन AIR और वेव्स एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं, और वो भी दुनिया के किसी भी कोने में और दिन के किसी भी समय। शाम 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम में श्रृंखला राग समय चक्र का पहला भाग सुनवाया जाएगा। कलाकार हैं गायिका मंजरी आलेगांवकर। सुबह शाम 7 जयमाला, 7:45 पर राग अनुराग। रात 8 हवा महल के अंतर्गत प्रहसन सुनवाया जाएगा, शीर्षक की खोज। देवराज दिनेश ने इसे लिखा, निर्देशक मुख्तार अहमद। रात 8:15 पर चित्रलोक और 8:45 पर समाचार संध्या। रात 9 कार्यक्रम होगा आपके लिए। ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित जानी मानी कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम रात 9:30 पर आप सुनेंगे दोबारा। रात 10 छाया गीत, 10:30 पर ढलती जाए रात, और रात 11 कार्यक्रम होगा रंग तरंग। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। हम विविध भारती से बोल रही हैं, आइए सुने श्री रामचरितमानस गान आज भाग 341।

रावण का हनुमान से युद्ध हो रहा है। इसी समय वानरों को माया के प्रभाव से युद्ध भूमि में असंख्य रावण दिखने लगते हैं। ये देख वानर भालू त्राही त्राही करते हुए रक्षा के लिए प्रभु की शरण लेने भागते हैं। उनका भ्रम दूर करने के लिए श्री राम एक ही वाण से माया जाल छिन्न भिन्न कर देते हैं। फिर वहाँ एक ही रावण को देखकर सारा वानर समूह उस पर टूट पड़ता है। रावण अब हनुमान अंगद नल और नील से युद्ध कर रहा है। इसी समय वो आकाश में एकत्रित देवताओं को देखता है जो श्री राम का जय घोष कर रहे हैं। वो उन्हें लक्ष्य कर वाण चलाने लगता है। उधर श्री राम के वाणों से कट कट कर उसके सिर और भुजाएं इधर उधर उड़ रही हैं। लेकिन कटने के साथ ही वे फिर उग आते हैं। वो अपनी विशाल भुजाओं से वानरों के समूह उठाकर मसल देना चाहता है कि तभी वृद्ध जांबवान के भरपूर पद प्रहार से मूर्छित होकर एक बार फिर धरती पर गिर जाता है।

0: राग समय चक्र। श्रोताओं, आज से हम शुरू कर रहे हैं श्रृंखला राग समय चक्र। आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने शास्त्रीय गायिका विदुषी मंजरी आलेगांवकर। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रीकर ने। तो लीजिए, आज प्रस्तुत है श्रृंखला राग समय चक्र की पहली कड़ी।
1: योग्यम ध्वनि विशेषस्तु स्वर वर्ण विभूषितः रंजको जनचित्तानां सरागः कथितो बुधैः। एक विशिष्ट स्वर समुदाय जो स्वर या वर्ण से सुशोभित होकर मनुष्यों के हृदयों का रंजन

0: स्वरवर्ण विभूषितः रंजको जनचित्तानां सरागः कथितो बुधैः। एक विशिष्ट स्वर समुदाय जो स्वर या वर्ण से सुशोभित होकर मनुष्यों के हृदयों का रंजन करता है, उसे गुणीजन ज्ञानीजन राग कहते हैं। श्रोताओं, राग समय चक्र, इस विषय पर हमसे विस्तृत चर्चा करने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है जयपुर अतरौली घराने की गायिका विदुषी मंजरी आलेगावकर को। मंजरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्ते।
0: हमारी इस श्रृंखला में तबले पर संगति कर रहे हैं बनारस घराने के मूर्धन्य तबला नवाज पंडित किशन महाराज जी के शिष्य श्री बालकृष्ण अय्यर जी। बालकृष्ण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार।
0: साथ ही साथ हम स्वागत करते हैं शुभांगी भावसार जी का, जो हारमोनियम पर संगत करेंगी।
3: नमस्कार।
0: श्रोताओं, मंजरी जी का परिचय आपको संक्षेप में मैं दूं। आप आकाशवाणी और दूरदर्शन की उच्च श्रेणी की कलाकार हैं। बचपन से ही संगीत की शिक्षा आपने प्राप्त की। चूंकि आपके पिता पंडित मोहन राव कर्वे जी अपने जमाने के माने हुए गायक थे, वे ही आपके पहले गुरु थे
1: जी।
0: आगे जयपुर अतरौली घराने की तालीम आपने हासिल की जाने माने संगीतज्ञ गुरु स्वर्गीय वामन राव देशपांडे जी से
1: जी।
0: मंजरी जी, जहां तक जयपुर घराने की गायन शैली की बात है, उसमें एक पारंपरिक सोच होती है।
1: बिल्कुल।
0: जिसमें घराने की शुद्धता और सौंदर्य के संवरण का अनोखा मिलाप देखने को मिलता है
1: जी।
0: तो इस शैली के बारे में और अपने गुरुजनों के बारे में आप हमें क्या बताना चाहेंगे?
1: मेरे पहले गुरु थे पंडित मोहन कर्वे, मेरे पिताजी गायन आचार्य रामकृष्ण बुआ वजह के वो शागिर्द थे
0: जी।
1: हरिभाऊ घंगरेकर से भी उन्हें तालीम मिली थी।
0: हाँ।
1: और मास्टर कृष्णराव जी का सांगीतिक सहवास भी मिला था। बाद में मैंने नवनीत भाई पटेल से तालीम प्राप्त की
0: जी।
1: वो तबला नवाज थे, बंदिश रचनाकार थे, जलतरंग बजाते थे और आकाशवाणी पे म्यूजिक कॉम्पोजर थे। उनके साथ साथ पंडित अप्पा साहेब कानेटकर भुर्जी खां के शागिर्द, उनसे मैंने तालीम हासिल की और बबन राव जी हरदणकर, उन्होंने भी मुझे मार्गदर्शन किया।
0: जयपुर अतरौली घराने की विशेषता, इसके बारे में आप क्या बताएंगे?
1: जयपुर गायकी में पहली विशेषता यह है कि आकार से, खुली आकार से गाना, और उसके लिए कुछ सूरत बिगाड़ने की जरूरत नहीं होती। और एक विशेषता यह है जयपुर घराने की, वो ज्यादातर अनवट राग जोड़ राग पेश करती है। तिहाई ज्यादातर नहीं लेती, सरगम नहीं लेती, और गायकी का जो चलन होता है वो हमारे गुरुजी ने घरंदाज गायकी में, उन्होंने लिखा है स्ट्रेट लाइन और कर्वेचर। वो कर्वेचर है टेढ़ी गायकी। हाँ। जयपुर गायकी वो सीधी नहीं जाती और चलन ही ऐसा है उसका।
0: हाँ।
1: आलाप करने में भी वो ऑफबीट आलापी करती हैं। और बाकी सूक्ष्म लय की हम सोच विचार कर सकते हैं
0: जी।
1: और ज्यादातर धीमी लय होती है। बंदिशों का मुखड़ा आकर्षक होता है, उसमें सरप्राइज एलिमेंट होता है बंदिशों के मुखड़े में भी और गायकी में भी। और ऐसी बहुत सारी उसकी विशेषताएं हैं
0: जी।
1: जो वामन राव जी के पास मैं जब सीखती थी उसको मैं समझ गई थी।
0: मंजरी जी
1: जी,
0: राग समय चक्र ये श्रृंखला जो हम आज से शुरू कर रहे हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए कि हम दिन के पहले प्रहर से जो राग गाए जाते हैं वहां से किन रागों की उनकी विशेषता बताते हुए कैसे कैसे हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा आपसे हम इसकी जानकारी चाहेंगे।
1: स्वर और समय के अनुसार उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में रागों के गाने बजाने के बारे में
0: जी,
1: समय सिद्धांत प्राचीन काल से वेद काल से ही चला आ रहा है। प्राचीन रागों में, अर्वाचीन रागों में समय सिद्धांत पर कुछ मतभेद भी हैं, तथापि यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि हमारे प्राचीन संगीत पंडितों ने
0: जी,
1: रागों को उनके ठीक समय पर गायन या वादन करने का सिद्धांत अपने ग्रंथों में जरूर स्वीकार किया है। उसी को आज के संगीतज्ञ भी स्वीकार करके अपने रागों में समय सिद्धांत का पालन कर रहे हैं। और ये स्वर और समय के अनुसार उत्तर भारतीय रागों में तीन वर्ग मानकर कोमल तीव्र स्वरों के हिसाब से उनका विभाजन किया है
0: जी।
1: संधि प्रकाश राग अर्थात कोमल ऋषभ और कोमल ध वाले राग, शुद्ध रे और शुद्ध

0: ध वाले राग और तीसरा विभाजन है कोमल ग और कोमल नी वाले राग। समय चक्र के अनुसार मैं आज यहाँ भैरव यानी ब्राह्म मुहूर्त से सुबह 4 से हम शुरू करेंगे ये समय चक्र
1: जी जी।
0: तो समय चक्र के अनुसार हम अलग अलग रागों की चर्चा करेंगे और बंदिशें भी सुनाएंगे।
1: जी बिल्कुल मंजरी जी।
0: जी
1: जयपुर अतरौली घराने की विशेषता को उजागर करने वाला कौन सा राग और राग की बंदिश आप हमें सुनाएंगी?
0: आज मैं राग सावनी पेश कर रही हूँ। सावनी ये जयपुर का खास राग है, उसकी बंदिश भी जयपुर घराने की है
1: जी।
0: वो बंदिश ऐसी है, दे हो सतसंग श्री रंग बावा गंग कारण शरण सब शिव के आए। ये प्रार्थना स्वरूप बंदिश है
1: जी जी।
0: और वामन राव जी ने हमें पहले दिन सिखाई थी। वो जयपुर घराने की तालीम की शुरुआत इस बंदिश से हुई। सावनी राग रात को गाते हैं, रात के पहले प्रहर में गाते हैं, इसमें शुद्ध स्वरों का प्रयोग होता है।

0: क्या बात है मंजरी जी, प्रार्थना के इन सुरों से बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई है हमारे इस राग समय चक्र श्रृंखला की। अगली कड़ी में हम प्रथम प्रहर यानी जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है,
1: हाँ।
0: सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक
1: जी।
0: उस समय में जो राग गाए जाते हैं,
1: हाँ।
0: उसकी हम चर्चा करेंगे। आज इस कड़ी को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: राग समय चक्र, ये थी इस श्रृंखला की आज पहली कड़ी। आमंत्रित कलाकार जानी माने शास्त्रीय गायिका विदुषी मंजरी आलेगांवकर, आपसे बातचीत की थी जयंत पात्रिकर ने। तबला संगत बालकृष्ण अय्यर का, हारमोनियम पर शुभांगी भावसार। चलने से पहले आपको बता दें, तकनीकी सहयोग गणेश शिंदे का।
3: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा।

धूल का फूल ये था फिल्म का नाम। आशा भोसले महेंद्र कपूर की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा, एन दत्ता का संगीत।

0: दो आंखें 12 हाथ, ये था फिल्म का नाम। लता मंगेशकर की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे। भरत व्यास ने इसे लिखा, वसंत देसाई का संगीत।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
3: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
1: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम भूले बिसरे गीत।

0: से में है दर्द क्यों?
1: हाँ आप कहे कोई, नशे में है दर्द क्यों?
2: ये इसलिए के जिंदगी

0: क्यों?
1: हाँ भाई, फिर ये बेबसी क्यों?
2: ये इसलिए कि इश्क का इजहार किया जाए।

0: शमशाद बेगम, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में गीत आप सुन रहे थे नदिया के पार फिल्म से। मोती ने इसे लिखा, सी रामचंद्र का संगीत।
1: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं,
2: हाँ जी।
1: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
2: हाँ जी, हाँ।
1: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं, अभी नहीं।
1: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है, इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: कुछ लिखा,
1: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
0: प्रोग्राम में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

0: कभी नरम कभी नरम नरम कभी गरम गरम कभी नरम गरम नरम गरम।
1: फिल्म अलबेला से गीत अभी आप सुन रहे थे, राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा, सी रामचंद्र का संगीत। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम भूले बिसरे गीत संपन्न होता है।

किशोर कुमार और सुलक्षणा पंडित की आवाजों में ये गीत आप सुन रहे थे उलझन फिल्म से। एमजी हशमत ने इसे लिखा, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। प्रोग्राम में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

0: प्यार ही प्यार, ये था फिल्म का नाम। मोहम्मद रफी, आशा भोसले की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा, शंकर जयकिशन की तर्ज।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
3: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
1: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।

0: वो देखने दो,
1: जल भी रहे हैं।
0: अरे तो जलने दो,
1: खुली सड़क है बाबा।
0: तो क्या हुआ भाई?
1: तो
0: हो जाए खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों।

0: है ये दुश्मन जमाना।
1: अरे सुन।
0: हाँ बता।
1: सबको मेरी

0: हमको जमाने से क्या, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों।
1: किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में गीत खेल खेल में से आप अभी सुन रहे थे आरडी बर्मन का संगीत। इसके साथ ही ये प्रोग्राम हमें राही प्यार के संपन्न होता है। यह है विविध भारती। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वीडियो संदेश के माध्यम से 72 भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंक के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत अमेरिका व्यापार वार्ता सही दिशा में जारी, समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ऊर्जा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने के लिए अगले सप्ताह भारत आएंगे। बिहार में वैशाली के राघोपुर में नाव दुर्घटना में 13 लोगों की मौत और भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम हैदराबाद में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो संदेश के माध्यम से 72 भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस सम्मेलन का विषय है भारत के वैश्विक सांस्कृतिक संबंध।
3: 3 दिवसीय सम्मेलन में 50 देशों के प्रतिनिधि, राजदूत और विद्वान एकत्रित होंगे। इस सम्मेलन में भारत के ऐतिहासिक और समकालीन सांस्कृतिक संबंधों तथा विश्व के विभिन्न देशों के साथ उसके जुड़ाव पर विचार विमर्श किया जाएगा। चीन, जापान, मंगोलिया, नेपाल और ईरान सहित विभिन्न देशों के प्रतिभागी

0: साझा सांस्कृतिक विरासत और सभ्यतागत आदान प्रदान से जुड़े विषयों पर होने वाली चर्चाओं में योगदान देंगे। यह सम्मेलन ग्रेटर इंडिया सोसाइटी की स्थापना के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। इस संस्था की स्थापना आज ही के दिन 1926 में कोलकाता में भारतीय विद्वानों की एक पीढ़ी द्वारा की गई थी, जिसमें गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में जुड़े थे। सम्मेलन के दौरान एशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत शीर्षक से एक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आंध्र प्रदेश की दो दिन की यात्रा पर आज विजयवाड़ा जाएंगी। राष्ट्रपति आज शाम विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और कल विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेले का उद्घाटन करेंगी। मेले में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूहों की 1500 से अधिक महिलाएं ग्रामीण उत्पाद, पारंपरिक हस्तशिल्प और क्षेत्रीय खाद्य पदार्थों का प्रदर्शन करेंगी। नई दिल्ली में बिम्स्टेक देशों के गृह मंत्रियों की पहली बैठक कल दिल्ली घोषणा के साथ संपन्न हो गई। दिल्ली घोषणा में बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित हर तरह के आतंक की कड़ी निंदा की है।
2: बिम्स्टेक देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद को व्यापक तथा निरंतर प्रयासों से रोकने, उनका मुकाबला करने और उन्हें समाप्त करने का संकल्प दोहराया। सदस्य देशों ने एक दूसरे से जुड़े, सुरक्षित, संकटों का सामना करने में सक्षम, विकसित और समृद्ध बिम्स्टेक क्षेत्र के निर्माण के लिए क्षेत्रीय सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। देशों ने सदस्य राष्ट्रों में हुए आतंकवादी हमलों के दोषियों को संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत दंड दिलाने का आह्वान किया। दिल्ली घोषणा में मानव तस्करी, मादक पदार्थों, नशीले पदार्थ बनाने में इस्तेमाल होने वाले रसायनों और धन शोधन की रोकथाम से जुड़ी कार्य योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया गया। घोषणा में आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता से संबंधित बिम्स्टेक संधि को प्रभावी ढंग से लागू करने पर भी बल दिया गया। इस संधि पर मार्च 2022 में कोलंबो में आयोजित 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता सही दिशा में जारी है और समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के व्यापार मंत्री इस समझौते पर काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अमेरिका ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। उन्होंने कहा है कि हर देश को अमेरिका के साथ अपने संबंधों का नए सिरे से आकलन कर आवश्यक बदलाव करने होंगे। चीन के संबंध में उन्होंने कहा है कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता भंग होने पर द्विपक्षीय संबंधों पर इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। श्री जयशंकर ने बताया कि सीमा क्षेत्रों में स्थिति सामान्य होने के साथ दोनों देशों के संबंध भी सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भारत और चीन सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बहाल करने में सफल रहे हैं। रूस से संबंधित एक अन्य सवाल के जवाब में डॉक्टर जयशंकर ने स्पष्ट किया कि भारत ने कभी ऐसा कोई संकेत नहीं पाया है कि रूस से खरीदे जा रहे किसी भी सामान में चीनी तकनीक शामिल है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन युद्ध के कारण रूस का झुकाव एशिया की ओर अधिक बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि रूस के पास कई विकल्प होना भारत और पूरी दुनिया के हित में है। इस संदर्भ में भारत रूस के लिए एक स्वाभाविक विकल्प है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो अगले सप्ताह भारत आएंगे। इससे दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी। वे भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी की मजबूती, क्षेत्रीय और वैश्विक परिस्थितियों पर विचार विमर्श तथा ऊर्जा सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, वो है जालिम लोशन। दाग खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
5: तो शुरू करें।

0: सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
2: क्या हो गया ऐसा?
1: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
2: ये कमाल कैसे हो गया?
1: मैंने www.tgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोल कर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
2: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
1: 22 भारतीय भाषाओं

0: में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। बिहार के वैशाली जिले के राघोपुर दियारा इलाके में कल रात एक नाव दुर्घटना में 13 लोगों की मृत्यु हो गई। मृतकों में अधिकांश नाबालिग हैं। वैशाली की जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने बताया कि नाव पर लगभग 20 लोग सवार थे, जो एक भोज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। 6 लोगों को बचा लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी प्रत्येक मृतक के परिजन को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। उनकी ये यात्रा जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित है। सेवा और सुशासन की इस सोच से प्रेरित सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि किस प्रकार धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र जैसी परियोजनाओं के माध्यम से इस दृष्टिकोण को धरातल पर उतारा जा रहा है।
2: भारत के अधिकांश औद्योगिक शहर पहले विकसित हुए, बाद में वहाँ बुनियादी सुविधाएं पहुँची। धोलेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी पहल है, जो खंबात की खाड़ी के पास एक ऐसी ग्रीनफील्ड सिटी है जहाँ कोई भी प्लॉट बिकने से पहले सड़क, पानी, बिजली और फाइबर जैसी सुविधाएं पहुँचाई गई है। धोलेरा के अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरने को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
3: हमें धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन पर भी बहुत गर्व है। ये शहर मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा केंद्र बन रहा है। धोलेरा में भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी तैयार हो रही है। ये रीजन फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए अर्ली मूवर एडवांटेज दे रहा है, यानी आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र में जमीन पूरी तरह तैयार है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, पॉलिसी प्रेडिक्टेबल है और विजन लॉन्ग टर्म है।
2: स्मार्ट सिटी के विस्तार और इसके तीव्र गति से विकसित हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रकाश डालते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा,
4: धोलेरा स्मार्ट सिटी का विकास अंदाजन 920 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में हो रहा है। यहाँ सेमीकंडक्टर, एरोस्पेस और डिफेंस जैसे इमर्जिंग सेक्टर की इंडस्ट्रीज आ रही है और उसके लिए सरकार ने हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शुरू कर दिया है। अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेस वे के निर्माण से कनेक्टिविटी आसान हो गई है और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का काम अंतिम दौर में है। आने वाले दिनों में धोलेरा देश की पहली स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में स्थापित होगी।
2: ऐतिहासिक समुद्री विरासत से लेकर भारत के अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग भविष्य तक धोलेरा दूरदर्शी योजना और विकसित भारत के संकल्प का एक अनूठा प्रतीक है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: कोलकाता में दुर्गा पूजा को लेकर उत्साह दिखने लगा है। आज चतुर्थी पर शहर में हर्षोल्लास का माहौल है। रंग बिरंगे पंडाल, जगमगाती रोशनी और ढाक की गूंज से पूरा शहर उत्सवमय हो गया है। एक रिपोर्ट।
5: पूजा पंडालों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और तैयारियां जोरों पर हैं। कई लोग अभी से पंडालों में घूमने और त्योहार की खरीदारी के लिए निकल रहे हैं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस और स्थानीय प्रशासन यातायात व्यवस्था बनाए रखने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहे हैं। बंगाल के लोगों के लिए दुर्गा पूजा महज एक त्योहार नहीं, बल्कि खुशी और परंपरा और आपसी मेलजोल का अवसर है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज हैदराबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। रविवार को इंदौर में खेले गए तीसरे मैच में वेस्टइंडीज को 14 रन से हराने के बाद भारत 5 मैच की श्रृंखला में 2-1 से आगे है। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा और किदाम्बी श्रीकांत ने दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। तन्वी ने पहले दौर में जापान की नात्सुकी निदायरा को हराया। अगला मुकाबला उनका जर्मनी की यमोन ली से होगा। वहीं किदाम्बी श्रीकांत ने भी फ्रांस के अर्ना मर्कले को हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। वे दूसरे दौर में फ्रांस के ही एलेक्स लेनियर से खेलेंगे। पुरुष डबल्स में आज सात्विक साईराय रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी तथा महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद अपनी अपनी चुनौती रखेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: पीसीपी एनडीटी कानून के

0: विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
1: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद मुकेश। ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, भारत वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूती से आगे बढ़ रहा है। जनसत्ता की सुर्खी है, भारत किसी की कीमत पर नहीं दुनिया के साथ विकास करता है। लोकसत्य का शीर्षक है, दुनिया को जोड़ने की ताकत रखता है भारत। 12 वर्षों की आर्थिक नीतियों में सशक्तिकरण पर रहा जोर। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, दुनिया में तनाव के बीच IMF ने बढ़ाया भारत की ग्रोथ का अनुमान, आगे भी विकास दर तेज रहेगी। पत्र के अनुसार भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी में बना हुआ है। अमर उजाला के अनुसार त्योहारी सीजन, अर्थ जगत में राहत, बाजार झूमा, UPI पर शुल्क दीपावली तक टला। शेयर बाजार की रफ्तार से 1100 अंक से अधिक चढ़ा सेंसेक्स। दैनिक जागरण ने गृहमंत्री अमित शाह का बयान देते हुए लिखा है, 8000 की भीड़ जुटा देश की आवाज नहीं बन सकते राहुल, 2029 में भी हार के लिए तैयार रहे कांग्रेस। SIR के विरोध के नाम पर घुसपैठियों को बचाने की विपक्ष की रणनीति समझ चुकी है जनता। गृहमंत्री अमित शाह का बिम्स्टेक देशों से आह्वान पर पंजाब केसरी की सुर्खी है, आतंकियों को पनाह ना मिले। पत्र ने दिया है, चीन को भारत की दो टूक, लद्दाख हमारा अटूट अंग, विदेश मंत्रालय ने कहा, पेचिंग का दावा करने से हकीकत नहीं बदलने वाली। राजस्थान पत्रिका ने पेपर लीक मुद्दे पर नंदन नीलेकणी का सुझाव देते हुए लिखा है, AI से तैयार करें पेपर, प्रश्न बैंक से बनाएं प्रश्न पत्र, परीक्षा से ठीक पहले तय किए जाएं सवाल, 1.5 लाख परीक्षा केंद्रों का नेटवर्क बढ़ेगा। दैनिक भास्कर ने दावा शीर्षक से दिया है, प्रदर्शन कहां और कैसे हो, कोर्ट ने केंद्र से मांगा पक्ष, प्रदर्शनों से व्यापारियों को 2000 करोड़ रुपए का नुकसान। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, नीट JEE की तैयारी के लिए जल्द आएगा अभ्यास AI ऐप, घर में प्रैक्टिस पेपर डाउनलोड कर एग्जाम दे सकेंगे।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वीडियो संदेश के माध्यम से बृहत्तर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंक के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत अमेरिका व्यापार वार्ता सही दिशा में जारी, समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ऊर्जा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने के लिए अगले सप्ताह भारत आएंगे। बिहार में वैशाली के राघोपुर में नाव दुर्घटना में 13 लोगों की मौत। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम हैदराबाद में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार, मैं हूं यूनुस खान। आज 14 अक्टूबर का दिन है। 14 अक्टूबर 1946 को दुनिया के 25 देशों के प्रतिनिधि लंदन में मिले थे और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन की नींव रखी थी, और इसी की याद में हर साल 14 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे। अब आप सोच रहे होंगे कि इस दिन का आखिर क्या महत्व है। आपको बता दें कि भारत में जो स्टैंडर्ड की जिम्मेदारी है वो निभाता है भारतीय मानक ब्यूरो, और ये कहा जाता है कि अगर किसी चीज पर ISI का निशान हो या सोने पर हॉलमार्क का निशान हो तो वो आधिकारिक रूप से अच्छा माना जाता है और उत्कृष्टता का पैमाना माना जाता है। मानक संगठन बस यही काम करते हैं, यानी बाजार में मिलने वाली चीजें सही स्टैंडर्ड

0: की हों, अच्छी क्वालिटी की हों, देर तक टिकें और किसी का नुकसान न करें, इस बात का ध्यान रखता है मानक संगठन। आज का दिन इसी संगठन को सलाम करने का दिन है।
1: खाली डब्बा।

ISO ये एक संक्षिप्त रूप ही नहीं है बल्कि ये यूनानी शब्द ISOS से यानी आइसोस से आया है जिसका मतलब होता है बराबर। दरअसल हम जब जिंदगी में कुछ खरीदते हैं जैसे कि बिजली का सामान खरीदते हैं या बाइक पर जाने के लिए हेलमेट खरीदते हैं या खाना पकाने के लिए जो चूल्हा है वो खरीदते हैं तो हम इन चीजों पर एक निशान देखते हैं जो है ISI का निशान। ये भारतीय मानक ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का निशान है। जब हम सोना खरीदते हैं तो उसके ऊपर हॉलमार्क की मुहर होती है और तब हम निश्चिंत हो जाते हैं कि हमें जिस चीज का वादा किया जा रहा है वही बेची जा रही है। ISI के निशान का मतलब है भरोसा। दुकानदार और ग्राहक के बीच, कारखाने और बाजार के बीच, एक देश और दूसरे देश के बीच भरोसा, यानी यहां कोई धोखेबाजी नहीं हो रही है।

जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं तो हम उसके सस्ते होने पर उसे ना खरीदें, बल्कि हम इस बात का पूरा ध्यान रखें कि हम जिस चीज के पैसे चुका रहे हैं क्या उस पैसे के बदले में हमें वो क्वालिटी मिल रही है। जैसे बिजली का सामान अगर आपने खराब क्वालिटी का खरीद लिया तो हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट हो जाए, आग लग जाए, कोई और हादसा हो जाए। इसी तरह से हेलमेट की मिसाल हमने पहले भी ली, अगर हमने कोई हेलमेट ऐसा लिया जिस पर ISI का निशान नहीं है और वो उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो हादसे का शिकार होने पर हेलमेट आपकी रक्षा नहीं कर पाएगा। यानी चीजों को वैसा होना चाहिए जैसा उनका होना जरूरी है, उनकी क्वालिटी भरोसेमंद होनी चाहिए। इसी को सुनिश्चित करता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ISI का निशान इसी बात की मिसाल है और गारंटी भी है। आज हम आपको इस बात की याद दिला रहे हैं कि जब आप एक उपभोक्ता के रूप में कोई चीज खरीदते हैं तो ये ध्यान रखें। दूसरी चीज है वारंटी और गारंटी का ध्यान रखें, उसके पूरे पैमानों को बारीकी से पढ़ें, किसी भी तरह से किसी भी चीज को खरीदने में धोखाधड़ी का शिकार नहीं होना है, तभी ये जो मानक दिवस है ये कामयाब माना जाएगा और आप एक अच्छे उपभोक्ता साबित होंगे।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।

अरिजीत सिंह और चिन्मयी श्रीपदा की आवाज़ों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे टू स्टेट से। अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे लिखा, शंकर एहसान लॉय का संगीत।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीयता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।

0: तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीयता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
1: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
4: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चित्रलोक।

0: फिल्म एक था टाइगर से ये गीत अभी आप सुन रहे थे, संगीत दिया सुहेल सेन ने।
1: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
2: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
1: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चित्रलोक। वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, ये था फिल्म का नाम। अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। कुमार का लिखा ये गीत, शारिब तोशी का संगीत।

बद्रीनाथ की दुल्हनिया इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे अखिल सचदेव और मनशील गुजराल की आवाजों में अखिल सचदेव का संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश का नंबर वन मनोरंजन रेडियो चैनल। आज के फनकार कार्यक्रम कुछ ही पलों के बाद होगा।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

फिल्मों में हम हीरो हीरोइंस को एक से बढ़कर एक सजीली पोशाक पहने हुए दिखते हैं और कभी भी हमारे जहन में ये सवाल नहीं आता कि आखिर इन पोशाकों को डिजाइन कौन करता होगा, कहानी और पटकथा के अनुरूप इन वेशभूषाओं को कौन व्यवस्थित करके हीरो हीरोइन के लिए तैयार करवाता होगा। ये काम कॉस्ट्यूम डिजाइनर का होता है और आज एक बहुत ही मशहूर और महान कॉस्ट्यूम डिजाइनर की बातें आज के फनकार कार्यक्रम में। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और इस कार्यक्रम में लेकर आया हूं बातें भानु अथैया की।

आप सोच रहे होंगे कि जैसे ही मैंने भानु अथैया का नाम लिया और उसके बाद गाना बजा फिल्म ब्रह्मचारी का, आखिर ये माजरा क्या है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि 1969 में आई फिल्म ब्रह्मचारी के इस गाने में मुमताज ने जो ऑरेंज कैंडी कलर की घुटनों तक प्री प्लेटेड साड़ी पहनी थी, उसे भानु अथैया ने डिजाइन किया था और कुछ इस तरह से डिजाइन किया था कि इस गाने की जो शानदार कोरियोग्राफी थी उसमें थिरकने में मुमताज को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और वो सजीले बांके नौजवान शम्मी कपूर के साथ थिरकते हुए गा सकें।

वाकई भानु अथैया की डिजाइन इस ड्रेस में मुमताज की शोख अदाओं ने लोगों का दिल चुरा लिया और हर जबान पर चर्चे आ गए। हिंदी फिल्मों का ये एक ऐसा गाना है जिसे हम कभी भी और कहीं भी देखना और सुनना पसंद करते हैं। दरअसल मुमताज साड़ी के नाम से मशहूर इस ड्रेस की डिजाइनर भानु अथैया की यात्रा यहां से शुरू नहीं होती। इसके लिए हमें पीछे जाना होगा साल 1929 की तरफ, महाराष्ट्र का शहर कोल्हापुर। यहां एक बालिका ने 28 अप्रैल 1929 को जन्म लिया। नाम रखा गया भानुमती अन्ना साहेब राजोपाध्ये। जी हां, भानुमती अन्ना साहेब राजोपाध्ये, क्योंकि पिता का नाम था अन्ना साहेब और माता का नाम था शांताबाई राजोपाध्ये। अपने माता पिता की 7 संतानों में भानुमती तीसरे नंबर पर थी। आजादी के पहले का दौर था, लड़कियों की शिक्षा पर उतना जोर नहीं दिया जाता था, पर भानुमती के माता पिता ने अपनी बेटी को खूब पढ़ाया। उसकी रुचियों को देखते हुए और उसके टैलेंट को देखते हुए आगे चलकर भानुमती को भेजा गया मुंबई जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में कला की शिक्षा लेने के लिए। यहां से भानुमती गोल्ड मेडल के साथ ग्रेजुएट हो गईं। जरा सोचिए कि समय कैसी करवट लेता है। बचपन में माता पिता ने देखा कि भानुमती रेखाचित्र बनाती हैं। आजादी के पहले का समय था तो माता पिता ने कहा कि तुमको गांधी जी का रेखाचित्र बनाना चाहिए। भानुमती ने बचपन में ऐसा ही किया था। और जरा सोचिए कि आगे चलकर भानुमती भानु अथैया बनी और सर रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी की कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए उन्हें ऑस्कर से नवाजा गया। ये था समय का पैंतरा।

भानुमती का विवाह सत्येंद्र अथैया से हुआ था, जो एक कवि और गीतकार थे। ये रिश्ता लंबा नहीं चल पाया, पर भानु अथैया ने आगे विवाह नहीं किया। भानु अथैया ने अपनी कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग की यात्रा सन 1953 में शुरू की थी फिल्म CID के जरिए।

इसकी बात तो हिंदी सिनेमा में ड्रेस डिजाइनिंग को लेकर उन्होंने एक नई क्रांति ला दी। किसी जमाने में भानु अथैया महिलाओं की पत्रिकाओं के लिए फैशन विशेषज्ञ के रूप में काम करती थी, फिर वो परिधान डिजाइनिंग यानी कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग की दुनिया में आ गईं। अब आपको सुनवाते हैं फिल्म श्री 420 का नगमा। ये फिल्म आपने देखी ही होगी, इसलिए आंखें बंद करके याद कीजिए इस गाने में थिरकती हुई नादिरा को, जिनके लिए गाउन तैयार किया था भानु अथैया ने ही। और ये कॉस्ट्यूम कितनी बड़ी हिट हुई थी उस दौर में जीने वाले लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं।

भानु अथैया ने अपने इंटरव्यूज में कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग को लेकर कई तरह की बातें कही। उन्होंने कहा कि एक जमाना ऐसा था जबकि डायरेक्टर, सेट डिजाइनर और किसी टेलर को लेकर बैठ जाते थे और स्टोरी के मुताबिक कपड़े सिलवा लिया करते थे, लेकिन जब मैं फिल्मी दुनिया में आई तो मैंने ड्रेस डिजाइनिंग को एक पेशेवर रूप दिया। डायरेक्टर्स की बात सुनकर मैंने स्केचेस बनाना शुरू किया और एक्टर्स की पर्सनैलिटी और कहानी की मांग के मुताबिक ड्रेस तैयार करना शुरू किया। अब जरा फिल्म वक्त को याद करते हैं। साधना ने फिल्म वक्त में एक खास ड्रेस पहनी थी, घुटनों तक ट्यूनिक और लाइक्रा लेगिंग स्टाइल वाली चूड़ीदार पजामे वाली ये ड्रेस लोगों के बीच बहुत मशहूर हुई और लड़कियों ने इसे अपनाकर उस जमाने का फैशन बना दिया था। कुछ फेरबदल के साथ आज भी इस तरह की पोशाक चलन में नजर आती है। तो फिल्म वक्त का साधना पर फिल्माया गया ये गाना सुनिए।

अब जरा फिल्म आम्रपाली की बात कर ली जाए। फिल्म आम्रपाली एक कॉस्ट्यूम ड्रामा था। ये कहा जा सकता है कि इस ऐतिहासिक फिल्म के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग करना एक चुनौती थी। भानु अथैया ने अपनी पुस्तक में इस बात का जिक्र किया है कि उन्होंने अजंता की गुफाओं में बनी पेंटिंग से प्रेरणा ली। बौद्ध भिक्षुओं के लिए पहने जाने वाले हल्के गेरुए रंग के कपड़ों को डिजाइन करना आसान नहीं था। इस दौरान इन कपड़ों को पारिजात के फूलों के रंग में रंगा जाता था। इस फिल्म में आम्रपाली का किरदार निभाया था वैजयंती माला ने, और उन्होंने जो पोशाकें इस फिल्म में पहनी उनको भानु अथैया ने बड़ा सोच समझकर डिजाइन किया था, कुछ इस तरह से कि स्किन फिटेड ड्रेस होने के बावजूद ये भद्दी न लगे, कहानी के अनुरूप उनमें एक गरिमा हो, एक ठसक हो और एक सजीलापन हो। इसी फिल्म में सुनील दत्त ने मगध के सम्राट का किरदार निभाया था और भानु अथैया ने उनके लिए क्लासिक धोती तैयार की थी। फिल्म आम्रपाली अपनी कथा वस्तु वैजयंती माला के अभिनय और उनके नृत्यों के साथ साथ शंकर जयकिशन के संगीत के लिए भी याद की जाती है, और बहुत कम लोगों का ध्यान इस बात पर जाता है कि फिल्म आम्रपाली को सजाने में एक बड़ा योगदान था भानु अथैया का।

भानु अथैया की ड्रेस से सजी हुई कई फिल्में आपने देखी होंगी। पता नहीं आपका ध्यान इन फिल्मों में हीरो हीरोइन की पोशाकों पर गया या नहीं गया। सन 1956 में CID, सन 1959 में प्यासा, सन 1960 वहीदा रहमान की खूबसूरती से जगमगा गई सेलुलॉइड की स्क्रीन, और इस फिल्म की पोशाकें तैयार की थी भानु अथैया ने, और लोग कह उठे

बानो अथैया की खासियत ये थी कि वो फिल्म के किरदारों और कथानक को ध्यान में रखते हुए कॉस्ट्यूम डिजाइन करती रहीं। फिल्म रेशमा और शेरा में उन्होंने राजस्थान की पृष्ठभूमि

सन 1990 में एक बार फिर से राजस्थानी पृष्ठभूमि की पोशाकें तैयार करने का उन्हें मौका मिला। इस बार फिल्म थी गुलजार निर्देशित, लेकिन

फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में जीनत अमान ने जो पोशाकें पहनी थीं, वो भी भानु अथैया की ही डिजाइन की हुई थीं।

साल 1964 की तरफ लौटते हैं। वैजयंती माला, राज कपूर, राजेंद्र कुमार, फिल्म संगम। इस फिल्म के लिए क्रेप सिल्क की साड़ियां वैजयंती माला के लिए चुनी गईं। जरा इस गाने को याद कीजिए, राज कपूर, राजेंद्र कुमार, वैजयंती माला, शंकर जयकिशन की धुन और मुकेश की आवाज, साथ में लता मंगेशकर।

0: बच्चों का शर्माना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा दीवाना।
1: फिल्म राम तेरी गंगा मैली हो या फिल्म मेरा नाम जोकर, इन फिल्मों की ड्रेस डिजाइनिंग के पीछे भानु अथैया की प्रतिभा थी। कमाल अमरोही की फिल्म रजिया सुल्तान के लिए भी ड्रेस डिजाइनिंग का काम भानु अथैया ने किया था।

अब फिल्म गांधी की बात कर ली जाए। फिल्म गांधी के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग का मौका मिला था भानु अथैया को। दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म के लिए बाकायदा ऑडिशन और टेस्ट लिया गया था और दुनिया भर के लोगों में से भानु अथैया को चुना गया फिल्म गांधी की कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए। सन 1983 में रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर का ऑस्कर अवार्ड जीता था भानु अथैया ने, और वो ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय हस्ती बन गई थी। इसके बाद भी भानु अथैया की कला जारी रही थी। आपको बता दें कि जब आमिर खान ने फिल्म लगान बनाई तो उसके लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग का काम भानु अथैया को ही सौंपा था। आजादी के पहले का परिदृश्य और ग्रामीण किरदार उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी कि किस तरह से वो इस फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइन करेंगी। खासतौर पर उन्हें ये ध्यान रखना था कि फिल्म में ग्रामीण गरीब किरदार हैं जो आजादी के पहले के समय के हैं। खूब रिसर्च करने के बाद उन्होंने फिल्म लगान के किरदारों के लिए कॉस्ट्यूम्स तैयार की थी।

आशुतोष गोवारीकर की फिल्म स्वदेश के लिए भी ड्रेस डिजाइनिंग का काम भानु अथैया ने किया था। भानु अथैया को गुलजार की फिल्म लेकिन और आशुतोष गोवारीकर की फिल्म लगान के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग का नेशनल अवार्ड भी मिला था। कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग की अपनी इस पूरी यात्रा को उन्होंने एक किताब में संजोया है जिसका नाम है द आर्ट ऑफ कॉस्ट्यूम डिजाइन। परिधान डिजाइनिंग के शौकीनों के लिए ये किताब किसी महत्वपूर्ण ग्रंथ से कम नहीं है। अक्टूबर साल 2020, भानु अथैया एक खौफनाक बीमारी से जूझ रही थी। इससे पहले फिल्म लगान की शूटिंग के दौरान उन्हें लकवा भी लग गया था। उम्र धीरे धीरे अपना असर दिखा रही थी। 15 अक्टूबर के दिन उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। भारत की एक सबसे प्रसिद्ध ड्रेस डिजाइनर इस दुनिया से विदा जरूर हो गई, पर उनका नाम हमेशा रहेगा। जब भी फिल्म गांधी का जिक्र आएगा, ब्रह्मचारी का, स्वदेश का, लगान का, गाइड का, साहब बीवी और गुलाम जैसी फिल्मों का जिक्र आएगा या चौधरी का चांद और हिना जैसी फिल्मों का जिक्र आएगा, भानु अथैया को लोग याद करते रहेंगे, हमेशा याद करेंगे भारत की सबसे प्रसिद्ध कॉस्ट्यूम डिजाइनर।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज के नृत्य ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित जानी मानी कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया पर शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: सेल्यूलॉइड के सितारे। इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जाने माने अभिनेता चंदन रॉय से। इनसे बातचीत की है अनुराधा उपाध्याय ने। यह है दूसरा और अंतिम भाग।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित है एक ऐसे कलाकार जिन्होंने बिहार के एक छोटे से गांव से निकलकर मुंबई में अपने एक्टिंग के सपने को जिया है और आज एक बहुत ही पसंद की जाने वाली सीरीज पंचायत, जिसका नाम है, उसके किरदार विकास के रूप में करोड़ों दिलों में जगह बनाई है। एक ऐसा किरदार जो ईमानदार है और जिसमें कहीं ना कहीं मासूमियत भरी है और उसने लोगों को हंसाया भी है और रुलाया भी है। अपनी मेहनत और लगन से एक अलग मुकाम बनाने वाले अभिनेता चंदन रॉय जी से आज हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में।
2: थैंक यू सो मच मैम, और मुझे सच में यहाँ आकर के बहुत अच्छा लग रहा है।
1: अच्छा, अब बात करते हैं उस सीरीज की जहाँ से आपको नाम मिला विकास का, इस किरदार का। तो ये पंचायत के साथ जुड़ना कैसे हुआ, क्योंकि शायद दिलचस्प बात यह है कि आप बहुत ज्यादा सीरियसली इसका ऑडिशन नहीं दिया था या यूं ही हो गया, कुछ तो मजेदार किस्सा है इसके साथ जुड़ा हुआ। पंचायत के साथ कैसे जुड़े आप?
2: देखिए, जब मुंबई में ऑडिशन का सिलसिला शुरू हुआ मेरा, तो जैसा मैंने कहा कि रोज सुबह, कई बार तो बहुत लंबे टाइम तक तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ था कि मैं मुंबई आ गया हूं। सोया हुआ हूं, नींद खुली, मैंने कहा अरे मैं मुंबई में हूं, यकीन ही नहीं आ रहा है मुझे, क्योंकि बचपन से मुझे मुंबई जाना था, बचपन से ही सपना देखा था मैंने। इस कदर दीवानगी थी मुंबई आने का कि अगर मैं किसी ट्रेन में देख लूं कि पटना टू बांद्रा, मुझे लगता था कि जाकर के उस बॉगी को एक बार प्रणाम कर लें।
1: अच्छा।
2: उसको छू लें, क्योंकि ये मुंबई जा रहा है। और जब मैं मुंबई आ गया तो रात में कभी चौंक के उठ जाता था कि सच में मैं मुंबई आ गया, मैं मुंबई में हूं अभी, ये यकीन नहीं होता था मुझे। और जब मुझे ये लगता कि जब तुम मुंबई आ गए हो तो तुम सोए हुए क्यों हो भाई, उठो ना, जाओ ना ऑडिशन देने के लिए, करो ना वो काम जो तुम चाहते हो, तो बहुत ही

0: सुबह उठ के थोड़ा गले के लिए कुछ रियाज कर लेता था, चूंकि थिएटर बैकग्राउंड से आया था मैं,
1: बिल्कुल
0: और वही चावल दाल, कभी चना मूंग खा के, या सत्तू। सत्तू मेरा बहुत ही गो टू फूड है, अभी भी यकीन माने मैं सत्तू पी के आया हूँ।
1: अच्छा
0: तो उस टाइम में भी ये सब सत्तू या चावल दाल खा के मैं निकल जाता था ऑडिशन के लिए। और कई बार मुंबई की तो आप जानते ही हैं उमस, इधर तो अब गर्मी भी ज्यादा होने लगी है, बट ये सब चीज फर्क नहीं पड़ता था। ना तो उस समय सनस्क्रीन था, ना तो कुछ था, बस जुनून था जिसकी वजह से पूरा शरीर चमक रहा था, है ना।
1: बिल्कुल, आपकी बातों में झलक रहा है वो
0: हाँ
1: जुनून।
0: जी। और मैं निकलता जहां मुझे मिल जाए पानी पीने का, पसीने सुखाने का, वो सब चीज मैं कर लेता था। ऑडिशन जब भी मैं कहीं जाऊं और दिन में अगर एक भी ऑडिशन हो जाए तो ऐसा लगता था आज का दिन सफल हो गया मेरा। क्यों? क्योंकि जब सामने कैमरा होता था तो मुझे लगता मैं क्या कर दूं। कई बार स्क्रिप्ट हम घर से अपना कुछ मोनोलॉग तैयार करके ले जाते थे, और सामने रिकॉर्ड करने वाला अगर उसको मजा आ रहा है तो हम उसी में इंप्रोवाइज करने लगते थे,
1: बिल्कुल
0: किसी तरह इसको मैं इंप्रेस कर दूं अपने एक्ट से। ये फितूर, ये दीवानगी, ये पागलपन मेरे सर पे सवार हो गया था और ये चलता रहा मैं। बट उस समय एक चीज मेरे ध्यान में था कि ऑडिशन दो और भूल जाओ। क्यों? क्योंकि यहां लोड बढ़ जाता था दिमाग पे कि भाई मैंने बड़ा अच्छा ऑडिशन दिया, कॉल नहीं आया, पता नहीं क्या होगा। तो अपन ऑडिशन दे दे के भूल जाते थे।
1: तो पंचायत का ऑडिशन भी आपने दे के भूल गए या किस तरह से यहां तक पहुंचे?
0: पंचायत के ऑडिशन में ये हुआ कि तब तक 1.5 साल हो चुके थे मुंबई में,
1: अच्छा
0: साल 1.5 साल। और मेरे कुछ दोस्त, मेरे नहीं मतलब मेरे रूममेट के एक दोस्त,
1: जी
0: वो उनकी महफिल जमती थी मेरे घर पे, तो अंकित मैं फ्लैटमेट हुआ करता था।
1: जी
0: फ्लैटमेट क्या, हम लोग समझिए कि रैन बसेरा ही था वो, एक साथ 6-7-8 लोग रह रहे हैं।
1: अच्छा
0: और कमाल की बात ये थी कि 7-8 लोगों के लिए मैं ही रोटी बेलता था।
1: अच्छा रोटी का काम आपको सौंपा गया था।
0: नहीं, सौंपा क्या गया था, कोई कुछ करते ही नहीं थे। और मुझे ये था कि इस समय पे मुझे बाहर जाना है, ऑडिशन देना है, समय पे सो जाना है, तो वो सब इंतजार करते रहते थे कि चंदन आएगा तो खाने को मिलेगा। तो उन सब के लिए मैं रोटी बनाता, और बाद में फिर मैं टिक्कर बनाने लगा।
1: अच्छा
0: टिक्कर जो रोटी का बहुत मोटा रूप।
1: अच्छा छोटा और मोटा रूप, छोटा और मोटा रूप।
0: हाँ जी,
1: अच्छा
0: बहुत मोटा मोटा मैं, चूंकि मुझे बड़ा मुश्किल हो गया था वो,
1: जी
0: मतलब 1-1 घंटे तक रोटी बेलना, तो मैं
1: जी
0: बहुत
1: जी
0: मोटा मोटा बनाने लगा।
1: जी
0: खैर, तो हाँ महफिल जमती और फिर लोग आते हैं, तो उसमें से एक मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त बन गया, लतिन। तो उन्होंने कहा कि यार चंदन तुम कल आ जाओ ऑफिस में, तुम्हारा हम इंट्रोडक्शन करवा देंगे। मैंने कहा अरे वाह, बहुत सही, इतने साल से आज तक इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है कास्टिंग वे में। तो उसने बुलाया, अगले दिन हम पहुंच गए वहां। कमाल की बात ये थी कि पंचायत सारे कैरेक्टर लॉक हो चुके थे,
1: अच्छा
0: सिर्फ दो कैरेक्टर बचा हुआ था। एक एक दिन का वो काम था, एक इलेक्ट्रिशियन का और एक दूल्हे का। बोला देख दूल्हा तो तू लग नहीं रहा, इलेक्ट्रिशियन बन जा, उसका ऑडिशन है। उन्होंने स्क्रिप्ट दिया, बोला ये करके तैयार, थोड़ा सा तैयारी कर लो और आ जाओ।
1: जी
0: मैंने कहा ठीक है। एक दो बार पढ़ा और फिर मैंने वो ऑडिशन देखे, फिर वही बातें भूल जाओ। भूल गया फिर अपने दूसरे ऑडिशन की तैयारी घूम घूम के, कि यस ऐसा दरवाजा नॉक करता था कि भाई सर कुछ है क्या मेरे लिए, कुछ है क्या मेरे लिए, ये फिर शुरू हो गया मेरा। उस समय चंदन चंदन कुमार जो हमारे पंचायत के राइटर हैं, और दीपक मिश्रा जो हमारे पंचायत के डायरेक्टर हैं, तो इन्होंने देखा मेरा ऑडिशन और उन्होंने उसी समय डिसाइड किया कि यार इस लड़के से अपन कुछ और करवाते हैं, बहुत सही लग रहा है। तब तक विकास के लिए कोई और कैरेक्टर लॉक हो चुका था,
1: अच्छा
0: तो उनके मन में आया क्यों ना हम विकास एक बार ट्राई करें इससे। तो आया विकास का ऑडिशन मेरे पास। मुझे लगा कि यार ये क्या ही, मतलब कहाँ मैं वन डे टू डे करता हूँ, इन्होंने पैरेलल लीड कैरेक्टर मुझे ऑफर कर
1: बिल्कुल
0: रहे हैं।
1: बिल्कुल
0: तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं, मतलब हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अपना तो चल ही रहा है, रोज भटकेंगे फिर से। और मैं एकदम कफन बांध के आया था अगले 20-25-30 सालों के लिए, ये
1: अच्छा
0: नहीं कि मुझे फट से काम, नहीं बहुत समय बुढ़ापा तक वो सोच के आया था मैं। बट आ गया पंचायत का ऑडिशन और अगले दिन चला गया ऑडिशन के लिए, दिया
1: शुरू किया
0: ऑडिशन।
1: जाए।
0: हाँ दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवीएफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं।
1: अच्छा
0: तो रामनगर में उनका ऑफिस आ गया मैं मिलने के लिए। यकीन मानिए मुझे उस समय तक मैं टीवीएफ जानता भी नहीं था, कुछ
1: अच्छा
0: वीडियो मैंने जरूर देखे थे बट जानता नहीं था मैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि यार मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है।

0: क्या बात है,
1: तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
0: क्या बात है, क्या बात है, इस तरह का कॉम्प्लीमेंट मिलना ही बहुत बड़ी बात है।
1: हाँ जी।
0: इसी बात पर कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे?
1: अरे वाह, मैं इस वक्त जो मुझे याद आ रहा है, जब मैं स्कूल शुरू किया था ना, तो अक्सर फिल्म का एक गाना बहुत उस समय, आजकल तो वायरल कहते हैं, उस समय तो लोकप्रिय कहा करते थे।
0: पॉपुलर,
1: हाँ जी, हाँ
0: बहुत
1: जी।
0: पॉपुलर।
1: तो एक बार आजा आजा अक्सर फिल्म का गाना है,
0: जी,
1: इमरान हाशमी,
0: सुनवाते
1: उनका
0: हैं गीत,
1: दौर था ये।
0: सुनवाते हैं गीत,
1: हाँ जी, हाँ
0: बिल्कुल।
1: जी।

0: पंचायत की बात चलिए तो हम आते हैं कि आपके किरदार पर, उस किरदार के लिए कुछ तैयारी की आपने, जैसे मैनरिज्म कुछ है उसके, उसकी बोली किस तरह से बोलेगा, इसके पीछे कुछ तैयारी हुई, वर्कशॉप हुई, किस तरह से ये क्योंकि बहुत पसंद किया जाने वाला किरदार है, जिस हिसाब से वो स्लो बड़े आराम से इत्मीनान से बोलता है चलता है, तो वो तैयारी कैसी हुई?
1: जी, तो जब स्क्रिप्ट मेरे पास आया तो जैसा वो थिएटर में मुझे बताया गया था कि जितने बार स्क्रिप्ट पढ़ोगे ना तो वो कैरेक्टर एक समय के बाद खुद से बोलने लगेगा कि मैं ऐसे बिहेव कर रहा हूं, मैं ऐसा हूं। तो पंचायत का जो विकास है वो स्क्रिप्ट से मैंने उठाया, मतलब उसको जितना मैं पढ़ा, मतलब बहुत पढ़ा मैंने
0: जी,
1: कि अगर ये प्रधान जी से इस तरह से बात कर रहा है, ये प्रहलाद चा से ऐसी बातें कर रहा या सचिव से ऐसी बातें कर रहा, तो ये किस तरह का कैरेक्टर होगा, इसके अंदर कैसी एनर्जी होगी, ये सब कुछ आप जब बार बार बार बार स्क्रिप्ट पढ़ते हो ना, आपको सब कुछ मिल जाता है। इस एक स्क्रिप्ट में अगर आप बार बार पढ़ो तो उसमें सब कुछ रहता है, आपको कुछ भी अतिरिक्त करने की जरूरत नहीं होती,
0: बस उसमें रमना और बसना होता है
1: बस। तो समझिए कि विकास को इतना, मैं चूंकि वो पहला प्रोजेक्ट था
0: जी,
1: तो मैं किसी तरह से कोई गलती की गुंजाइश नहीं रखना चाहता था
0: जी,
1: तो उसको बहुत पढ़ा मैंने। जैसे कई बार होता है ना कि जो बुक आपका बहुत पसंदीदा होता है आप इतना पढ़ जाते हो कि उसके पेज थोड़े से मटमैले हो जाते हैं,
0: बिल्कुल
1: हर जगह फिंगरप्रिंट होता है, गंदे से हो जाते हैं हर जगह। तो मेरा स्क्रिप्ट भी इसी तरह से हो गया था
0: जी,
1: कहीं भी मुझे अगर 5-10 मिनट का भी समय मिलता मैं एक दो पेज पढ़ लेता।
0: अच्छा,
1: इतनी दीवानगी थी मुझे अपने स्क्रिप्ट को लेकर के। तो एक तो दिमाग में ये भी था मैम कि अपन एक्टिंग नहीं करेंगे कहीं भी, जितना अच्छा ये मेरा ना मतलब अभिनय को लेकर के मेरा अप्रोच भी हमेशा से रहा है
0: जी,
1: कि लोगों को ये ना लगे कि अच्छा हेयर मेकअप करके अभी तैयार है तो अभी मुझे एक्टिंग करनी है। मैं जैसा हूं या जैसा मेरा कैरेक्टर है अपन उसी तरह से करेंगे, क्यों हम कैमरा लगते ही ये दिखाने लगते हैं कि देखो अब हम एक्टिंग करेंगे, अब तैयार हो जाओ हमें देखने के लिए। मुझे इससे परहेज शुरू से था, मुझे नहीं पता कि अच्छी एक्टिंग क्या होती है, आज तक मैं ढूंढ रहा हूं, लेकिन हाँ मुझे बुरी एक्टिंग क्या होती है इस बात की समझ बहुत पहले हो गई थी।
0: और मुझे लगता है वो समझ होना बहुत जरूरी है,
1: बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं उनसे बचता था और ये था कि क्या करना है ये तो एक्सप्लोर करो, ये बहुत महासागर है, ये पूरा खुला आकाश है, क्या करना है आप ढूंढो, लेकिन क्या नहीं करना है ये पहले उस
0: पहले पता होना,
1: बिल्कुल पता होना चाहिए। तो विकास के साथ भी ऐसा ही किया मैंने
0: जी,
1: अपने गांव में जिस तरह से मैं देखता था कि लोग जिस तरह से खड़े होकर के, 5 लोग अगर पुलिया पे खड़े हैं या बैठे हैं और बात कर रहे हैं तो कितना अगर बहुत इन्वॉल्व है, उस तरह की बातें हो रही हैं तो उनका हाथ पांव कैसे रहता है, एनर्जी कैसी होती है, मेरी ये पूरी कोशिश रही। आप देखना किसी भी फ्रेम में आपको नहीं लगेगा कि ये लड़का अलग किसी दूसरे शहर का है या ये लड़का विकास इस गांव का नहीं है। तो इन सब पर मेरा बहुत ही मैं चाहता था कि घुस जाऊं, जैसे आप कोई शर्ट पहन लेते हो, कोई कोट पहन लेते हो और वो आपका हो जाता है, उसी तरह से विकास को मैंने पहन लिया,
0: बिल्कुल और वो दिखता भी है। और इसके एक दो सीन है जिसकी मैं बात करना चाहूं, जैसे एक था जिसमें विकास वो बाइक पे बैठता है और पूरा पूरा पलंग उठा के सर पर और चल देता है।
1: हाँ,
0: तो इस तरह के जो सीन है ये कहीं इम्प्रोवाइज्ड है या स्क्रिप्ट में लिखे हुए थे पहले से?
1: नहीं, ये जो बेसिकली जो खाट जो हम सर पे उठाते हैं तो स्क्रिप्ट में लिखा था।
0: अच्छा,
1: लेकिन पंचायत में एक बड़ी अच्छी बात यह है, हमारे क्रिएटर्स जो है दीपक सर, अरुणाव सर और चंदन सर जो राइटर हैं, ये अपने एक्टर को बड़ा खुला छोड़ देते हैं। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात अभी मतलब शुरू से ही उन्होंने कहा है कि देख ये यूनिवर्स है, हमने अपने सारे कैरेक्टर को इस यूनिवर्स में उतार दिया है, मैं ये इंसिडेंट या ये इवेंट मैंने स्क्रिप्ट में लिखा है बट ये होगा कैसे, आपको उस मोमेंट में उस स्पेस में उस एम्बियंस में जो समझ में आ रहा है आप करो। यही वजह है कि पंचायत में जितने कैरेक्टर हैं कई बार वो स्क्रिप्ट के बियॉन्ड चले जाते हैं और बहुत खूबसूरत चीज निकाल के ले आते हैं, है ना। और इसके लिए जरूरी है कि आप उस यूनिवर्स को समझें, अगर आप नहीं समझोगे ना तो ऐसा लगेगा एयर ड्रॉप किया हुआ ये कैरेक्टर है
0: जी,
1: सिर्फ स्क्रिप्ट बोल रहा है, सिर्फ वो लाइंस बोल रहा है, ऐसा लगेगा। तो ये छूट, ये लिबर्टी हमारे क्रिएटर्स ने हम लोगों को दिया है और मुझे भी इम्प्रोवाइज करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कई बार जब आप

0: जो हमारे राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, उन्होंने कुछ सोचा है इस सीन को कि ऐसा रखेंगे, उनके अतिरिक्त आप कुछ कर देते हो, उनसे आगे कुछ बढ़ा देते हो अपने सीन को या अपने कैरेक्टर को, तो यकीन मानिए जब आप होटल जाते हो वापस अपने फ्रेश होकर के, नहा के अपने बेड पे आते हो, तो बड़ी खुशी मिलती है आपको कि वाह मैंने सीन में
1: संतोष मिलता है,
0: यस
1: कि आज क्या किया,
0: आज बड़ा अच्छा सीन किया
1: जी,
0: मैंने
1: जी, जी।
0: और बहुत ही खुशी खुशी आपको नींद आ जाती है। फिर अगले दिन जब सुबह 4:30-5 बजे का अलार्म बजता है, फिर आप वही जुनून, वही पागलपन आपको काम आता है।
1: तो सेट पे कैसा माहौल है आपके को एक्टर से, ऑफ स्क्रीन भी कैसा माहौल है, किन के साथ मिलना जुलना तो लगा रहता होगा?
0: देखिए, एक तो बहुत यह है कि लोगों को लगता है कि बहुत हम लोग मिलते जुलते हैं, पर्दे पे इतनी अच्छी केमिस्ट्री है, लेकिन मुंबई बिल्कुल उल्टा है, किसी के पास भी समय नहीं है और कई बार डर भी लगता है कि भाई कोई कहीं जाऊं पता नहीं क्या होगा, उसकी प्राइवेसी है, उसका क्या है। तो सेट पे तो हम लोग सब बहुत मिलजुल के, सब लोग, और ये सभी अभी इतने 8-9 साल का अनुभव है मेरा
1: जी।
0: सेट पे, हम लोग जितनी केमिस्ट्री, और सिर्फ मैं किसी एक प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा, सभी प्रोजेक्ट में यही होता है कि
1: जी।
0: हम लोग सेट पे बहुत अच्छे रहते हैं और जैसे ही हमारा पैकअप होता है हम सब अपनी अपनी दुनिया में चले जाते हैं, अपने अपने यूनिवर्स में चले जाते हैं, है ना। और ये कई बार सही भी होता है, कई बार मुझे गलत भी लगता है, बट ठीक है, मैं भी इस धारा में बह रहा हूं। किसी के पास समय नहीं होता कि वो मिले, पुराने दिनों को याद करे, सिर्फ
1: कभी कभी किसी प्रोजेक्ट में अगर फिर से उनसे मुलाकात हो, एक मिलना अलग हो जाता है।
0: एक तो हम लोग का जो भी एक्टर होते हैं
1: जी,
0: उनका बहुत रिसीविंग नेचर होता है
1: जी।
0: मान लो कि अगर आपकी एनर्जी मुझसे नहीं भी मिल रही है, आप बहुत अलग ख्यालात के हैं, मैं अलग हूं, बट जब हमारा सीन होता है तो हमें अपनी एनर्जी को मैच करके और उस वक्त को बहुत अच्छे से अपने कैरेक्टर को करना होता है
1: जी जी,
0: है ना
1: जी बिल्कुल।
0: तो लोग लगा, अरे भाई क्या है, बहुत बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है इन लोगों में। तो ये हमारा जॉब का एक सबसे पहला एक स्टेप है ये।
1: अच्छा, पंचायत के बाद क्या फर्क आया है जब आप अभी वापस गांव जाते हैं मिलने जुलने परिवार से, दोस्तों से, पहले के चंदन में और अभी वो जिस तरह से बिहेव करते हैं या मिलते जुलते हैं, कुछ फर्क है दोस्तों के बीच या बाहर के लोगों के बीच?
0: देखिए, उनके नजर, उनका नजरिया बदला होगा मेरे लिए, ये तो मुझे ऐसा लगता भी है, बट मैं तो बिल्कुल भी अंदर से नहीं बदला हूं, मैं जैसा था वैसा ही हूं। पहले भी इसी तरह से मैं सोचता था, इतना ही कूल और कॉन्फिडेंस में रहता था जितना आज है, और कभी मुझे अभी कई बार ऐसा लगता है कि ये तो होना ही था मेरे लाइफ में
1: जी।
0: तो कई बार आश्चर्य नहीं होता मुझे।
1: लेकिन बाहर जो बाकी लोग मिलते हैं उनकी मेहमान नवाजी में कुछ फर्क आया?
0: बिल्कुल, कई बार तो उनको लगता है कि भाई ये चंदन तो आप, जैसे मुझे बहुत बुरा लगता है जब दोस्त लोग अजीब बिहेव करते हैं।
1: अच्छा।
0: हाँ, उनको लगता है कि अरे इसको ऐसे मत बोलो, इसको ऐसे बैठाओ, इसके लिए थोड़ा पहले
1: कुछ चंदन बुरा को लग जाएगा।
0: हाँ, तो मुझे लगता है ओ हेलो, मैं वही चंदन हूँ भाई, ऐसा क्यों तुम बिहेव कर रहे हो?
1: अच्छा,
0: जैसा पहले थे वैसे ही रहो। तो लोगों का नजरिया बदला है, लेकिन मेरा तो बिल्कुल भी, जैसा मैं पहले था आज भी वैसे ही हूँ, घर जाऊं या कहीं भी जाऊं मैं वही कहा कि मेरा जॉब है अभिनय करना। लोगों को लगता है अरे ये तो पर्दे पे आ रहा है ये सब चीजें, बट ये मेरा जॉब है। और बहुत ही संजीदा और गंभीरता के साथ, जितना एक डॉक्टर, इंजीनियर, आर्मी ऑफिसर अपने काम करते हैं, उसी शिद्दत के साथ, उसी मेहनत के साथ, उसी ईमानदारी के साथ हम लोग भी काम करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम आपसे बहुत बेहतर हैं या ऐसा कुछ, कुछ भी नहीं। हाँ, बट कई बार होता है कि कैमरा देख करके लोगों को थोड़ा सा रोमांच फील होता है, मैं समझ सकता हूँ कि वो अगर ऐसा सोचते हैं तो बुरी बात नहीं है, लेकिन ये मेरा एक जॉब है, मैं बस एक जॉब कर रहा हूँ। मुझसे बेहतर काम जो सरहद पे हैं, जो डॉक्टर है, जो इंजीनियर है, वो या जो प्रोफेसर है, टीचर है, वो मुझसे ज्यादा बेहतर काम कर रहे हैं, उनका योगदान समाज में मुझसे कहीं ज्यादा है।
1: क्या बात है, बिल्कुल। सुनवाते आपके पसंद का एक गीत?
0: बिल्कुल सुनेंगे हम,
1: जरूर बताएं।
0: हर घड़ी बदल रही है
1: रूप
0: जिंदगी की,
1: बिल्कुल सुनवाते हैं,
0: है ना।

अभी हम बात करते हैं गुलमोहर की। गुलमोहर में आपने काम किया और उसमें मनोज बाजपेयी जी के साथ काम किया, शर्मिला टैगोर जी भी स्क्रीन पर थी आपके साथ, उससे जुड़े कुछ खास

0: अनुभव किससे आप सुनाना चाहें, कैसा लगा उनके साथ काम करके और कैसा अनुभव रहा?
1: बिल्कुल, गुलमोहर मेरे फिल्मी करियर के लिए एक ऐसा है फिल्म जिसको मैं हमेशा याद रखूंगा। हालांकि जब ये स्क्रिप्ट मेरे पास आया था तो मैंने मना ही कर दिया था।
0: अच्छा, क्यों?
1: क्योंकि कैरेक्टर मुझे सही नहीं लग रहा था, यार मैं इस तरह का कैरेक्टर तो नहीं करूंगा। बट हमारे जो डायरेक्टर हैं राहुल चिटेला, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि सुनो एक बार मुझसे मिलो, करना ना करना बात की बात है, पहले एक बार मिलो। मैं मिला और मुझे ये था कि अगर मैं जाऊंगा तो ये तो मना ही लेंगे, बट मैं बहुत जिद्दी रहूंगा अपने जिद पे कि भाई मुझे नहीं करना। और गया बांद्रा में उनके ऑफिस और उन्होंने कहा कि क्यों नहीं करना चाह रहे हो। मैंने कहा सर मैं ये गेट कीपर इस तरह का कैरेक्टर नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे एक डर भी था कि अगर मैं इस तरह करूंगा तो लोग मुझे इसी तरह के कैरेक्टर देते रहेंगे,
0: टाइपकास्ट
1: कर देंगे, और अपन बहुत अंदर भरा हुआ है मामला तो फंसना नहीं है किसी एक कैरेक्टर में। उन्होंने कहा कि देख चंदन, करना तो तुम्हें ही है ये कैरेक्टर, हाँ बोलो ना बोलो, अब तुम ये बताओ कि इस कैरेक्टर को और कैसे, तू क्या क्या नहीं चाहता है इसमें
0: जी।
1: और इसमें हम और क्या कर सकते हैं। एक नया लड़का उस फिल्म में, इतने दिग्गज लोग, मनोज वाजपेयी सर, शर्मिला टैगोर, तलत अजीज, अमोल पालेकर, वहां पे मेरे जैसा लड़का एक बोल रहा है कि सुनो मैं पूरे फिल्म में कभी कुछ जो कॉस्ट्यूम है ना वो वर्दी वाला गेटकीपर का वो नहीं पहनूंगा, पूरे फिल्म में कुछ काम नहीं करूंगा, मैं कुछ उठाना हुआ कुछ ऐसा कुछ नहीं चाहिए, तो करोगे क्या? मैंने कहा मैं पढ़ाई करूंगा, मैं एक ऐसा लड़का जो गांव देहात से आया है दिल्ली में और इस शहर में वो इंग्लिश पढ़ना चाह रहा है, तो कुछ ऐसा कैरेक्टर रखते हैं। राहुल कमाल का, बहुत कमाल के इंसान, वो मेरी हर बात को मानते चले गए। उन्होंने बोला बस मैं यही चाह रहा हूं, यही करो।
0: अच्छा।
1: और पता नहीं क्यों मेरी सारी बातें उन्होंने मान ली और मैंने वो फिल्म किया, और मुझे अब मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं गुलमोहर में हूं, क्योंकि पता नहीं इतने दिग्गज लोग के साथ फिर दोबारा कब काम करूंगा। और जैसे शर्मिला मैम, मुझे एक और घटना याद आ रही है कि एक तो मेरा लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया था इस एक्शन, मतलब एक ऐसा सीन था वहां पर कुछ झड़प था, आपसी झड़प, उसमें मेरा को एक्टर, उन्होंने मुझे पैर पे मार दिया था तो मेरा लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया, और मनोज सर को लगा कि मैं इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ।
0: अच्छा।
1: जबकि मैं दर्द के मारे तड़प रहा था
0: जी।
1: तो एक पॉइंट के बाद जब मैं अपना लाइंस नहीं दिया उनको, तो वो आए और उनको लगा सच में ये कुछ तकलीफ में है, दर्द में है, और आकर उन्होंने फिर मुझे उठाया और तुरंत एम्बुलेंस लाके मुझे भेजा गया हॉस्पिटल। बट मुझे याद है कि शर्मिला मैम का जब रैप अप हो रहा था लास्ट डे उनका, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि अरे चंदन को बुलाओ, चंदन को बुला, और उन्होंने केक कट करके वो एक छोटे से प्लेट में रख करके मेरा वेट कर रही थी।
0: अच्छा।
1: कि मैं चंदन को खिलाऊंगी पहले, आई डोंट नो, और मुझे था कि भाई बड़े लोग हैं, अपना केक कट हो रहा है, मैं उधर कहीं स्पॉट बॉय लोग के साथ कहीं बैठ के अपना बैठा था, तो प्रोडक्शन भागा भागा, अरे सर आपको ढूंढा जा रहा है। मैंने कहा मुझे कौन ढूंढ रहा भाई, शर्मिला मैम। तो जब मैं वहां गया तो मैम ने वो प्लेट मुझे दी, अपने हाथों से खिलाया, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मतलब ये
0: पर्दे पे बचपन से देखा।
1: हाँ जी।
0: और वो आज अपने हाथ से आपको केक खिला रहे।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: क्या बात।
1: मैंने क्या, मेरे दादाजी ने भी उनकी फिल्में देखी होंगी, मेरे पिताजी ने भी देखी होगी
0: जी, जी, बिल्कुल।
1: और मैं उनके साथ काम किया,
0: ये
1: बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए।
0: और मनोज वाजपेयी जी के साथ भी अपने स्क्रीन शेयर किया है, उनसे क्या कुछ कोई ऐसा अनुभव, कोई ऐसा?
1: एक तो हाँ, मुझे एक सीन याद आ रहा है कि मैं और शांति, एक सीन चल रहा था, वो किचन में थी और फिर वो मेरे पास आती हैं, तो मनोज सर, सीन चल रहा था, मनोज सर वहीं पे चेयर लगा करके बाहर बैठ गए, उस दिन उनका सीन भी नहीं था, तो मुझे लगा यार क्यों बैठे हुए हैं ये, मैं नया एक्टर हूँ मैं भाई मैं मतलब इनसिक्योर हो जाऊंगा, मतलब मुझे डर लग रहा था उनको देख के कि मैं जिनको भाई जो इतने कमाल के एक्टर हैं उनके सामने मुझे एक्टिंग करने के लिए बोल रहा है, नहीं प्लीज आप चले जाओ, मेरे मन में ये चल रहा था।
0: अच्छा।
1: और किसी तरह वो सीन बहुत अच्छा हो गया, और फिर जब सीन खत्म हुआ तो सर आए मेरे पास, उन्होंने कहा तू कहाँ से है? मैंने कहा सर मैं तो बिहार से हूँ। अरे बहुत सही, या थिएटर करते हो? मैंने कहा जी सर। बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। और उन्होंने से पीठ पे एक बार ऐसे थपथपा के वो चले गए। फिर तो हमारा पहला उनसे जो हम कह सकते हैं मुलाकात इस तरह से हुआ मनोज सर के साथ मेरा।
0: यहाँ पर आपके पसंद का गीत कौन सा सुनवाना चाहेंगे आप?
1: इस वक्त मैं अपने पसंद का गाना सुनना चाहता हूँ।

0: इतनी दिलचस्प बातें हो रही है आपके साथ।
1: हाँ जी।
0: और अब आते हैं हम चंपारण मटन करके एक शॉर्ट फिल्म थी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए।
1: FTI की फिल्म है ये।
0: हाँ हाँ।
1: रंजन इसके डायरेक्टर हैं और ये पहली ऐसी फिल्म है जो बज्जिका में बनी है। लोगों को लगता है कि बिहार में सिर्फ भोजपुरी मैथिली है ना, लोगों को लगता है कि बिहार में सिर्फ भोजपुरी बोली जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। भोजपुरी के अलावा भी कई क्षेत्रीय भाषाएं हैं जो बोली जाती हैं। एक बड़ा खूबसूरत एक कहावत है बिहार में कि कोस कोस पे

0: पानी बदले तीन कोस पे बानी, है ना, मतलब हर
1: तीन कोस पे भाषा,
0: हाँ जी हाँ जी
1: बोली बदलती।
0: हाँ जी। और बज्जिका मेरी मातृभाषा है, मेरी दादी, मेरे दादा, मेरे घर में आज भी जब अगर आपके सामने मेरा फोन आ जाए तो मैं अपनी माताजी से, पिताजी से बज्जिका में ही बात करूंगा।
1: अच्छा,
0: तो इस भाषा में अगर मुझे मिले फिल्म करने के लिए तो मैं कैसे छोड़ सकता था। और ये FTI की फिल्म थी, बहुत प्यारी फिल्म इन लोगों ने बनाई। हालांकि मैं उस समय लगातार शूट चल रहा था तो 15 दिन का एक गैप था, मैंने कहा इस बीच ये फिल्म हम शूट करेंगे, स्टूडेंट फिल्म है, मजे मजे में मैं चला गया था। क्योंकि एक आदत होती है ना कि आप OTT के लिए काम कर रहे हो या फिल्म कर रहे हो और अचानक से एक स्टूडेंट फिल्म करने के लिए चले जाते हो, जहां पे बहुत सारी चीज ना, आपको होटल अच्छा मिलेगा ना, वैनिटी मिलेगी
1: एक
0: कोई,
1: अलग तरह का अनुभव।
0: हाँ जी। बट मैं FTI इसलिए चला गया था इस फिल्म को करने के लिए, उसके दो कारण थे। पहला कि थोड़ा सा मुझे ना एक ब्रेक चाहिए था, जो मेन स्ट्रीम में काम कर रहा हूँ उसे मुझे एक ब्रेक चाहिए था, मुझे कुछ मजे करके आ जाएंगे बच्चों के साथ। दूसरा कारण ये कि FTI में मैंने बहुत पहले राइटिंग के लिए अप्लाई किया था, मुझे ये था कि एक्टिंग के लिए तो मेरा होगा नहीं तो क्यों ना अपन राइटिंग में चले जाएं। चूंकि मैं उस समय दैनिक जागरण में जॉब करता था कंटेंट राइटर, तो मैं सोचा कि यहां पर भी राइटिंग करके यहां मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और फिर मैं पूरे दिन एक्टिंग वाले स्टूडेंट के साथ बैठा रहूंगा, उन्हीं के क्लास में बैठा रहूंगा, थोड़ी भगा देंगे क्लासरूम से, बैठूंगा वही एक्टिंग सीखता रहूंगा। बट उस समय मेरा वेटिंग एक रह गया राइटिंग में, और सच पूछी तो अच्छा ही हुआ क्योंकि बहुत मुश्किल से मैंने कुछ पैसे कमाए थे मुंबई आने के लिए, तो उधर खर्च हो जाते हैं तो बेहतर है कि। तो ये दो कारण थे। और बड़ी अच्छी फिल्म उन लोगों ने बहुत प्यार से बनाया, सब बच्चे ही थे तो 6 या 8 घंटे की शिफ्ट होती थी, बहुत शिद्दत से बहुत प्यार से हमने ये शूट किया और बहुत इम्प्रोवाइज भी किया हम लोगों ने। बट ऐसा हमने कुछ सोचा नहीं था कि ये
1: अच्छा,
0: फिल्म स्टूडेंट एकेडमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट हो जाएगी और फाइनल राउंड से बाहर हो जाएगी। कहाँ, हम लोग गांव देहात में छोटे छोटे नाटक करते थे, ऑस्कर के लिए हमारी फिल्म नॉमिनेट हो जाएगी ये किसने सोचा था।
1: बिल्कुल।
0: बट ठीक है, विधाता को जो मंजूर है अपन उस पथ पे चल रहे हैं।
1: हाँ, और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ये फिल्म गई है।
0: बिल्कुल
1: इसके साथ ही आरजे बस्तर
0: हाँ
1: फिल्म,
0: जी हाँ जी
1: उसके बारे में भी कुछ बताए। वो भी मेरे ख्याल से ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे गई है। एक
0: बिल्कुल
1: तरफ ये पंचायत जो मासेस के लिए
0: हाँ
1: है, और
0: जी
1: एक तरफ ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म, दोनों में काम करने का फर्क कितना है?
0: बहुत खूबसूरत सवाल है मैम ये। मैं इस तरह की फिल्म इसलिए करता हूं ना, इससे मुझे सुकून और बहुत शांति मिलती है, बहुत प्यार मिलता है। आरजे बस्तर, मैं बस्तर में गया शूट करने के लिए, एकदम बिहर जंगल में चारों तरफ धान की खेती है, और बस्तर बहुत खूबसूरत जगह। जितना भी हम लोग बाहर सुनते हैं कि बस्तर में ये, बस्तर में पूरा बस्तर लाल रहता है, वैसा बिल्कुल भी नहीं था। कहीं कोई डर नहीं, कहीं कोई भय नहीं, बहुत ही सपोर्टिव लोग और बहुत प्यारे लोग। मैं पहली बार जीवन में आदिवासी भाइयों से मिला, इतना खातिरदारी करते हैं, ऐसा लगता है कि जान निकाल के रख देंगे आपके स्वागत के लिए।
1: अच्छा।
0: तो जब आरजे बस्तर में शूट कर रहा था तो एक तो कहानी बड़ी अच्छी, मनीष मानिकपुरी वहीं के रहने वाले हैं, बहुत कमाल के डायरेक्टर, वो आदिवासी लड़की की कहानी है जो रायपुर में काम करता है, दिहाड़ी मजदूर है, और उसको एक लड़की से प्यार है और अपने प्यार के खातिर वो किस तरह से किस हद तक जाता है। और चूंकि आदिवासी में ना, वहां महिलाओं पुरुष में कोई ऐसा कुछ है नहीं, वो सब एक समान है, तो वहां की महिलाएं भी बहुत सशक्त होती हैं, सारे घर में जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजन है वही लेती हैं। तो इस फिल्म में भी यही है, जो हमारे अपोजिट हैं उनका ये है। अच्छा, उनको भी आरजे बनना है और मैं पीछे पीछे हूं, उनका कंधा थामे हूं कि आपको जो बनना है बनो, मैं आपके साथ हूं क्योंकि मुझे आपसे मोहब्बत है। और अपने मोहब्बत के लिए उसका जो कैरेक्टर है रमेश, वो हद से गुजरने के लिए तैयार है। बहुत बहुत प्यारी कहानी।
1: चलिए, यहां पर आपके पसंद का एक गीत हम सुनवा देंगे अपने श्रोताओं को।
0: हाँ जी हाँ जी

0: अभी हाल फिलहाल आपकी फिल्म आई गांधारी और आखिरी राइड,
1: हाँ जी,
0: ये
1: हाँ
0: कुछ
1: जी।
0: अलग हटके रोल है जो अब तक आपने किया है,
1: हाँ जी,
0: क्या
1: हाँ जी।
0: अलग है, कैसा अनुभव रहा?
1: गांधारी तो मैंने इसलिए कर लिया था क्योंकि इसके डायरेक्टर देवाशीष मखीजा मेरे बहुत अच्छे दोस्त, और मैंने इनको इनका काम जोरम में देख रखा है, और जैसा मैं चाहता था वैसी फिल्म बनी नहीं। और गांधारी करने का एकमात्र उद्देश्य यह भी है क्योंकि मैं थोड़ा नेगेटिव कैरेक्टर करना चाहता था, है ना। तो मुझे लगा एक बेबी स्टेप है थोड़ा सा नेगेटिव वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए।
0: एक कदम है वो बस।
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इसीलिए मैंने वो फिल्म करी। बट ठीक है, हमारा काम सिर्फ अभिनय करना होता है। जैसे ही हमारा रैप अप होता है, खत्म हो जाता है सब कुछ कट के बाद, है ना। बाकी ये फिल्म एडिट टेबल पे फिर से फाइनल बनती है, और बहुत सारे एक्सटर्नल एलिमेंट भी होते हैं जो फिल्म को प्रभावित करते हैं। मेरे हिसाब से गांधारी के साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ। और आखिरी राइड वो भी बहुत मेरे दिल के करीब वाली फिल्म है,
0: अच्छा।
1: इसलिए क्योंकि कहानी बड़ी अच्छी इसकी, और अनुराग कश्यप सर ने इनको इस फिल्म को प्रेजेंट किया है। और मुझे याद है कि ये फिल्म भी मैं कहीं और, मेरा शूट था पहाड़ पे किसी और दूसरे फिल्म को लेकर के, लेकिन डेट नहीं मैनेज हो रहा था, मतलब क्लैश हो रहा है डेट, तो मैंने उस फिल्म को छोड़ के आखिरी राइड करना पसंद किया, जिसमें बिल्कुल भी बजट नहीं था, बट मेरे लिए कहानी बहुत इंपॉर्टेंट था। अब मैं एक ऐसे स्टेज में हूं जहां पे अपने पसंद का काम कर सकता हूं, मेरे लिए अब कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, अच्छी कहानी इंपॉर्टेंट है,
0: अपनी पसंद रख सकते हैं अब आप
1: बिल्कुल
0: सामने।
1: बिल्कुल।
0: और ऐसा कौन सा किरदार है जो आपके मन में है कि ये तो मुझे करना है, इस तरह का अगर कुछ किरदार है चाहते हैं, नेगेटिव शेड तो

0: आपने कहा कि नेगेटिव, कोई ऐसा आइडल कि इस तरह का किरदार तो मुझे पर्दे पे उतारना है जब कभी मौका मिले?
1: बिल्कुल, ऐसे तो बतौर अभिनेता अभी तो मतलब मुझे ऐसा लगता है अभी तो बहुत नया हूँ, अभी तो बहुत सारे कैरेक्टर करने हैं, बहुत सारे चीजों को जानना है, समझना है। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे अंदर ना एक बहुत गंभीर अभिनेता है जो आना बाकी है,
0: सीरियस रोल।
1: हाँ जी हाँ जी, क्योंकि कॉमेडी हो या बाकी चीजें हो वो सब तो ठीक है, बट जो मेरा कोर एक्टर है वो एक बहुत ही गंभीर है।

0: कॉमेडी हो या बाकी चीजें हो, वो सब तो ठीक है, बट जो मेरा कोर एक्टर है वो एक बहुत ही गंभीर है, बहुत संजीदा है। जैसे अगर आप समझना चाहें तो मैं एक उदाहरण दूं कि अगर आप हीट देख रहे हो, रॉबर्ट डिनरो और अल पचिनो की फिल्म में, जिसमें दोनों एक साथ बैठते हैं, इसमें चोर और पुलिस की कहानी है, और दोनों जब एक टेबल पे बैठते हैं,
1: जी
0: और वो मेरे ख्याल से 10-11 मिनट का वो सीन है, मैं कई बार उस गंभीरता को महसूस करता हूं कि मुझे भी कुछ इस तरह कैरेक्टर करना है अपने इस करियर में। इतनी ही स्क्रिप्ट को जज्ब करके, एक एक लाइन को महसूस करके, उस गंभीरता के साथ मैं अपने कैरेक्टर को करूं, मैं ऐसा चाहता हूं।
1: हम भी चाहते हैं कि आपके मनपसंद का किरदार, कैरेक्टर, रोल आपको मिले, संजीदा रोल भी मिले और हम उसमें भी आपको देखें।
0: बिल्कुल, और मैं आपको निराश नहीं करूंगा, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने ऑडियंस को, अपने दर्शकों को हमेशा सरप्राइज करता रहूंगा।
1: बिल्कुल। जाते जाते हम एक सवाल करना चाहते हैं, क्योंकि आप भी एक छोटे जगह से आए हैं और यहाँ पर आके आपने अपना मकाम बनाया है। तो जो उभरते कलाकार आते हैं, दो तरह के होते हैं। कई बार प्लान ए और प्लान बी लेकर चलते हैं कि हम ये कर रहे हैं, अभिनय में ट्राई कर रहे हैं, ये नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम ये भी कर लेंगे, इसको भी ऑप्शन लेके चलते हैं। कई बार ऐसा होता है नहीं, पूरी शिद्दत से आते हैं लेकिन थक हार भी जाते हैं, वापस लौट भी जाते हैं। तो आपके ख्याल से आप क्या सलाह देना चाहते हैं उनको, यहां पर टिके रहना, अपना मकाम बनाना, क्या कहना चाहेंगे?
0: सबसे पहली बात कि दूसरों की बात आप ना सुने। अगर कोई आपको बोल रहा है कि आपके अंदर एक बड़ा कमाल का आर्टिस्ट है, आप मुंबई चले जाओ या इस फील्ड में जाओ, मत सुनो किसी की बात। आप अपने आप से पूछो, क्या वो एक्स फैक्टर है आपके पास, क्या वो हुक पॉइंट है आपके पास, जिसकी वजह से आप मुंबई में रह सकते हो या इस फील्ड में पूरी जिंदगी अपने आप को दे सकते हो। ये बहुत जरूरी है, खुद से पूछना। दूसरे की बातों पे बिल्कुल भी आप मत जाइए। एक बात और कि कभी भी ग्लैमर और मुंबई में ये पैसा, शोहरत, नाम, ये सब देखकर मत आइए। ये आर्ट है, अगर अपने आप को इस आर्ट में समर्पित कर सकते हो तो आओ। बहुत सारे जो हमारे नौजवान दोस्त हैं वो गलती यही करते हैं, उनको चाहिए ग्लैमर, उनको चाहिए बड़ी बड़ी चीजें, बट वो आर्ट से कुछ लेना देना है ही नहीं, और वो अपने जीवन का बहुत ही गोल्डन टाइम बर्बाद कर देते हैं मुंबई में। एक ऐसा ये एज है, ऐसा समय, जिस वक्त आपको आपके घर वालों के लिए देना चाहिए या कुछ और करना चाहिए, बजाय आप यहां पे अपना समय एक तरह से बर्बाद ही करें, क्योंकि आपने देखा नहीं, खुद को जाना समझा नहीं, है ना। और मुझे एक बात और आप लोगों से कहनी है कि दोस्त, सफलता असफलता कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट है खुश रहना। और मुझे ये लगता है कि देख, जिंदगी एक ही मिली है, जिंदगी है तो ये सारे गोल हैं, सारे एम हैं, आपके जिंदगी से बढ़ के कुछ नहीं है। तो प्लीज अपने आप को जानिए, समझिए, उस डायरेक्शन में काम कीजिए। अगर सच में आपके अंदर ये काबिलियत है कि कुछ कर सकते हैं, तो प्लीज आप मुंबई या जहां कहीं भी हो इस फील्ड में आ जाइए, क्योंकि अच्छे आर्टिस्ट की बड़ी भारी कमी है मुंबई में।
1: बिल्कुल
0: आपका आना बहुत जरूरी है, इस इंडस्ट्री के लिए जरूरी है, और इस समाज के लिए बहुत जरूरी है कि अच्छे आर्टिस्ट आए, चाहे वो किसी भी फील्ड के आर्टिस्ट हो, राइटर हो, डायरेक्टर हो, पेंटर हो, गीतकार हो, संगीतकार हो, जो भी हो।
1: जी,
0: अगर आप कमाल के हैं तो इस इंडस्ट्री में आपकी बहुत जरूरत है।
1: ये बहुत ही सुंदर सलाह दी आपने। और चंदन जी, आपने अपने एक्टिंग का सफर तो हमारे साथ साझा किया ही, साथ ही निजी अनुभव और बड़ी ईमानदारी से वो छोटी छोटी बातें हमारे साथ शेयर की है, जो हमें बहुत अच्छी लगी है। और पूरी उम्मीद है कि जितने लोग आपको इस वक्त सुन रहे हैं उन्हें एक इंस्पिरेशन मिली है और उन्हें बहुत ही वो प्यारी प्यारी सलाह मिली है आपकी तरफ से। आपके जो भी भविष्य के प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारी सी बातचीत के लिए।
0: शुक्रिया। और मैं थोड़ा सा इमोशनल भी हो रहा हूँ,
1: क्या कहना
0: और
1: चाहेंगे?
0: यहाँ बुलाने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आपने मुझे विविध भारती के ऑफिस में बुलाया है, और यहाँ आना किसी सपने से कम नहीं है मेरे लिए। ऐसा लगता है कि बरसों का एक देखा हुआ, एक बालमन में देखा हुआ सपना आज मेरा पूरा हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों से मिलके, विविध भारती के इन दीवारों को देख करके, इन माइक, ये लाइट, ये सब कुछ देख करके। आपको शायद यकीन ना हो कि जब 2:30 बजे मेरा स्कूल छूटता था तो तो सीधे मैं घर आता था

0: अपना रेडियो सेट उठाता था, सखी सहेली सुनता था, उसके बाद पिटारा, और फिर रात्रि सेवा में मैं जब जयमाला से शुरू करता था तो गुलदस्ता होते हुए फिर गजल वाले प्रोग्राम, और फिर पता नहीं कब मेरी आंखें लग जाती थीं और कभी मेरी मम्मी, कभी मेरे दादा, कभी मेरी बहन आकर के बंद करते थे रेडियो, या कई बार सुबह तक वो रेडियो चलता रहता था
1: जी।
0: मुझे याद है कि मैं रेडियो से इस कदर स्नेह रखता था बचपन में कि मेरे गली में, आंगन के बगल में गली था, अमरुद का पेड़ हुआ करता था, उसमें मैं कई बार उस अमरुद के पेड़ पे अपने ट्रांजिस्टर को लेकर के चढ़ जाता था और ऊपर ही कहीं पेड़ के तने में बांध करके रेडियो चल रहा होता था और मैं अमरुद वही नमक लेके खाता रहता था।
1: क्या बात
0: है ना। तो रेडियो इस तरह से मेरे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। आज भी सूट पे जाता हूँ या किचन में होता हूँ या घर में कहीं भी, रेडियो मेरे घर के किसी न किसी एक कोने में बज रहा होता है। रेडियो मुझे लगता है मेरा बचपन का दोस्त है।
1: बिल्कुल।
0: एक ऐसा दोस्त जो हर वक्त मेरे लिए अवेलेबल है।
1: बिल्कुल, हमेशा साथ ही बनकर।
0: बिल्कुल।
1: क्या बात है।
0: सिर्फ इस देश की धड़कन ही नहीं है, ये मेरा भी धड़कन है।
1: क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू सो मच।

ये थी जाने माने अभिनेता चंदन रॉय से अनुराधा उपाध्याय की बातचीत। आपने सुना दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।

रंग तरंग कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का स्नेहिल अभिवादन। इस कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है।

0: अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
4: कार्यक्रम का अगला गीत रोचक कोहली के संगीत निर्देशन में गुरुप्रीत सैनी का लिखा हुआ, आवाज है आयुष्मान खुराना की।

यह आवाज़ थी आयुष्मान खुराना की। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आइए सुनते हैं अदनान सामी का संगीत, रियाजुर रहमान सागर की रचना, स्वर अदनान सामी और आशा भोसले के।

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जब आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम में अब सुनिए शुभा मुदगल की आवाज में ये गैर फिल्मी रचना।

ये आवाज़ थी शुभा मुद्गल की, और अब हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित कुमार गंधर्व का गाया ये भक्ति पद।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू वारिस और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
1: दिल तो पागल है,
0: दुश्मन
2: चिट्ठी न कोई संदेह,
0: गदर एक प्रेम कथा,
3: मैं निकला ओ गड्डी लेके,
0: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की।

एक उत्तम जीवन की कहानी, उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे।

शोभा जोशी की आवाज में हम आपको मिर्जा गालिब की ये रचना सुनवा रहे हैं। संगीत शांतनु मोइत्रा का।

शोभा जोशी की आवाज में हम आपको मिर्जा गालिब की ये रचना सुनवा रहे हैं। संगीत शांतनु मोइत्रा का।

0: रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
1: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
1: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
0: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि लागत संबंधी पहलुओं के साथ साथ वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में विश्वास और साइबर सुरक्षा का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। आज नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री वैष्णव ने कहा कि भारत का लक्ष्य सेमीकंडक्टर डिजाइन, निर्माण और तैयार उत्पादों के परीक्षण में विश्वसनीय भागीदार के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करना है। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। पिछले 5 वर्षों में भारत का सार्वजनिक ऋण सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में 61% से घटकर 55% रह गया है। उन्होंने कहा कि देश का लक्ष्य वित्तीय, आर्थिक और तकनीकी क्षेत्रों में मजबूती लाना है। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए काम कर रही है, जिससे वैश्विक अनिश्चितता के माहौल में भी निरंतर विकास सुनिश्चित किया जा सके। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने पिछले 4 वर्षों में 38 विकसित देशों के साथ प्राथमिकता आधारित व्यापार समझौते किए हैं। आज नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री गोयल ने कहा कि भारत का लक्ष्य भारतीय व्यवसायों के लिए बाजार पहुंच को बढ़ाना और देश के बाजारों को वैश्विक साझेदारों के लिए खोलना है। उन्होंने बताया कि 2014 से पहले भारत के व्यापार समझौतों में लगभग $10 ट्रिलियन के संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद GDP वाली अर्थव्यवस्थाएं शामिल थी, जो अब बढ़कर लगभग $70 ट्रिलियन हो गई हैं। श्री गोयल ने कहा कि भारत कनाडा, मेक्सिको, मर्कोसुर, यूरेशिया और कई अन्य देशों के साथ व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत विश्वसनीय साझेदारियों की तलाश में है। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राष्ट्रीय जहाज निर्माण मिशन के तहत देश के जहाज निर्माण उद्योग को सहायता देने के लिए ऋण जोखिम बीमा की 2 विशेष योजनाओं की घोषणा की है। मुंबई में 21वीं समुद्री राज्य विकास परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए श्री सोनोवाल ने कहा कि जहाज निर्माण एक बड़ा और कई वर्षों तक चलने वाला कार्य है। इसे बढ़ावा देने के लिए सरकार बीमा प्रीमियम पर सब्सिडी देगी और बीमा दावों की स्थिति में बीमा कंपनियों को प्रत्यक्ष सहायता भी प्रदान करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और आसियान एक शांतिपूर्ण, स्थिर और स्वतंत्र हिंद प्रशांत क्षेत्र में समान हित साझा करते हैं। नई दिल्ली में आज आसियान भारत रक्षा थिंक टैंक फोरम को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि आसियान भारत के हिंद प्रशांत दृष्टिकोण का केंद्र है। श्री सिंह ने कहा कि हिंद महासागर और दक्षिण पूर्व एशिया का जल क्षेत्र परस्पर जुड़ा हुआ समुद्री क्षेत्र है, जिससे इसकी सुरक्षा एक साझा जिम्मेदारी बन जाती है।
1: हमें अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत समुद्री डकैती, मानव तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और अन्य खतरों से निपटने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। इन प्रयासों में समुद्री सूचना केंद्रों के बीच नियमित संवाद, नौसेना और तटरक्षक बलों के बीच सहयोग तथा खोज बचाव, आपदा राहत और समुद्री बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए संयुक्त अभ्यास शामिल हो सकते हैं।
0: दिल्ली की विशेष अदालत ने आज CJP नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं पार्टी के एक अन्य नेता अजिंक्य शिंदे को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने तीनों नेताओं को जंतर मंतर में

0: प्रवेश करने की कोशिश के आरोप में हिरासत में लिया था। इससे एक दिन पहले ही जंतर मंतर को विरोध प्रदर्शन स्थल के रूप में अधिसूचित सूची से हटा दिया गया था। भारतीय सेना की असम रेजिमेंट के जवानों ने वेल्स में आयोजित कैम्ब्रियन गश्ती 2026 अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस चुनौतीपूर्ण सैन्य गश्ती अभ्यास में भारतीय टीम ने 100 से अधिक टीमों के साथ मुकाबला किया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 क्रिकेट मैच आज हैदराबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 से आगे है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 39 अंक गिरकर 72,995 पर और निफ्टी 30 अंक की गिरावट के साथ 22,692 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज 14 अक्टूबर है, विश्व मानक दिवस है ना? मानकों की दुनिया में अंकों और गिनती का विशेष महत्व है। चाहे किसी वस्तु का वजन करना हो, लंबाई मापनी हो या किसी चीज की सही मात्रा तय करनी हो, तो हर जगह गिनती और सटीक माप बहुत जरूरी होता है। तो खरीदारी की बात करें या कारोबार की बात करें, पैसे की अपनी अहमियत होती है। यानी रुपयों और पैसों का हिसाब किताब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो आइए आज सुनते हैं कुछ ऐसे ही फिल्मी नगमे जिनमें कहीं रुपए पैसे की बात है तो कहीं खरीदारी और लेनदेन का जिक्र तो कहीं अंकों की भूमिका। ये है कार्यक्रम का पहला गीत। कैफी आजमी का लिखा गीत है, SD बर्मन का संगीत है, गीता दत्त की आवाज, फिल्म का नाम कागज की फूल।

गीता दत्त और साथियों की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे फिल्म कागज के फूल का ही गीत। गीतकार कैफी आजमी थे और संगीतकार थे एसडी बर्मन। और आइए कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म आवारा से सुनते हैं। स्वर शमशाद बेगम और साथियों के, बोल शैलेंद्र के हैं और धुन शंकर जयकिशन की।

0: वो रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
1: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
1: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
0: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार।

0: फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
1: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
4: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध, बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
5: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
6: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
4: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
7: मेरा सारा साथ होगा।
8: यादों की महफिल कार्यक्रम में अब वक्त है एक अंतराल का।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ।

0: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए सुनते हैं जयदेव के संगीत निर्देशन में सुदर्शन फाकिर का लिखा गीत। फिल्म का नाम है दूरियां। आवाजें प्रीति सागर, रेणु मुखर्जी और साथियों की।
1: किकड़ तुकड़ भंबे भो अस्सी नब्बे पूरा सौ सौ गलोटा तीतर मोटा।

0: किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में अभी आपने फिल्म चलती का नाम गाड़ी का गीत सुना। शब्दकार मजरूह सुल्तानपुरी थे और संगीत SD बर्मन का था।
1: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
2: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
1: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर।

सुमन कल्याणपुर और कमल बारोट की आवाजों में अभी आपने सुना फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे का ये गीत, शब्द शकील बदायूनी के थे। कृपया से दोबारा सुने, शब्द शकील नोमानी के थे।

और तर्ज कल्याण जी आनंद जी की थी। और ये है राजेश रोशन का संगीत, पयाम सईद की रचना, नितिन मुकेश की आवाज है, फिल्म का नाम है काला बाजार।

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम की अगली पेशकश लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म संत ज्ञानेश्वर का गीत सुनिए। गीतकार पंडित भरत व्यास हैं, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारीलाल हैं।

कार्यक्रम का अगला गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, आनंद बख्शी के बोल, किशोर कुमार और सैथियों की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है कर्ज़।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीयता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
4: कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म नील बट्टा सन्नाटा से हमने लिया है। स्वर है रोहन उलपत, आरती शेनाई और साथियों के, गीतकार नितेश तिवारी हैं, संगीतकार हैं रोहन और विनायक।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू वारिस और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
1: दिल तो पागल है,
0: दुश्मन
2: चिट्ठी न कोई संदेह,
0: गदर एक प्रेम कथा,
3: मैं निकला ओ गड्डी लेके,
0: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की,
4: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पाव,
0: एक उत्तम जीवन की कहानी, उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ। 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: कार्यक्रम में आप सुनिए फिल्म दे दनादन का गाना, गाने वाले कलाकार RDB, मानक और सेलिना।
6: क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा।

0: ये था फिल्म दे दनादन का गाना।
1: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
2: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
3: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
1: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
4: मेरा साया साथ होगा।
1: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं,
5: हाँ जी।
1: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
4: हाँ जी, हाँ।
1: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
4: नहीं नहीं, अभी नहीं।
1: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है, इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
6: कुछ लिखा,
1: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
0: और अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुरीला सफर कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। जी बताइए, कैसे हैं आप? अच्छे हैं। बिल्कुल आप अच्छे हैं और हमारे कार्यक्रम को सुनने के लिए बेताब हैं। भाई देखिए ना, आज सुरीला सफर हम सजा रहे हैं नामों से। हाँ, आज सुरीला सफर में सजेगी नामों की महफिल, जहां कोई कहेगा माय नेम इज एंथनी और कहीं गूंजेगा रेखा, शबनम और लीना जैसे नामों का जादू। तो आइए गीतों के इस सफर में मिलते हैं कुछ जाने पहचाने नामों से, कुछ दिलचस्प अंदाज में। हो सकता है इनमें से कोई नाम आपका भी हो।

0: तो चलिए पढ़ लेते हैं हमारी आज की इबारत क्या है, या यूं कहें कि आज का टेक्स्ट क्या है। दोस्तों, आज नाम की महफिल सजी तो हर कोई अपने नाम की तारीफ करने लगा। एंथोनी बोले, हमारी पहचान का तो अपना ही अंदाज है। जी हाँ, एंथोनी ने कहा, हमारी पहचान का तो अपना ही अंदाज है। रीटा ने कहा, जरा अप्रैल फूल देखने जाइए, वहां भी हमारा ही जलवा है। लीना क्रिस्टीना इतराई, नाम हो तो ऐसा कि सुनते ही सब मुस्कुराएं। सुल्ताना ने ठसक से कहा, आप सब अपनी जगह पर, मेरा नाम भी किसी से कम नहीं। रेखा ने मुस्कुराकर पूछा, अच्छा, जब से मुझे देखा खाना पीना सब दुश्वार हो गया ना? तभी लीना बोली, अरे मुझे कैसे भूल गए, मैं दिल छीन लेती हूँ। अब्दुल ने कहा, नाम की बात छोड़िए, मैं तो सबकी खबर रखता हूँ। तभी अब्दुल रहमान ने टोका, जरा हमें भी याद रखिए, हमारा नाम भी अब्दुल रहमान है। शबनम, जमीला और राजू एक साथ बोल उठे, बस बस, अब फैसला श्रोता करेंगे कि किसका नाम सबसे प्यारा है। तो सुनिए नामों की ये मजेदार तकरार, जिसमें हर नाम का अपना रंग है, हर नाम का अपना तराना, आज के इस सुरीले सफर में। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत।
1: You see, the whole country of the system is juxtapositioned by the hemoglobin in the atmosphere, because you are a sophisticated rhetorician intoxicated by the exuberance of your own verbosity.
2: What? My name is...

0: आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: रियली?
0: राइट राइट।

0: किस्मत वाली, तो जिस मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिस मेरी याद आए जब चाहे चली आए। प्रूफ महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस। मैं दुनिया पे अकेला हूँ।
1: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनिया इज जक्सटापोजिशन्ड by the hemoglobin of the atmospheric pressure in the country.

0: जन्नत वाली, तो जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्वेस।
2: क्यूट।

0: अरे जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज, माय नेम इज फ्रैंकी।
2: नो
1: सेबेस्टियन।
2: नो
1: गोल्डी सोल्डी।
2: नो एंथनी गोंसाल्विस।
3: ओह यस।

ये आवाजें थी किशोर कुमार और अमिताभ बच्चन की। फिल्म का नाम था अमर अकबर एंथनी। गीतकार आनंद बख्शी थे और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में नामों की महफिल सजी है। नाम भी कितने खास होते हैं, हर नाम की अपनी पहचान, अपना अंदाज और उससे जुड़ी कुछ प्यारी सी यादें होती हैं। कोई नाम सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है तो कोई दिल में प्रेम और अपनत्व का एहसास जगा देता है। नाम केवल पहचान नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, भावनाओं और रिश्तों का सुंदर हिस्सा भी है। फिल्मी गीतों में भी नामों ने कभी प्रेम की दस्तक दी, कभी शरारत जगाई तो कभी दिल की धड़कनों को आवाज दी। और आपने कुछ गानों के बोल लिखे हैं जो हमारी लिस्ट में आज शामिल भी हैं। वहीं एक श्रोता लिखती है कि आपने तो आज पूरी खिचड़ी बना दी है और हमें तो कोई नाम याद नहीं आ रहा है। फिल्में जरूर देखी हैं लेकिन उम्र का असर है शायद। चलो छोड़ो, आज गाने सुनाना आपको और सभी को नमस्कार देती हैं। भाई हमने खिचड़ी नहीं पकाई, हमने पुलाव बनाया है जिसमें चावल बिल्कुल अलग अलग अलग अलग है। ध्यान से देखिए तो सही हमारी डिश क्या है। और मैं एक श्रोता लिख दें कि मेरे पापा रेडियो बहुत ही चाव से सुनते थे, खासकर पापा जी लता जी की गजलें बहुत सुनते थे। उन्हें संगीतकार मदन मोहन जी बहुत पसंद थे। मैं छोटा था तो मैंने पूछा पापा जी मेरा नाम ये क्यों रखा, तो उन्होंने कहा संगीतकार मदन मोहन जी का संगीत उन्हें बहुत पसंद है इसलिए तुम्हारा नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा है। आज मेरे पिताजी को गुजरे 46 बरस हो गए हैं लेकिन उनकी चॉइस पर मुझे गर्व है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखती है कि नवरस नवकल्पना नवरूप सज्जित नवीन नामकरण युक्त गीतों भरी इबारत स्वागत योग्य है। और आप लिखते हैं कि कुछ नाम गीत और व्यक्तित्व की अमिट छाप छोड़ जाते हैं। इन्हीं भांति भांति के नामों से पिरोई हुई संगीतमय सुरीला सफर का आज आपको इंतजार है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज नाम पर आधारित कार्यक्रम होगा, इसमें भी व्यक्ति दो दो विचार चलते हैं। कोई कहता है कि नाम में क्या रखा है, गुलाब का कुछ नाम रखने पर भी वो खुशबू तो देगा ही, तो कोई कहता है नाम ही आदमी की पहचान है। जैसे कि सुहाना सफर अब कार्यक्रम में मित्रों के विविध विचार और आपके विचार भी लिए जाएंगे, देखें क्या निर्णय लिया जाता है। तो आज के सवाल आप चाहें तो नोट कर सकते हैं और उनका जवाब दें तो मजा आएगा। हाँ, हमने आज आपसे जानना चाहा है कि आपके पसंदीदा फिल्मी किरदार का नाम क्या है। जैसे अमिताभ बच्चन साहब का बहुत फिल्मों में नाम विजय था तो ये नाम बड़ा अच्छा लगता था हमें, या चांदनी ये नाम भी बहुत फेमस हुआ। तो आप के फिल्म जो फिल्मी किरदार हैं उनमें आपको कौन सा नाम सबसे ज्यादा पसंद है? कई बार आपका नाम उनके नामों से मिलता जुलता भी हो सकता है इसलिए भी हमें वो नाम पसंद आता है ना। तो बताइएगा कि आपको कौन सा फिल्मी किरदार का नाम बहुत पसंद है आज तक। और हमारा दूसरा सवाल है, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा या मोगेम्बो खुशवा, इस तरह के जो किरदार मशहूर हुए हैं फिल्मी दुनिया में, फिल्मों में, और हम उनका यदाकदा प्रयोग भी कर देते हैं। आपको ऐसे तकिया कलाम वाले कौन से किरदार आज तक याद हैं और आप अक्सर उन्हें गुनगुनाते हैं या पसंद भी करते हैं? जैसे ही वो फिल्म हम देखते हैं और कलाकार हमारे सामने कहता है कि मोगेम्बो खुशवा तो हम कितने खुश हो जाते हैं। तो ऐसा ही कोई किरदार आपके मन पे अंकित हुआ होगा, उसका भी जिक्र आप करें, किसी एक किरदार का, बहुत सारे किरदार नहीं, फिर हम उसे शामिल नहीं कर पाते हैं क्योंकि समय का अभाव रहता है। किसी एक किरदार जो आपकी पसंद से जुड़ा है उसका जिक्र आपको करना है। आगे बढ़ते हैं, मदन मोहन के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत सुनते हैं, स्वर किशोर कुमार और लता मंगेशकर के। फिल्म का नाम है भाई भाई। बहुत ही प्यारा गीत है, ध्यान से सुनिएगा। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की जुगलबंदी बड़ी मजेदार है।

आपका बाल बच्चा खा के देखो वेरी वेरी गुड मेरा चार्ली बादाम पिस्ता। मेरा नाम अब्दुल रहमान पिस्ता वाला मैं हूँ पठान खाने वाले खाते।

नाम अब्दुल रहमान, रिश्ता वाला मैं हूँ पठान, खाने वाले का दिल होता गुल गुल बार बार बाबा। मेरा नाम अब्दुल रहमान, रिश्ता वाला मैं हूँ पठान, खाने वाले का दिल होता गुल गुल बार बार बाबा।

तो बड़ा ही खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। एक श्रोता लिखती है कि वर्ष 1956 में आई प्रसिद्ध फिल्म भाई भाई का सदाबहार गीत मेरा नाम अब्दुल रहमान वास्तव में भारतीय सिनेमा का एक अनमोल रत्न है। इस गीत को लॉन्च किया गया था महान संगीतकार मदन मोहन के संगीत निर्देशन में और इसके जादुई बोल राजेन्द्र कृष्ण ने लिखे थे। मेरा नाम अब्दुल रहमान सिर्फ एक मनोरंजक फिल्मी गाना नहीं बल्कि ये मदन मोहन का बेजोड़ संगीत और किशोर कुमार और लता मंगेशकर की अमर गायकी का एक ऐसा उत्सव है जो हर पीढ़ी को पसंद आता है। बिल्कुल आपने सही लिखा, वाकई ये गीत बेजोड़ है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि नाम की भी अपनी एक अद्भुत दुनिया होती है जहां शब्दों से अधिक भावनाएं बोलती हैं और अक्षरों से अधिक यादें सांस लेती हैं। कितना अनोखा है किसी का नाम हमारी जबान पर आते ही उसका चेहरा आंखों के सामने उभर

0: आता है। नाम अक्षरों में भले ही सीमित हो लेकिन उसके एहसास की कोई सीमा नहीं होती। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि नाम केवल अक्षर का समूह नहीं बल्कि मनुष्य के अस्तित्व, पहचान और सामाजिक अस्मिता का आधार है। जहां नाम संज्ञा होती है वहां एक निराकार चेतना से साकार पिंड अस्तित्व में बदल जाता है। जैसे तुलसीदास जी ने राम लिखा तो वो केवल एक शब्द नहीं मर्यादा और मानवीय आदर्शों की साक्षात प्रतिमूर्ति बन गया। और जब नाम के अहंकार का विसर्जन सर्वनाम यानी मैं से उठकर हम या तुम पर आता है तो वो समष्टि से जुड़ जाता है। नाम तब तक मात्र कोरी स्लेट रहता है जब तक कि विशेषण उसे अपने रंगों से नहीं भरता, क्योंकि नाम की पहचान उसके गुण दोषों से जुड़ी होती है। वैसे ही राजा हरिश्चंद्र का नाम के साथ सत्यवादी जगते ही ये एक शाश्वत मूल्य यानी सिद्धांत बन जाता है। नाम का चरम लक्ष्य अवयव हो जाना है। जब कोई नाम इतिहास, काल, मृत्यु और युगों के थप्पड़ों के बाद भी नहीं बदलता तो वो अवयव बन जाता है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी या सुभाष चंद्र बोस, समय बीतने पर भी इनकी चमक और प्रासंगिकता अपरिवर्तित बनी हुई है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर तरीके से आपने अपनी बात लिखी और आपने हमारा मन जीत लिया। वाकई चलिए तो हमारे सवाल एक बार फिर से दोहरा देते हैं। आपने नोट कर लिए हैं ना? वैसे तो कुछ श्रोताओं ने जवाब देना शुरू भी कर दिया है, लेकिन चलिए एक बार सवाल फिर से दोहरा देते हैं कि आपके पसंदीदा फिल्मी किरदार का नाम क्या है। जैसे अमिताभ बच्चन साहब का कितनी फिल्मों में नाम विजय था, और चांदिनी, ओ मैं तेरी चांदिनी, ये नाम भी हमें बड़ा अच्छा लगा। तो ऐसे बहुत सारे फिल्मी किरदारों के नाम दर्शकों के दिलों में बस गए, वो कौन सा नाम है जो आपको आज भी पसंद है? तो हमारा दूसरा सवाल था, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा और मोगैम्बो खुश हुआ। इस तरह के किरदार हम अक्सर अपने घर में गुनगुनाते हैं जब फिल्म देखकर आते थे। बहुत पहले तो यही होता था कि ये नाम, ये किरदार हमारे होठों पे हर वक्त रहा करते थे। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। कौन से है वो मशहूर किरदार जो आज भी आपके दिल से नहीं निकले हैं? उनका जिक्र, आपको किसी एक किरदार का जिक्र करना है। आगे बढ़ते हैं एक और गीत के साथ, आशा भोसले की आवाज, फिल्म का नाम कटी पतंग, आनंद बख्शी के बोल और राहुल देव बर्मन की धुन। ये भी एक नायाब गीत है जिसे गाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है।
1: शबनम, प्यार से लोग मुझे कहते हैं शबो।

पहचाना, मिले थे कभी उस रात को? डरो नहीं, बात है वो राज की, पर राज राज ही रहेगा। मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मीना, मीना, अंजू या मंजू? मीना, मीना, अंजू, मंजू या मधु।

उस रोज रात पर शनी बजती रही, मैं थी, तुम थी और वो शर्मा नहीं, घबराओ नहीं, कहूंगी किसी से नहीं। जानती हो मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मीना, मीना, अंजू या मंजू?

हमारे श्रोता ने लिखा है कि नाम केवल कुछ अक्षरों का संयोजन नहीं होता, बल्कि ये हमारी पहचान है जो जीवन भर हमारे साथ चलती है। और जन्म के साथ ही हमें नया नाम मिलता है, लेकिन उस नाम का अर्थ हमारे कर्म, हमारा व्यवहार और हमारे व्यक्तिगत व्यक्तित्व वो हमें प्रदान भी करता है। वहीं एक श्रोता का कहना है कि नाम केवल संबोधन नहीं, हमारी पहचान का वो अक्षर है जिसमें स्मृतियों की सुगंध और व्यक्तित्व की आभा समाहित होती है। आज नामों की इस दिलचस्प महफिल में शब्दों ने मुस्कुराना सीखा है और सुरों ने संवाद करना। सचमुच जब साहित्य की शालीनता में हास्य का रस घुल जाए और संगीत की स्वर लहरियां साथ चले तो साधारण सी बातचीत भी एक अविस्मरणीय महफिल बन जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हम ये जो कार्यक्रम लेकर आते हैं एक मनोरंजक कार्यक्रम है ये आप सभी के लिए, और इसमें हमारा उद्देश्य हमेशा यही रहता है कि हम ऐसी महफिल सजाएं कि आपको याद रहे वो महफिल, है ना, और यही एक प्रयास हर उद्घोषक का होता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कई बार आम जिंदगी में सिनेमा, टीवी या साहित्य की दुनिया में किसी कलाकार का निभाए हुआ किरदार या मिला हुआ उपनाम इतना मशहूर हो जाता है कि लोग उनका असली नाम भूल जाते हैं। समीर खाकर को लोग उनके असल नाम से कम और टीवी सीरियल नुक्कड़ के किरदार खोपड़ी के नाम से ज्यादा जानते थे। इसी तरह कलाकारों को इंडस्ट्री में काम करने के लिए अपने असली नाम बदलने पड़ते थे या नए नाम मिलते ही वो जैसे ही मैन, बिग बी, गब्बर सिंह, बसंती, ये नाम आपको पसंद आते हैं। बिल्कुल यही सवाल हमने किया था कि कौन से नाम आपको पसंद हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज नाम की इतनी बोलबाला है, पर भारत का एक गांव ऐसा भी है वहां किसी का नाम नहीं है। मेरा इशारा भारत के उस अनोखे गांव की तरफ है जहां लोगों को पारंपरिक नामों के बजाय सीटी बजाकर पुकारा जाता है। इस गांव का नाम है कोंगथोंग, जो मेघालय राज्य में स्थित है। मेघालय की खासी हिल्स में बसे कोंगथोंग गांव को विस्लिंग विलेज या एशिया का म्यूजिकल विलेज भी कहा जाता है, जहां अब भी जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी माँ उसके लिए खास और अनोखी सीटी की धुन यानी ट्यून तैयार करती है। वही धुन जीवन भर के लिए उस व्यक्ति की पहचान या नाम बन जाती है। गांव के लोग एक दूसरे को बुलाने, आवाज देने के लिए इतनी सीटी की धुन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हर व्यक्ति की धुन बिल्कुल अलग होती है। अरे, आपने एक नई जानकारी हमें दी और हमें लगता है कि ये गांव क्या है इसके बारे में हम भी जानना चाहेंगे, शुक्रिया। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि नाम पहचान एक जरिया है। इस संसार में जब कोई मनुष्य जन्म लेता है तो उसे सबसे पहले जो उपहार मिलता है वो है उसका नाम। नाम केवल कुछ अक्षरों का समूह नहीं, बल्कि वो किसी भी व्यक्ति के अस्तित्व, उसके गौरव, उसकी सामाजिक पहचान का सबसे महत्वपूर्ण जरिया है। बिल्कुल सही कहा आपने।

जब नामों की बात चली तो अगला गीत जो हम आपको सुनवा रहे हैं वो बहुत ही प्यारा गीत है, शायद बहुत कम सुना है हमने, लेकिन जो हमारे असली श्रोता हैं जो एक एक गीतों की पहचान रखते हैं वो समझ जाएंगे कि हाँ ये गीत तो हमने कई बार सुना है। शंकर जयकिशन के बोल हैं, हसरत जयपुरी की रचना, आवाज लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम अप्रैल फूल।

हमारे श्रोताओं ने सवाल के जवाब देने शुरू कर दिए हैं। एक लिखते हैं कि सलमान खान का नाम जो प्रेम है वो उन्हें बेहद पसंद आता है, वहीं किसी को राजू नाम बहुत प्यारा लगता है। और एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे तो वीवीएस के सभी उद्घोषकों के नाम बहुत ही पसंद है। अच्छा वहीं एक श्रोता को राधा, नरगिस, राधा, वैजंती माला ये नाम बहुत पसंद आते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि नाम को लेकर दो मुहावरे ज्यादा प्रचलित हैं, आंख का अंधा नाम नयनसुख, नाम लिया और शैतान हाजिर, ये आपने मुहावरे लिखे हैं। वहीं एक श्रोता को शाकाल नाम जो है बहुत पसंद आता है, कुलभूषण खरबंता शायद शाकाल की भूमिका में काफी प्रसिद्ध हुए। और एक श्रोता लिखते हैं कि विजय दीनानाथ चौहान ये नाम बहुत पसंद है, जो अमिताभ बच्चन साहब कहते हैं विजय दीनानाथ चौहान नाम है हमारा और वैसे उन्हें फिल्मों में विजय के नाम से भी बहुत जाना गया है, आप लिखते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप हैं, नाम है शहंशाह, ये बहुत अच्छा लगता है। और एक लिखते हैं कि किसी एक फिल्म में उत्पल दत्त को धुरंधर भटावटेकर पसंद आई थी, जोरू का गुलाम में गोविंदा ने फिल्म में अपने मामा को पीके गिरपड़े नाम भी दिया था, वो मजेदार था। एक श्रोता लिखती है कि स्कूल कॉलेज में तरह तरह के नामकरण होते रहते हैं, कुछ नाम को हम बिगाड़कर ही अपने दोस्तों को बोलते थे। आठवीं में क्लास में एक लड़की थी सतवंत कौर, जिसे हम प्यार से सेऊ से सत्तू बोलते थे। उसे समय बिहार में सत्तू अच्छे भजन में नहीं गिना जाता था, पता नहीं कैसे क्लास टीचर को पता लगा और हम जितनी लड़कियां उसे सत्तू बोलते थे सभी सजा मिली। सत्तू खूबसूरत लड़की और पढ़ने में बहुत तेज थी, बाद में वो एमबीबीएस डॉक्टर बनी और अपने कार्यक्षेत्र में बहुत सफल रही, अब तो रिटायर होकर अपना जीवन गुजार रही हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि शाहरुख खान जी का जो नाम था राहुल वो बहुत ज्यादा होता है फिल्मों में, ये नाम उन्हें बहुत पसंद है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि चंद्रमुखी जो फिल्म चंद्रमुखी से है, नैन के चैन चुरा के ले गई चंद्रमुखी, ये नाम इन्हें बेहद पसंद आता है। और एक श्रोता लिखते हैं कि बॉन्ड, माय नेम इज जेम्स बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड का किरदार 6 कलाकारों ने निभाया पर नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। बिल्कुल सही कहा आपने, और अगर किसी कलाकार से पूछा जाए तो जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाना चाहता भी है। एक श्रोता लिखते हैं कि पसंदीदा हीरो नाम है मोगेम्बो और हीरोइन में मोना डार्लिंग वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि भारत नाम पसंद है, क्योंकि भारत यानी अपने देश की याद करवाते हैं मनोज कुमार जी, और फिल्मों में वो इसे यूज करते हैं, उनका नाम भारत रखा जाता है, वो इन्हें बेहद अच्छा लगता है। और वहीं कि प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा, जब वो बोलते हैं तो वो बहुत

पसंद आता है। जी तो सवाल फिर से दोहरा देते हैं, जिन्होंने अभी अभी रेडियो सेट ट्यून किया है, हो सकता है किसी काम से श्रोता समय पर इस सफर में नहीं आ पाते हैं, तो हमारे सवाल ये है कि आपके पसंदीदा फिल्मी किरदार का नाम क्या है। जैसे अभी हमने बहुत से श्रोताओं के जवाब पढ़े और उन्हें अच्छा लगा जो नाम उन्होंने बताया, तो आपको भी बताना है कि जैसे विजय नाम बहुत था फिल्मों में, चांदनी, ऐसे जो नाम है जो हमें बहुत पसंद आए उनको आपको बताना है। और वहीं जैसे हमारा दूसरा सवाल था कि प्रेम नाम है प्रेम चोपड़ा और मोगैम्बो खुशवा, इस तरह के जो किरदार मशहूर हो गए और आज भी हमारे दिल में घुसे हुए हैं, उनका जिक्र आपको करना है किसी एक किरदार का और किसी एक नाम को पसंद करना है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म का नाम है स्वर्ग नरक, गीतकार आनंद बख्शी हैं, संगीतकार हैं राजेश रोशन।

हमारे श्रोता अपनी पसंद के नाम हमें बराबर लिख रहे हैं। एक लिखती हैं कि बाजीराव सिंघम, लिखा है इन्होंने आता माजी सटकली, ये बहुत अच्छा लगता है डायलॉग अजय देवगन का फिल्म सिंघम से। और वहीं एक श्रोता को गब्बर का नाम पूरा मिट्टी में मिला दिए हैं, ये डायलॉग बहुत अच्छा लगता है। और एक श्रोता ने कहा है कि मुझे मनोज कुमार जी का नाम हमेशा बहुत ही पसंद रहा है, आज भी है। भारत गीत तो पूर्व पश्चिम का गीत, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, ये अच्छा लगता है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अमरीश पुरी साहब तो मोगम्बो के नाम से घर घर में मशहूर हो गए और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, आगे बढ़ते गए। बहुत ही अच्छे विलन के रूप में उन्होंने ख्याति प्राप्त की। बिल्कुल, उनका चेहरा देखकर ही डर लगता था जब वो कहते थे मोगम्बो खुश हुआ, है ना, कितना अजीब सी घबराहट होती थी। वहीं एक श्रोता को शत्रुघ्न सिन्हा का नाम, जो कहते कि नाम चीनू कहते हैं मुझे, बहुत अच्छा लगता है। तो शत्रुघ्न सिन्हा का अगर ये डायलॉग आपको पसंद है तो एक डायलॉग और अच्छा लगता होगा, खामोश, जो अक्सर उनके साथ जुड़ता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे राज, अनिल, जय ये नाम बहुत पसंद है। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है, ये बहुत अच्छा लगता है। और करण अर्जुन फिल्म में अमरीश पुरी का नाम ठाकुर है जो इन्हें पसंद आता है एक श्रोता को। एक श्रोता ने कहा है कि अमजद खान का शोले में गब्बर सिंह का नाम भूले से भुलाया नहीं जाता। बिल्कुल सही कहा, वो तो नाम इतिहास में लिख दिया गया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गुजराती फिल्मों के कलाकार फिरोज ईरानी, जो कि विलेन का रोल करते थे कई फिल्मों में, उनका प्रेम चोपड़ा के जैसा ही डायलॉग होता था, गुलाब, गुलाबनी बात, गुलाब जेबी, अच्छा। और वहीं एक श्रोता को विजय और रवि नाम ही पसंद है। एक श्रोता लिखती है कि रेखा और हमारा ही नाम हमें ज्यादा पसंद है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे याद नहीं आ रहा कि किसी फिल्मी चरित्र को मेरे वाला नाम प्राप्त हुआ होगा। हाँ तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हमें क्या करना है, ये कोई जरूरी थोड़ी कि हमारा नाम किसी फिल्मी चरित्र से मिले। हमने तो ये पूछा, ऐसा हो सकता है कई बार हमारा नाम कहीं आया हो और हमें याद हो। वहीं एक श्रोता को मनोज कुमार का भारत कुमार, प्रेम नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा, मोगेम्बो खुश हुआ, ये बहुत पसंद है। और वहीं एक श्रोता को देवानंद साहब का जो है हीरा नाम, हीरा पन्ना फिल्म में हीरा नाम था, वो बेहद पसंद है। तो चलिए अगला गीत सुनते हैं, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें। फिल्म का नाम है नाइट इन लंदन, गीत रचना आनंद बख्शी की, संगीत रचना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, और ये गीत भी बहुत कम सुना गया है। बताइएगा ये गीत आपने सुना था बहुत पहले कभी?

अच्छा बताइए ना, ये गाना आप में से कितने लोगों ने सुना था, मेरा नाम है जमीला, बताइएगा। हाँ, हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि नाम रूप और गुण से ही तो भरी हुई है दुनिया और उसमें अपने अपने व्यवहार की फलश्रुति है। वैसे उस एक के अनेक संज्ञा स्वरूप ही नहीं अपितु गुण रूप ज्ञापक सहस्त्र नाम तो केवल निर्दर्शन परक ही है, अन्यथा वो विष्णु सहस्त्र नाम का एक तो अनाम होते हुए रूप गुण धाम से परे भी स्वयं के सच्चिदानंद स्वरूप में भी प्राप्य है और वही प्रिय भी है। बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि ओ जूली, ओ शीला, ओ रानी जमालो, ये गाना जो है इन्हें बेहद पसंद आता है क्योंकि इसमें बहुत सारे नाम आते हैं। और एक श्रोता ने कहा कि पहले एक बार नाम पर ही एक प्रोग्राम हुआ था, याद नहीं

अच्छा, उसमें एक सवाल आया था कि क्या आपका नाम कोई गीत में आता है। अच्छा, ऐसा कोई कार्यक्रम था। वही एक श्रोता का कहना है कि बच्चन साहब पर अमिताभ बच्चन बहुत ही कम लोग कहते हैं, या तो बिग बी या अब एक नया नाम आ गया है करोड़पति अंकल। एक श्रोता लिखते हैं कि अमर अकबर एंथनी फिल्म में विनोद खन्ना, ऋषि कपूर और अमिताभ बच्चन अमर अकबर एंथनी बनते हैं, ये नाम इन्हें पसंद है। एक श्रोता ने लिखा है कि कहते हैं कि व्हाट इज द नेम, बट सब कुछ नाम में ही है और सब भागते भी नाम के लिए, पहचान भी नाम से ही है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हमें गैम्बलर पिक्चर का गाना जो देवानंद साहब और जाहिदा गाते हैं, मेरा मन तेरा प्यासा पूरी कब होगी आशा, अच्छा लगता है। और बातों बातों में हम कहते हैं कि हमारा नाम सूरमा भोपाली, ये सूरमा भोपाली नाम इन्हें बेहद पसंद आया, जो कि फिल्म शोले में जगदीप साहब बोलते हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आप मुझे लिखते हैं कि आप एक नाम तो भूल ही गई हैं, मेरा नाम है चमेली, मैं हूं मालन अलबेली। बिल्कुल नहीं भूले जनाब, पिछले कार्य

जो कि फिल्म शोले में जगदीप साहब बोलते हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आप मुझे लिखते हैं कि आप एक नाम तो भूल ही गई हैं, मेरा नाम है चमेली, मैं हूं मालन अलबेली। बिल्कुल नहीं भूले जनाब, पिछले कार्यक्रम में इस गाने को हमने शामिल कर लिया था, इसलिए इस बार इस गाने को हमने नहीं लिया। वहीं एक श्रोता को मेरा नाम है लखन, राम लखन बहुत पसंद आता है, और एक श्रोता कहते हैं कि आज तो नामों की भरमार रहेगी, नाम करने के लिए सब कोशिश करते हैं, कुछ कामयाब हो जाते हैं कुछ नहीं, रही बात फिल्मी नामों की तो वो तो सर चढ़कर बोलते हैं, जैसे मेरा नाम राजू, घराना अनाम, जूली आई लव यू, लीना उली ना, मिली, ये सभी गाने पसंद हैं या नाम पसंद हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर सुनने में बहुत अच्छा लगता है और मैं खो सी जाती हूं, संगीत में इतनी शक्ति होती है कि हर दुख दर्द आदमी भूल जाता है, ऐसा ही इंसान की भी फितरत होनी चाहिए, उसके बोली में इतनी सच्चाई और अपनापन होना चाहिए कि राह चलता आदमी भी अपना बन जाए। क्या बात है। कार्यक्रम का अगला गीत रविंद्र रावल का लिखा हुआ राम लक्ष्मण का संगीतबद्ध किया हुआ है, आवाजें उषा मंगेशकर और साथियों की, फिल्म का नाम है तराना।

किशोर कुमार का गुरु इतना लोकप्रिय हुआ कि वे दोनों कलाकार जीवन पर्यंत एक दूसरे को गुरु और भोला कहकर बुलाते रहे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपने जो अभी पूछा जमीला वाला गाना, हमने ये पहली बार सुना है। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि मेरा नाम है जमीला, ये गाना उन्होंने पहली बार सुना है। चलिए, अच्छा लगा ना आपको ये गाना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सच कह रहा हूं, मेरा नाम किसी एक्टर का फिल्म में वही होता है जो मैं खुश होता हूं, या किसी गीत में या कृष्ण जी के किसी भजन में मेरा नाम आता है तो खुशी होती है, क्योंकि कृष्ण जी का पर्यायवाची ही मेरा नाम है। क्या बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे अमृता सिंह का रूबी नाम पसंद है, क्योंकि मेरा घर पर पुकारने वाला नाम यही है, सब मुझे कहते हैं सुन रूबिया। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। अच्छा लगता है जब हमें इस तरह से नामों से चिढ़ाया जाता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि क्या अभी तक किसी ने मुगले आजम और सलीम और अनारकली को याद नहीं किया। और वहीं एक श्रोता को कटी पतंग का बिंदु का गीत बहुत पसंद है, जो अभी हमने आपको सुनवाया। और एक नाम मैं आपको याद दिलवाना चाहती हूँ, बसंती, बसंती नाम है मेरा, ये भी किसी ने याद नहीं किया। चलिए, कार्यक्रम के आखिरी सोपान पर हम पहुंच चुके हैं, जहां शान फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में सुनवा रहे हैं गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार राहुल देव बर्मन।

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि नाम अब्दुल है, मेरा शान फिल्म का ये गाना हमें बहुत अच्छा लगता है, जो अब अगला गीत है। बिल्कुल हाँ, रफी साहब की खनकती आवाज में आप सुनना चाहते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पड़ोसन में सुनील दत्त का नाम भूला।

0: क्या? हाँ, नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर
1: जी। सबकी खबर आप रखें न रखें, लेकिन अपनी खबर, अपने लोगों की खबर आपको जरूर रखनी है, अपने नाम को बचाए रखना है। और इसी उम्मीद के साथ आज का सुरीला सफर समाप्त करने की मंदाकिनी जोशी को दे दें इजाजत। फिर मिलूंगी ना अगले किसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्कार, मैं हूं यूनुस खान। आज 14 अक्टूबर का दिन है। 14 अक्टूबर 1946 को दुनिया के 25 देशों के प्रतिनिधि लंदन में मिले थे और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन की नींव रखी थी, और इसी की याद में हर साल 14 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे। अब आप सोच रहे होंगे कि इस दिन का आखिर क्या महत्व है। आपको बता दें कि भारत में जो स्टैंडर्ड की जिम्मेदारी है वो निभाता है भारतीय मानक ब्यूरो, और ये कहा जाता है कि अगर किसी चीज पर ISI का निशान हो या सोने पर हॉलमार्क का निशान हो तो वो आधिकारिक रूप से अच्छा माना जाता है और उत्कृष्टता का पैमाना माना जाता है। मानक संगठन बस यही काम करते हैं, यानी बाजार में मिलने वाली चीजें सही स्टैंडर्ड की हों, अच्छी क्वालिटी की हों, देर तक टिकें और किसी का नुकसान न करें, इस बात का ध्यान रखता है मानक संगठन। आज का दिन इसी संगठन को सलाम करने का दिन है।
1: खाली डब्बा, खाली बोतल।

आईएसओ ये एक संक्षिप्त रूप ही नहीं है बल्कि ये यूनानी शब्द आईएसओएस से यानी आईसोस से आया है जिसका मतलब होता है बराबर। दरअसल हम जब जिंदगी में कुछ खरीदते हैं जैसे कि बिजली का सामान खरीदते हैं या बाइक पर जाने के लिए हेलमेट खरीदते हैं या खाना पकाने के लिए जो चूल्हा है वो खरीदते हैं तो हम इन चीजों पर एक निशान देखते हैं जो है आईएसआई का निशान। ये भारतीय मानक ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का निशान है। जब हम सोना खरीदते हैं तो उसके ऊपर हॉलमार्क की मुहर होती है और तब हम निश्चिंत हो जाते हैं कि हमें जिस चीज का वादा किया जा रहा है वही बेची जा रही है। आईएसआई के निशान का मतलब है भरोसा। दुकानदार और ग्राहक के बीच, कारखाने और बाजार के बीच, एक देश और दूसरे देश के बीच भरोसा, यानी यहां कोई धोखेबाजी नहीं हो रही है।

जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं तो हम उसके सस्ते होने पर उसे ना खरीदें, बल्कि हम इस बात का पूरा ध्यान रखें कि हम जिस चीज के पैसे चुका रहे हैं क्या उस पैसे के बदले में हमें वो क्वालिटी मिल रही है। जैसे बिजली का सामान अगर आपने खराब क्वालिटी का खरीद लिया तो हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट हो जाए, आग लग जाए, कोई और हादसा हो जाए। इसी तरह से हेलमेट की मिसाल हमने पहले भी ली, अगर हमने कोई हेलमेट ऐसा लिया जिस पर ISI का निशान नहीं है और वो उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो हादसे का शिकार होने पर हेलमेट आपकी रक्षा नहीं कर पाएगा। यानी चीजों को वैसा होना चाहिए जैसा उनका होना जरूरी है, उनकी क्वालिटी भरोसेमंद होनी चाहिए। इसी को सुनिश्चित करता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ISI का निशान इसी बात की मिसाल है और गारंटी भी है। आज हम आपको इस बात की याद दिला रहे हैं कि जब आप एक उपभोक्ता के रूप में कोई चीज खरीदते हैं तो ये ध्यान रखें। दूसरी चीज है वारंटी और गारंटी का ध्यान रखें, उसके पूरे पैमानों को बारीकी से पढ़ें, किसी भी तरह से किसी भी चीज को खरीदने में धोखाधड़ी का शिकार नहीं होना है, तभी ये जो मानक दिवस है ये कामयाब माना जाएगा और आप एक अच्छे उपभोक्ता साबित होंगे।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारत ने समुद्री सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित संयुक्त भारत आसियान अनुसंधान एजेंडा विकसित करने का प्रस्ताव रखा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, विश्व एक नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है जिसमें कई

0: देश वैश्विक मामलों में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारत की थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति इस वर्ष सितंबर में बढ़कर 11.39% हुई। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान और भारत और वेस्ट इंडीज के बीच चौथा T20 क्रिकेट मैच आज हैदराबाद में। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत और आसियान देशों के बीच रक्षा सहयोग मजबूत करने के लिए संयुक्त शोध, तकनीकी साझेदारी और समुद्री सुरक्षा पर मिलकर काम करने का प्रस्ताव रखा। नई दिल्ली में आयोजित आसियान भारत रक्षा थिंक टैंक फोरम में रक्षा मंत्री ने कहा कि आतंकवाद, साइबर अपराध, समुद्री चुनौतियों और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सभी देशों को साथ आना होगा। उन्होंने कहा कि भारत और आसियान सदस्य देशों के शांतिपूर्ण, स्थिर और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा हित हैं और भारत के हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में आसियान का महत्वपूर्ण स्थान है।
1: भारत और आसियान हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता, समृद्धि और खुले समावेशी सहयोग के पक्षधर हैं। आसियान भारत की हिंद प्रशांत नीति के केंद्र में है। भारत की एक्ट ईस्ट नीति तथा सागर और महासागर की परिकल्पनाएं खुले और बहुध्रुवीय सहयोग को बढ़ावा देती हैं, जिन्हें भारत आसियान में नेतृत्व वाले मंचों के माध्यम से आगे बढ़ाता है।
0: श्री सिंह ने कहा कि हिंद महासागर और दक्षिण पूर्व एशिया के समुद्री क्षेत्र आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे इसकी सुरक्षा साझा जिम्मेदारी है।
1: हमें अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत समुद्री डकैती, मानव तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और अन्य खतरों से निपटने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। इन प्रयासों में समुद्री सूचना केंद्रों के बीच नियमित संवाद, नौसेना और तटरक्षक बलों के बीच सहयोग तथा खोज बचाव, आपदा राहत और समुद्री बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए संयुक्त अभ्यास शामिल हो सकते हैं।
0: श्री सिंह ने समुद्री आपदा मोचन पर अभ्यास सत्र और ड्रोन रोधी समाधानों पर संयुक्त अध्ययन जैसे पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का सुझाव दिया। श्री सिंह ने चर्चाओं को जारी रखने के लिए संवाद को बढ़ावा देने की बात कही। श्री राजनाथ सिंह ने आसियान देशों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन और अंतरिक्ष आधारित प्रणालियों जैसी प्रौद्योगिकियों पर सहयोग करने के लिए आमंत्रित किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि मध्यम शक्ति वाले देशों द्वारा तय नियमों को लागू करने में सहमति, आपसी समझ और साझा हित महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मध्यम शक्ति वाले देशों यानी मिडल पावर से आशय अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सहयोग में महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाले देशों से हैं। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में डॉ जयशंकर ने कहा कि धमकियों के माध्यम से दूसरे देशों पर अपनी शर्तें थोपने का युग समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि विश्व नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, जिसमें कई देश वैश्विक मामलों में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान बदलाव को एक अलग प्रकार की व्यवस्था के विकास के रूप में देखा जाना चाहिए।
2: अब हम एक नई वैश्विक व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें देशों की हिस्सेदारी बदल रही है और निर्णय लेने में उनकी भूमिका बढ़ रही है। दुनिया किस दिशा में आगे बढ़ेगी, इस पर अब अधिक देश सक्रिय रूप से चर्चा कर रहे हैं। यह नई व्यवस्था भले ही पूरी तरह व्यवस्थित न हो और उसमें कुछ उलझने हो, लेकिन यह पुराने अनुभवों, देशों के अपने हितों और व्यवस्था बिगड़ने के संभावित परिणामों की चिंता को ध्यान में रखकर विकसित होगी।
0: विदेश मंत्री ने कहा कि भारत विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जिसकी जीडीपी लगभग $4 ट्रिलियन है और इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने पिछले 4 वर्षों में 38 विकसित देशों के साथ वरीयता आधारित व्यापार समझौते किए हैं। आज नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री गोयल ने कहा कि भारत का लक्ष्य भारतीय व्यवसायों के लिए बाजार पहुंच को बढ़ाना और देश के बाजारों को वैश्विक साझेदारों के लिए खोलना है। श्री गोयल ने कहा कि भारत कनाडा, मेक्सिको, मर्कोसुर, यूरेशिया और कई अन्य देशों के साथ व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है।
3: भारत को 2014 तक कई देशों के बाजारों में विशेष व्यापारिक पहुंच हासिल थी, जिनकी कुल अर्थव्यवस्था लगभग $10 ट्रिलियन थी। आज भारत के व्यापार समझौतों के दायरे में लगभग $70 ट्रिलियन की संयुक्त अर्थव्यवस्था वाले देश शामिल हैं। हमारा लक्ष्य $115 ट्रिलियन की वैश्विक अर्थव्यवस्था में से $85 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाले देशों के बाजारों तक भारत

0: की पहुंच बढ़ाना है।
1: आउट ऑफ 115 ट्रिलियन।
2: श्री गोयल ने भारत अमेरिका संबंधों पर कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध बेहद महत्वपूर्ण है और राजनीतिक विचारधारा में बदलाव के बावजूद ये और मजबूत होंगे।
0: भारत के संबंध अमेरिका के साथ कई अहम क्षेत्रों में मजबूत हैं। इनमें व्यापार, रक्षा, तकनीक, महत्वपूर्ण खनिजों और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्र शामिल हैं। हम कई स्तरों पर अमेरिका के साथ संवाद कर रहे हैं। भारत और अमेरिका के संबंध बेहद महत्वपूर्ण हैं और आने वाले समय में इनके और मजबूत होने की उम्मीद है।
2: केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि लागत संबंधी पहलुओं के साथ साथ वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में विश्वास और साइबर सुरक्षा का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। आज नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री वैष्णव ने कहा कि भारत का लक्ष्य सेमीकंडक्टर डिजाइन, निर्माण और तैयार उत्पादों के परीक्षण में विश्वसनीय भागीदार के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करना है। श्री वैष्णव ने कहा कि सतत विनिर्माण के लिए संपूर्ण तंत्र विकसित करना आवश्यक है।
3: मटेरियल्स आर वेरी इम्पोर्टेंट।
4: सेमीकंडक्टर के लिए जरूरी सामग्री का पूरा तंत्र विकसित करने में काफी समय और मेहनत लगती है, इसलिए भारत में हमें इस दिशा में विशेष प्रयास करने होंगे। इसमें सामग्री की पहचान और समझ से लेकर उसे संभालने, बनाने, प्रसंस्करण, भंडारण और चिप सहित अन्य विनिर्माण प्रक्रियाओं में इस्तेमाल करने की क्षमता विकसित करना शामिल है। हमारा लक्ष्य ऐसा तंत्र तैयार करना है जो भारत के लिए भी उपयोगी हो और पूरी दुनिया के लिए भी।
2: श्री वैष्णव ने कहा कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। पिछले 5 वर्षों में भारत का सार्वजनिक ऋण सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में 61% से घटकर 55% रह गया है। उन्होंने कहा कि देश का लक्ष्य वित्तीय, आर्थिक और तकनीकी क्षेत्रों में मजबूती लाना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
2: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति इस वर्ष सितंबर में बढ़कर 11.39% हो गई है। अगस्त में ये 9.92% थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार खनिज तेल, खाद्य पदार्थों, कच्चे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला और धातुओं की कीमतों में वृद्धि से थोक मुद्रास्फीति की दर बढ़ी है। रसायन, कपड़ा, रबड़, प्लास्टिक और बिजली के उपकरणों की कीमतों में बढ़ोतरी का भी इसमें योगदान रहा। दिल्ली की विशेष अदालत ने आज सीजेपी नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं अजिंक्य शिंदे को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने कल राष्ट्रीय राजधानी में जंतर मंतर में घुसने की कोशिश कर रहे सीजेपी नेताओं दास, रांका और अन्य लोगों को हिरासत में लिया था। उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन से पहले कल हरियाणा के करनाल स्थित केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान में कार्यक्रम आयोजित करेगी। इसमें कृषि प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रणालियों और पोषण के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों पर मीडिया से संवाद होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर विजयवाड़ा जाएंगी। वे आज शाम विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। राष्ट्रपति कल विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का उद्घाटन करेंगी। मेले में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूहों की 1500 से अधिक महिलाएं हिस्सा ले रही हैं। देश में वर्ष 2015 से 2024 के बीच टीबी के नए मामलों में 21% की कमी दर्ज की गई है, जबकि वैश्विक स्तर पर ये कमी 12% रही। एक बयान में सरकार ने कहा है कि टीबी के इलाज का दायरा बढ़कर 92% हो गया है, जबकि वैश्विक औसत 78% है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भारत में टीबी के मामलों में लगातार हो रही कमी यह दर्शाती है कि निरंतर प्रयासों, सामुदायिक भागीदारी और मजबूत जन स्वास्थ्य योजनाओं से सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत अब तक 28 करोड़ से अधिक लोगों की जांच की जा चुकी है। 20 लाख से ज्यादा लोगों को टीबी से बचाव की दवा दी गई है, जबकि 5,70,000 नए निक्षय मित्र इस अभियान से जुड़ चुके हैं। देश भर के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और ज्यादातर निजी स्वास्थ्य केंद्रों में टीबी की जाँच और इलाज मुफ्त में कराया जाता है। वहीं टीबी के खिलाफ खिलाफ भारत की लड़ाई में लोगों की भागीदारी को और मजबूत करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार

0: कल्याण मंत्रालय ने जोश पहल की शुरुआत की है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला में हम आपको बताएंगे कि देश के विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को कैसे मजबूत किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित सेला सुरंग इसी संकल्प का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। प्रधानमंत्री मोदी ने 9 मार्च 2024 को इस सुरंग को राष्ट्र को समर्पित किया था।
2: अरुणाचल प्रदेश में लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सेला सुरंग पूर्वी हिमालय के दुर्गम क्षेत्र में इंजीनियरिंग कौशल की एक बड़ी मिसाल है। लगभग 825 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस परियोजना में दो सुरंगें हैं, जिनकी लंबाई लगभग 1,003 मीटर और 1,595 मीटर है। इस सुरंग का उद्देश्य असम के तेजपुर और अरुणाचल प्रदेश के तवांग के बीच हर मौसम में बेहतर संपर्क सुनिश्चित करना है। इससे भारी बर्फबारी और खराब मौसम के दौरान भी आवाजाही आसान होगी। सामरिक दृष्टि से ये सुरंग बेहद महत्वपूर्ण है। इससे ऊंचाई पर स्थित सेला दर्रे की चुनौतियों से निपटने और सीमावर्ती क्षेत्र में सेना के जवानों, सैन्य उपकरणों तथा आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही सुगम बनाने में मदद मिलेगी। इससे सेना की परिचालन तैयारियां भी मजबूत होगी। सुरंग से स्थानीय लोगों को भी लाभ होगा। बेहतर सड़क संपर्क से स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, बाजारों और अन्य जरूरी सुविधाओं तक पहुंच आसान होगी। साथ ही पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। सेला सुरंग दूरदराज और सीमावर्ती क्षेत्रों में आधुनिक बुनियादी ढांचे के विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये परियोजना राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय विकास के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में शुक्रवार तक ओलावृष्टि की संभावना है। अगले दो दिन में आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, विदर्भ, हिमाचल प्रदेश, केरलम, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में गरज के साथ बारिश हो सकती है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 क्रिकेट मैच आज हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 से आगे है। भारतीय सेना की असम रेजिमेंट के जवानों ने वेल्स में आयोजित कैम्ब्रियन गश्ती 2026 अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस चुनौतीपूर्ण सैन्य गश्ती अभ्यास में भारतीय टीम ने 100 से अधिक टीमों के साथ मुकाबला किया। ये अभ्यास इस महीने की 2 से 12 तारीख तक आयोजित किया गया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने समुद्री सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित संयुक्त भारत आसियान अनुसंधान एजेंडा विकसित करने का प्रस्ताव रखा। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा, विश्व एक नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, जिसमें कई देश वैश्विक मामलों में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारत की थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति इस वर्ष सितंबर में बढ़कर 11.39% हुई। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 क्रिकेट मैच आज हैदराबाद में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

चित्रगुप्त के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत। स्वर लता मंगेशकर और साथियों के थे। फिल्म का नाम था गंगा की लहरें। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म जब जब फूल खिले से चुना है। शब्द आनंद बख्शी के, धुन कल्याण जी आनंद जी की।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
4: रवि के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत सुनिए, स्वर लता मंगेशकर का, और ये फिल्म है खानदान।

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
2: फिल्म अदालत का गीत सुनिए, गायिका लता मंगेशकर, शब्दकार हैं राजेंद्र कृष्ण और धुन मदन मोहन की।

0: लता मंगेशकर को आपने सुना, फिल्म का नाम था अदालत।
1: वो रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
2: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
1: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
2: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
1: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे

बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेंद्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: बजवा दो कन्या,
1: उड़ बैठी बजवा दो कन्या,
0: उड़ उड़ बैठी बजवा दो कन्या। अरे कपड़ा के सब

0: बैठी पनवड़िया तो कन्या,
1: उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या
0: रामा, उड़ उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या, अरे बीड़ा के सब रस ले लिया।

अभी आपने मन्ना डे और साथियों को सुना। फिल्म का नाम था तीसरी कसम। गीत को शैलेंद्र ने लिखा था और तर्ज शंकर जयकिशन की थी।

0: अभी आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज, फिल्म का नाम था पूरब और पश्चिम। गीत को इंदिवर ने लिखा था और धुन कल्याण जी आनंद जी की थी।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू,
2: पेंटर बाबू
1: वारिस, और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
3: दिल तो पागल है,
1: दुश्मन
4: चिट्ठी न कोई संदेह,
1: गदर एक प्रेम कथा,
5: मैं निकला ओ गड्डी लेके,
1: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की,
6: उड़ जा काले कावां तेरे मुंह विच खंड पां,
1: एक उत्तम जीवन की कहानी। उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: और अब आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को और दीपा आपको सोनाली पाठक का सब प्रेम नमस्कार।
2: सोनाली तुम्हें और हमारे सभी सखियों सहेलियों श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
1: मैं समझ गई आपका हेल्दी नमस्कार होगा और भी नवरात्रि का त्योहार
2: बिल्कुल
1: बड़ी जोर शोर से पूरे देश में मना रहे हैं और बहुत सारी महिलाएं जो है व्रत भी करती हैं,
2: बहुत तो, सारे भाई भी करते हैं बहुत, और बच्चे भी करते हैं, युवा को भी बहुत देखा है करते हैं, और ऐसे में अपने सेहत का ध्यान रखना तो बहुत जरूरी है।
1: कुछ लोग जो है बिल्कुल भी यानी सिर्फ पानी पर रहते हैं या फिर बहुत ही कम खाते हैं, या कुछ लोग जो है बहुत सारे करिष्ठ चीजों का सेवन करते हैं, तो हमें अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना चाहिए।
2: बिल्कुल सही कहा। और बहुत तरह के व्यंजन बनते हैं इन दिनों में, उपवास के, और फलहार बनाया जाता है, कई सारी जगह पे कई लोग अलग अलग रेसिपीज शेयर भी करते हैं अपने, और इसी तारतम्य में हमने सोचा चलिए शकरकंद के आपको अलग अलग व्यंजन बताया जाए।
1: शकरकंद जो है बहुत हेल्दी होता है, बहुत पौष्टिक होता है, उपवास में खाया जाता है, तो शकरकंद के जो व्यंजन है वो आज हमारे बहुत सारे सखियों ने, हमारे श्रोताओं ने ऑलरेडी लिख भेजे हैं, वे भी हम शामिल करेंगे, और भी अगर आप कुछ अलग शकरकंद के व्यंजन बनाते हैं तो वो जरूर हमसे शेयर कीजिएगा।
2: बिल्कुल। अच्छा, नवरात्र के दिन हो और तरह तरह के परिधान हम पहनते हैं, साड़ियों का तो देखो सदा बाहर मौसम रहता है, जब पहनिए तब अच्छा लगता है
1: जी।
2: तो अलग अलग हम प्रदेशों की साड़ियों को उसकी जानकारियां हम बताना चाहते हैं आपको, तो आज तेलंगाना की पोचमपल्ली इक्कत साड़ी जो है उसके बारे में हम जानकारी देंगे। बहुत सारे संदेश भी आए हैं और ऐसा लग रहा है हमारी सहेलियों को ये वाली साड़ी बहुत पसंद है,
1: और हम पूछ भी लेते हैं ना अपनी सहेलियों से कि उनके पास में ये साड़ी है कि नहीं, और बहुत सारे हमारे श्रोता भाइयों से भी पूछते हैं कि आपने अपनी पत्नी जी के लिए पोचमपल्ली साड़ी दिलवाई है, उन्हें गिफ्ट दी है या नहीं,
2: और अगर ना दी होगी ना तो आज की जितनी जानकारियां हैं वो सुनने के बाद जरूर दिलवाइएगा।
1: साथ ही आज जो है एक खास दिन है, विश्व मानव दिवस है
2: जी,
1: उस विषय पर भी हम बातचीत करेंगे। और एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है दीपा, कि वैवाहिक जिम्मेदारी से बचते युवा।
2: बिल्कुल, जो आज का युवा है 26 के बाद घरों में, आम तौर पे भारतीय घरों में ये होने लगता है कि भाई शादी करनी है, हम तुम्हारे लिए लड़का देखें या लड़की देखें, इस तरह की बातचीत शुरू हो जाती है। वहां फिर देखिए हमारे बच्चों को लगता है अभी नहीं करनी, अभी हम सेटल नहीं हुए हैं, अभी तो ये वक्त ही नहीं है, अभी हमारी नौकरी प्रॉपर नहीं है, इस तरह की सारी बातें शुरू हो जाती है। कोई स्टार्टअप लेके बैठा है तो कहता है अरे भाई स्टार्टअप लेके हम बैठे हैं, कहां हम ये शादी और इन सब के झमेलों में हमें मत डालिए मम्मी पापा, इस तरह के घर में बातचीत शुरू हो जाती, कहीं तो बहस भी हो जाती है।
1: और पहले ये बातें जो हुआ करती थी ना दीपा, ये सिर्फ लड़के करते थे, पर आजकल लड़कियां भी इस तरह की बातें करने लगी, क्योंकि सही बात है, उन्होंने भी बड़ी मेहनत से अपने करियर को सजाया सवारा है, पर हर चीज का एक वक्त होता है। शादी अगर बहुत एक वक्त होने के बाद में अगर शादी हो तो बहुत सारी आगे जाके दिक्कतें आ सकती है।
2: बिल्कुल, तो हम इस बातों पे विचार विमर्श तो करेंगे ही, और चाहते हैं कि आप सब भी, आपको क्या लगता है कितना सही है कितना गलत, आपके क्या अनुभव है घर में
1: जी,
2: तो आप जरूर शेयर कीजिए।
1: और हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखे हैं, पर वे जैसे बोलते हैं ना कि सोशल मीडिया के जो मैसेजेस हैं वो कॉपी पेस्ट किए हुए हैं, तो अपने विचार लिखिए कि इस बारे में आपके विचार क्या है।
2: घर में कोई ऐसी बात हुई है या नहीं हुई है, या कुछ चल रही है।

0: इन दिनों, या आप अपने बच्चे को या पोता पोती को किसी को समझा रहे हैं और वो ना मान रहे हैं, अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो जरूर बताइएगा।
1: और एक खास और एक और सेगमेंट है, ये है कि शब्द हमारा विचार आपके,
0: जी
1: इसके अंतर्गत आज का शब्द चुना है प्रार्थना, जिसको तो सुनते ही सुकून हमें महसूस होता है।
0: तो चलो, शब्द बात की है प्रार्थना की, तो एक प्रार्थना ही सुने।
1: जी सुनते हैं।

0: तो दीपा, अम्बे माँ को हम यही प्रार्थना करेंगे कि हम सभी के जीवन में खुशहाली हो और बस आनंद के साथ हम जिंदगी गुजारें।
1: बिल्कुल सही कहा। और देखो, भक्तिपूर्ण माहौल हो गया है, प्रार्थना भी हमने कर ली है और आगे भी करेंगे, ऐसा नहीं, और जिंदगी भर करते ही रहना चाहिए। हम जिस चीज को मानते हैं, जिस भी बात पे आस्था है,
0: जी
1: उसे हमें बनाए रखना चाहिए। और देखिए, बहुत सारे हम विशेष दिनों की बातें करते हैं,
0: जी
1: तो आज है विश्व मानक दिवस, जो हर साल आज ही के दिन यानी 14 अक्टूबर को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के महत्व को समझाने के लिए और उन विशेषज्ञों को उन्हें योगदान उनके योगदान का सम्मान उन्हें हो सके, उनको समर्पित किया जाता है ये दिन। तो जो वस्तुएं होती है ना, सेवाओं और तकनीकी प्रणालियों के लिए एक मानक तैयार करते हैं। मानक हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम प्रतिदिन अनेक ऐसी वस्तुओं का उपयोग भी करते हैं सोनाली, जिनकी गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने में मानकों की अहम भूमिका होती है।
0: ये बात आपने बहुत सही कही दीपा। और चाहे मोबाइल फोन हो, बिजली के उपकरण हो, खाद्य पदार्थ हो या दवाइयाँ हो, हर क्षेत्र में मानकों का विशेष महत्व है। और विश्व मानक दिवस मनाने की शुरुआत वर्ष 1970 में हुई थी। 14 अक्टूबर 1946 को लंदन में 25 देशों के प्रतिनिधि एकत्र हुए थे और

0: बैठक में अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक संगठन स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। आगे चलकर इसी प्रयास से अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन यानी आईएसओ की स्थापना हुई।
1: बिल्कुल, और वर्ष 1970 में आईएसओ के तत्कालीन अध्यक्ष जो थे उस वक्त फेरुख सुंटर, इन्होंने 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस के रूप में मनाने की पहल की और इस दिवस का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में मानकों के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।
0: और इस वर्ष की जो थीम है ना दीपा 2026 की, वो है बेहतर दुनिया के लिए साझा दृष्टिकोण, सतत विकास लक्ष्य पर विशेष ध्यान, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। इस वर्ष का संदेश है प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षित, भरोसेमंद, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने में अंतर्राष्ट्रीय मानक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब मानक क्या होते हैं? मानक यानी किसी वस्तु, सेवा या प्रक्रिया की गुणवत्ता, सुरक्षा, आकार, माप और कार्यक्षमता के लिए निर्धारित नियम या दिशा निर्देश है। अब उदाहरण के लिए खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा, बिजली के उपकरणों के सुरक्षित उपयोग के नियम और मोबाइल और इंटरनेट उपकरणों के बीच तालमेल, वजन और माप में एकरूपता, जैसे 1 किलोग्राम और 1 मीटर का समान माप।
1: बिल्कुल, और इसी तरह से इमारत और जो पुल होती है उनकी सुरक्षा से संबंधित भी नियम होते हैं। तो इन मानकों से उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ता है और उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखने में भी सहायता मिलती है। तो आईएसओ जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन है। ये संगठन अलग अलग उद्योग या सेवाएं या प्रक्रियाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक विकसित करता है। और इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग यानी आईईसी, ये विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक और संबंधित तकनीकों के मानकों पर काम करता है। और इसी तरह से फिर एक और है आईटीयू, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का ये इसका फुल फॉर्म है। ये दूर संचार और संचार नेटवर्क और डिजिटल तकनीक के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के विकास में योगदान देता है। अब ये तीनों जो संस्थाएं हैं मिलकर विश्व मानक दिवस के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
0: और भारत में भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS राष्ट्रीय मानक तैयार करने और उत्पादों की गुणवत्ता और अनुरूपता से संबंधित कार्य करने वाली प्रमुख संस्था है। हमारे दैनिक जीवन में मानकों के महत्व को इन उदाहरणों से समझ सकते हैं, जैसे सोने के आभूषण खरीदते समय हॉलमार्क देखना, निर्धारित गुणवत्ता वाले बिजली के उपकरण चुनना, उत्पादों पर ISI चिन्ह और अन्य लागू प्रमाणन चिन्हों की जांच करना, वस्तुओं की पैकिंग पर दी गई जानकारी और गुणवत्ता संबंधी विवरण पढ़ना, हर उत्पाद पर एक चिन्ह लागू नहीं होता, हर उत्पाद पर हर चिन्ह लागू नहीं होता है, हर उत्पाद पर एक ही चिन्ह लागू नहीं, इसलिए खरीदारी करते समय संबंधित उत्पाद के लिए लागू मानक और प्रमाणन देखना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, तो हमें लगता है अब सखियां हमारी सच में इस बात, इस जो जानकारी है इससे और सचेत हो जाएंगी और हमेशा मानक की महत्व
0: चिन्ह देखकर ही
1: खरीदारी करेंगे।
0: अब जैसे कोई सोने के गहने खरीदते हैं तो उसमें भी मानक हमें देखना है, चिन्ह देखना है, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है, कोई भी चीजें हैं तो उसे उसका चिन्ह देखकर ही हमें खरीदारी करना चाहिए।
1: फिलहाल अभी क्या करना चाहिए,
0: गीत सुनना चाहिए?
1: चलिए

0: सपनों का रंग देखो कभी कभी परिधानों पे भी आ जाता है
1: और कभी कभी डरा भी देता है।
0: कैसे?
1: जैसे हमेशा एक ही सपना आता है कि हम परीक्षा में लिखने बैठे हैं और हमें कुछ याद ही नहीं आ रहा है, हमें कुछ लिखना ही नहीं आ रहा है, या फिर हम दौड़े जा रहे हैं और रेगिस्तान में हमारे पैर ही नहीं उठ रहे हैं।
0: ऐसा होता है। अच्छा, कभी कभी कोई साड़ी खरीदने की इच्छा होती है ना, तो आप देखिएगा कितनी सारी हमारी सखियां इस बात से सहमत भी होंगी, वो सपने में आने लग जाती है ना।
1: आपकी आती है?
0: आती है
1: हाँ
0: बिल्कुल। सच में ऐसी इच्छा है कि कभी हम जाएं ऐसी बर्फीली पहाड़ियों पे, हम भी कोई ऐसे शिफॉन की साड़ी लहरा करके एक बढ़िया सा कुछ वीडियो
1: यानी
0: बनवाएं।
1: जैसे फिल्मों की हीरोइनें
0: हाँ, जैसे
1: किसी।
0: फिल्मों की हीरोइनें करती हैं, हीरोइंस करती हैं भाई। अभिनेत्री, हर महिला अपने जीवन की अभिनेत्री तो होती है ना, और
1: बिल्कुल।
0: साड़ी उनका वही खूबसूरत परिधान है। और ये सिर्फ परिधान नहीं है, हमारे देश की कला संस्कृति और परंपराओं को अपने आंचल में समेटे हुए एक खूबसूरत विरासत है। देश के अलग अलग हिस्सों की साड़ियों की अपनी अलग पहचान होती है ना सोनाली।
1: बिल्कुल।
0: इन्हीं में से एक जो हम आज बात कर रहे हैं ना, पोचमपल्ली इक्कत, जिसे अपने जिसमें उसमें बड़े अट्रैक्टिव ये होते हैं
1: डिजाइन।
0: डिजाइन, ज्योमेट्रिक डिजाइन होते हैं, हिंदी में अपन ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं, और उसकी अनोखी बुनाई होती है जो कि दुनिया भर में जानी जाती है।
1: और पोचमपल्ली तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिरी जिले में स्थित एक कस्बा है। यहाँ पीढ़ियों से बुनकर परिवार इक्कत की कला को संजोते आए हैं और पोचमपल्ली इक्कत को भारत की पारंपरिक हाथकरघा कलाओं में विशेष स्थान प्राप्त है। इसे GI यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी मिला हुआ है,
0: मिला
1: यानी
0: हुआ
1: GI
0: है,
1: टैग, यानी ये
0: GI
1: भी हमने
0: टैग मिला।
1: मानक की जो बात की
0: हाँ,
1: ना,
0: मानक की बात की है
1: तो इसे भी GI टैग मिला हुआ है।
0: जी। अब इस साड़ी में ऐसा क्या खास है? तो असल में इक्कत की सबसे बड़ी विशेषता इसकी रंगाई और बुनाई की तकनीक है। सामान्य साड़ी में अक्सर कपड़ा बुनने के बाद उस पर डिजाइन बनाया जाता है, लेकिन इक्कत में धागों को बुनने से पहले एक खास तरीके से बांधकर उनमें रंग भरा जाता है। यानी डिजाइन कपड़े पर बाद में नहीं, बल्कि जब बुनाई होती है ना, तो धागे में पहले से ही तैयार किया जाता है।
1: और इस प्रक्रिया को समझना भी बहुत दिलचस्प है। ताने या बाने

0: कि धागों के जिन हिस्सों को किसी खास रंग से बचाना होता है उसे कसकर बांध दिया जाता है, फिर धागों को रंगा जाता है। बांधे गए हिस्सों पर रंग नहीं चढ़ता, इसके बाद अलग अलग हिस्सों को खोलकर दूसरे रंगों में रंगा जाता है और अंत में इन्हीं रंगे हुए धागों को करघे पर बुनकर मनमोहक पैटर्न तैयार किया जाता है। इसी वजह से इक्कत के डिजाइनों में हल्का सा धुंधलापन या धागों के मिलने का प्रभाव दिखाई देता है, जो इसकी खूबसूरती और पहचान दोनों है।
1: बिल्कुल, अब हमारी जिन सखियों ने ये साड़ी खरीदी होगी या जिन्हें पसंद है, तो वो जानती हैं कि इसमें ज्योमेट्रिकल डिजाइन आपको देखने को मिलेगी, जैसे हीरे वाला जो पैटर्न है ना, हीरे का आकार या चौकर डायमंड शेप या चौकर पैटर्न होंगे, धारियां मिलेंगी या फिर पारंपरिक मोटिफ दिखाई देते हैं। कलर की बात करें तो लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, काला, ऐसे सारे चटक रंग इस्तेमाल होते हैं इनमें। और आज के समय में बुनकर पारंपरिक रंगों के साथ कुछ पेस्टल और आधुनिक रंग, ये उसका भी कॉम्बिनेशन बनाते हैं, वो तैयार करते हैं, वैसी साड़ियां भी पसंद की जा रही हैं।
0: और पोचमपल्ली इक्कत की परंपरा का इतिहास कई पीढ़ियों पुराना है। यहाँ के बुनकरों ने इस कला को अपने परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया है। कभी ये कला मुख्य रूप से स्थानीय और पारंपरिक जरूरतों से जुड़ी थी, लेकिन समय के साथ पोचमपल्ली इक्कत ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। आज साड़ी के अलावा इक्कत से दुपट्टे, कुर्ते, स्टोल, शर्ट और घर की सजावट से जुड़ी वस्तुएं भी बनाई जाती हैं।
1: अब भाई बात होगी कि चलिए आपकी इतनी सारी जानकारी से अब हमारी तो इच्छा जागृत हो गई कि हमें साड़ी खरीदनी
0: है। इसमें शर्ट का जिक्र किया है तो हमारे पुरुष जो भाई हैं
1: वो भी खरीद
0: सकते हैं इक्कत का शर्ट।
1: अब वो जानेंगे भाई मैं शर्ट लूं उससे पहले मुझे घर में जो महिलाएं उनको दिलाना पड़ेगा, तो कीमत क्या है इन साड़ियों की? तो कीमत जो है उसके कपड़े, धागे, डिजाइन, बुनाई की जो जटिलता है या हस्तकरघा का काम या पावरलूम पर बन रही है उस पर बहुत कुछ निर्भर करती है। अब अगर आप मिक्स्ड फैब्रिक का, मिक्स्ड कपड़े का लेते हैं ना इक्कत की साड़ियां, तो 1500 से 2000 या 2500 तक की भी मिल सकती है शुरुआती उसके जो रेट हैं। और अब बहुत अच्छी क्वालिटी के कॉटन की लेते हैं या सिल्क कॉटन साड़ियां तो लगभग 3000 से 7000 के बीच में ये मिल जाती हैं। और वहीं शुद्ध रेशम से की हाथ से बनी हुई जटिल डिजाइन वाली और एकदम प्रीमियम पोचमपल्ली इक्कत साड़ियों की कीमत अगर आप जानना चाहें तो 10000 से 25000 तक या उससे ऊपर भी हो सकती है। अब अगर उसमें जितने ये है कि कितना बारीक काम है उस पर निर्भर करता है इसका रेट, और हाँ फैब्रिक पर भी कि किस तरह का आपने कपड़ा चुना है।
0: जी, और इसलिए जब अगली बार आप किसी पोचमपल्ली इक्का साड़ी को देखें तो सिर्फ उसके रंगों और डिजाइन पर नजर मत डालिएगा, उसके पीछे छिपी उस मेहनत को भी महसूस कीजिएगा जिसमें एक एक धागे को बांधा जाता है, रंगा जाता है, फिर करघे पर बड़ी कुशलता से बुना जाता है। यही तो भारतीय हथकरघे की खूबसूरती है। कपड़ा केवल बुना नहीं जाता, उसमें हमारी परंपराएं, कारीगरों की मेहनत और पीढ़ियों की कला भी बुनी जाती है।
1: सही बात है। और ये जो सपनीली दुनिया है इसको बुनने के लिए क्या सबसे खूबसूरत साधन है?
0: गीत।

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर।
2: सोनाली, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि हम नहीं सुनेंगे पोचमपल्ली की जानकारी क्योंकि बजट हमारा बिगड़ जाएगा। तो ऐसा नहीं है, देखिए हर रेंज की साड़ियों के बारे में आपको बताया। आप अगर चाहिए तो मिक्स्ड फैब्रिक, जिसमें कि
3: कॉटन भी ले सकते हैं,
2: कॉटन में भी इकत की जो वीविंग वाली साड़ी आती है, और अगर आप वीविंग वाली भी नहीं लेना चाहें तो प्रिंट वाली भी आती है। तो आप एक बार अपने मर्जी से बिना उनसे पूछे, घर में बगैर पूछे लेके तो जाइए और ये तोहफा देके बताइए, और उसके बाद यहाँ आकर के बताइएगा इसी मंच पर कि वो उनका चेहरा खुशी से देखिए, खूबसूरती उनकी बढ़ी या नहीं।
3: बिल्कुल। और महिलाएं जो है ना दीपा, वो तो अपनी जो है ना परिवार की सलामती के लिए हमेशा प्रार्थना करती है। तो घर की महिलाएं अगर खुश हो जाए, फिर भला ही वो साड़ी के माध्यम से हो या छोटे के तोहफे से माध्यम से हो, तो इतनी बड़ी बात होगी।
2: सच में छोटी छोटी बात है, और कोई साड़ी लेना भी जरूरी नहीं है, आप छोटी सी चीज भी लेकर जाएंगे ना। बस यूं ही जाते हुए घर, दफ्तर से घर आते हुए अगर आप एक गुलाब का फूल भी लेके जाते हैं, वो फूल देख कर भी बहुत खुश हो जाती है कि अरे मुझे याद किया, क्या बात है।
3: या उनकी पसंद की कोई चीज है ना, भले ही वो छोटी सी चॉकलेट क्यों ना हो। और अब वक्त हो चुका है एक ब्रेक का,

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर है,
1: कार्यक्रम है सखी सहेली। इतने सारे संदेश आए हैं ना कि वो ब्रेक खत्म होने का भी इंतजार नहीं हो रहा था। हमारे एक सखी ने लिखा कि कुछ महीने पहले मेरे भतीजी की शादी के एक कार्यक्रम में मैंने पोचमपल्ली साड़ी खरीदी थी और अच्छा उनका अनुभव रहा, ऐसा वो कहती हैं। तो सच में अलग अलग हथकरघा या आप अलग अलग प्रदेशों की साड़ियां जब आप पहनते हैं, अलग अलग हमारे अनुभव होते हैं। और सच में बहुत जो आपस में जो ये जो कहते हैं ना महिलाओं वाली बातें, उसमें साड़ियों का जिक्र तो निकलता ही है।
0: वैसे प्रार्थना की बात चली है तो हमारे बहुत सारे साथियों ने, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने भर भर के कमेंट्स लिखे हैं। एक हमारे साथी लिखते हैं कि हमारे स्कूल में शुरुआत में सभी स्टूडेंट और टीचर प्रिंसिपल एक साथ इकट्ठा होकर प्रार्थना करते थे। वे प्रार्थनाएं आज भी याद है। कुछ खास बात प्रिंसिपल को कहनी होती तो उसी समय कहते थे। प्रार्थना का असर क्या होता था पता नहीं, पर मन बहुत शांत हो जाता था। मैं रोज सुबह नहाने के बाद 10 मिनट के लिए प्रार्थना के लिए बैठती हूँ। उस समय जो भी भगवान से जो कहना होता है वो कह लेती हूँ। आखिरकार उस परम पिता की कोई तो शक्ति है जो इतनी बड़ी दुनिया को चला रहा है। प्रार्थना से शांति तो मिलती ही है।
1: बहुत सही कहा, बिल्कुल सही। और इसी तरह से विचार हमारे एक श्रोता के कहते हैं, हमारे विचार से प्रार्थना करने से हमारे मन, मस्तिष्क और जीवन पर कई सकारात्मक और आध्यात्मिक प्रभाव पड़ता है। ये तभी संभव है जब सच्चे दिल से प्रार्थना की गई हो। नियमित प्रार्थना करने से अहंकार दूर होता है, स्वभाव विनम्र बनता है, जिससे आंतरिक बल और उत्साह के साथ जीवन में आगे बढ़ने की ऊर्जा मिलती है, मानसिक शांति मिलती है, जीवन से जुड़ी समस्याओं और उलझनों का समाधान मिलता है। आगे कहते हैं, घबराए जब मन अनमोल और हृदय हो डावाडोल, तब है मानव तू प्रार्थना कर, ईश्वर से प्रार्थना कर।
0: एक साथी कहते हैं, प्रार्थना केवल कुछ शब्दों को दोहराना या हाथ जोड़कर घुटने टेकना नहीं है, बल्कि आत्मा की वे गहरी पुकार है जो सीधे उस परम चेतना तक पहुंचती है जिसे हम ईश्वर, प्रकृति या ब्रह्मांड कहते हैं। जब हम कहते हैं शब्द हमारा विचार आपके, तो इसका अर्थ है कि यह शब्द केवल एक माध्यम है, लेकिन उनके पीछे की भावना, गहराई और चिंतन पूरी तरह से आपका अपना होना चाहिए। प्रार्थना हमारे जीवन में एक ऐसा सेतु है जो हमें अशांति से शांति की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है।
1: बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही कहा। और संदेश अगला कहता है कि पूजा उपासना के जितने प्रकार हैं, उनमें सबसे अधिक सर्व सुलभ प्रकार है प्रार्थना। यह मनुष्य की नितांत व्यक्तित्व आनंद प्राप्ति का रास्ता है। प्रार्थना से मनुष्य झुकना सीखता है, नम्रता और विनम्रता सीखता है। जैसे व्यायाम से शरीर स्वस्थ रहता है, वैसे ही प्रार्थना से मन प्रसन्न रहता है।
0: एक साथी कहते हैं, प्रार्थना हृदय का गीत है। चाहे आप शब्दों का प्रयोग करें या मौन रहकर केवल अपने मन के भावों को अर्पित करें, यदि उसमें सच्चाई और श्रद्धा है तो ईश्वर तक अवश्य पहुंचती है। जब मनुष्य अपने अहंकार को भूलकर उस परम शक्ति के सामने नतमस्तक होता है, तब उसके भीतर क्षमा, करुणा और प्रेम जैसे मानवीय गुणों का विकास होता है। प्रार्थना हमारे जीवन को सुंदर, अनुशासित और उद्देश्य पूर्ण बनाने का सबसे सरल माध्यम है। यह हमारे भीतर छिपी असीम शक्तियों को जगाने और ईश्वर के साथ एक अटूट व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने का जरिया है। शब्द चाहे कोई भी हो, यदि आपके विचार और भावनाएं शुद्ध हैं, तो आपकी हर प्रार्थना स्वीकार्य है। कितनी सुंदर बात, कितने सुंदर विचार लिखे हैं हमारे सभी।
1: सही कहा सुनाली। हमारे एक श्रोता ने कुछ फिल्मों में दिखाए गए प्रार्थनाओं के बारे में जिक्र किया है, जैसे कि हे प्रभु आनंद दाता, ए मालिक तेरे बंदे हम, इतनी शक्ति हमें देना दाता, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। ये सारे फिल्मों में प्रार्थना के रूप में इन्हें जो गीतों को दिखाया है, आज भी हम बेहद पसंद करते हैं और प्यार करते हैं। प्रार्थना का अर्थ है ईश्वर या किसी उच्च शक्ति के प्रति आभार, सम्मान और मार्गदर्शन व्यक्त करना, जो मन को शांति और एकाग्रता प्रदान करती है। आगे लिखते हैं कि स्कूल में पढ़ाई शुरू होने से ठीक पहले प्रार्थना करवाया जाती था, पहले हमारे समय में, और एक स्वस्थ और अच्छी दिनचर्या मानी गई है सुबह की प्रार्थना। बच्चों के मन को शांत करती है और दिन भर की पढ़ाई के लिए उनका ध्यान केंद्रित रखती है। और आगे कहते हैं कि कतार में खड़े होकर साथ में प्रार्थना करने से बच्चों में अनुशासन, नियम और समय की पाबंदी की जो कि ये जो आदत है ये विकसित होती है।
0: एक साथी कहते हैं, पूजा उपासना के जितने प्रकार हैं, उनमें सबसे अधिक सर्व सुलभ प्रकार है प्रार्थना। यह मनुष्य की नितांत व्यक्तिगत आनंद प्राप्ति का रास्ता है। प्रार्थना से मनुष्य झुकना सीखता है, नम्रता और विनम्रता सीखता है। जैसे व्यायाम से शरीर स्वस्थ रहता है, वैसे प्रार्थना से मन प्रसन्न रहता है।
1: एक और कहते हैं कि प्रार्थना शब्द सुनते ही वो स्कूल की सुबह की प्रार्थना याद आ

0: जाती एक छोटा सा ढोलक और एक खंजरी बजाकर तीन लड़कियां सामने बैठकर गाती थी और उनके पीछे सब गाते थे। हर दिन एक नई प्रार्थना गाई जाती थी, हमें बड़ा मजा आता था।
1: एक कहते हैं, प्रार्थना दुखी मन को न केवल शांति प्रदान करता है अपितु हृदय में धैर्य भी भरता है, और इस दृष्टिकोण से प्रार्थना करते हुए जीवन को सुखमय बनाया जा सकता है।
0: एक अगला संदेश कह रहा है कि प्रार्थना ईश्वर से कुछ मांगने के लिए नहीं बल्कि जो मिला है उसका धन्यवाद करने के लिए भी होना चाहिए। किसी असहाय की मदद करना, भूखे को भोजन कराना, दुखी को सांत्वना देना जैसे काम भी प्रार्थना के ही रूप हैं।
1: एक साथी कहते हैं, हम सभी लगभग प्रार्थना करते ही हैं, परंतु अगर हम संसार के रचयिता से सच्चे मन से भगवान से जुड़कर प्रार्थना करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारी प्रार्थना स्वीकार न हो। जरूरी होती है, ये मेरा खुद का अनुभव है। सुख और दुख दोनों में प्रार्थना कर जगत के पालनहारी से प्रार्थना करें। और अब
0: गीत सुनते हैं।

0: प्रार्थना से देखिए, सच में कहा ना, सभी हमारी जैसे सखियां बता रही थी कि मन में एक सुकून आ जाता है और शांति आ जाती है ना। और सबके लिए ऐसा लगता है एक शुभ कामनाएं निकलती हैं दिल से कि इसका भी अच्छा हो, इसका भी अच्छा हो, परिवार का अच्छा हो, जो हमारे संबंधी हैं उन लोगों का सबका अच्छा हो, है ना।
1: और जो माताएं होती, जो मम्मियां होती है जिनके युवा शादी नहीं करते, तो वो भी प्रार्थना करती कि भाई जल्दी से हमारे
0: बिल्कुल
1: घर में
0: हमारे
1: बहू रानी आ जाए या फिर हमारे घर में दामाद आ जाए। वे हमेशा हाथ जोड़ के कहती कि भाई हमारे बच्चों को अब इस तरह की इच्छा जागृत हो कि वे जल्दी से शादी के लिए हाँ कह दे।
0: बिल्कुल। लेकिन आज के जो बदलते सामाजिक परिवेश है ना सोनाली, उसमें जो युवा है, यूथ है जो है, उनकी सोच, जीवन शैली और उनकी जो प्रायोरिटीज यानी प्राथमिकताएं हैं वो बहुत बदल गई हैं आजकल। एक समय था जब विवाह को जीवन का एक स्वाभाविक हम पड़ाव मानते थे कि हाँ अब इस एज के बाद तो ये शादी होनी है, पढ़ाई पूरी करना, नौकरी पाना, विवाह करना और परिवार बसाना, ये जीवन का एक सामान्य रूपरेखा हुआ करती थी।
1: जी
0: लेकिन आज जो युवा है वो विवाह करने और उसके साथ आने वाली जिम्मेदारियों को स्वीकार करने में जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं।
1: इसके पीछे अनेक कारण हैं दीपा, कि जैसे उन्हें ऐसे लगता है कि अगर हमने शादी कर ली तो फिर हमारे करियर में, खासकर महिलाओं को, युवतियों को ऐसा लगता है कि हमारे करियर में बाधा आ जाएगी, या फिर हमने इतना बड़ी मेहनत से हमने इतनी पढ़ाई की है, हमने अपने करियर को इतना अच्छा सजाया संवारा है, और अगर हम शादी के बाद में उसमें बाधा आ जाएगी, हम पीछे हो जाएंगे, हमें प्रमोशन नहीं मिलेगा। तो ये वैवाहिक जिम्मेदारी से बचते युवा, तो इस विषय पर हमारे श्रोताओं से भी कहेंगे कि आपके क्या विचार है, आपको ऐसा लगता है क्या पुराने जमाने में भी करियर भी हुआ करते थे, शादियां भी हुआ करती,
0: बिल्कुल।
1: तब हमारे मन में विचार नहीं आता था, पर आजकल के युवाओं के मन में ये विचार क्यों आने लग गया है?
0: आपकी क्या राय है आप जरूर बताइएगा। हम भी यहाँ पर से अपनी तरफ से इस बातों को, इस विचार विमर्श को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ये समझना आवश्यक है कि विवाह का अर्थ स्वतंत्रता का अंत नहीं है।
1: जी,
0: सबको लगता है कि अरे भाई शादी हो गई ना,
1: सब
0: सारी
1: कुछ खत्म हो
0: आजादी
1: गया।
0: खत्म, बस एक शब्द बोला जाता है। बल्कि दो व्यक्तियों के बीच समझदारी, सहयोग और आपसी सम्मान का ये रिश्ता है। और आज के युवा पहले अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, अच्छी नौकरी, आर्थिक स्थिरता, फिर अपना घर, सुरक्षित भविष्य, और ये सब उनकी प्राथमिकताएं हैं।
1: जी
0: वो चाहते हैं कि विवाह से पहले उनका करियर स्थापित हो जाए ताकि वे अपने जीवन साथी के साथ एक आर्थिक तनाव के बिना जीवन बिता सकें।
1: और जैसे दीपा मैंने भी कहा था कि इसके पीछे कारण क्या है, क्यों युवा ये बात को सोचने पे मजबूर हो गए, उसके पीछे एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि माता पिता के बीच लगातार होने वाले झगड़े भी बच्चों के मन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि बड़े होकर वे भी इसी प्रकार के वैवाहिक जीवन से बचना चाहेंगे। हालांकि हर विवाह का अनुभव एक जैसा नहीं होता है, स्वस्थ संवाद, आपसी सम्मान और समस्याओं को मिलकर सुलझाने की इच्छा रिश्ते को मजबूत बनाती है।
0: बिल्कुल। और अपने आसपास शादियों का जो टूटना देखते हैं ना, पारिवारिक विवाद भी देखते हैं, घरेलू तनाव और रिश्तों में कड़वाहट देखने वाले युवाओं के मन में भी एक विवाह को लेकर ना थोड़ी एक
1: डर होता है।
0: डर आ जाती है,
1: जी
0: डाउट सा बनने लग जाता है। वे सोचते हैं कि यदि विवाह के बाद जीवन में शांति के बजाय अगर ये तनाव इस तरह मिलना है तो ऐसा रिश्ता बनाने का क्या लाभ है।
1: अब देखिए, दोस्ती के बीच में भी जब हम दोस्ती बनाते हैं ना किसी से, तब भी हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है,
0: ये बात
1: क्योंकि
0: तो सही
1: हमारे
0: है,
1: हाथों की पांचों उंगलियां एक समान
0: वो
1: नहीं
0: भी एक
1: होता, तो
0: समान नहीं
1: हर
0: है।
1: इंसान कैसे एक समान
0: अरे
1: होगा?
0: भाई घर में भाई बहन जो
1: हाँ
0: होते हैं, एक
1: हाँ
0: ही माता पिता के बच्चे, वो भी तो सब अलग अलग तरह से
1: तो
0: होते हैं
1: हमें
0: ना।
1: एडजस्ट करना बहुत जरूरी है। और सबसे जरूरी बात है कि लड़का हो या लड़की हो, एक दूसरे को सम्मान देना बहुत जरूरी है ना।
0: हाँ ये बात तो बिल्कुल सही कही। और देखो एडजस्ट करने की जो यहाँ पे बात कर रहे हो ना सोनाली, हम आजकल अपने बच्चों को थोड़ा कम समझाते हैं कि थोड़ा सा आप संभल के चलिए, या थोड़ा सा आपस में एक कोई अगर एक या हम कोई एक दो में से कोई एक में अगर हमने ही पहले थोड़ा सा झुक गए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं हमारा क्या, वो हमारा अहंकार है जो
1: जी
0: आड़े आ जाता है
1: जी
0: कि मैं क्यों झुकूं, मैं भी तो इतनी पढ़ी

0: लड़की हूँ या मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ तो मैं क्यों झुकूँ, ये बात, ये अहम की भावना कहीं पहले आके दीवार बना देती
1: और रिश्ते टूट जाते हैं, अच्छे अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं। वे हमारे साथियों ने भी लिखी हैं कुछ बातें। हमारे एक साथी कहते हैं कि वैवाहिक जिम्मेदारी से बचते युवा बड़ा रोचक मुद्दा है। नई शादी होने के बाद युवक और युवती अपनी जिम्मेदारी से बचते हैं। युवक त्योहार उत्सव में जाना बड़ा आनंद लेते हैं, बच्चों को विद्यालय छोड़ना, फिर काम पर जाना, अभी हम सेटल नहीं हुए, अभी हम पढ़ रहे हैं, इस जंजाल में युवा फंसे होते हैं। हमारी माँ तो कहती है प्रभु ही शादी कराएगा, असल में प्रभु ही इनकी शादी करवाएगा, ऐसी उन्हें चिंता लगी रहती है।
0: एक संदेश ये भी कह रहा है कि भाई जहाँ तक वैवाहिक जवाबदारी से बचने की बात है, जवाब कम है, दुनियादारी ज्यादा है। आजकल के युवा 21वीं सदी के हैं जो कह रहे हैं हम लोग हैं ऐसे दीवाने, दुनिया को झुका कर मानेंगे, मंजिल की धुन में आए हैं, मंजिल को पाकर मानेंगे, वो मंजिल है नौकरी या कोई बिजनेस, फिर बाद में बाद में कहते हैं बाद में छोकरी, मतलब ये गुजराती में शायद उन्होंने लिखा है कि भाई वो कहते हैं कि सब सेटल हो जाए हम उसके बाद ही विवाह करना चाहेंगे। अच्छा, माता पिता के बीच भी लगातार होने वाले झगड़ों में भी बच्चों का मन, ये अगर घर में कुछ ऐसा माहौल है ना कि माता पिता के बीच में बहसबाजियां अगर बच्चों ने देख रखी है तो उनका बहुत गहरा प्रभाव पड़ जाता है, फिर वो बड़े होकर उसी प्रकार के वैवाहिक जीवन से बचना चाहते हैं। हालांकि अब ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हर विवाह का अनुभव एक जैसा होता भी नहीं है। स्वस्थ संवाद होते हैं, आपसी सम्मान और समस्याओं को मिलकर सुलझाने की इच्छा रिश्ते को मजबूत बना सकती है। अब ये भी बात है सोनाली कि विवाह केवल दो व्यक्तियों का साथ नहीं है ना, इसके साथ हम इमोशनल तरीके से भी जुड़ते हैं, फिर घर की व्यवस्था भी देखनी होती है, आर्थिक योजना क्या है, या परिवार के प्रति संवेदनशीलता और भविष्य से जुड़े निर्णय भी आ जाते हैं।
1: और अब क्या किया जाए,
0: एक गीत सुना जाए,
1: सुनते हैं गीत।

सोनाली, बच्चे कहते हैं आजकल कि हमें ये तो यकीन है कि अभी शादी हमें नहीं करना है। और एक संदेश ये कहता है कि विगत सालों से सोशल मीडिया और खबरों ने शादी विवाह के मामले में ऐसा दहशत फैला दिया है कि लड़के लड़कियां क्या माँ बाप भी बेहद सहम गए हैं। बच्चों की शादियों की बातों से वो भी डरने लगे हैं। लव मैरिज हो या अरेंज्ड मैरिज हो, सभी की कहानी एक समान होती जा रही है। कई सालों

0: का साथ होना बहुत ज़रूरी है। एक दिन में ये तय नहीं होता है, बहुत ज़रूरी है कि शुरू से ही लड़के लड़कियों के दिमाग में बैठाना होगा कि वैवाहिक सूत्र दाम्पत्य जीवन एक पवित्र रिश्ता होता है। इसमें दो परिवार बनते हैं, दो लोग मिलते हैं, परिवार बढ़ता है और कई तरह की जिम्मेदारियां भी बढ़ती है, तो ये जिम्मेदारियां तो बढ़ेगी ही।
1: एक हमारे साथी ने कहा है, आज के युवा वैवाहिक जीवन से ज्यादा करियर पर ज्यादा जोर देने लगे हैं। वे मानते हैं कि शादी कर लेने से घर गृहस्थी संभालनी पड़ेगी और करियर खत्म हो जाएगा। अभी कुछ कमा कर पग भर हो जाए तभी शादी तो बाद में होगी। मेरे घर में भी मेरी बेटी 29 साल की हो गई पर शादी से मना कर रही है और नौकरी के साथ साथ एग्जाम भी दे रही है ताकि और बेहतर नौकरी कर पाए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मेहनत कर रही है पर शादी की ओर भी उन्हें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक उम्र के बाद में ना बहुत कुछ बदलाव आ जाते हैं, शारीरिक बदलाव आ जाते हैं, मानसिक बदलाव आ जाते हैं। फिर वो एक उम्र के बाद में ना जो महिला है या पुरुष यानी लड़के लड़के कोई भी एक दूसरे साथ एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं होते।
0: बिल्कुल सही कहा। और इसी तरह की सोच की एक और संदेश है कि आज के युवा, उन्होंने लिखा है, दोनों महिला और पुरुष अपने करियर और वित्तीय स्थिरता को पहली प्राथमिकता देते हैं। वे शादी से पहले एक मजबूत बैकग्राउंड बनाना चाहते हैं जिसके कारण विवाह में देरी होती है या युवा इससे बचते हैं। और एक और संदेश कहता है कि आधुनिक युवा अपनी जीवन शैली, प्राइवेसी और आज़ादी से समझौता नहीं करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि शादी के बाद पारिवारिक जिम्मेदारियां उनके व्यक्तिगत विकास और सपनों में बाधा बन सकती है। बढ़ते तलाक के मामले और रिश्तों में अस्थिरता, समाज में टूटते हुए परिवारों और कोर्ट कचहरी के मामलों को देखकर युवाओं के मन में विवाह जैसी संस्था के प्रति एक अदृश्य डर बैठ गया है। ये बात सही है कि कभी कभी अगर ये मामला कोर्ट कचहरी तक चला जाता है तो जो बच्चे जिनकी शादी होने वाली होती है तो वो बहुत डर जाते हैं। और अगर घर में ही कुछ, आपके घर में इस तरह का कोई आपने किस्सा देख लिया हो या आपके रिश्तेदारों में, तो और डर बैठ जाता है कि अरे भाई हमें अभी शादी नहीं करनी, अभी हमें थोड़ा वक्त दीजिए।
1: अभी जो आज का जो मुद्दा है ना, थोड़ा सा ज्वलंत मुद्दा, थोड़ा सा हमारा मन भी भारी हो गया बात करते करते, क्यों ना व्यंजन की ओर बढ़ा जाए।
0: हाँ बिल्कुल,
1: शकरकंद के व्यंजन। तो एक हमारे साथी ने लिखा है, शकरकंद को उबालें, स्टीम कर लें, ठंडा होने पर इन्हें मोटे मोटे टुकड़ों में काट लें, भुनी हुई मूंगफली, हरी मिर्च, अदरक को मोटा दरदरा कूट लें। अगर फलाहार बनाना है तो इसमें सेंधा नमक और नींबू, कूटी मूंगफली के मसाले मिलकर चटपटा शकरकंदी तैयार है। और इसे मीठा भी बना सकते हैं ना, तो उसे मीठे को उबाल के उसको छोटे यानी मीठा भी खा सकते हैं। तो उबले शकरकंद को टुकड़ों में काट ले, थोड़ा सा घी में भून ले, कढ़ाई में गुड़ को पिघला ले, उसमें शकरकंद के टुकड़े डालकर उलट पलट कर सुखा ले, मीठे शकरकंदी तैयार है। आप इसे घी में भुनना नहीं चाहते तो ऐसे भी गुड़ में बना सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। और अब एक गीत सुन सकते हैं।

0: हम तो ये कहेंगे अपनी हमारे श्रोताओं से कि जिन परिवार में बच्चे नहीं सुन रहे उन्हें ये गीत सुनाइए, जहाँ पे उन्हें से बताइए कि एक छोटा सा बंगला बनाकर एक नई दुनिया बसाए जो बहुत खूबसूरत है।
1: और अब इजाजत लेने का वक्त आ चुका है। आप सभी को सोनाली पाठक
0: और दीपा माहेश्वरी का
1: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: श्रोताओं नमस्कार। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज आप सुनने वाले हैं उन्हें जिनकी फिल्म हनुमान अंश इन दिनों हमारे मन को छू रही है, खास तौर से इसके कुछ गीत जैसे कि ये
1: हो। मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई,
0: और ये गीत तो हमारे दिल में घर ही कर चुका है।
2: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
0: तो आज हनुमान अंश फिल्म की शूटिंग और सृजन से जुड़ी बातें

0: हमसे साझा करने आए हैं निर्देशक विशाल चतुर्वेदी। आपसे बातचीत कर रही है ममता सिंह। इस बातचीत की पहली कड़ी हमने पिछले सप्ताह सुनी थी और अब सुनते हैं इस बातचीत की दूसरी और अंतिम कड़ी।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में एक ऐसे लेखक निर्देशक की आमद है जो इन दिनों बहुत चर्चा में है। ये है युवा लेखक निर्देशक और आजकल इनके नाम के दीवाने हो रहे हैं लोग, वो हैं जाने माने निर्देशक और लेखक विशाल चतुर्वेदी जी। उनकी फिल्म बहुत हिट हुई है। विशाल जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार, धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए ममता जी।
1: विशाल जी, सबसे पहले तो बधाई लीजिए अपनी फिल्म की हनुमान अंश। हमने भी देखी और समूह के साथ देखी, बहुत अच्छी लगी, तो बहुत बहुत बधाई।
2: धन्यवाद।
1: और अब आपकी दूसरी फिल्मों का जिक्र करते हैं विशाल जी। इसके पहले भी आपने फिल्में बनाई हैं, तो उन फिल्मों के बारे में बताइए। कहाँ से आपकी फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट का चुनाव और लिखने का चुनाव कैसे आपके मन में आता है, क्या क्राइटेरिया होता है?
2: मुझे लगता है कि एक तो मैंने पहले, ये डायरेक्टोरियली मेरी पहली फिल्म है। इसके पहले मैंने फौजी 2, मतलब फॉलो अप सीजन ऑफ फौजी 1, जो शाहरुख खान जी का जो सीरियल था, उसका एक फॉलो अप सीजन मैंने पिछले वर्ष लिखा।
1: द गर्ल ऑन द हाईवे
2: वो हमारे अपना, हम बहुत सारी आईपीज हमने क्रिएट किए उसमें, वो अपनी आईपी, अपना कंटेंट है। द गर्ल ऑन हाईवे प्लस जो है ना हुड़दंग में क्रिएटिव डायरेक्टर था मैं, बहुत अच्छे मित्र हैं जो उसके डायरेक्टर हैं, प्लस जो है ना कर्मा मीडिया एंटरटेनमेंट में कुछ समय तक कंटेंट हेड कर रहा था। तो मुझे लगता है कि मैं जो है ना बहुत समय से वायरल फिल्म्स तो बना रहा था जो कि शॉर्ट थी, 10 मिनट 12 मिनट की फिल्म्स होती थी वो, और एड्स भी थे मेरे, बहुत वायरल हो जाते थे। तो वायरल शॉर्ट से, वायरल सोशल मीडिया, वायरल कंटेंट से थिएट्रिकली वायरल फिल्म बनाने का मुझे एक चस्का भी था कि ऐसी फिल्म बनानी जो सब एक्सेप्ट करें, जो सब देखें, जिसके बारे में कोई निगेटिव ना बोले। अब ये अचीव करने के लिए मुझे लगता है कि थोड़ी सी समझ की आवश्यकता थी, जो मुझे बहुत समय से, जिसको मैं फॉलो कर रहा था कि कैसे मैं ऐसा कंटेंट लिखूं जिसको सब प्यार करें, जिसमें आप महिलाएं तो महिलाएं, बच्चे तो बच्चे, ग्रैंड सन, ग्रैंड फादर, मौसा, फूफा, जो भी आप पॉसिबल है, दोस्त, मित्र, आपको हर व्यक्ति के लिए, हर रोल के लिए आपको एक कुछ मिल जाए फिल्म के अंदर और आप उस फिल्म को सराहें। तो मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं जो कि हो कैसे गई मुझे पता नहीं, क्योंकि आज के सोशल मीडिया के जमाने में कुछ भी, कितना भी अच्छा आप कर लो, लेकिन आपको निगेटिव करने वाले कोई ना कोई मिल ही जाते हैं।
1: बिल्कुल।
2: आप समझिए, सोचिए, आपके 9.7 की रेटिंग है, ऑलमोस्ट 10 ही हो गया ऑन बुक माई शो, 1.5 लाख से ऊपर रिव्यूज हैं उस पर, आप निगेटिव ढूंढते रह जाएंगे, आपको मिलेगा ही नहीं। इंटरनेट, सोशल मीडिया पे आप ढूंढते रह जाएंगे, आपको निगेटिव कमेंट नहीं मिलेगा, कमेंट ही नहीं मिलेगा निगेटिव।
1: बिल्कुल नहीं, नहीं।
2: तो ये कैसे हो गया, ये अपने आप में एक चमत्कार है। ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे लगता था कि लोग लेंगे साइड, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। चूंकि फिल्म में कोई विलन नहीं है, चूंकि फिल्म में किसी को भी एंटरगनाइज नहीं किया, क्योंकि फिल्म में ऐसा कोई मुद्दा समाज का नहीं है जो मैंने, जिसको मैंने केटर नहीं किया। अगर वो पति पत्नी के बीच में वो है तो सबको एड्रेस किया है समाज समस्याओं को। तो मैं इस फिल्म को बोलता हूं, जब मैं फिल्म को पोजीशन कर रहा था तो मैं बोलता हूं इसको कि स्पिरिचुअल सॉल्यूशन टू द सोसाइटल प्रॉब्लम्स। ये मेरे लिए वो फिल्म है। मैं एज अ फिल्म मेकर क्या बोल रहा हूं, एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूं, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूं समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूं, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूं, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूं कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूं,
1: मानवीयता है,
2: मानवीयता को डिस्कस कर रहा हूं, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूं, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूं, कुंडलिनियों को डिस्कस कर रहा हूं। तो ये मैं एज अ डॉक्टर, एज अ स्पिरिचुअल पर्सन और समबडी हुज अ फिल्म मेकर, और वो समाज को कुछ तो दे है ना भाई, आप फिल्म बना के दे क्या रहे हो एंटरटेनमेंट के साथ में। बट किसी भी समय पे फिल्म में से एंटरटेनमेंट जाना नहीं चाहिए, कि आपको फिल्म जो है ना टिटलेट करती रहे, आपको कॉन्स्टेंटली आपको जो है ना वो एक
1: बांध
2: के रखे और आपको मजा भी आता रहे।
1: तो यहाँ एक गाना सुनते हैं
2: जी।
1: बताइए कौन सा गाना सुनवाए?
2: मुझे लगता है कि अमेरी जोरा जबी, वो सुनवाइए।
1: सुनते हैं यही गाना।

0: गाने के बाद वापस की फिल्म पर आते हैं विशाल जी, एक आध्यात्मिक कहानी को फिल्मी कहानी के रूप में ढालना थोड़ा चुनौतीपूर्ण तो होता है, ये तो आपने इसमें हनुमान अंश में तथ्य समय और कहानी को कैसे तीनों में संतुलन बनाया आपने?
1: तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तथ्यात्मक रूप से मैंने रेफरेंसिंग करी अच्छे से, प्रॉपर रेफरेंसिंग करी, तो उसमें बहुत गलत ना चला जाऊं, सिनेमेटिक लिबर्टी तो लेते ही हैं हम सब, लेकिन कहीं गलत ना चला जाऊं, गलत का मतलब कोई ऑफेंड ना हो जाए, उनकी उनके परिवार वाले इन्फेंड ना हो जाए, उनके फॉलोअर्स इन्फेंड ना हो जाए, या एक आप सनातन को मानने वाले हैं, आप अगर हिंदू धर्म में के बिलीवर हैं, आपकी भक्ति पे कोई किसी तरह का आपको ना बुरा लग जाए, तो संवेदनशीलता जब हम, मुझे मेरा कहना मानना ऐसा है कि संवेदनशील आप जब होते हो, आप जिस सब्जेक्ट पे भी काम कर रहे हो, तो आप एक अपने आप ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो सेंस रहता है कि आप कहीं गलत ना कर दो, तो तथ्यात्मक रूप से मैंने कोई उसको जो है ना बैलेंस करके रखा। कालखंड को मैनेज करना, क्योंकि पीरियड फिल्म्स जनरली बहुत टफ मानी जाती हैं, और माना जाता है कि आप उस कालखंड को करोगे, क्रिएट करोगे तो बहुत महंगा होगा, जबकि मैंने उसको उल्टा सिंप्लीफाई कर दिया। मैंने अपने कॉस्ट्यूम डिजाइनर को बोला कि 4 कलर्स के कॉस्ट्यूम्स होने चाहिए, 5वां नहीं होगा,
0: जी जी जी,
1: और थान खरीदो और उनको कलर करो, तो पगड़ियां बनेंगी या धोती बनेगी या कुछ भी बनेगा, वो सेम कलर, 4 कलर के अंदर 5वां कलर नहीं होगा कॉस्ट्यूम्स में। सिमिलरली ऑन द वॉल्स, जो भी वॉल्स हैं, एक तो मैं सेलेक्ट ही ऐसी जगह करूंगा जहां पे किसी तरह की मॉडर्निटी ना हो, तो उसको बचना वहां से, लेकिन जो हमें पेंट करना है, पेंट करने के लिए भी लगभग 4 कलर है, उनका पैलेट है एज एन वॉल का, जिसको प्रोडक्शन डिजाइन बोलते हैं, और कॉस्ट्यूम डिजाइन जिसको बोलते हैं, तो कॉस्ट्यूम के कलर्स में और इसके कलर्स में इनको 4-4 कर दिया, प्लस मैंने पूरी फिल्म को 9 भाग में बांट दिया,
0: अच्छा,
1: लगभग 9 चैप्टर्स थे, उनको बांट दिया, और ये करने से हुआ ये कि हम कहीं ना कहीं वो जिन गलियों में घूम रहे थे, जिन वॉल्स को हम देख रहे थे, जिसको जो हमें कलर्स पता था, सबको क्लैरिटी थी कि यार ये कलर नहीं हो सकता, कोई कलर हो ही नहीं सकता मॉडर्न है, तो पेंट करो, रीपेंट करो उसको, मतलब जब आप उनको वापस करोगे तो रीपेंट कर दो, इफ दे आर ओके विद द सेम पेंट इट्स ओके। तो ऐसे करते करते करते मिट्टी के बने हुए मकान, पुरानी जो वॉल्स, पुराने कोतवाली, पुरानी जगह, उन सबको हमने टारगेट किया, फोकस किया, और मिलते भी गए हमको, तो ढूंढते ढूंढते हमको मिलते भी गए, तो ऐसे करके मैंने पीरियड अप्रोप्रिएट किया। और तीसरा सवाल था आपका
0: कि कालखंड और इसको आध्यात्मिक व्यक्तित्व की कहानी को फिल्मी कहानी के रूप में ढालना
1: कैसे, हाँ, तो बहुत चुनौतीपूर्ण नहीं था, क्योंकि मैं खुद भी एक स्पिरिचुअलिटी की जर्नी पे हूँ बहुत समय से, पिछले 20 साल से, मैं उसका श्रेय पूरी तरह मैं अपनी माताजी को देता हूँ, मुझे कंसिस्टेंटली जो है ना वो पुश करती रहती हैं और कुछ कुछ बताती रहती हैं कि ये सुन लो, ये हो गया, वो गया, ये किताब पढ़ लेना, भले मैं पढ़ पाऊं ना पढ़ पाऊं, उनकी बात को मना नहीं करता, मैं कहता हाँ मैं कर लेता हूँ, और कई बार वो बोरिंग भी होता है जो बोलती हैं, कह रही नहीं ये सुन लो वो सुन लो, अब मैंने जिस जो कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में क्लियर हो गया मैं उनको ही फॉलो करता हूँ, तो मैं नई नई चीजों में जंप नहीं करता, उनको बहुत इंटरेस्ट दिन भर यही करती है, तो कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअलिटी 20 साल से मैं जो फॉलो करते आया, बिकॉज ऑफ मदर, आई कुड एक्चुअली टॉक अबाउट

0: द सब्जेक्ट मैटर एंड द कोर प्रिंसिपल्स, कि किसी का कुंडलिनी जागरण हुआ होगा, अगर सिद्धियां आई तो कुंडली जागरण हुआ होगा, कुंडली जागरण के बिना तो सिद्धियां नहीं आएंगी, तो सिद्धियां कहां से आई होंगी, तो उसके लिए कॉन्सेप्चुअली आपको यू हैव टू डीप डाइव, यू हैव टू फिगर आउट कि हुआ क्या होगा। तो नाथ संप्रदाय के जो साधु मिलते हैं, जहां पर सांसा हाले हंसा चाले सॉन्ग है, जहां पे वो इट ऑल टॉक्स अबाउट कि आपके भीतर जो है ना, भीतर बड़ा उजाला भासे, एक मणिधर आगे, दीज लाइन्स जो है वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स येट वेरी सिंपल, कि वो जो मूलाधार में जो मणि चक्र बोलते हैं, जिसको मणि बोलते हैं, कि कुंडलिनी का जो मणि है, तो भीतर बड़ा, और जो अंधेरे में जो ताला खोले, वो बिना चाबी के अंधेरे में ताला खोले, अंधेरा ही है ना, आप जब आंख बंद करोगे तो अंधेरा है। तो इस तरह के कॉन्सेप्चुअली चीजों को इंक्लूड करने के लिए कहीं ना कहीं बहुत समझ की आवश्यकता थी, वो मुझे मेरी अपनी माताजी की वजह से बहुत मिली। प्लस मुझे एक आई फाउंड वन ऑफ द बुक कॉल्ड सारस्वत कुंडलिनी जागरण एक्सीडेंटली बाय समबडी आई मेट, ही रेफर्ड दैट बुक समहाउ। मैं एक वंदे भारत ट्रेन में बैठा था, 6 घंटे का समय था, मेरे पे आईपैड पे वो बुक थी, मैंने उसको खोल के पढ़ना शुरू किया, उसके 58वें पेज पे मुझे सासा हाले हंसा चाले मिल गया, जो कुंडलिनी जागरण के बारे में गुरु गोरक्षनाथ की 11वीं शताब्दी की लिखी हुई कपलेट से, और वो इतनी सिंप्लीफाइड और उतनी गूढ़ और सिंप्लीफाइड, येट सिंप्लीफाइड। सो आई लव थिंग्स विच आर वेरी सिंप्लीफाइड, यू विल लव टू हियर देम इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड गूढ़ इन्फॉर्मेशन सिंपल वर्ड्स में मिले, पॉकेटेड इन्फॉर्मेशन को बोलते हैं, बट अंडरस्टैंडेबल इफ यू विश टू गो इन टू, आप डीप डाइव करोगे, अगर आप मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान आप डीप डाइव करोगे तो आपको उसके अंदर वो मिलेगा जो आप शायद जिंदगी में ना खोज पाओ,
1: बिल्कुल
0: उतनी क्लैरिटी ना मिले। तो मेरा ये जिम्मेदारी है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ स्पिरिचुअल पर्सन, दैट आई प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, कि अगर आप उसमें डीप डाइव करना चाहते हो तो आप कर लो फिर,
1: बिल्कुल
0: आपके पास में ये रास्ता है, सुगम रास्ता है, इसको आप समझ लीजिए। जो मैंने समझाया मैंने आपको समझा दिया, हो सकता है कि मैंने 5% ही समझाओ, लेकिन एटलीस्ट 5% 4% समझेंगे आप, फिर आपकी जर्नी आप देखेंगे आप कैसे कहाँ जाना है।
1: तो यहाँ पर ये आध्यात्मिकता से जोड़ने के लिए आपकी माँ का बहुत बड़ा रोल है
0: जी।
1: और माँ पिता से हम बहुत कुछ सीखते हैं, कभी डांट खाते हैं, मार खाते हैं, तो ऐसी कोई शरारत वाली घटना भी बताइए, अच्छी अच्छी बातें तो बताए कि डांट पड़ी हो वो भी बताइए।
0: बहुत मैं अपने भाई की वजह से बहुत मार खाता था, मेरे भाई मुझे जो है ना ट्रैप करा देता था कुछ कुछ चीजों में, कभी बचपन में भाई ने मुझे बहुत जो है ना इस तरह की सिचुएशन में फंसाया है, तो मार तो मैं खाता था लेकिन भाई की वजह से खाता था, और वो तो फिर माता जी के हाथ में जो आ जाए, फिर वो पाइप होता था जिससे बेलन पाइप चिमचा, तो कह ये तो आप सब देखते हो, लेकिन जो प्लास्टिक का पाइप होता है ना जिसमें पानी भरते हैं वो बड़ा खतरनाक होता था, वो चिपकता भी बहुत था वो, तो वो तो मैंने बड़े काफी उम्र तक खाया है वो। अच्छा। मुझे याद नहीं कौन से, मुझे लगता है कि मैं 17-18 साल तक की उम्र तक भी खाया है।
1: तो लेकिन क्या बात होती थी, घटना क्या रहती थी?
0: शी शी विल जस्ट गेट फ्यूरियस एंड देन शी विल बीट एंड देन नाउ यू डोंट हैव एनी ऑप्शन बिकॉज यू ये तो जॉब है
1: तो कौन सी गलती आप करते थे जिससे मार पड़ती थी?
0: मैं एक्चुअली कोई सच वो नहीं थी, इन्फॉर्मेशन कैसी कैसी पास होती है, इंटरप्रिटेशन होता है ना, कैसे आप इंटरप्रेट कर रहे हो, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ फिल्म और फॉर अ स्टोरी के आप जो भी इंटरप्रिटेशन की पॉसिबिलिटीज होती हैं उसको आप यू वर्क इट आउट। एंड आई टेल यू वन ऑफ द सीन जहां पे फिल्म में जो है ना वो महाराज जी को नीचे उतार देते हैं और गोपाल को और महाराज जी को उतार देते हैं, आपको जो हमारी ओरिजिनल स्क्रिप्ट थी उसमें गोपाल था ही नहीं उस सीन के अंदर। किसी ने मुझे बोला कि आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि महाराज जी अरोगेंट हैं, उन्होंने अपने गुस्से में आके उन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। मैंने कहा यार बात तो सही बोल रहे हो तुम, सोचता हूं मैं इस बारे में। तो मैंने शूट पे वहीं पे जाके वो उस पूरे के पूरे उसमें इवेंट में उसको इंक्लूड किया, तो अगर आप देखें गोपाल के पास बहुत डायलॉग्स नहीं है
1: जी।
0: पूरे सीक्वेंस में गोपाल डायलॉग्स नहीं बोलता क्योंकि डायलॉग लिखे ही नहीं गए थे वो, चूंकि गोपाल को धक्का मार के गिरा दिया इसलिए महाराज जी को गुस्सा आती है, और वो फिर गोपाल से ही हर बात पे, अगर आप याद हो आपको वो जब रोने लगता है वो कहते हैं यहाँ पे स्टेशन बनेगा और यहाँ पे कभी साधु संत को नहीं उतारेंगे, तो ही लुक्स एट हिम एंड ही स्टार्ट्स क्राइंग बिकॉज ही नोज दैट ही इज ये मेरे लिए कर रहे हैं। तो मैं उनका साथी, मुझे भाई भी बोलते हैं, मतलब मुझसे भाई भी बोलते हैं, और मेरे लिए कर रहे हैं और समाज के लिए कर रहे हैं। दैट्स हाउ दैट सीन वर्क्स। तो इंटरप्रिटेशन है, अगर आपने इंटरप्रिटेशन में ध्यान नहीं दिया होता मैंने तो शायद वो सीन इतना अच्छा वर्क नहीं करता, हो सकता है कोई भी ना मुझसे क्वेश्चन करता,
1: बिल्कुल।
0: लेकिन फिर भी मैं उस बात पे गौर किया और उसके हिसाब से थोड़ा सा जो भी आमूलचूल परिवर्तन करते हुए फिल्म का इंटरप्रिटेशन चेंज किया, दैट वर्क फॉर पीपल। किसी ने मुझे कल ही बोला कि द वे ही लुक्स एट महाराज जी एंड स्टार्ट्स क्राइंग, वो मेरे लिए सीन में सबसे ज्यादा वर्क किया।
1: तो यहाँ माँ का ही जिक्र चल रहा है तो मुझे लगता है कि माँ के नाम एक गाना होना चाहिए, माता के नाम। कौन सा गाना सुनाना चाहेंगे?
0: माँ के नाम पे

0: बहुत सारी बातें माँ पिता के बारे में संस्कार होते हैं, लेकिन ये जो मेडिकल की पढ़ाई आप कर रहे थे, MBBS कर रहे थे, बाकायदा एक डॉक्टर बन चुके थे, फिर अचानक फिल्मों की ओर झुकाव कैसे हुआ? मतलब वो बीज कैसे आया? आप इतनी बड़ी मतलब एक आपको नौकरी मिल चुकी है और फिल्मों की ओर जाना कितना बड़ा रिस्क था, तो कैसे आपने चयन किया ये?
1: आई थिंक बहुत टफ था। मुझे लगता है कि मैं आ तो गया मुंबई और आया क्यों, मैंने बता दिया कि मैंने लखनऊ में ऐसा माहौल में चला गया मैं कि मुझे आर्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ गया, म्यूजिक में इंटरेस्ट आ गया, डिफरेंट आर्ट फॉर्म में पोएट्री लिखने शुरू कर दी मैंने। तो वो कॉलेज में भी करता रहा, परस्यू करता रहा करता रहा, फिर एक समय ऐसा आया कि मुझे मेडिसिन पसंद आ गई। अब वो दोनों पसंद है, अब दोनों के बीच में बैलेंस बनाना है, तो बैलेंस बना नहीं कुछ सालों। मैंने जो है ना यहाँ पे नौकरियां भी की मुंबई में और उसके बाद में कुछ समय मैंने अपनी क्लिनिक भी चलाई और बाय द एंड ऑफ इट मुझे समझ में ये आया कि एक समय ऐसा हो गया कि मुझे लग रहा था कि इट इज टू एग्जॉस्टिंग टू, ये दोनों अलग अलग दुनिया है। मैं इस दुनिया में जाता हूं फिर इस दुनिया में आता हूं। और मेडिसिन जो है ना, चूंकि आई एम लिटिल इमोशनल पर्सन, मैं अपना मोबाइल फोन कभी स्विच ऑफ नहीं करता था, यानी साइलेंट भी नहीं करता था। पता नहीं किस पेशेंट का किस हालत में कॉल आ जाए, किस व्यक्ति का जान जो है ना जोखिम में हो और वो बोल रहे हो। लेकिन लोग कॉल ऐसे भी करते थे, सर 2 बजे के, सर जो है थोड़ा पेट में गैस बन गया, हॉस्पिटलाइज्ड है, पेट में गैस बन गया। तो फिर मुझे एकदम समझ में आया कि ये दोनों मेरे लिए पॉसिबल है नहीं। और मैंने अपनी पीक जो प्रैक्टिस थी उस पे चलते हुए मैंने अचानक से एक दिन क्लिनिक बंद कर दिया और तब से मैं वो सारे जो पेशेंट्स हैं उन सबके मैं फोन पे इलाज कर रहा हूँ कई सालों से। तो ऐसा नहीं होने उनको छोड़ दिया, सागर में नैया डाल दी, उनको मजार में नहीं छोड़ा मैंने। तो खैर, विद देन फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स 2011 में मैंने अपनी क्लिनिक बंद की और उसके बाद से मैंने उसी समय मैंने कैमरा खरीदा और सेम समय मैंने म्यूजिक भी

0: म्यूजिक और मेडिसिन दोनों छोड़ दी मैंने. मैंने एक फिल्म साइन की थी और काफी बड़े प्रोड्यूसर थे उनके, आज भी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, उनके साथ मैंने काम भी किया बाद में आगे जाके. तो उनकी एक फिल्म थी जिसके सारे गाने मैं कर रहा था. सारे गाने सिलेक्ट हो जाते हैं, 2 साल तक उस पर काम चलता रहता है. फिर एक समय ऐसा आता है कि वो गाने शायद वो डायरेक्टर के लिए वर्क नहीं कर रहे थे, या वो डिसाइडेड कि मुझे लगता है कि मैं म्यूजिक डायरेक्टर अच्छा हूं नहीं, मैं म्यूजिक कंपोजर शायद सिंगर सॉन्ग राइटर ज्यादा अच्छा हूं. मैं अपने लिए अच्छा गाने म्यूजिक बनाता हूं, गाने बनाता हूं, लेकिन किसी सिचुएशन के लिए मैं शायद बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा, मैं उस बात को क्वेश्चन करने लगा. और अल्टीमेटली मुझे डायरेक्ट करना था, लिखना था और डायरेक्ट करना था, मेरा वो अल्टीमेट उद्देश्य था. तो मैंने कहा कि जब वो ही अल्टीमेट है तो मैं क्यों ना उस पर ही लगूं. 2011 से 26 तक, 15 साल तक, 14 साल तक, वो 25 तक मैं कहूंगा, वो यात्रा पूरी मेरी चर्निंग चली है, टू अंडरस्टैंड डायरेक्शन, टू राइटिंग, ये वो सब कुछ जो भी है. तो पहली स्क्रिप्ट मैंने 6 साल में लिखी, 6 साल तक एक ही स्क्रिप्ट थी मेरे पास में, दूसरी स्क्रिप्ट मेरे 1.5 साल में, अनदर स्क्रिप्ट फिर साल में, फिर हर 2 महीने पे एक स्क्रिप्ट लिखने लगा मैं. तो ऐसा मेरे पास कुछ 53 कॉन्सेप्ट, 54 स्क्रिप्ट प्लस कॉन्सेप्ट हैं जिन पे मैं अलग अलग समय पे काम करता रहा हूं या करना चाहता हूं भविष्य में.
1: और ये स्क्रिप्ट 15 दिन में लिखी, तो अगली स्क्रिप्ट 10 दिन में.
0: नहीं नहीं, ऐसा
1: डिजिटल माध्यम से,
0: अगर डिजिटल माध्यम से निकल गए तो कुछ भी हो सकता है, वो तो डाउनलोड है.
1: यहाँ पर गाना सुनवाते हैं.

0: गाने के बाद विशाल जी हमारे श्रोताओं को बताइए कि एमबीबीएस आपने बचपन के उस संसार के बारे में बताया जहां माँ की मार थी, डांट थी। जब एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे आप, तो उस समय टीचर्स की, प्रोफेसर्स की डांट भी तो रही होगी, उनके बारे में भी बताइए, कोई दिलचस्प घटना बताइए।
1: तो मेडिकल कॉलेज में जो है ना, कुछ होता नहीं, इज्जत नहीं होती है जूनियर की, है ना। अच्छा। मतलब ऐसा होता है कि वो कॉलेज के अंदर एकदम बहुत ही दयनीय स्थिति होती है पहले साल में। और मुझे क्या था कि मुझे, अब वो नया नया कॉलेज में हूँ लेकिन जाना तो बम्बई है
0: जी।
1: तो मैं दोस्तों के साथ में, दो तीन दोस्त मिलके बम्बई चले गए, हमने 15 दिन का बंक मार दिया। अब मेरा दूसरा दोस्त था, वो भी एमबीबीएस ही कर रहा था, बहुत अच्छा गिटारिस्ट है, निरंजन पांडे, उसका इंटरेस्ट पढ़ाई लिखाई में था नहीं, बिल्कुल ही नहीं था, और वो बहुत ही होमसिक भी था, ये सब चीजें थी। हम तीनों दो लोग और मेरा एक लखनऊ का दोस्त, हम सब लोग बम्बई आए कि हमारे पास जो गाने हैं, सॉन्ग्स हैं, वो हम पिच करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। करके 15-17 दिन मैंने वहां पे करके वापस गया अपने कॉलेज। तो वहां पे बंक मारना, अच्छा है, तो वहां पे मेरे बहुत, अभी तो बहुत बहुत अजीज टीचर हैं वो,

0: रामजी पवार उनका नाम है, डॉक्टर रामजी पवार, एनाटॉमी पढ़ाते थे। वो ऐसा टॉल डार्क हैंडसम 6 फीट और मतलब क्या पर्सनालिटी थी, मतलब हमारे कॉलेज के अमिताभ बच्चन थे वो, सब फैसिनेटेड रहते थे उनसे। लेकिन वो बहुत फ्यूर, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते थे।
1: अच्छा।
0: और वो पकड़ लिया तो वो कुछ भी करेंगे। तो मेरे थोड़े से बाल लंबे हो गए, थोड़े लंबे बालों, मुझे लंबे बाल करने का शौक भी था, मुंबई से आया लंबे बाल के साथ में। और गलती से मैं जो है ना आगे वाली सीट पे बैठ गया।
1: अच्छा।
0: अब उन्होंने पहले से नोटिस कर रखा था कि ये लड़का गायब है या बहुत दिन से दिखाई नहीं दिया है। तो उन्होंने बोला, किसी को सवाल किया कल क्या एनाटॉमी का कुछ तो सवाल था, जिसका जवाब मैंने दे नहीं पाया। और वो पता नहीं, वो आगे बैठने की वजह से उन्होंने पकड़ लिया और उन्होंने मेरा सर पकड़ा, ऐसा बाल पकड़ और बाल पकड़ के पूरा ऐसा, और कई बार उन्होंने 7-10 मिनट का लेक्चर बाल पकड़ के ऐसे ऐसे हिलाते हिलाते किया। तो जो जो इंसल्ट थी, जो जिसके बोलते हैं हाँ, जो अनबेरा की, और क्या ये क्या कर दिया मैंने, और ये आगे क्यों बैठना था। तो ये सारी चीजें जब हुई तो कहीं ना कहीं उसके बाद से मेरा एक इंटरेस्ट वापस पढ़ाई, क्योंकि पढ़ाई की तरफ ध्यान देने, क्योंकि इंसल्ट हो गई है। अभी तक तो आप म्यूजिशियन हो, पोइट हो, everyone is talking about you because you somehow, मैं ऐसा था कि मैं जब पहुंचा था अपने कॉलेज, तो पहुंचने से पहले लोगों को पता था कि there's this guy जो कि इसका बैंड है लखनऊ में और बहुत अच्छा गाता है, all of that। तो मैं ऐसा छोटे से स्टार की तरह एंट्री हुई थी कॉलेज में। और वो जो धुलाई हुई मेरी, उसकी वजह से मैंने थोड़ा पढ़ाई की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया, नहीं तो पहले साल में फेल हो जाता मैं।
1: यहाँ पर पढ़ाई और धुलाई दोनों की बात हो गई, बैंड का जिक्र किया लखनऊ में, कौन सा बैंड था, म्यूजिक बैंड?
0: म्यूजिक बैंड था, अपने मेरे अपने कंपोज सॉन्ग्स थे। मेरे एक मित्र हैं शिखर श्रीवास्तव, अभी वो गल्फ में चले गए, वो म्यूजिक टीचर हैं। और भी दो दोस्त थे ऐसे, तो हम मिलके जो है ना वी हैड अ बैंड, तो वहां पे जाके लाइव परफॉर्मेंसेस करते थे ओरिजिनल सॉन्ग्स के। सो वी वर इन अ वे लिटिल पॉपुलर ऑल्सो, बट देन मूव टू गोरखपुर। तो गोरखपुर में तो क्या ही होता है, मतलब कॉलेज कल्चरल साल में एक बार होते हैं, उन 3 दिन में अपन स्टार होते हैं, उसके बाद फिर वापस वही जो है जैसे बोलते ना कि रेगुलर डेज ऑफ लाइफ। तो वो 5-6 साल मैंने बहुत म्यूजिक को मिस किया कि मैं सीख नहीं पा रहा था और ये सब कुछ था। लेकिन फिर आके मुंबई आके भी मैंने एक बार इन बिटवीन 2017 एंड 2020 आई डिड इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स, शॉट देम वेल, ऑल ऑफ दैट। तो वो एक इंटरेस्ट जो था उसको मैंने पूरा कर लिया।
1: अगर याद है वो म्यूजिक बैंड का कुछ,
0: आई कैन सिंग अ सॉन्ग, या आई कैन सिंग कपल ऑफ लाइंस। एक हवा का हूं झोंका, उड़ता ही फिर रहा हूं, इस गली उस डगर को घूमता फिर रहा हूं, रास्ते ही जिंदगी, क्या है गम क्या है खुशी, कौन जाने यहाँ।
1: क्या बात,
0: दिस वॉज वन सॉन्ग,
1: बहुत
0: उसकी उसकी एक दो लाइनें बहुत सुंदर लाइनें है। मैंने लद्दाख में पूरा फिल्म आया था उसको।
1: यहाँ जिक्र कविता का भी चला ना, और यादों के गलियारों में इस समय सैर कर रहे हैं
0: जी।
1: तो कोई कविता याद है वो जो उन दिनों में लिखी है, कोई खास कविता?
0: एक खास कविता है जो मैं अभी मैंने रिसेंटली एक जयपुरिया स्कूल है लखनऊ में, वहाँ पे बच्चों के सामने भी पढ़ी मैंने, क्योंकि लगभग मेरी उस समय की कविता है। अभी मैं कविताएं लिखता हूँ पर मैं वो थोड़ी मुझे लगता है कि सिंप्लीफाइड जीवन क्वेश्चन अपने आप से हरदम होता है ना कि ये जीवन है किस लिए, क्यों जी रहे जीवन, अल्टीमेटली क्यों जी रहे हैं। उसको क्वेश्चन करते हुए मैंने कुछ लाइनें लिखी थी कि मैं कुछ नहीं बस मैं एक पात हूं, मैं कुछ नहीं बस मैं एक पात हूं, हवा जो तेज चल गई तो बीती हुई बात हूं।
1: क्या बात है,
0: इतना ट्रिवियल है ह्यूमन लाइफ। मैं कुछ नहीं बस मैं एक पात हूं, हवा जो तेज चल गई तो बीती हुई बात हूं, जमी से हूं उत्पन्न में, जमी में जाके घुल गया।
1: क्या बात है, वाह।
0: जमी से हूं उत्पन्न में, जमी में जाके घुल गया, देख तेरा लाल माँ तुझे सांझ ढले मिल गया।
1: वाह वाह वाह,
0: ईश्वर माँ है। और डाल से बिछड़ने का शिकवा मुझको कुछ नहीं, डाल से बिछड़ने का शिकवा मुझको कुछ नहीं, हूं धन्य मेरी खाद से जो एक फूल खिल गया।
1: क्या बात है, वाह। तो आपके व्यक्तित्व के इतने सारे पहलू उजागर हो रहे हैं तो अब यहाँ पर एक गाना सुनवाते हैं, बताइए कौन सा गाना सुनवाए?
0: गाना आप सुनाइए रहमान साहब का वंदे मातरम, दैट्स माय वन ऑफ द फेवरेट ट्रैक्स।
1: सुनते हैं ये गाना।

0: अब गाने के बाद विशाल जी, चाय वाली एक कविता
1: जी
0: बड़ी मशहूर हुई है आपकी, तो याद कीजिए और सुनाइए हमारे श्रोताओं को।
1: जी तो मेरे लिए एक चैलेंज था कि मैं क्या जो सिनेमा में मैंने सीखा है, ऐसे स्टोरी टेलिंग में जो सीखा है, क्या मैं किसी उसको किसी कविता पे अप्लाई कर सकता हूं।
0: जी
1: तो चाय को एक सेंट्रल कैरेक्टर बना के, यानी चाय को एक हीरो बना के मैंने एक कविता लिखी।
0: जी
1: इसके अंदर वो सब कुछ है, इसके अंदर विलेन भी है, इसके अंदर महिमा मंडन भी है, इलेवेशन सीन भी है, जो होते हैं ना फिल्मों के जो
0: जी
1: तीन
0: जी
1: थ्री
0: बिल्कुल
1: स्ट्रक्चर होते हैं,
0: बिल्कुल।
1: तीन स्ट्रक्चर भी
0: हाँ
1: हैं,
0: हाँ
1: फिर रेजोल्यूशन भी है।
0: तो क्या तरन्नुम में भी गाते हैं
1: नहीं ऐसे नहीं, ऐसे
0: आप?
1: आप ऐसे
0: हाँ
1: सुनिए।
0: ठीक है सुनाइए।
1: चाय को मना कौन करता है भाई,
0: चाय को मना
1: चाय
0: कौन
1: को
0: करता है भाई?
1: मना कौन करता है भाई, कत्थई सी रसीली सी नशीली सी, अदरक सी तीखी गुड़ सी मीठी, इलायची सी मोहक, रोचक विमोचक करंट मारती, जगाती हंसाती मूड बनाती, मिलने के बहाने सुझाती,
0: क्या बात है, वाह
1: मुस्कुराहटें लाती, कड़क रसीली नशीली चाय,
0: क्या बात है,
1: होश खोल देती हाय, इसे मना कौन करता है भाई।
0: वाह वाह, बहुत बढ़िया।
1: कत्थई सी रसीली सी नशीली सी, अदरक सी तीखी गुड़ सी मीठी, इलायची सी मोहक, रोचक विमोचक करंट मारती, जगाती हंसाती मूड बनाती, बातें कराती, मिलने के बहाने सुझाती, मुस्कुराहटें लाती,
0: क्या बात,
1: कड़क रसीली नशीली चाय, होश खोल देती है, इसे मना कौन करता है भाई। लेखक रसपान कर उपन्यास लिख दें, कवि मीठी जुबान लिख दें, फिल्मकार कहानी कर दें, पात्र सब मुंह जबानी कह दें,
0: क्या बात है,
1: पात्र सब मुंह
0: मुंह
1: जबानी
0: जबानी
1: के
0: कहते हैं।
1: जुबानी कह दें, टपरी पे की कटिंग देती है गुहार, सुगंध छोड़ती है ले आती है बाहर, और कड़वी है कॉफी, यहां से विलेन की एंट्री,
0: कड़वी है कॉफी।
1: और कड़वी है कॉफी और चाय की है

0: अपनी ही मिठास।
1: क्या बात है।
0: और कॉफी बोले अंग्रेजी, पर अपनी चाय करती है हिंदी में बात।
1: वाह वाह वाह,
0: थकान मिटा देती है, इसे मना कौन करता है भाई। अब ये हो गया, विलन खड़ा कर दिया, अब रेजोल्यूशन है भाई। कॉफी से कोई तकलीफ नहीं है,
1: क्या बात है
0: भाई कॉफी से कोई तकलीफ नहीं है। उसकी अपनी शान होगी, कोई ऊंची दुकान होगी, होंगे एयर कंडीशन में मोका अमेरिकाने की चुस्की के अपने स्वाद। तुम्हारी कॉफी रहे आबाद,
1: क्या बात है वाह,
0: पर अपनी चाय जिंदाबाद जिंदाबाद।
1: वाह वाह।
0: और फिर कांच के कप में मचलती चली आए, और कैसी चमक छोड़ती है हाय, इसे मना कौन करता है भाई।
1: वाह,
0: इसे मना कौन करता है भाई। कड़क रसीली नशीली चाय, कड़क रसीली नशीली चाय, कड़क।
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो इतने सारे हुनर आपके सामने आ रहे हैं आज की इस बातचीत में।
0: जी
1: विशाल जी, एक बार फिर आपकी फिल्म की ओर चलते हैं, हनुमान अंश की ओर। इसमें जो कलाकार हैं लक्ष्मी नारायण शर्मा, तो ये पात्र कैसे मिले, मतलब कैसे आपने चयन किया कलाकारों का? एक बच्चा है, फिर बड़ा बड़े कलाकार का, सत्य
0: शोभना
1: सत्य कहाँ से मिलेगी?
0: तो मैं एक ही करके बताता हूँ। तो सबसे पहले जिनको आप कलाकार को देख रहे हैं, जिनका नाम है चंदन के आनंद, जिन्होंने डॉक्टर भोसले का रोल प्ले किया है,
1: जी जी,
0: वो मेरे मित्र थे, एक ही बिल्डिंग में हम रहते थे। पर बहुत समय के बाद में मुझे एक कैरेक्टर चाहिए था, नॉट भोसलेस, मुझे चाहिए था नासिर अली के रोल के लिए।
1: जी,
0: तो मैंने उनको नासिर अली के रोल के लिए चयनित किया था। एक राजीव मिश्रा जी हैं, उनको मैंने सुखी राम के लिए चूज किया था। और हुआ सेट पे ऐसा कि चूंकि मुझे डॉक्टर भोसले, जिनको मैं कास्ट करना चाह रहा था, कोई बड़े एक्टर थे
1: जी,
0: वो, जब उनका नहीं हो पाया आखिरी तक, तो मैंने फिर इनको नासिर अली की जगह डॉक्टर भोसले प्रपोज किया, और जिन जो सुखी राम प्ले कर रहे थे उनको नासिर अली प्रपोज किया। और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये हो जाएगा, और वो ऐसे फिट हुए दोनों के दोनों। आई हैड एन आइडिया कि ये होगा, और मेरे दिमाग में था कि अगर ये नहीं होगा तो मैं ये करूंगा। तो चयन तो किसी और कैरेक्टर के लिए, पांच कैरेक्टर्स उस दो सीन के अंदर थे जिनको अपग्रेड किया मैंने। तो जो नीचे वाले रोल पे था ऊपर गया, उसके ऊपर वाले ऊपर पे गया, ऐसे ऐसे करके सब सबका ऐसा हो गया। देन जो बच्चा है विहान शेडगे, जिसने लक्ष्मी नारायण जी का रोल प्ले किया है, बचपन का लक्ष्मी नारायण का रोल प्ले किया है, उसके साथ मैंने एक एड किया था पिछले साल, उसके पहले साल। और वो और जो पार्वती जिन्होंने प्ले किया है नेहा परांजपे, उन दोनों दोनों मराठी है। और वो मैंने
1: नेहा परांजपे विविध भारती में कैजुअल अनाउंसर थी,
0: रही है। अच्छा, क्या बात, क्या बात है,
1: अभी भी कैजुअल
0: आकाशवाणी करती है।
1: जी जी,
0: तो नेहा और इन दोनों ने, मैंने एक मराठी एड किया था, और वो इतना पॉपुलर हुआ एड, वो मैं मराठी मैं बोल नहीं सकता, समझता हूँ, मैंने वो मराठी एड था, और वो इतना पॉपुलर हुआ। ये दोनों ने इतना अच्छा उसमें एक्टिंग की थी, और इतने सिंगल टेक एक्टर्स थे लोग, दोनों के दोनों, एक पुणे से आया था और एक यहां से आया था, बट इट्स सच अ ग्रेट कॉम्बिनेशन दैट आई ऑलवेज थॉट कि मैं इनको किसी दिन कास्ट करूंगा। तो ये दो कैरेक्टर वहां से आए। फिर जिन्होंने राम बेटी शर्मा जी का, मतलब महाराज जी की पत्नी का रोल प्ले किया है, वो उनको मैंने चयनित किया, उनके ऑडिशंस में वो चयनित हुई। जो चोर का जिसने रोल किया है अभिषेक जो है ना, वो चित्रकूट से ही कास्ट किया उसको मैंने, उसने पहली बार कैमरा फेस किया है। ज्यादातर जो कोतवाली वाले सीन के सारे एक्टर्स जो है ना, वो वहीं से लोकली चयनित किए गए हैं। जो ट्रेन सिक्वेंस में जो इंग्लिश एक्टर्स हैं वो सारे रशियंस हैं, और उसमें तीन जो अंग्रेज बैठे हैं वो तीनों के तीनों एक एल्बिनो हैं, और वहीं के लोकल हलवाई वलवाई पकड़ के लेके आके हमने उनको उनसे एक्टिंग कराई है, जो पता नहीं चलता है आपको। तो बहुत कास्टिंग के लेवल पे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं। शोभना सत्य जो है ना, वो मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर थे, और मेरे लीड कास्ट की तबीयत खराब हो जाती है, और वो नीम करोली बाबा जैसे महाराज जैसे दिखता था वो। मैं जब वो पहले दिन मेरे ऑफिस आया था, तो मैं एग्जैक्टली सीधे इमीडिएटली मैंने बोला, अरे तो महाराज जी हैं, और मैं उस पर गुस्सा था कि वो तीन दिन बाद लेट आया था वो। सो आई वॉज एंग्री एट हिम, यार तुम असिस्टेंट डायरेक्टर हो, तुम तीन दिन लेट आ रहे हो। तो मैं गया, लेकिन भूल गया, मैं तो बोला रही महाराज जी है, बट मेरे लीड एक्टर की तबीयत खराब हो जाती है उन सेट। तो रिप्लेसमेंट के तौर पे मैं इसको टेस्ट करता हूँ मंदाकिनी रिवर पे, तुलसी घाट पे, चित्रकूट के तुलसी घाट पे, जहां पे तुलसी जी ने बहुत बहुत सारी चीजें लिखी भी हैं, उसी घाट पे मैं उसका 5 घंटे तक टेस्ट करता हूँ, और फिर वो सुर पकड़ लेता है। जब वो सुर पकड़ लेता है, तो मेरी एक आदत है, आदत नहीं है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कि मैं एक्टर्स को बहुत ओवर गाइड नहीं करता हूँ, मैं उनको ओवर इन्फॉर्म भी नहीं करता, मैं सिर्फ उनके उनके कैरेक्टर के बारे में बात करता हूँ।
1: अच्छा,
0: मेरी टेक्निक ही है कि मैं सारे एक्टर्स को, चाहे नया हो पुराना हो, उसको उसके कैरेक्टर के बारे में कंसिस्टेंटली बताता रहता हूँ। ह्यूमन माइंड इतना रिसेप्टिव होता है और इतना समझदार है कि जैसे ही वो अपने कैरेक्टर को समझ पाएगा, वो बिहेव करने लगेगा वैसा।
1: बिल्कुल,
0: हम अपने बच्चे के सामने पिता की तरह बिहेव करते हैं, वही हम पत्नी आती है तो मैं दूसरी तरह बिहेव करता हूँ, और मैं माता आती है तो मैं दूसरी तरह बिहेव करता हूँ, दोस्त आता है तो अरे यार करके बात शुरू कर देता हूँ। हम अपने जीवन में जैसे ही हम अपने रोल को समझ पाते हैं, हम इमीडिएटली वैसा बिहेव करना शुरू कर देते हैं। तो मेरा मानना यह है कि इतनी सिंपल प्रोसेस है, मैं किसी भी

0: जितने भी आपने एक्टर्स देख रहे हैं उसमें कुछ लोग बहुत तगड़े एक्टर्स हैं, कुछ लोग बहुत वीक एक्टर्स भी हैं, पर उनका एक ही मेरा तरीका है, मैं सब किसी को कैमरे के सामने डांटता नहीं हूं। अगर मुझे किसी एक्टर से बात करनी है मैं उसको साइड में ले जाऊंगा और फिर से वही बात समझाऊंगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था पहले से। तो इंटरेक्शन विद एक्टर्स, तो यही शोभना के साथ में भी हुआ कि मैंने उसको ओवर इन्फॉर्म नहीं किया। वंस ही कॉट द कैरेक्टर, जब उसने कैरेक्टर पकड़ लिया, डायलॉग्स उसको याद है, हिंदी उसकी अच्छी है, तो मैं क्यों उसको ओवर इंस्ट्रक्ट करूं। और वो फिर बहुत स्मूथ प्रोसेस हो गई कि हमने 22 दिन में रिकॉर्ड टाइम के अंदर हमने 2.5 घंटे की फिल्म शूट करी है
1: जी, हिट हुई। तो अब यहाँ एक गाना होना चाहिए, बताइए कौन सा गाना सुनवाएं।
0: तो मैं चाहूंगा कि आप फिर से हनुमान अंश फिल्म का ही एक गाना प्ले करें जिसका टाइटल है सासा हाले हासा चाले।
1: सुनते हैं ये गाना।

0: विशाल जी, संघर्ष के दिनों में आगे बढ़ने की प्रेरणा आपको कैसे मिलती है? जब आपका संघर्ष चल रहा था उस समय कौन सी प्रेरणा आपको आगे बढ़ा रही थी?
1: आई थिंक वो एक आपकी जो क्या होता है कि कभी भी अपने जीवन को यदि आप किसी बहुत बड़े उद्देश्य के साथ जोड़ लें तो फिर वो सब चलता रहता है। फिल्म मेकिंग मेरे लिए पैसे कमाने का या नाम कमाने का जरिया नहीं है, मेरे लिए इम्पैक्ट सिनेमा, समाज पे इम्पैक्ट होना, समाज पे क्या असर डालेगा, आप कैसे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन की दुनिया है, इन्फॉर्मेशन का एज है, इस एज में इन्फॉर्मेशन ही सबको ड्राइव कर रही है। हम ये पानी के बॉटल से पानी पीना चाहिए हमको, ये बेसिस इन्फॉर्मेशन है और यही ड्राइव कर रहा है, तो गलत है सही है वो एक वो बात की बात है, लेकिन इन्फॉर्मेशन तो इन्फॉर्मेशन के दुनिया में आप इन्फॉर्मेशन को कैसे पॉकेट करो और समाज में एक नई राह पे उनको एक नया इंटरेस्टिंग कोई पर्सपेक्टिव दो, ये ड्राइव करता है मुझे।

0: तो वो इसलिए मुझे कभी कभी हुआ नहीं। और मैं बहुत ही, रघु जी जानते हैं बात, कि मैं बहुत मॉडेस्ट लाइफ जीता हूँ, कोई किसी तरह का व्यसन नहीं है, और पार्टियां वार्टियां नहीं करता हूँ किसी तरह, कोई खर्चा अदरवाइज है नहीं। जो गाड़ी में पेट्रोल पड़ता है वो, खाने पीना और जो किराए हैं, यही मेरे खर्चे हैं। इसके ऊपर किताबें खरीदना और फिल्में देखना, ये दूसरे खर्चे हैं, जो एक्चुअली जिसे बोलते हैं कि जो लग्जरी है। या कभी टेंटिंग वेंटिंग करने के लिए उस तरह, उसमें बहुत मुझे, मेरा मन करता है कि मैं बाहर जाके मतलब टेंटिंग करूं और एकांत में जाके। तो ये मेरे शौक है, जिस वजह से मैंने काफी अपने जीवन को बहुत ही मॉडरेट लाइफ में, मिनिमल और मॉडरेट लाइफ की तरह से जीता हूं। तो बहुत आवश्यकताएं जब नहीं होती हैं तो आप किसी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते और आपका जीवन चलता रहता है। जीवन जब चलता नहीं है, जब उसमें कांस्टेंट स्ट्रगल होती रहती है और आप किल्लत में हैं, इसमें हैं, उसमें, फिर आप उल्टी सीधी संगत में जाते हैं, फिर आप नए नए रास्ते निकालते हैं जो कि जो सही रास्ते नहीं है। तो इनकी वजह से मुझे खास कभी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, और मैं बहुत, वो जो मेरे अंदर है वो बहुत वोकल हूं उसको लेके मैं, और मैं बहुत क्लियरली बोलता हूं। तो मुझे इस परिवेश में रहते हुए भी कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं अनसक्सेसफुल हूं या मुझे सक्सेस पानी है। फिल्म बनानी है, ये एक डेफिनेटली एक बात थी जो कि हरदम कचोटती थी कि यार सब कुछ कर लिया है, फिल्म नहीं बन रही अपनी।
1: जी विशाल जी, रघु का जिक्र आपने किया, रघुविंदर सिंह,
0: जी
1: और फिल्म में इनका नाम भी बाकायदा हम देखते हैं,
0: जी
1: तो इनके बारे में बताइए, इनकी फिल्म में क्या भूमिका है और क्या योगदान रहा है आपकी इस फिल्म मेकिंग में?
0: मुझे लगता है कि जीवन में मतलब काफी मेरे मित्रों के नाम फिल्में हैं, और जिसमें से एक फिल्म इंडस्ट्री के एक जो मेरे सबसे क्लोजेस्ट, सबसे ओल्डेस्ट फ्रेंड्स में से, मतलब मैं कहूंगा रघु ही एक अकेले फ्रेंड है जो मेरे घर में मतलब घर की तरह से ही रहे हैं। और मतलब ऐसा नहीं कि इनके पास घर नहीं था, ये मेरे घर पे आके टिका करते थे ना, अपना
1: बिल्कुल
0: जॉब करके आ गए तो अपना जागरण में काम करते थे, फिर ये फिल्म फेयर चले गए। तो उनके साथ में एक जर्नी कंसिस्टेंटली जो ना हमारे दोनों के बीच में एक एक वो भी है कि हम एक दूसरे से सलाह भी बहुत लेते हैं, तो मेरे सलाहकार भी हैं बहुत समय से, और मैं भी इनका सलाहकार हूं। ऐसा नहीं कि मैं ये सिर्फ सलाह लेते हैं, फिर मैं डॉक्टर हूं इनका, तो जिनकी तबीयत जब जब खराब होती थी तो जो होता था तो मैं इसका इलाज भी करता, तो मेरे घर पे आके ही फिर मेरा इसको हॉस्पिटल बना के उसमें इलाज भी कराते थे। लेकिन हमने साथ में काम, शायद मुझे नहीं लगता कि हमने कुछ काम एज सच किया, अब हम साथ में काम करेंगे भविष्य में। लेकिन रघु की जर्नी, रघु का जो जो उसकी बेस्ट उसकी क्वालिटीज हैं वो ये है, बहुत सारा बहुत सीखता हूं उससे कि कैसे, हाउ टू मेंटेन रिलेशंस, हाउ टू, पूरी फिल्म जो इंडस्ट्री है वो पीपल मैनेजमेंट की इंडस्ट्री है। इफ यू नो हाउ टू मैनेज, एंड ही नोज इट सो सो वेल, एंड बहुत बैलेंस्ड है, बहुत शार्प है, बहुत क्लियर थॉट प्रोसेस है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है कि ये ऐसा क्यों होगा और ऐसा क्यों नहीं होगा, उसकी क्लैरिटी थॉट है। और हिंदी के बहुत अच्छे जर्नलिस्ट भी रहे हैं, तो हमें हिंदी भी बहुत जोड़ती है आपस में। मतलब मैं भी अपने आप को हिंदी नाजी नाजी तो नहीं बोलूंगा मैं, मुझे लगता है फ्लैग बेयर हूं मैं, मुझे लगता है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ही कहना चाहिए इसको, मैं बॉलीवुड नहीं कहना पसंद करता हूं। मेरे ट्विटर वगैरह जहां भी जाएंगे आपको लिखे लिखा मिलेगा फ्रॉम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, नॉट बॉलीवुड। तो वो हमारा,
1: वो इलाहाबाद के, आप लखनऊ के,
0: जी
1: ये भी एक रिश्ता है, तो
0: मिले तो ही मुंबई में थे, मेरे पेशेंट थे जब मैं क्लिनिक चलाता था, तो ये एक दिन एक मित्र मनीष,
1: अभी तो आपके बहुत सारे पेशेंट हो गए फिल्म के माध्यम से, जो मरीज हो गए हैं कि आपसे मिलने के लिए इच्छुक हैं, एक लंबी तादाद अमूमन लोग एक्टर एक्ट्रेसेस के फैन होते हैं। ये हम पहली बार देख रहे हैं कि एक डायरेक्टर और राइटर के इतने बड़े फैन फॉलोअर्स हो रहे हैं, तो ये आपके लिए शुभकामनाएं और बधाई के पात्र हैं, आप बहुत सारी बधाइयां। यहां हमें, हमारे श्रोताओं को बताइए कि मुंबई में रहते हुए आप लखनऊ रहे और बुंदेलखंड का जीवन जिया है, तो यहां उन शहरों को क्या चीज मिस करते हैं, कौन सी बात आप मिस करते हैं?
0: एक तो वो शांति और जो बेफिक्री होती है ना, जिसमें कि आपको बहुत ज्यादा वहां जाते से ही आपको एक एक शांत वो महसूस होता है, जैसे कि जीवन चल रहा है उसी पेस पे चल रहा है, प्रॉब्लली जैसे मेरा अंतरंग, मेरा मन चल रहा है, मेरा शरीर चल रहा है, यहां पे शरीर और वो सब पीछे रहता है, और आप हरदम कॉन्स्टेंटली उसको कोप अप करने के लिए कॉफियां चाय दुनिया भर के इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ताकि आप जो है ना उसके साथ कोप अप कर पाओ। लेकिन मुंबई जो है मुझे बहुत सुंदर शहर इसलिए लगता है क्योंकि एक तो यहां लोगों के बहुत हेल्पिंग नेचर के हैं, और आपको कभी भी ऐसा महसूस नहीं होता प्रॉब्लम, तो एक बहुत सिक्योर्ड शहर लगता है।
1: जी बिल्कुल, बहुत ऐसा अनुशासित
0: है, लोगों से आपको भय नहीं होता, लोगों ऐसा लगता नहीं कि आपको ये व्यक्ति कुछ बात मांगने पूछने जाएंगे तो वो आदमी मना कर देगा, बहुत सौहार्द रहता है, लोग बहुत हेल्पिंग है, और जिस तरह से महिलाओं के लिए बहुत सुरक्षित शहर है, जिस तरह की भाषा का लोग प्रयोग करते हैं, ऑटो वाला कभी आपको मीटर उल्टा नहीं मारता है, ऐसी हजारों खूबियां हैं शहर के अंदर जो वहां पे आपको टेंशन

0: होती है, वहां पे उलझन होती है।
1: जी.
0: जिस तरह से लोग जो है ना हर चीज को मतलब ग्रैब करने के लिए दे कॉम्पीट एंड बहुत ज्यादा, तो मुंबई में उतना वो मुझे लगता है इस मामले में बहुत रिलैक्स है। लेकिन अदरवाइज अगर आप कहोगे कि सुबह सुबह कहाँ की अच्छी होती है और शाम कहाँ की अच्छी होती है, तो वे लखनऊ से ज्यादा अच्छी कहीं नहीं होती।
1: बिल्कुल, बनारस की सुबह और
0: लखनऊ की शाम, अवध की शाम,
1: अवध की शाम।
0: जी
1: जी विशाल जी, एक आखिरी बात जो पहले हमें जाननी चाहिए थी, मेरे जहन में भी है और वो मैं भी बहुत पसंद करती हूँ, उत्तराखंड की पहाड़ियां, कैंची धाम, जहां पर

0: जाननी चाहिए थी,
1: जी
0: मेरे जहन में भी है और वो मैं भी बहुत पसंद करती हूँ। उत्तराखंड की पहाड़ियां, कैची धाम जहां पर आप रहे हैं, कैची धाम की पहाड़ियां तो किस तरह से आपको मोहित करती रही, और फिल्मांकन भी उन्हीं इलाकों में किया है तो कुछ शूटिंग से जुड़ी हुई कोई खास बात बताइए हमारे श्रोताओं को बहुत संक्षेप में।
1: तो आप चूंकि आप देख के आपको लग रहा है कि वो उत्तराखंड की पहाड़ियां हैं, वो सब चित्रकूट है
0: ओहो,
1: और
0: चित्रकूट,
1: चित्रकूट है।
0: ओहो,
1: तो जो भी आप उसमें बर्फ की पहाड़ियां देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, वो सब हमने VFX पे क्रिएट किया है।
0: चित्रकूट यानी उत्तर प्रदेश
1: उत्तर
0: चित्रकूट,
1: प्रदेश का चित्रकूट जो है ना,
0: वाह क्या बात है। और सब लोग ये समझ रहे हैं कि वो उत्तराखंड है और कैची धाम
1: कैची
0: है
1: धाम
0: क्योंकि
1: है,
0: आपने कई बार
1: धाम
0: अपनी
1: भी
0: इंटरव्यू
1: दिखाया
0: में
1: है, जो भी
0: जिक्र
1: आपने
0: भी
1: कहा है
0: किया
1: वो अगमर्षण
0: तो
1: कुंड है, जहां पे यक्ष का और युधिष्ठिर का संवाद हुआ था। वो धारकुंडी नाम का एक आश्रम है जो चित्रकूट के डीप इन जंगल्स है, जहां पे तेंदुए और
0: जी जी
1: दुनिया भर
0: बिल्कुल।
1: के वो सब हमारे यूनिट ने भी देख लिए। तो मतलब वो ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं वहां पे, और अजगर वजगर सब कुछ था वहां पे,
0: घने जंगल है
1: घने
0: उस।
1: जंगल हैं। तो हमने वहां जाके शूट किया उसको, अगमर्षण कुंड में, धारकुंडी आश्रम था वहां पे शूट करना। इसके अलावा चित्रकूट में जितनी भी आप लोकेशन देख रहे हैं, नदियां देख रहे हैं, जंगल देख रहे हैं, सब वो हमने मैच कर दिए। तो फिल्म मेकिंग जो है ना, वो बोलते हैं कि इट्स ऑल अबाउट मैचिंग, इट्स ऑल अबाउट मेक बिलीव, इट्स ऑल अबाउट चीटिंग टू, जिसे बोलते हैं चीट सीन करना। रियल लोकेशन है वो, लेकिन किसी और जगह की है, पर आपको वो ऐसा महसूस कराती हैं भावनात्मक लेवल पे, आपको ऐसे वहां पहुंच ट्रांसपोर्ट कर देती हैं। तो जो भी आप एलिमेंटली जो चीजें आप इंक्लूड कर सकते हो वहां का,
0: जी
1: वो आप कर लेते हो। इस तरह से हमने किसी तरह से चित्रकूट में ही,
0: जी
1: और चित्रकूट नहीं होता तो शायद ही फिल्म उस बजट में जिसमें बनाई हो बन नहीं पाती।
0: बिल्कुल। अब चलते चलते हमारे जो नए श्रोता हैं, युवा श्रोता, उन्हें कुछ दो लाइन में संदेश दे सकते हैं तो दीजिए।
1: तो मुझे लगता है कि हम भारतीय जो जो संस्कृति है, जो संत परंपरा है, जिसने धागे की तरह से पूरे पिछले 5-7 हजार साल में सारा टेक्स्ट, सारा लिटरेचर और समाज को बांध के रखा है। संत समाज से बाहर निकल जाता है, ना उसका जाति होती है, ना उसका कोई संप्रदाय होता है। संप्रदाय होते हैं, पर वो संप्रदाय फिल्म के अंदर आपने उसमें देखा भी, उसी
0: बिल्कुल
1: विरक्ति उसको हो जाती है। वो ना नाम से अटैचमेंट रखता है, ना किसी जेंडर से अटैचमेंट रखता है, वो पूरी तरह से ईश्वर का हो जाता है। जब आदमी अपने आप को बिल्कुल बाहर रखे, थर्ड पर्सपेक्टिव से, दृष्टा भाव से देखता है, एक संत दृष्टा भाव से ही दुनिया को देखता है, तो सारे जो मैल होते हैं ना, वो सारे मैल आपको दिखने बंद हो जाते हैं। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम तीन चीजें जो नीम करोली बाबा भी बोलते थे, लव ऑल, सभी को प्रेम करो, फीड ऑल, भूखे व्यक्ति को भोजन जरूर खिलाओ, सबसे पहले खाना पूछो आदमी को, और तीसरा राम राम लिखो, ईश्वर को हरदम याद करते रहो। ये तीन चीजें वो सिखा के गए। मुझे लगता है कि जो जेंजी है या जो नई जनरेशन है, वो भी ऐसा ही कुछ सोचती है, जस्ट दैट उनको अलाइन करने की आवश्यकता है। वो भी यही बातें कर रहे हैं, वो कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, यही बातें कर रहे हैं, पर उनको पता नहीं कि ये एक्चुअली कोर है। और
0: जी
1: यही तो, इसलिए नीम करोली बाबा की जो स्टोरी है, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जेंजी और जैन एल्फा को सबसे ज्यादा प्रभावित, जो मैं करना चाहता भी था, करेगी।
0: बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए। क्या एक दो लाइन गुनगुनाएंगे?
1: जी अब ना देर लगाओ देर, अब कृपा करो महादेव, अब ना देर लगाओ देर, बस कृपा करो महादेव, ये दुनिया एक छलावा, तू साचा ठौर है बाबा, के आहवा के जावा, के
0: क्या बात है,
1: आहवा गमन मिटा दो भोले शंकर, के आहवा गमन मिटा दो भोले शंकर, हर हर महादेव।
0: हर हर
1: लास्ट किंग
0: महादेव।
1: इट्स प्रॉब्ली वन ऑफ दी रेयरेस्ट सॉन्ग्स जो मुक्ति चाह रहा है, पर वो हंस के मांग रहा है, इतने ज्यादा फन भाव में, इतने अच्छे सुंदर भाव में, हंसते हंसते बोल रहा है कि आवागमन मिटा दो भोले शंकर।
0: जी, विशाल जी यहाँ विविध भारती के स्टूडियो में आप आए और इतनी सारी बातें, यादें साझा की, बड़ी दिलचस्प लगी हमें, हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छी लगेंगी हमें उम्मीद है। आपका तहे दिल से शुक्रिया पूरे विविध भारती परिवार की ओर से।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा भी तहे दिल से शुक्रिया आप सभी का यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए। मुझे लग रहा है कि मैं ट्रांसपोर्ट हो गया हूँ, मैं 1960s में कहीं बैठा हूँ, ऐसा
0: क्या
1: फीलिंग आ
0: बात
1: रही
0: है
1: है। नमस्कार,
0: नमस्कार।
1: धन्यवाद।
2: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे हनुमान अंश फिल्म के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी से ममता सिंह की बातचीत की दूसरी और अंतिम कड़ी। कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, तकनीकी सहयोग रीमा जोशी।

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती। इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
3: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है, इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
4: कुछ लिखा
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को। उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू,
5: पेंटर बाबू
0: वारिस, और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
6: दिल तो पागल है,
0: दुश्मन
7: चिट्ठी न कोई संदेह,
0: गदर एक प्रेम कथा,
8: मैं निकला ओ गड्डी लेके,
0: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की,
9: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पाव,
0: एक उत्तम जीवन की कहानी, उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
10: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

आइए सुने छाया गीत। छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। हम गुम हैं अपनी ही दुनिया में, बार बार सुनाई देती है किसी की आवाज, जानी पहचानी सी आवाज।

पलट कर देखते हैं तो पाते हैं कोई नहीं है आसपास। फिर भी एक एहसास है, जैसे है वो कहीं आसपास। इसी एहसास ने गुनगुनाया प्यार का मीठा सा राग, इसी एहसास ने लिखी थी नेह की पाती किसी के नाम।

दुनिया की नजरों से पहाड़ों की ऊंचाई पर चांद तारों की दुनिया में चलो, कहीं दूर चलें, चले वहां जहां कोई जख्म ना हो, जहां मुस्कुराने पर पहरे ना हो, जहां मोहब्बत के दुश्मन ना हो, जहां पलकें झपकाएं तो फूलों की क्यारियां लहलहा उठें, जहां तुम्हारे बोलने से कोयल कूक उठे, दुनिया की तलखी से चलो कहीं दूर चलें।

जरा सी खुशी, जरा सी हंसी, जरा सी उदासी, इसी से मिलकर बनती है जिंदगी। ख्वाबों के तिनके जोड़कर बन जाता है जिंदगी का आशियाना। चलो बनाएं ख्वाबों का जहां, आधी आधी खुशी बांट ले, बांट ले गम, बांट ले आधी आधी जिम्मेदारियां, बांट ले आपस में ख्वाहिशों के मोती, कामयाबी के फूल।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। तुम्ही ने भरी जिंदगी में रोशनी, तुम्ही ने सींचा प्रेम के जल से मन की क्यारी को। यही वो मौसम था जब गुलाबी मन पर तुमने पीला रंग छिड़क दिया था, और फिर सरसों के पीले फूल इतराते हुए मुस्कुरा उठे थे। बाग में बैठा मैना का जोड़ा अपनी बोली में कुछ बोला था, और दो चेहरों के गाल गुलाबी हो गए थे।

खिड़की से दूर क्षितिज को देखते हुए जब आज फिर खोली मन की डायरी, तो जगमगा उठी वो तस्वीरें जब मन से बांधे थे किसी के मन के तार, जब चलती हुई ट्रेन पर दौड़कर चढ़ने की कोशिश की थी, एक दूसरे का हाथ थामा था, दिखाई थी तमाम तस्वीरें एक दूसरे को, जब यूं ही सड़कों पर खाली बेमकसद चलते रहते थे। याद आ गए वे पल जब यूं ही बैठे चुपचाप एक दूसरे के साथ गुफ्तगू कर रहे थे।

दिलों की प्रीत जमाने के लिए कहानी बन गई। बहती हुई नदी का किनारा, लहरों का खेल करता समंदर, आसमान की बुलंदियों को छूते पहाड़, दो चाहने वाले के हमदम बन गए। उनके बोलने से कायनात खनक उठी, उनकी हंसी बहता हुआ झरना बन गई। उनसे गुफ्तगू जैसे फूलों का खिलना हो, उन्हें देखना जैसे चांद को निहारना हो।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। तराने नए पुराने इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम तराने नए पुराने। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं आशा भोसले और अमित कुमार की आवाजों में लव स्टोरी फिल्म के गाने के साथ। आनंद बख्शी हैं गीतकार और संगीतकार हैं आर डी बर्मन।

0: लड़की जरा सी दीवानी लगती है, मुझे तो ये गुड़िया जापानी लगती
1: है। श्रोताओं, अगला गाना हमने लिया है हर्षदीप कौर और बेनी दयाल की आवाजों में। गीतकार हैं अन्विता दत्त।

0: थे।
1: श्रोताओं, लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में एक दूजे के लिए फिल्म का गाना। इसे लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: ये है विविध भारती।
1: विविध भारती देश का रेडियो।
2: ओ मेरे पिया गए रंगू, पिया है वहां से टेली।
3: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी।
4: मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर।
1: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
5: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब एंड नरगिस जी।
3: विविध भारती पर हर पल है खास।
1: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
6: आज के फनकार।
3: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
6: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
1: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।
7: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने। लीजिए सुनिए सिद्धांत माधव और पवनी पांडे की आवाजों में वेलकम बैक फिल्म का ये गाना।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में सत्ते पे सत्ता फिल्म का गाना। अभी आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से तराने नए पुराने कार्यक्रम। तराने नए पुराने कार्यक्रम का शेष भाग आप सुन सकेंगे संध्या 6:05 से।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। शाम के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की घोषणा की गई है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रत्येक पात्र कर्मचारी को अधिकतम 17,951 रुपए का भुगतान किया जाएगा।
1: रेलवे के करीब 11,40,770 कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस, 78 दिनों का बोनस आज कैबिनेट ने अप्रूव किया। ये दीपावली का उपहार है रेलवे के सभी कर्मठ कर्मचारियों के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं। करीब 2,009 करोड़ रुपए का टोटल बोनस है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान चल रहा है। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने को भी स्वीकृति दी है।
1: दूसरा बड़ा फैसला आज लिया गया है, वंचितों को वरीयता, जो हमारे वीक सेक्शंस हैं सोसाइटी के, वल्नरेबल सेक्शंस हैं, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी नेट का एक्सपेंशन, इसे 2031 तक बढ़ाया गया है और टोटल 53,428 करोड़ रुपीज का प्रावधान सोशल सिक्योरिटी नेट के एक्सपेंडेड फॉर्म में किया गया है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक के आयु वर्ग के लिए सहायता राशि 375 रुपये और 80 वर्ष तथा उससे अधिक आयु वर्ग के लिए 625 रुपये होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दे दी है।
2: भारत जिस तेजी से ग्रो कर रहा है, इसमें ग्रोथ कैपिटल की बहुत रिक्वायरमेंट, ऐसी हमारे पास कई संस्थाएं चाहिए जो कि ग्रोथ कैपिटल को ला सके, MSMEs को सपोर्ट कर सके, इसीलिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक उसमें एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर सेलेक्ट किया गया है और स्ट्रेटेजिक पार्टनर की मदद से नया कैपिटल इन्फ्यूज किया जाएगा और भारत में फाइनेंशियल सर्विसेज में लार्जेस्ट FDI आने का माध्यम इस निर्णय से बना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की सभ्यतागत यात्रा सदियों से सांस्कृतिक आदान प्रदान और ज्ञान के साझा प्रयासों से समृद्ध हुई है। भारत के वैश्विक सांस्कृतिक संबंधों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने एक संदेश में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भिक्षुओं, विद्वानों, व्यापारियों और यात्रियों ने भूमि और समुद्री मार्गों के जरिए भारतीय विचारों को दुनिया भर में पहुंचाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत और आसियान देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए संयुक्त शोध, तकनीकी साझेदारी और समुद्री सुरक्षा पर मिलकर काम करने

0: का प्रस्ताव रखा है। नई दिल्ली में आसियान भारत रक्षा थिंक टैंक फोरम में उन्होंने कहा कि आतंकवाद, साइबर अपराध, समुद्री चुनौतियों और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सभी देशों को साथ आना होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और कनाडा की विदेश मंत्री अनिता आनंद ने व्यापार और निवेश, शिक्षा, ऊर्जा, रक्षा और जन समुदाय आदान प्रदान क्षेत्रों में संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों मंत्रियों ने आज नई दिल्ली में मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने बताया कि उन्होंने प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया है। महाराष्ट्र के 358 तालुकों में से 305 को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दीपावली से पहले किसानों को 5,000 रुपये की प्रारंभिक वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 252 अंक गिरकर 72,782 पर पहुंच गया। निफ्टी 99 अंक कम होकर 22,623 पर आया। आनंद कुमार विल कुमार ने पराग्वे में स्केटिंग खेलों में 1000 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया है। आनंद कुमार प्रतियोगिता में अब तक 2 पदक जीत चुके हैं। हैदराबाद में भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 से आगे है। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में शुक्रवार तक ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आपने ट्यून किया है भारत का नंबर 1 मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है तराने नए पुराने। तराने नए पुराने कार्यक्रम में आपका फिर स्वागत है। लीजिए अब सुनिए विजय और साथियों की आवाज़ों में डिस्को डांसर फिल्म का गाना अनजान है। गीतकार और संगीतकार हैं बप्पी लहरी।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर। संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
3: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे कार्यक्रम तराने नए पुराने। लीजिए अब सुनिए कुमार सानू की आवाज में कहो ना प्यार है इस फिल्म का गाना। गीतकार हैं सावन कुमार टाक और संगीतकार हैं राजेश रोशन।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर।

0: और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: श्रोताओं, आज के तराने नए पुराने कार्यक्रम की आखिरी पेशकश लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में मेरी जंग फिल्म से। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: इस गाने के साथ ही आज का तराने नए पुराने कार्यक्रम संपन्न हुआ। नमस्कार।
1: तराने नए पुराने।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन झरोखा के अंतर्गत। सुनिए आज दिन भर के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

आज के शेष कार्यक्रम इस प्रकार हैं। शाम 6:35 से सुनेगा संध्या रंजन, शाम 6:45 से संगीत सरिता। आज से नई श्रृंखला प्रारंभ हुई है, राग समय चक्र पहला भाग प्रसारित किया जाएगा। कलाकार हैं गायिका मंजरी अलगांवकर। शाम 7:00 फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला सुनेगा। शाम 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत राग अनुराग। रात 8:00 से सुनवाएंगे हवा महल के अंतर्गत प्रहसन, शीर्षक की खोज। देवराज दिनेश हैं लेखक और निर्देशक हैं मुख्तार अहमद। रात 8:15 से चित्रलोक, रात 8:45 से समाचार संध्या, रात 9:00 से आपके लिए, रात 9:30 से सुनेगा आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया पर। रात 10:00 से छाया गीत, आलेख एवं स्वर मंदाकिनी जोशी का। रात 10:30 से ढलती जाए रात और रात 11:00 से रंग तरंग। कल दिनांक 15 अक्टूबर के कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा इस प्रकार है। सुबह 6:05 से सुनेगा वंदनवार, 6:35 से श्री रामचरित मानस गान सुनेगा भाग 342। कल सुबह 6:45 और संध्या 6:45 से सुनेगा संगीत सरिता। इन दिनों आप सुन रहे श्रृंखला राग समय चक्र, इसका दूसरा भाग कल प्रसारित किया जाएगा। कलाकार हैं गायिका मंजरी अलगांवकर। कल सुबह 7:00 से भूले बिसरे गीत, 7:30 से हमें राही प्यार के। कल सुबह 8:15 सुनेगा त्रिवेणी, आलेख एवं स्वर सविता सिंह का, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। कल सुबह 8:30 से चित्रलोक। कल सुबह 9:30 और रात्रि 9:30 से सुनेगा आज के फनकार। यह कार्यक्रम केंद्रित होगा संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के शंकर पर, आलेख एवं स्वर अमरकांत दुबे। कल सुबह 10:00 से सुनेगा पिटारा के अंतर्गत आज के मेहमान, इसके अंतर्गत फिल्म लेखक निर्देशक डॉक्टर विशाल चतुर्वेदी से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा भाग सुन सकेंगे, प्रस्तुति जुबैर खान की। कल सुबह 11:00 और रात्रि 11:00 से रंग तरंग। कल दिन में 12:05 से यादों की महफिल और दोपहर 1:00 से सुरीला सफर। दोपहर 2:00 से त्रिवेणी सुनिएगा, दोपहर 2:30 से सदाबहार नगमे।

तीन बजे समय होता है सखी सहेली का। इसके अंतर्गत कहानी पद्मश्री के अंतर्गत वीरूबाला रमा की कहानी मुझे कुछ कहना है के अंतर्गत ग्रामीण अंचल में रची बसी लोकोक्तियां, उपयोगी टिप्स के अंतर्गत घरेलू नुस्खे रहेंगे सुंदर त्वचा, संवादक मंदाकिनी जोशी और आरती श्रीवास्तव, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। कल शाम 4 बजे से हेलो फरमाइश के अंतर्गत हेलो फरमाइश सुनिएगा, संवादक है मंदाकिनी जोशी, प्रस्तुति राघवेंद्र नेगी की। कल शाम 5 बजे छाया गीत का पुनर्प्रसारण। कल शाम 5:30 से सुनेगा तराने नए पुराने हिंदी में समाचार शाम 6 बजे से। शाम 6:30 से झरोखा सुनेगा। शाम 6:35 से आपको सुनवाएंगे संध्या रंजन। शाम 7 बजे से फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला सुनेगा। शाम 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत इनसे मिलिए के अंतर्गत अभिनेत्री एवं लेखिका आसिमा भट्ट से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग सुनिएगा। हवा महल रात 8 बजे में सुनिएगा नाटिका बड़े दिनों बाद, लेखन और निर्देशन अजहर अफसर का। चित्रलोक रात 8:15 से आपके लिए। रात 9 बजे से रात 10 बजे से छाया गीत आलेखनकार नेहा गरकर का। और ढलती जाए रात 10:30 से। अभी आप सुन रहे थे झरोखा के अंतर्गत कार्यक्रम विवरण।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम संध्या रंजन। सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं कृष्णा और कंस के इस गीत के साथ।

मामा मैं आ गया। आप 10 वर्षों से मुझे ढूंढ रहे थे ना, आपका निमंत्रण स्वीकार करके मैं आ गया हूँ। जब अत्याचार अपनी अति पर पहुँचता

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम संध्या रंजन। और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश विशाल चतुर्वेदी की आवाज में हनुमान अंश फिल्म से। गीतकार और संगीतकार हैं विशाल चतुर्वेदी।

0: राग समय चक्र। श्रोताओं, आज से हम शुरू कर रहे हैं श्रृंखला राग समय चक्र। आमंत्रित कलाकार हैं जानी मानी शास्त्रीय गायिका विदुषी मंजरी आलेगांवकर। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रीकर ने। तो लीजिए, आज प्रस्तुत है श्रृंखला राग समय चक्र की पहली कड़ी।
1: योग्यम ध्वनि विशेषस्तु स्वर वर्ण विभूषितः रंजको जनचित्तानां सरागः कथितो बुधैः। एक विशिष्ट स्वर समुदाय जो स्वर या वर्ण से सुशोभित होकर मनुष्यों के हृदयों का रंजन करता है, उसे गुणीजन ज्ञानीजन राग कहते हैं। श्रोताओं, राग समय चक्र इस विषय पर हमसे विस्तृत चर्चा करने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है जयपुर अतरौली घराने की गायिका विदुषी मंजरी आलेगांवकर को। मंजरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्ते।
1: हमारी इस श्रृंखला में तबले पर संगति कर रहे हैं बनारस घराने के मूर्धन्य तबला नवाज पंडित किशन महाराज जी के शिष्य श्री बालकृष्ण अय्यर जी। बालकृष्ण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार।
1: साथ ही साथ हम स्वागत करते हैं शुभांगी भावसार जी का, जो हारमोनियम पर संगत करेंगी।
4: नमस्कार।
1: श्रोताओं, मंजरी जी का परिचय आपको संक्षेप में मैं दूं। आप आकाशवाणी और दूरदर्शन की उच्च श्रेणी की कलाकार हैं। बचपन से ही संगीत की शिक्षा आपने प्राप्त की। चूंकि आपके पिता पंडित मोहन राव कर्वे जी अपने जमाने के माने हुए गायक थे, वे ही आपके पहले गुरु थे
2: जी।
1: आगे जयपुर अतरौली घराने की तालीम आपने हासिल की जाने माने संगीतज्ञ गुरु स्वर्गीय वामन राव देशपांडे जी से
2: जी।
1: मंजरी जी, जहां तक जयपुर घराने की गायन शैली की बात है, उसमें एक पारंपरिक सोच होती है।
2: बिल्कुल।
1: जिसमें घराने की शुद्धता और सौंदर्य के संवरण का अनोखा मिलाप देखने को मिलता है
2: जी।
1: तो इस शैली के बारे में और अपने गुरुजनों के बारे में

0: हमें क्या बताना चाहेंगी?
1: मेरे पहले गुरु थे पंडित मोहन कर्वे, मेरे पिताजी गायनाचार्य रामकृष्ण बुआ वझे के वो शागिर्द थे
0: जी।
1: हरिभाऊ घंगरेकर से भी उन्हें तालीम मिली थी।
0: हाँ।
1: और मास्टर कृष्णराव जी का सांगीतिक सहवास भी मिला था। बाद में मैंने नवनीत भाई पटेल से तालीम प्राप्त की
0: जी।
1: वो तबला नवाज थे, बंदिश रचनाकार थे, जलतरंग बजाते थे और आकाशवाणी पे म्यूजिक कॉम्पोजर थे। उनके साथ साथ पंडित अप्पा साहेब कानेटकर भुर्जी खां के शागिर्द, उनसे मैंने तालीम हासिल की और बबन राव जी हरदणकर, उन्होंने भी मुझे मार्गदर्शन किया।
0: जयपुर अतरौली घराने की विशेषता, इसके बारे में आप क्या बताएंगे?
1: जयपुर गायकी में पहली विशेषता यह है कि आकार से, खुली आकार से गाना, और उसके लिए कुछ सूरत बिगाड़ने की जरूरत नहीं होती। और एक विशेषता यह है जयपुर घराने की, वो ज्यादातर अनवट राग, जोड़ राग पेश करती है। तिहाई ज्यादातर नहीं लेती, सरगम नहीं लेती, और गायकी का जो चलन होता है वो हमारे गुरुजी ने घरंदाज गायकी में, उन्होंने लिखा है स्ट्रेट लाइन और कर्वेचर। वो कर्वेचर है टेढ़ी गायकी। हाँ। जयपुर गायकी वो सीधी नहीं जाती और चलन ही ऐसा है उसका।
0: हाँ।
1: आलाप करने में भी वो ऑफबीट आलापी करती हैं। और बाकी सूक्ष्म लय की हम सोच विचार कर सकते हैं
0: जी।
1: और ज्यादातर धीमी लय होती है। बंदिशों का मुखड़ा आकर्षक होता है, उसमें सरप्राइज एलिमेंट होता है बंदिशों के मुखड़े में भी और गायकी में भी। और ऐसी बहुत सारी उसकी विशेषताएं हैं
0: जी।
1: जो वामन राव जी के पास मैं जब सीखती थी उसको मैं समझ गई थी।
0: मंजरी जी,
1: जी
0: राग समय चक्र ये श्रृंखला जो हम आज से शुरू कर रहे हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए कि हम दिन के पहले प्रहर से जो राग गाए जाते हैं वहां से किन रागों की, उनकी विशेषता बताते हुए कैसे कैसे हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा आपसे हम इसकी जानकारी चाहेंगे।
1: स्वर और समय के अनुसार उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में रागों के गाने बजाने के बारे में
0: जी
1: समय सिद्धांत प्राचीन काल से, वेद काल से ही चला आ रहा है। प्राचीन रागों में, अर्वाचीन रागों में समय सिद्धांत पर कुछ मतभेद भी है, तथापि यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि हमारे प्राचीन संगीत पंडितों ने
0: जी
1: रागों को उनके ठीक समय पर गायन या वादन करने का सिद्धांत अपने ग्रंथों में जरूर स्वीकार किया है। उसी को आज के संगीतज्ञ भी स्वीकार करके अपने रागों में समय सिद्धांत का पालन कर रहे हैं। और ये स्वर और समय के अनुसार उत्तर भारतीय रागों में तीन वर्ग मानकर कोमल तीव्र स्वरों के हिसाब से उनका विभाजन किया है
0: जी।
1: संधि प्रकाश राग अर्थात कोमल ऋषभ और कोमल ध वाले राग, शुद्ध रे और शुद्ध ध वाले राग, और तीसरा विभाजन है कोमल ग और कोमल नी वाले राग। समय चक्र के अनुसार मैं आज यहाँ भैरव यानी ब्राह्म मुहूर्त से, सुबह 4 से हम शुरू करेंगे ये समय चक्र
0: जी जी।
1: तो समय चक्र के अनुसार हम अलग अलग रागों की चर्चा करेंगे और बंदिशें भी सुनाएंगे
0: जी। बिल्कुल मंजरी जी
1: जी,
0: जयपुर अतरौली घराने की विशेषता को उजागर करने वाला कौन सा राग और उस राग की बंदिश आप हमें सुनाएंगी?
1: आज मैं राग सावनी पेश कर रही हूँ। सावनी ये जयपुर का खास राग है, उसकी बंदिश भी जयपुर घराने की है
0: जी।
1: वो बंदिश ऐसी है, देहो देहो सतसंग श्री रंग बावा गंग कारण शरण सब शिव के आए।
0: हाँ।
1: ये प्रार्थना स्वरूप बंदिश है
0: जी जी।
1: और वामन राव जी ने हमें पहले दिन सिखाई थी।
0: वो
1: जयपुर घराने की तालीम की शुरुआत इस बंदिश से हुई। सावनी राग रात को गाते हैं, रात के पहले प्रहर में गाते हैं, इसमें शुद्ध स्वरों का प्रयोग होता है।

0: क्या बात है मंजरी जी, प्रार्थना के इन सुरों से बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई है हमारे इस राग समय चक्र श्रृंखला की। अगली कड़ी में हम प्रथम प्रहर यानी जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है,
1: हाँ।
0: सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक
1: जी।
0: उस समय में जो राग गाए जाते हैं,
1: हाँ।
0: उसकी हम चर्चा करेंगे। आज इस कड़ी को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: राग समय चक्र, ये थी इस श्रृंखला की आज पहली कड़ी। आमंत्रित कलाकार जानी मानी शास्त्रीय गायिका विदुषी मंजरी आलेगांवकर, आपसे बातचीत की थी जयंत पात्रीकर ने। तबला संगत बाल कृष्ण अय्यर का, हारमोनियम पर शुभांगी भावसार। चलने से पहले आपको बता दें, तकनीकी सहयोग गणेश शिंदे का।
3: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला लेकर हाजिर होंगे बस थोड़ी ही देर में।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम जयमाला। सभी फौजी साथियों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं एक देशभक्ति गीत के साथ, जिसे हमने लिया है भुज द प्राइड ऑफ इंडिया फिल्म से। अरिजीत सिंह की आवाज़ है, बोल है मनोज मुंतशिर के और तर्ज बनाई है आर को ने।

फौजी साथियों, अब आपकी सेवा में प्रस्तुत है कुमार सानू की आवाज में दीवाना फिल्म का गाना। समीर हैं गीतकार और संगीतकार हैं नदीम श्रवण।

फौजी साथियों, अगला गाना हमने लिया है यमला पगला दीवाना 2 फिल्म से। सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाजें हैं, कुमार के बोल और शारिब तोशी की का संगीत है।

0: वो रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
1: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
1: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिनपॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
0: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

फौजी साथियों, अभी आप सुन रहे थे एआर रहमान और चिन्मयी की आवाजों में गुरु फिल्म का गाना। गीतकार थे गुलजार और संगीतकार थे एआर रहमान। लीजिए अब सुनिए उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में तेरे नाम फिल्म का गाना। इसे लिखा है समीर ने और संगीत से संवारा है हिमेश रेशमिया ने।

फौजी साथियों, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जयमाला विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से। वक्त हो गया है एक छोटे से अंतराल का, तुरंत हाजिर होते हैं।

0: आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में हम आपके हैं कौन इस फिल्म का गाना।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun.

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम जयमाला। फौजी साथियों लीजिए अब सुनिए मंच म्यूजिक हरवी सहारा और नेहा कक्कर की आवाजों में गुड न्यूज फिल्म का ये गाना, तनिष्क बागची और हरवी सहारा के बोल, और इसकी धुन बनाई है तनिष्क बागची, मंच म्यूजिक और हरवी सहारा ने।

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है राग अनुराग कार्यक्रम इंद्रधनुष के अंतर्गत। राग अनुराग कार्यक्रम में श्रोताओं आप सुनते हैं शास्त्रीय रागों पर आधारित फिल्मी गाना। तो लीजिए अब सुनिए पहला गाना जिसे हमने लिया है चश्मे बद्दुर फिल्म से। ये सुदास और हेमंती शुक्ला की आवाज़ें हैं। इंदु जैन ने लिखा इसे और संगीत से संवारा है राजकमल ने। ये गाना आधारित है राग वृंदावनी सारंग पर।

0: वो रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
1: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म

0: महान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
1: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
0: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
3: नहीं।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
3: श्रोताओं, लीजिए अब सुने लता मंगेशकर की आवाज में आरजू फिल्म का गाना। गीतकार हैं हसरत जयपुरी और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। ये गाना राग देश पर आधारित है।

0: दोनों एक अजीब परेशानी है। अरे कविता लिखना जितना आसान है, इसका शीर्षक ढूंढना उतना ही मुश्किल। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर इसका शीर्षक क्या रखूं। हैं यही कविता क्या अपने को तो हर कविता के साथ यही सरदर्द उठानी पड़ती है। रद्द से भी गहुआ है गान मेरा। हाँ बस दर्द से भीगा गान इस कविता का शीर्षक ही ठीक रहेगा। हाँ बस बात बन गई। पर गुरु जी भी असल में कोई चचा नहीं। हाँ शीर्षक ऐसा होना चाहिए कि पढ़ने वाले और संपादक की आंखों में वो क्या चुभ जाए। भीगा शब्द कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अकेला अरमान शब्द शीर्षक के लिए कैसा रहेगा, जा मेरा अरमान है। हाँ, जे शीर्षक ही कविता को दिया जाए
1: ओ,
0: तो
1: क्या मुसीबत है। मैं कहती हूँ सब्जी वब्जी बाजार से लाओगे या अरमान और भगवान के चक्कर में ही पड़े रहोगे।
0: है क्या, बाजार से सब्जी लाना भी मेरा ही काम है।
1: और नहीं तो क्या, मेरा काम है। मैं कहती हूँ कविता तो आपने रात ही लिख ली थी, अब उसे संपादक के पास भेज क्यों नहीं देते। बार बार रटे जा रहे हैं उसे। रात लिखते वक्त अलग कान खाते रहे, अब दिमाग अलग चाट रहे हैं। क्या आप इसे फिर ठीक कर रहे थे?
0: अरे नहीं श्रीमती जी, अब इसे दोबारा ठीक नहीं कर रहा हूँ। हाँ
1: तो
0: हाँ अब इसका शीर्षक खोज रहा हूँ।
1: शीर्षक खोज
0: हाँ
1: रहे हैं।
0: शीर्षक कह रही है नाम
1: अच्छा
0: को, मतलब जी कि अब इसका नाम क्या रखा जाए। जी सोच रहा हूँ, अब समझिए आप। कुछ देर आप मेरा पीछा छोड़िए, अपना काम कीजिए। इसे अभी उलझन में छपने के लिए भेजना
1: तो
0: है।
1: भेज क्यों नहीं देते?
0: अरे उलझन का वार्षिक अंक छपने वाला है। मैं कल संपादक जी से आज कविता पहुंचा देने का वायदा करके आया हूँ, वो मेरी राह देख रहे होंगे।
1: मैं ये कविता अविता संपादक हम बात कुछ नहीं जानती। जल्दी जाकर मुझे तो बाजार से रसोई का सामान ला दीजिए, वरना सुनिए कुछ देर में ननद नंदोई आने वाले हैं। समय पर खाना न बना तो फिर मुझ पर ही बिगड़ोगे। हाँ यही काम करना था तो उन्हें न्योता देने की आवश्यकता क्या थी? कविता का नाम ढूंढ रहे हैं। हजी मुसीबत है इनके साथ तो।
0: हाँ हमारी मुसीबत बारी, मुसीबत बारी किस्मत है। मैं खुद तो मर गई, जे मुसीबत मेरे गले बांध गई। जैसे रत्ती भर भी साहित्य का ज्ञान नहीं, अरे अपनी सहेली को दिए वचन दिवाने में मेरी जिंदगी व्यर्थ बर्बाद
1: मैं
0: कर
1: कहती
0: दी।
1: हूँ मुंह संभाल कर बात करो, मैं सब सुन रही हूँ।
0: हाँ बाबा,
1: कोई बहरी नहीं हूँ
0: अरे
1: मैं।
0: बाबा, अरे बाबा, मैंने कोई तुम्हें कुछ नहीं कहा है। अरे हाँ सुनो,
1: बोलो।
0: मैं बहन भाइयों को आज के लिए नहीं कल की रोटी के लिए कहकर आया हूँ।
1: क्या कहा?

0: नाक परेशान होती फिर रही हो। भूल से मेरे मुंह से आज निकल गया था।
1: तो यूं कहो ना कि कुछ याद ही नहीं रहता कविता के चक्कर में। अच्छा सुनो, क्या खुद साग सब्जी से रोटी नहीं खाओगे?
0: अरे भाई अपना क्या है, अपने को तो अचार के साथ पराठे बहुत स्वाद लगते हैं। रही तुम ऐसो, तुम दही से खा लेना, तुम्हारे लिए दही मंगवा दूंगा।
1: ओफो, लेकिन अगर उन्हें आने के लिए कल कहा हुआ है तो छुट्टी आज की क्यों ले रखी है जनाब ने?
0: अरे भाई, अरे भाई, बतलाया तो है कि मैं भूल से आज ही समझे हुए था। चंदा और उसके पति खाने पर आने वाले हैं, कृपा करके अब तुम जाओ, मुझे अपना काम कर दे।
1: मैं कहती हूँ आगे से सब काम अपने दफ्तर में ही बैठ के कर लिया करो। हाँ
0: आए आए, ताकि मेरा बास मुझे सदा के लिए छुट्टी दे दे। बहुत बहुत दाद देनी पड़ती है तुम्हारी अक्कल की।
1: बात करो तो खाने को पड़ते हैं। हाँ जी, मुसीबत है इनके साथ।
0: हे, एक मुसीबत हो तो काम बने, यहाँ तो हजारों मुसीबतें हैं। सारा मूड ही खराब करके धर दिया, और फिर नए सिरे से मूड बनाओ। दर्द से भी गया हुआ है गन मेरा, संपादक जी बेचैनी से मेरी रात ग्रह हो गए। समय पर कविता न पहुंची तो सब मेहनत बेकार हो जाएगी, हैं? इसे अच्छी जगह भी नहीं मिलेगी। हा हा हा हा, बस मिल गया शीर्षक, हैं? तुम्हारी याद, इसका शीर्षक बहुत बढ़िया रहेगा। शीर्षक खोजने में जे हालत है तो बाकी रचनाओं के शीर्षक को खोजने में क्या हालत होगी, हैं? दर्द से भी गहुआ ही गन मेरा।
2: भैया मुझे जरा इस कविता का अर्थ तो समझा दो, परसों मेरी परीक्षा है।
0: हैं, क्या क्या कविता का अर्थ? अरे सुन, इस समय में बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ, तुम आज शाम को या कल सुबह आ जाना, मैं अच्छी तरह पढ़ा दूंगा।
2: अच्छा भैया।
0: अरे सुन प्रकाश, सुन तो सही, देख मुझे तुझसे एक जरूरी काम है।
2: कहो भैया।
0: जे देख, जे चमन्नी ले और इस टेलीफोन नंबर पर जाकर डॉक्टर की दुकान से फोन करिया।
2: लेकिन वहाँ कहूंगा क्या भैया?
0: अरे उधर से नंदलाल बोलेंगे, जा चंदा बोलेगी, तो कहियो कि नवनीत भाई जरूरी काम से क्या तनिक बाहर चले गए हैं, आप कल आए।
2: अगर वो पूछे कि किस काम से तो क्या कहूँ भैया?
0: अरे भैया तू खुद समझदार है, कोई बहाना बना देना, वो आ जाएंगे तो घर में भीड़ लग जाएगी, यहाँ जे काम नहीं हो सकेगा। जा, मुझे बहुत जरूरी काम करना है। जा भाई जा, जल्दी जल्दी सीधे जे काम करिया, कहीं वो लोग आ ना जाएं। और देख सुन, अपनी भाभी से कुछ मत कहियो इस बारे में।
2: अच्छा भैया।
0: और सुन प्रकाश, जरा गुड्डी को भी भेजता जाइयो।
1: ओफो, मैं कहती हूँ प्रकाश को कुछ देर पढ़ा देते तो क्या हर्ज था, उसके बाबू जी बुरा मान जाएंगे। दोनों बच्चे हमारा कितना काम करते हैं, ये तुम्हें खुद ही सोचना चाहिए था।
0: मैंने ऐसे पढ़ाने से कब नहीं किए हैं, तुम आज बिना बात मुझसे लड़ने आ रही हो। अरे भाई शाम को उसे पढ़ा दूंगा।
1: शाम को पढ़ा दूंगा।
3: हाँ भैया, क्या काम है?
0: अरे हाँ जे देख गुड्डी, जे ले चवन्नी, जा जाकर बाजार से मेरे लिए वो क्या पान लिया।
3: अच्छा जी।
1: अच्छा जरा सुनो, घर का ख्याल रखना, मैं प्रकाश की माँ से तुम्हारे स्वेटर का गला ठीक करवा दूँ, और अभी ये सब खत्म करो काम, मैं अभी आ रही हूँ।
0: अरे हाँ हाँ, तुम जाओ जाओ, मैं अभी काम समाप्त करके तुम्हें आवाज देता हूँ, जरा कुछ देर मुझे एकांत में तो रहने दो। हैं जे लोग मूड बननी नहीं देते। दर्द से भी गए हुए
3: ये रहे पान।
0: अरे अरे अरे अरे अरे अरे गुड्डी, देखते जरा सही कौन आया, जो कोई भी हो कह दे कि नवनीत जी घर पर नहीं है।
3: अच्छा भैया, नवनीत जी घर पर नहीं है।
4: कहाँ गए हैं?
3: भैया वे पूछते हैं कि आप कहाँ गए हैं।
0: अरे गुड्डी अरे गुड्डी अरे, तीने तो सारा बेड़ा ही घर कर दिया। ले ले अपना पान वान, तूने सब ठंडा फोड़ दिया। अरे भाई आ जाओ, मैं घर पर ही हूँ, जरा मैं दूसरे कमरे में गया।
4: क्या बात है गुरु?
0: जा गुड्डी जा, तू बाहर जा, जा खेल जाकर।
4: आज हमें को टरकाने के मूड में थे?
0: अरे भाई नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, मैं जरा इस कविता का शीर्षक ढूंढने में लगा हुआ था। और तुम जानो के बिना जरूरत मिलने वालों से कितनी परेशानी होती है, और इस कविता को आज 3 बजे तक जरूर भेज देना है।
4: अरे हम भी तो सुने गुरु, वो ऐसी कौन सी महान कविता है जिसका शीर्षक ही नहीं मिल पा रहा है? लाओ हम ही कुछ पुरुषार्थ करें, शायद तुम्हारा काम बन जाए।
0: हाँ वैसे ही गुरु, रचनाओं के शीर्षक रखने में तुम्हारा कोई

0: कावलानी हिंदी की साहित्य को भी तुमने अपनी किताबों के बहुत बढ़िया नाम रखे चाहे पुस्तक का भाव शीर्षक से रक्ति भर भी मेल न खाता
1: हो। भाव मेल खाता हो या न खाता हो गुरु, पर यह निश्चित है कि पुस्तक अपने नाम से बिकती है। नाम बढ़िया और आकर्षक हो, फिर चाहे पुस्तक में कुछ हो या न हो, पुस्तक के नाम से पाठक अपने आप मेल बिठाते रहते हैं, अपने मतलब का कोई ना कोई अर्थ निकाल ही लेते हैं।
0: हाँ, जो पान खाओ लो भाई।
1: नहीं गुरु, बस कृपा है, तुम तो जानते हो कि मैं पान वान खाता नहीं और फिर तुम खाते हो जर्दे वाला पान गुरु, अपना तो उससे वैसा ही बेड़ा पार हो जाए। हाँ सुनाओ ना, आखिर वो कविता कौन सी है जिसका तुम्हें शीर्षक नहीं मिल पा रहा है?
0: दर्द से भीगा हुआ है गान मेरा, प्यार से भीगा हुआ अरमान मेरा, तुम नहीं हो पर तुम्हारी याद तो है, लोचनों में अति सघन उन्माद तो है, कल्पना के पंख तुमने बांध डाले, आ रहा है निकट ही अवसान मेरा, दर्द से भीगा हुआ है गान मेरा।
1: आह क्या बात गुरु, तुम तो व्यर्थ ही शीर्षक के चक्कर में पड़े हो, अरे गीत शीर्षक देकर भेज दो।
0: अरे वाह, तुम भी कमाल की बात करते हो हैं? अरे 10 पद की लंबी कविता है और उसका नाम गीत लिखकर भेज दू, बड़ा जेरी कोई बात है। अरे गीत 2 या 3-4 पद की छोटी सी रचना होती है, उसको कहती है गजबर की लंबी कविता। नहीं,
1: सुबह से लगे हुए हो, क्या अब तक एक भी नाम नहीं सोचा?
0: अरे बहुत सोचा बहुत सोचा, पर अब तक एक भी पसंद नहीं आया।
1: हम भी तो सुने उनमें से कुछ नाम गुरु, अरे हो सकता है हमें कुछ सलाह दे सके।
0: जैसे जैसे जैसे भीगा हुआ गान, अरमान मेरा, तुम्हारी याद, और अब मेरे दिमाग में उन्माद घूम रहा है।
1: छोड़ो गुरु,
0: सोचता हूँ इस कविता का शीर्षक उन्माद ही रख।
1: भला उन्माद भी कोई शीर्षक है गुरु, इससे अच्छा है कि तुम इसका शीर्षक कल्पना के पंख धरो, नाम में एक आकर्षण तो है।
0: पर भाई कल्पना के पंख वाली बात तो इस कविता में कहीं है नहीं, केवल शब्दों के आने से ही उन्हें नाम के रूप में रख लिया जाए ये कोई बात नहीं हुई है। शीर्षक वो होना चाहिए जिसमें सारी कविता का भाव सन्निहित हो। मेरा विचार है इसका शीर्षक अवसान जा मेरा अवसान रख दूं तो।
1: भगवान का नाम लो गुरु, शुभ शुभ तो बोलो, अभी अपना अवसान करने पर क्यों तुले हुए हो, फिर अवसान वाली भी तो कोई बात इसमें होनी चाहिए ना।
0: हाँ गुरु, जेवी तुम सच कहो हो, सुबह से शीर्षक की खोज में लगा हुआ हूँ पर कुछ समझ में नहीं आ रही है।
1: ऐसा करो गुरु, संपादक जी को रचना भेज दो, वो अपने आप इसका शीर्षक ढूंढ लेंगे।
0: वाह मित्र वाह, जेवी तुमने एक ही बात कही, अरे उनकी चलाई रचना बटेर पर हो, वो शीर्षक कबूतर पर देंगे। मेरे अनेक एकांकियों और कहानियों के साथ उन्होंने यही किया है, अपनी इच्छा से शीर्षक बदल देती। हाँ अनेरी चटपटे शीर्षक की आदत है, फिर चाहे वो शीर्षक रचना से मेल खाए या ना खाए, पर हो सकता है अब ऐसा न करें।
1: अब वो ऐसा नहीं करेंगे, इस बात का क्या भरोसा है, तुम शीर्षक खोजने में पूरा एक दिन बर्बाद कर दो और वो बदलने में 1 मिनट भी न लगाए।
0: हाँ अब ऐसी बात नहीं हो सकती, मेरा इसी बात पर उनसे बहुत दिन झगड़ा हुआ था, अब तो शीर्षक मैं उन्हें लिखकर भेज दूं। हाँ मैं लिखकर उन्हें भेज दूंगा, उन्हें वही छापना पड़ेगा, मेरा उनका जी मामला तय हो चुका है, फैसला हो चुका है, तभी दत्चित होकर उसका बढ़िया शीर्षक खोजने में लगा हुआ हूँ।
2: कराया टेलीफोन भैया में
0: है? क्या कह दिया टेलीफोन पर?
2: फोन पर चंदा दीदी मिल गई थी भैया। हाँ। मैंने कह दिया भैया और भाभी एक जरूरी काम से बाहर चले गए, इस पर उन्होंने पूछा कि ऐसा कौन सा जरूरी काम पड़ गया था।
0: तो फिर तूने क्या जवाब दिया?
2: भैया जल्दी में मुझे तो कुछ सूझा नहीं, मैंने कह दिया हाँ। उनके रिश्तेदारी में किसी की मौत हो गई है।
0: अरे धत तेरे की तूने सब करा कर भूलने मिला दिया। प्रसारती जी बाहर चलकर कहीं चाय पियेंगे, चलो भाई।
3: क्यों जी, क्या बात है, कहाँ चल दिए?
0: अरे वो मेरे जानने वालों में किसी की मौत हो गई है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। प्रकाश से चंदा को टेलीफोन करवाया था, वो कह आया कि किसी रिश्तेदार की मौत हो गई है, तो उससे जे कह देना ऐसी कोई बात नहीं है। हे भगवान, शीर्षक खोजते खोजते तो जान नई कहानी बनी जा रही है।
4: अभी आपने देवराज दिनेश का लिखा प्रेसन शीर्षक की खोज सुना।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन चित्रलोक। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं गुरु रंधावा और नेहा कक्कर की आवाजों में बधाई हो फिल्म के गाने के साथ।

0: बनके।
1: दोस्तों अब लीजिए सुनिए साहू फिल्म का गाना। अलिसा मेंडोंसा, रवि मिश्रा और शंकर महादेवन की आवाजें हैं। मनोज यादव ने लिखा इसे और संगीत से संवारा है शंकर एहसान लॉय ने।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए सुनिए जावेद अली की आवाज में पुष्पा फिल्म का गाना। रकीब आलम हैं गीतकार और संगीतकार हैं देवी श्री प्रसाद।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम चित्रलोक। चित्रलोक कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से अंतराल का, तुरंत हाजिर होते हैं।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जीडी कौर की आवाज में सुबेदार फिल्म का गाना। लीजिए अब सुनिए सुखविंदर सिंह और रेखा भारद्वाज की आवाजों में ओ रोमियो फिल्म का गाना। गीतकार हैं गुलजार और संगीतकार हैं विशाल भारद्वाज।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
4: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
3: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
5: मेरा साया साथ होगा।
6: श्रोताओ, आज के चितलोक कार्यक्रम की आखिरी पेशकश लक्ष्मी फिल्म से शशि और डीजे खुशी की आवाजें, गगन आहुजा की बोल और शशि और डीजे खुशी का संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 साल के लिए बढ़ाया। दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों के लिए पात्रता मानदंड और सहायता दरों में संशोधन। सरकार ने IDBI बैंक के पुनर्गठन और रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के बोनस को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के साथ दूरदर्शी रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। दोनों देशों ने व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा क्षेत्रों में संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। भारत ने सऊदी अरब में नागरिक अवसंरचनाओं पर हमलों को अस्वीकार्य बताते हुए इन्हें तुरंत बंद करने को कहा। महाराष्ट्र ने 305 तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित किया। दीपावली से पहले किसानों को 5,000 रुपए की प्रारंभिक सहायता दी जाएगी। पैराग्वे में आनंद कुमार वेल कुमार ने विश्व स्केटिंग खेलों में 1000 मीटर स्प्रिंट में रजत पदक जीत लिया है। और हैदराबाद में भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी दी।
1: दूसरा बड़ा फैसला आज लिया गया है, वंचितों को वरीयता, जो हमारे वीक सेक्शंस हैं सोसाइटी के, वल्नरेबल सेक्शंस हैं, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी नेट का एक्सपेंशन, इसे 2031 तक बढ़ाया गया है और टोटल 53,428 करोड़ रुपीस का प्रावधान सोशल सिक्योरिटी नेट के एक्सपेंडेड फॉर्म में किया गया है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि दिव्यांग जन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए सहायता राशि 375 रुपये और 80 वर्ष तथा उससे अधिक आयु वर्ग के लिए 625 रुपये होगी।
1: दिव्यांग जनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिसेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांग जन को पेंशन में कवर किया जाएगा। 27 लाख दिव्यांग जन लाभार्थी होंगे। टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3,20,00,000 हो जाएगी।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दे दी है।
2: भारत जिस तेजी से ग्रो कर रहा है, इसमें ग्रोथ कैपिटल की बहुत रिक्वायरमेंट, ऐसी हमारे पास कई संस्थाएं चाहिए जो कि ग्रोथ कैपिटल को ला सके, समय समय इसको सपोर्ट कर सके। इसीलिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, उसमें एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर सेलेक्ट किया गया है और स्ट्रेटेजिक पार्टनर की मदद से नया कैपिटल इन्फ्यूज किया जाएगा और भारत में फाइनेंशियल सर्विसेज में लार्जेस्ट FDI आने का माध्यम इस निर्णय से बना।
0: मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की भी घोषणा की है। श्री वैष्णव ने बताया कि प्रत्येक पात्र कर्मचारी को अधिकतम 17,951 रुपए का भुगतान किया जाएगा।
1: रेलवे के करीब 11,40,770 कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस, 78 दिनों का बोनस आज कैबिनेट ने अप्रूव किया। ये दीपावली का उपहार है रेलवे के सभी कर्मठ कर्मचारियों के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं। करीब 2,009 करोड़ रुपए का टोटल बोनस है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान चल रहा है।

0: रेलवे में मैसिव रिक्रूटमेंट चल रहा है, भर्तियां करीब 1,65,000 भर्तियां निकली हुई है जिसपे एग्जाम लगातार चल रहा है। अब तक करीब करीब 37,000 रोजगार पक्की नौकरी दी जा चुकी है रेलवे में इसी पिछले कुछ समय में ही। टोटल अगर 2014 से अब तक की देखें तो करीब 5.5 लाख भर्तियां रेलवे में की गई है।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को आर्थिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार कम हिस्सेदारी बनाए रखते हुए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से विकास के अगले चरण को गति दे रही है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इससे न केवल बैंकिंग व्यवस्था मजबूत होगी बल्कि बैंकिंग सेवाएं वैश्विक मानकों से बढ़कर होंगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: तो शुरू करें।

0: सर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत कनाडा के साथ एक ऐसी रचनात्मक और भविष्योन्मुखी रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जिससे दोनों देशों के लोगों को फायदा हो। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। उन्होंने व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के आवागमन में भारत कनाडा संबंधों को और मजबूत करने पर बातचीत की। श्री मोदी ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत को जल्द पूरा करने पर बल दिया। उन्होंने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रम पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। इससे पहले विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और कनाडा की विदेश मंत्री ने व्यापार और निवेश, शिक्षा, ऊर्जा, रक्षा और जन समुदाय आदान प्रदान क्षेत्रों में संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। कनाडा की विदेश मंत्री ने कहा कि व्यापार वार्ताओं को आगे बढ़ाने से लेकर ऊर्जा, नवाचार और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने तक भारत और कनाडा की प्रगति से वे उत्साहित हैं। सरकार ने भारत मॉरिशस के दोहरे कराधान निवारण समझौते में संशोधन अधिसूचित किए हैं। इसमें कर चोरी और कर से बचने के लिए संधि प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक प्रमुख उद्देश्य परीक्षण शामिल किया गया है। संशोधित समझौते के अंतर्गत यदि किसी लेन देन या व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य कर संबंधी लाभों को प्राप्त करना पाया जाता है तो ऐसे लाभों को अस्वीकार किया जा सकता है। भारत ने आज सऊदी अरब के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए पश्चिम एशिया के देशों में हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत नागरिक बुनियादी ढांचे पर सभी हमलों की निंदा करता है। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले पूरी तरह स्वीकार्य हैं और इन्हें फौरन बंद होना चाहिए। श्री जायसवाल ने बताया कि सऊदी अरब में भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के साथ नियमित संपर्क में है और परामर्श भी जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि रियाद हवाई अड्डे पर हमले के बाद उड़ानों में व्यवधान आया है।
2: भारत और सऊदी अरब के बीच में काफी आवाजाही होती है, लेकिन हमारे जो एम्बेसी हैं वो एयरलाइन से, समुदाय से और जिनको जिस प्रकार का जो भी उनको मदद चाहिए वो करा रही है और हमारा मानना है कि सिचुएशन अगर बेहतर हो जाए तो लोग वापस आ सकेंगे घर। कुछ जहाज चल रही है, हमारे जो भारतीय जहाज थी उन पे डिस्ट्रप्शन आया है, लेकिन सऊदी अरेबिया की तरफ से जो उनके हवाई जहाज की कंपनियां हैं वो फ्लाइट्स चल रही हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की सभ्यतागत यात्रा सदियों से सांस्कृतिक आदान प्रदान और ज्ञान के साझा प्रयासों से समृद्ध हुई है। भारत के वैश्विक सांस्कृतिक संबंधों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने एक संदेश में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भिक्षुओं, विद्वानों, व्यापारियों और यात्रियों ने भूमि और समुद्री मार्गों के जरिए भारतीय विचारों को दुनिया भर में पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 साल पूरे कर लिए हैं। उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र जनसेवा से देश सेवा रहा है। सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए

0: लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। विशेष श्रृंखला में आज हम जानेंगे कि प्रधानमंत्री संग्रहालय ने किस तरह इस दृष्टिकोण को साकार किया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया था, जिसमें देश के सभी प्रधानमंत्रियों के काम और देश के विकास में उनके योगदान को दर्शाया गया है। यह संग्रहालय दिखाता है कि कैसे भारतीय लोकतंत्र ने समाज के हर वर्ग के नेताओं को राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के अवसर दिए हैं। दो भवनों में फैला यह आधुनिक डिजिटल संग्रहालय भारत के राजनीतिक इतिहास, लोकतांत्रिक परंपराओं और विकास यात्रा की झलक प्रस्तुत करता है। संग्रहालय में वीरांगनाओं की महागाथा नाम से एक लाइट एंड साउंड शो भी आयोजित किया जाता है, जिसमें उन वीर महिलाओं की प्रेरणादायक कहानियां दिखाई जाती हैं, जिन्होंने देश के सम्मान की रक्षा के लिए संघर्ष किया। इस संग्रहालय का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि यह सभी सरकारों की साझा विरासत और देश के विकास में उनके योगदान का प्रतीक है।
2: देश आज जिस ऊंचाई पर है, वहां तक उसे पहुंचा

0: समाज के हर वर्ग के नेताओं को राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के अवसर दिए हैं। दो भवनों में फैला यह आधुनिक डिजिटल संग्रहालय भारत के राजनीतिक इतिहास, लोकतांत्रिक परंपराओं और विकास यात्रा की झलक प्रस्तुत करता है। संग्रहालय में वीरांगनाओं की महागाथा नाम से एक लाइट एंड साउंड शो भी आयोजित किया जाता है, जिसमें उन वीर महिलाओं की प्रेरणादायक कहानियां दिखाई जाती हैं जिन्होंने देश के सम्मान की रक्षा के लिए संघर्ष किया। इस संग्रहालय का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि यह सभी सरकारों की साझा विरासत और देश के विकास में उनके योगदान का प्रतीक है।
1: देश आज जिस ऊंचाई पर है, वहां तक उसे पहुंचाने में स्वतंत्र भारत के बाद बनी प्रत्येक सरकार का योगदान है। मैंने लाल किले से भी ये बात कई बार दोहराई है। आज ये संग्रहालय भी प्रत्येक सरकार की साझा विरासत का जीवंत प्रतिबिंब बन गया है।
0: श्रीलंका के न्यायमूर्ति एस थुरै राजा ने प्रधानमंत्री संग्रहालय के दौरे के दौरान भारत के लोकतंत्र और देश के विकास में प्रधानमंत्रियों की भूमिका पर अपने विचार साझा किए।
2: हम भारत के मुख्य न्यायाधीश के निमंत्रण पर दिल्ली आए। मैं सोच रहा था कि जाऊं या नहीं, लेकिन अगर मैं नहीं आता तो बहुत कुछ मिस कर देता। यहां के लोग बहुत अच्छे हैं, आयोजक शानदार हैं और निर्देशक तथा वो बच्चे जो हमें गाइड कर रहे थे वे भी बेहद खुशमिजाज हैं।
0: नई दिल्ली के तीन मूर्ति मार्ग पर स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय देश के सभी प्रधानमंत्रियों की सोच, नेतृत्व और योगदान को सामने लाकर युवा पीढ़ी को प्रेरित करता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत किसानों की आजीविका में सुधार करते हुए वैश्विक खाद्य भंडार बनने की ओर अग्रसर है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री चौहान ने बताया कि 2014 से 2024 के बीच खाद्य उत्पादन में 49% की वृद्धि के साथ भारतीय कृषि ने कमी के दौर से निकलकर आत्मनिर्भरता और रिकॉर्ड उत्पादन की ओर कदम बढ़ाया है और दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है।
4: हमारे जो लक्ष्य है, उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, नुकसान हो जाए तो भरपाई करना, कृषि का विविधीकरण, वैल्यू एडिशन और प्राकृतिक खेती, इस धरती को, इस माटी को आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रखना है। हम इतने स्वार्थी नहीं हो सकते कि अनियंत्रित केमिकल, फर्टिलाइजर, कीटनाशकों का उपयोग करके माटी के स्वास्थ्य खराब कर।
3: महाराष्ट्र के 358 तालुकों में से 305 को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दीपावली से पहले किसानों को 5,000 रुपए की प्रारंभिक वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। मुंबई में श्री फडणवीस ने कहा कि सूखा राहत रियायतें सभी 305 प्रभावित तालुकों के किसानों तक पहुंचाई जाएंगी। सरकार ने गन्ना किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच करने और उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए उचित उपायों की सिफारिश करने के लिए एक समिति का गठन किया है। नीति आयोग के पूर्व सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद इस समिति की अध्यक्षता करेंगे। आनंद कुमार वेल कुमार ने पैराग्वे में विश्व स्केटिंग खेलों में 1000 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में रजत पदक जीता है। आनंद कुमार 4 मिली सेकेंड से स्वर्ण पदक जीतने से चूक गए। प्रतियोगिता में उन्होंने 500 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में कांस्य पदक भी जीता है। हैदराबाद में चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में वेस्टइंडीज ने भारत को 248 रन का लक्ष्य दिया है। साई होप ने नाबाद 102 रन की पारी खेली। अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव और अक्षर पटेल ने एक विकेट लिए। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 2-1 से आगे है। मौसम विभाग ने कल हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान के साथ ओले भी गिर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में शारदीय नवरात्र के दौरान श्री माता वैष्णो देवी के मंदिर में अब तक 1,80,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 साल के लिए बढ़ाया। दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों के लिए पात्रता मानदंड और सहायता दरों में संशोधन। सरकार ने IDBI बैंक के पुनर्गठन और रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के बोनस को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के साथ एक दूरदर्शी रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए

0: भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत ने सऊदी अरब में नागरिक अवसंरचनाओं पर हमलों को अस्वीकार्य बताते हुए इन्हें फौरन बंद करने को कहा और हैदराबाद में चौथे T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को दिया 248 रन का लक्ष्य। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में तीसरी मंजिल फिल्म के गाने के साथ। मजरू सुल्तानपुरी हैं गीतकार और संगीतकार हैं R.D. बर्मन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में प्रेम पुजारी फिल्म का गाना। इसे लिखा था नीरज ने और संगीत से संवारा था SD बर्मन ने। लीजिए सुनिए बहारें फिर भी आएंगी, इस फिल्म का गाना। मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें हैं, अजीज कश्मीरी के बोल हैं और ओपी नैयर की तर्ज है।

बेटा देखे ना जा मुझको, देश मेरा है झांसी, लेकर तेरा लाल दुपट्टा ले लूंगा मैं फांसी, होए होए मर

0: वो रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
1: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
1: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
0: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम आपके लिए। लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में शागिर्द फिल्म का गाना। मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा इसे और संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

हीला ढाला लिबास क्यों, रेशम पहनो कपास क्यों, फन ये जादूगरी का है, अरमा तुमको परी का है।

में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा, जा।

श्रोताओं, और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मोहम्मद रफी की आवाज में शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन की है तर्ज। फिल्म का नाम एन इवनिंग इन पेरिस।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म का गाना। शैलेंद्र के थे बोल और शंकर जयकिशन की थी तर्ज।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश का नंबर वन मनोरंजन रेडियो चैनल। आज के फनकार कार्यक्रम कुछ ही पलों के बाद होगा।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

फिल्मों में हम हीरो हीरोइंस को एक से बढ़कर एक सजीली पोशाक पहने हुए दिखते हैं और कभी भी हमारे जहन में ये सवाल नहीं आता कि आखिर इन पोशाकों को डिजाइन कौन करता होगा, कहानी और पटकथा के अनुरूप इन वेशभूषाओं को कौन व्यवस्थित करके हीरो हीरोइन के लिए तैयार करवाता होगा। ये काम कॉस्ट्यूम डिजाइनर का होता है और आज एक बहुत ही मशहूर और महान कॉस्ट्यूम डिजाइनर की बातें आज के फनकार कार्यक्रम में। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और इस कार्यक्रम में लेकर आया हूं बातें भानु अथैया की।

आप सोच रहे होंगे कि जैसे ही मैंने भानु अथैया का नाम लिया और उसके बाद गाना बजा फिल्म ब्रह्मचारी का, आखिर ये माजरा क्या है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि 1969 में आई फिल्म ब्रह्मचारी के इस गाने में मुमताज ने जो ऑरेंज कैंडी कलर की घुटनों तक प्री प्लेटेड साड़ी पहनी थी, उसे भानु अथैया ने डिजाइन किया था और कुछ इस तरह से डिजाइन किया था कि इस गाने की जो शानदार कोरियोग्राफी थी उसमें थिरकने में मुमताज को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और वो सजीले बांके नौजवान शम्मी कपूर के साथ थिरकते हुए गा सकें।

वाकई भानु अथैया की डिजाइन इस ड्रेस में मुमताज की शोख अदाओं ने लोगों का दिल चुरा लिया और हर जबान पर चर्चे आ गए। हिंदी फिल्मों का ये एक ऐसा गाना है जिसे हम कभी भी और कहीं भी देखना और सुनना पसंद करते हैं। दरअसल मुमताज साड़ी के नाम से मशहूर इस ड्रेस की डिजाइनर भानु अथैया की यात्रा यहां से शुरू नहीं होती। इसके लिए हमें पीछे जाना होगा साल 1929 की तरफ, महाराष्ट्र का शहर कोल्हापुर। यहां एक बालिका ने 28 अप्रैल 1929 को जन्म लिया। नाम रखा गया भानुमती अन्ना साहेब राजोपाध्याय। जी हां, भानुमती अन्ना साहेब राजोपाध्याय, क्योंकि पिता का नाम था अन्ना साहेब और माता का नाम था शांताबाई राजोपाध्याय। अपने माता पिता की 7 संतानों में भानुमती तीसरे नंबर पर थी। आजादी के पहले का दौर था, लड़कियों की शिक्षा पर उतना जोर नहीं दिया जाता था, पर भानुमती के माता पिता ने अपनी बेटी को खूब पढ़ाया। उसकी रुचियों को देखते हुए और उसके टैलेंट को देखते हुए आगे चलकर भानुमती को भेजा गया मुंबई जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में कला की शिक्षा लेने के लिए। यहां से भानुमती गोल्ड मेडल के साथ ग्रेजुएट हो गईं। जरा सोचिए कि समय कैसी करवट लेता है। बचपन में माता पिता ने देखा कि भानुमती रेखाचित्र बनाती हैं। आजादी के पहले का समय था तो माता पिता ने कहा कि तुमको गांधी जी का रेखाचित्र बनाना चाहिए। भानुमती ने बचपन में ऐसा ही किया था। और जरा सोचिए कि आगे चलकर भानुमती भानु अथैया बनी और सर रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी की कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए उन्हें ऑस्कर से नवाजा गया। ये था समय का पैंतरा।

भानुवती का विवाह सत्येंद्र अथैया से हुआ था, जो एक कवि और गीतकार थे। ये रिश्ता लंबा नहीं चल पाया, पर भानु अथैया ने आगे विवाह नहीं किया। भानु अथैया ने अपनी कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग की यात्रा सन 1953 में शुरू की थी, फिल्म CID के जरिए।

इसकी बात तो हिंदी सिनेमा में ड्रेस डिजाइनिंग को लेकर उन्होंने एक नई क्रांति ला दी। किसी जमाने में भानु अथैया महिलाओं की पत्रिकाओं के लिए फैशन विशेषज्ञ के रूप में काम करती थीं। फिर वो परिधान डिजाइनिंग यानी कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग की दुनिया में आ गईं। अब आपको सुनवाते हैं फिल्म श्री 420 का नगमा। ये फिल्म आपने देखी ही होगी, इसलिए आंखें बंद करके याद कीजिए इस गाने में थिरकती हुई नादिरा को, जिनके लिए गाउन तैयार किया था भानु अथैया ने ही। और ये कॉस्ट्यूम कितनी बड़ी हिट हुई थी उस दौर में जीने वाले लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं।

भानु अथैया ने अपने इंटरव्यूज में कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग को लेकर कई तरह की बातें कही। उन्होंने कहा कि एक जमाना ऐसा था जबकि डायरेक्टर सेट डिजाइनर और किसी टेलर को लेकर बैठ जाते थे और स्टोरी के मुताबिक कपड़े सिलवा लिया करते थे, लेकिन जब मैं फिल्मी दुनिया में आई तो मैंने ड्रेस डिजाइनिंग को एक पेशेवर रूप दिया। डायरेक्टर्स की बात सुनकर मैंने स्केचेस बनाना शुरू किया और एक्टर्स की पर्सनैलिटी और कहानी की मांग के मुताबिक ड्रेस तैयार करना शुरू किया। अब जरा फिल्म वक्त को याद करते हैं। साधना ने फिल्म वक्त में एक खास ड्रेस पहनी थी, घुटनों तक ट्यूनिक और लाइक्रा लेगिंग स्टाइल वाली चूड़ीदार पजामे वाली ये ड्रेस लोगों के बीच बहुत मशहूर हुई और लड़कियों ने इसे अपनाकर उस जमाने का फैशन बना दिया था। कुछ फेरबदल के साथ आज भी इस तरह की पोशाक चलन में नजर आती है। तो फिल्म वक्त का साधना पर फिल्माया गया ये गाना सुनिए।

अब जरा फिल्म आम्रपाली की बात कर ली जाए। फिल्म आम्रपाली एक कॉस्ट्यूम ड्रामा था। ये कहा जा सकता है कि इस ऐतिहासिक फिल्म के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग करना एक चुनौती थी। भानु अथैया ने अपनी पुस्तक में इस बात का जिक्र किया है कि उन्होंने अजंता की गुफाओं में बनी पेंटिंग से प्रेरणा ली। बौद्ध भिक्षुओं के लिए पहने जाने वाले हल्के गेरुए रंग के कपड़ों को डिजाइन करना आसान नहीं था। इस दौरान इन कपड़ों को पारिजात के फूलों के रंग में रंगा जाता था। इस फिल्म में आम्रपाली का किरदार निभाया था वैजयंती माला ने, और उन्होंने जो पोशाकें इस फिल्म में पहनी उनको भानु अथैया ने बड़ा सोच समझकर डिजाइन किया था, कुछ इस तरह से कि स्किन फिटेड ड्रेस होने के बावजूद ये भद्दी न लगे, कहानी के अनुरूप उनमें एक गरिमा हो, एक ठसक हो और एक सजीलापन हो। इसी फिल्म में सुनील दत्त ने मगध के सम्राट का किरदार निभाया था और भानु अथैया ने उनके लिए क्लासिक धोती तैयार की थी। फिल्म आम्रपाली अपनी कथावस्तु वैजयंती माला के अभिनय और उनके नृत्यों के साथ साथ शंकर जयकिशन के संगीत के लिए भी याद की जाती है, और बहुत कम लोगों का ध्यान इस बात पर जाता है कि फिल्म आम्रपाली को सजाने में एक बड़ा योगदान था भानु अथैया का।

भानु अथैया की ड्रेस से सजी हुई कई फिल्में आपने देखी होंगी। पता नहीं आपका ध्यान इन फिल्मों में हीरो हीरोइन की पोशाकों पर गया या नहीं गया। सन 1956 में CID, सन 1959 में प्यासा, सन 1960 वहीदा रहमान की खूबसूरती से जगमगा गई सेलुलॉइड की स्क्रीन और इस फिल्म की पोशाकें तैयार की थी भानु अथैया ने, और लोग कह उठे।

बानो अथैया की खासियत ये थी कि वो फिल्म के किरदारों और कथानक को ध्यान में रखते हुए कॉस्ट्यूम डिजाइन करती रहीं। फिल्म रेशमा और शेरा में उन्होंने राजस्थान की पृष्ठभूमि की कमाल की पोशाकें तैयार की।

0: 1990 में एक बार फिर से राजस्थानी पृष्ठभूमि की पोशाकें तैयार करने का उन्हें मौका मिला। इस बार फिल्म थी गुलजार निर्देशित, लेकिन
1: टूटी

फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में जीना तमान ने जो पोशाकें पहनी थी वो भी भानु अथैया की ही डिजाइन की हुई थी।

साल 1964 की तरफ लौटते हैं। वैजयंती माला, राज कपूर, राजेंद्र कुमार, फिल्म संगम। इस फिल्म के लिए क्रेप सिल्क की साड़ियां वैजयंती माला के लिए चुनी गईं। जरा इस गाने को याद कीजिए, राज कपूर, राजेंद्र कुमार, वैजयंती माला, शंकर जयकिशन की धुन और मुकेश की आवाज, साथ में लता मंगेशकर।

0: का शर्माना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा दीवाना।
1: फिल्म राम तेरी गंगा मैली हो या फिल्म मेरा नाम जोकर, इन फिल्मों की ड्रेस डिजाइनिंग के पीछे भानु अथैया की प्रतिभा थी। कमाल अमरोही की फिल्म रजिया सुल्तान के लिए भी ड्रेस डिजाइनिंग का काम भानु अथैया ने किया था।

अब फिल्म गांधी की बात कर ली जाए। फिल्म गांधी के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग का मौका मिला था भानु अथैया को। दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म के लिए बाकायदा ऑडिशन और टेस्ट लिया गया था और दुनिया भर के लोगों में से भानु अथैया को चुना गया फिल्म गांधी की कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए। सन 1983 में रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर का ऑस्कर अवार्ड जीता था भानु अथैया ने, और वो ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय हस्ती बन गई थी। इसके

बाद भी भानु अथैया की कला जारी रही थी। आपको बता दें कि जब आमिर खान ने फिल्म लगान बनाई तो उसके लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग का काम भानु अथैया को ही सौंपा था। आजादी के पहले का परिदृश्य और ग्रामीण किरदार उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी कि किस तरह से वो इस फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइन करेंगी। खास तौर पर उन्हें ये ध्यान रखना था कि फिल्म में ग्रामीण गरीब किरदार हैं, जो आजादी के पहले के समय के हैं। खूब रिसर्च करने के बाद उन्होंने फिल्म लगान के किरदारों के लिए कॉस्ट्यूम्स तैयार की थी।

आशुतोष गोवारीकर की फिल्म स्वदेश के लिए भी ड्रेस डिजाइनिंग का काम भानु अथैया ने किया था। भानु अथैया को गुलजार की फिल्म लेकिन और आशुतोष गोवारीकर की फिल्म लगान के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग का नेशनल अवार्ड भी मिला था। कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग की अपनी इस पूरी यात्रा को उन्होंने एक किताब में संजोया है जिसका नाम है द आर्ट ऑफ कॉस्ट्यूम डिजाइन। परिधान डिजाइनिंग के शौकीनों के लिए ये किताब किसी महत्वपूर्ण ग्रंथ से कम नहीं है। अक्टूबर साल 2020, भानु अथैया एक खौफनाक बीमारी से जूझ रही थी। इससे पहले फिल्म लगान की शूटिंग के दौरान उन्हें लकवा भी लग गया था। उम्र धीरे धीरे अपना असर दिखा रही थी। 15 अक्टूबर के दिन उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। भारत की एक सबसे प्रसिद्ध ड्रेस डिजाइनर इस दुनिया से विदा जरूर हो गई, पर उनका नाम हमेशा रहेगा। जब भी फिल्म गांधी का जिक्र आएगा, ब्रह्मचारी का, स्वदेश का, लगान का, गाइड का, साहब बीवी और गुलाम जैसी फिल्मों का जिक्र आएगा या चौधरी का चांद और हिना जैसी फिल्मों का जिक्र आएगा, भानु अथैया को लोग याद करते रहेंगे, हमेशा याद करेंगे भारत की सबसे प्रसिद्ध कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित जानी मानी कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी।
0: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
2: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं, नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है, इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।

प्रस्तुत है छाया गीत। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामिन, मैं एक किताब हूं, हां एक किताब। तसल्ली से पढ़ा होता तो समझ पाते मुझको, सिर्फ मुखपृष्ठ देखा, भूमिका पढ़ी और कुछ पन्ने उलट पलट कर बिना पढ़े ही रख दी किताब तुमने एक कोने में, कांच की सेल्फ के भीतर बस सजा दिया मुझको। काश मुझे पढ़ते तो समझ पाते कि क्या हूं मैं और क्या है मेरे भीतर तुम्हारे लिए।

मैं एक नदी भी हूँ, बहती रहती हूँ, कल कल करती, छल छल बहती, अकेली सी, सिसकती, मचलती, गरजती, उलझती सी। मैं नदी हूँ, उतरती हूँ दिलों में, किसी सुबह की उजास की तरह, कानों में गुनगुनाती हूँ, दरवाजों से बहती आती हूँ तुम्हारे भीतर, खुले दिलों में उतरती हूँ। हाँ, मैं भीड़ में खोना नहीं चाहती खुद को, हाँ मैं भीड़ में खोना नहीं चाहती खुद को, मैं तुम में विलीन हो जाना चाहती हूँ, डुबो देना चाहती हूँ खुद को तुम्हारे भीतर, नदी बनकर।

सुनो, हाँ मैं रात हूं सहमी हुई। तुम लिख सकते हो मुझ पर कोई कविता? एक रात में कवि कितनी कविताएं लिख लेता है। जब सभी सो जाते हैं, कवि चुपचाप छत पर नंगे पैर आता है रात को निहारने के लिए, है ना? काश तुम भी छत पर आते, मैं रात सुहानी बन जाती जब बन जाते तुम मेरे चांद। हाँ, मैं रात सुहानी बन जाती जब बन जाते तुम मेरे चांद।

छाया गीत में आप हैं मंदाकिनी के साथ। कभी कभी सोचती हूं मैं एक हवा हूं, मेरे स्पर्श से रोमांचित हुए हैं पेड़ पहाड़ और कबूतर चिड़िया भी। तुम्हें छूती हूं तो तुम में भर जाती हूं, तड़पती हुई तुम में समा जाना चाहती हूं। मैं तुम्हारे प्यार में सरस सरल बनकर बह रही हूं अनवरत अनवरत अपने ही भीतर, हां अपने ही भीतर।

मैं बारिश हूँ किसी प्रेम कविता सी। धीरे धीरे गिरती बूंदें, बादलों की ओट में छुपा चांद, पहाड़ियों पर उतरती धुंध, मुझसे भीग कर तुम्हारा वो मुस्कुराना, वक्त जैसे थम जाता है, ये भीगी वादियां और तुम्हारा साथ, उफ, सब मिलकर जैसे इश्क की एक नई कहानी बन रही होती है तब। हाँ, एक

पन्नों में मशगूल एक प्रेमिल कवि। सोचती हूँ तुम्हारे संग बर्फीली वादियों में खो जाऊं, तुम्हारा हाथ थामकर चलूं, यूं ही किसी चांदनी रात में दूर तक किसी घने जंगल में खो जाऊं तुम्हारे साथ। हाँ, अच्छा लगता है तुम्हारा ये साथ। वो सर उठाकर बंद आंखों से जाने क्या सोचते हुए बुदबुदाते हो तुम, बहुत अच्छे लगते हो तब। हाँ, बहुत अच्छे लगते हो तब। मैं तो

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
2: ढलती जाए रात।

रंग तरंग कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का स्नेहिल अभिवादन। इस कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है।

0: सुन रहे थे ये गैर फिल्मी रचना।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
3: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
1: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
0: कार्यक्रम का अगला गीत रोचक कोहली के संगीत निर्देशन में गुरुप्रीत सैनी का लिखा हुआ, आवाज है आयुष्मान खुराना की।

यह आवाज़ थी आयुष्मान खुराना की। विविध भारती से इस समय आप सुन

यही है कार्यक्रम रंग तरंग। आइए सुनते हैं अदनान सामी का संगीत, रियाजुर रहमान सागर की रचना, स्वर अदनान सामी और आशा भोसले के।

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम में अब सुनिए शुभा मुदगल की आवाज में ये गैर फिल्मी रचना।

ये आवाज थी शुभा मुद्गल की और अब हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित कुमार गंधर्व का गाया ये भक्ति पद।

उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू वारिस और फिर संगीतकार

0: प्रेम कथा
1: मैं निकला वो गड लेके
0: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की
1: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा
0: एक उत्तम जीवन की कहानी उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे

शोभा जोशी की आवाज में हम आपको मिर्जा गालिब की ये रचना सुनवा रहे हैं। संगीत शांतनु मोइत्रा का।

0: वो रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
1: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
1: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
0: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज 14 अक्टूबर है, विश्व मानक दिवस है ना। मानकों की दुनिया में अंकों और गिनती का विशेष महत्व है। चाहे किसी वस्तु का वजन करना हो, लंबाई मापनी हो या किसी चीज की सही मात्रा तय करनी हो, तो हर जगह गिनती और सटीक माप बहुत जरूरी होता है। तो खरीदारी की बात करें या कारोबार की बात करें, पैसे की अपनी अहमियत होती है। यानी रुपयों और पैसों का हिसाब किताब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो आइए आज सुनते हैं कुछ ऐसे ही फिल्मी नगमे जिनमें कहीं रुपए पैसे की बात है तो कहीं खरीदारी और लेनदेन का जिक्र, तो कहीं अंकों की भूमिका। ये है कार्यक्रम का पहला गीत। कैफी आजमी का लिखा गीत है, एसडी बर्मन का संगीत है, गीता दत्त की आवाज, फिल्म का नाम कागज की फूल।

गीता दत्त और साथियों की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे फिल्म कागज के फूल का ही गीत। गीतकार कैफी आजमी थे और संगीतकार थे एसडी बर्मन। और आइए कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म आवारा से सुनते हैं। स्वर शमशाद बेगम और साथियों के, बोल शैलेन्द्र के हैं और धुन शंकर जयकिशन की।

हे गाओ की आजा मौसम।

0: फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
1: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
1: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
0: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें साझा करेंगे, सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीयता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
3: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
5: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध, बस आपको इतना कहना है एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
6: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
7: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
5: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
8: मेरा साया साथ होगा।
9: यादों की महफिल कार्यक्रम में अब वक्त है एक अंतराल का।

0: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए सुनते हैं जयदेव के संगीत निर्देशन में सुदर्शन फाकिर का लिखा गीत। फिल्म का नाम है दूरियां। आवाजें प्रीति सागर, रेणु मुखर्जी और साथियों की।
1: किकड़ तुकड़ भंबे भो, 80-90 पूरा सौ, 100 का लोटा, तीतर मोटा।

0: किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में अभी आपने फिल्म चलती का नाम गाड़ी का गीत सुना। शब्दकार मजरूह सुल्तानपुरी थी और संगीत SD बर्मन का था।
1: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
2: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
1: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर।

सुमन कल्याणपुर और कमल बारूट की आवाजों में अभी आपने सुना फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे का ये गीत, शब्द शकील बदायूनी के थे। कृपया से दोबारा सुने, शब्द शकील नोमानी के थे और तर्ज कल्याण जी आनंद जी की थी। और ये है राजेश रोशन का संगीत, पयाम सईद की रचना, नितिन मुकेश की आवाज है, फिल्म का नाम है काला बाजार।

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम की अगली पेशकश लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म संत ज्ञानेश्वर का गीत सुनिए। गीतकार पंडित भरत व्यास हैं, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारीलाल हैं।

कार्यक्रम का अगला गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, आनंद बख्शी के बोल, किशोर कुमार और साथियों की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है कर्ज़।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती ही पार्वती ही पार्वती।
4: कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म नील बट्टा सन्नाटा से हमने लिया है। स्वर है रोहन उलपत, आरती शेनाई और साथियों के, गीतकार नितेश तिवारी हैं, संगीतकार हैं रोहन और विनायक।

0: वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू वारिस और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
1: दिल तो पागल है,
0: दुश्मन
2: चिट्ठी न कोई संदेह,
0: गदर एक प्रेम कथा,
3: मैं निकला ओ गड्डी लेके,
0: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की,
4: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पाव,
0: एक उत्तम जीवन की कहानी, उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ। 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: कार्यक्रम में आप सुनिए फिल्म दे दनादन का गाना, गाने वाले कलाकार RDB, मानक और सेलिना।
6: क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा।

0: ये था फिल्म दे दनादन का गाना।
1: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
2: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी।
0: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
2: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
4: और अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुरीला सफर कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

इन्हें नामों से। हाँ, आज सुरीला सफर में सजेगी नामों की महफिल, जहाँ कोई कहेगा माई नेम इज एंथनी और कहीं गूंजेगा रेखा, शबनम और लीना जैसे नामों का जादू। तो आइए गीतों के इस सफर में मिलते हैं कुछ जाने पहचाने नामों से, कुछ दिलचस्प अंदाज में। हो सकता है इनमें से कोई नाम आपका भी हो।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। जी बताइए, कैसे हैं आप? अच्छे हैं। बिल्कुल आप अच्छे हैं और हमारे कार्यक्रम को सुनने के लिए बेताब हैं। भाई देखिए ना, आज सुरीला सफर हम सजा रहे हैं।

0: तो चलिए पढ़ लेते हैं हमारी आज की इबारत क्या है, या यूं कहें कि आज का टेक्स्ट क्या है। दोस्तों, आज नाम की महफिल सजी तो हर कोई अपने नाम की तारीफ करने लगा। एंथोनी बोले, हमारी पहचान का तो अपना ही अंदाज है। जी हाँ, एंथनी ने कहा, हमारी पहचान का तो अपना ही अंदाज है। रीटा ने कहा, जरा अप्रैल फूल देखने जाइए, वहां भी हमारा ही जलवा है। लीना क्रिस्टीना इतराई, नाम हो तो ऐसा कि सुनते ही सब मुस्कुराएं। सुल्ताना ने ठसक से कहा, आप सब अपनी जगह पर, मेरा नाम भी किसी से कम नहीं। रेखा ने मुस्कुराकर पूछा, अच्छा, जब से मुझे देखा खाना पीना सब दुश्वार हो गया ना? तभी लीना बोली, अरे मुझे कैसे भूल गए, मैं दिल छीन लेती हूँ। अब्दुल ने कहा, नाम की बात छोड़िए, मैं तो सबकी खबर रखता हूँ। तभी अब्दुल रहमान ने टोका, जरा हमें भी याद रखिए, हमारा नाम भी अब्दुल रहमान है। शबनम, जमीला और राजू एक साथ बोल उठे, बस बस, अब फैसला श्रोता करेंगे कि किसका नाम सबसे प्यारा है। तो सुनिए नामों की ये मजेदार तकरार, जिसमें हर नाम का अपना रंग है, हर नाम का अपना तराना, आज के इस सुरीले सफर में। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत।
1: The whole country of the system is juxtaposition by the hemoglobin in the atmosphere, because you are a sophisticated rhetorician intoxicated by the exuberance of your own babacity.
2: My name is Anthony Gonsalves.
3: Gonsalves?
2: Right. My name is Anthony Gonsalves.
3: Wow!
2: My

0: आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: रियली?
0: राइट राइट, मैं

0: हिम्मत वाली, तो जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए। रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: ओह माय,
0: राइट, मैं दुनिया में अकेला हूँ।
1: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनिया is juxtapositioned by the hemoglobin of the atmospheric pressure in the country.

0: साथ वाली, तो जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्वेस।
2: क्यूट।

0: अरे जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज, माय नेम इज फ्रैंकी।
2: नो
1: नो, सेबेस्टियन।
2: नो,
1: गोल्डी, सोल्डी।
2: नो, एंथनी गोंसाल्विस।
0: ओह यस, एंथनी गोंसाल्विस।
3: ये आवाजें थी किशोर कुमार और अमिताभ बच्चन की। फिल्म का नाम था अमर अकबर एंथनी। गीतकार आनंद बख्शी थे और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारीलाल। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में नामों की महफिल सजी है। नाम भी कितने खास होते हैं, हर नाम की अपनी पहचान, अपना अंदाज और उससे जुड़ी कुछ प्यारी सी यादें होती हैं। कोई नाम सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है तो कोई दिल में प्रेम और अपनत्व का एहसास जगा देता है। नाम केवल पहचान नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, भावनाओं और रिश्तों का सुंदर हिस्सा भी है। फिल्मी गीतों में भी नामों ने कभी प्रेम की दस्तक दी, कभी शरारत जगाई तो कभी दिल की धड़कनों को आवाज दी। और आपने कुछ गानों के बोल लिखे हैं जो हमारी लिस्ट में आज शामिल भी हैं। वहीं एक श्रोता लिखती है कि आपने तो आज पूरी खिचड़ी बना दी है और हमें तो कोई नाम याद नहीं आ रहा है। फिल्में जरूर देखी हैं लेकिन उम्र का असर है शायद। चलो छोड़ो, आज गाने सुनाना आपको और सभी को नमस्कार देती है। भाई, हमने खिचड़ी नहीं पकाई, हमने पुलाव बनाया है जिसमें चावल बिल्कुल अलग अलग अलग अलग है। ध्यान से देखिए तो सही हमारी डिश क्या है। और वही एक श्रोता लिख दें कि मेरे पापा रेडियो बहुत ही चाव से सुनते थे, खासकर पापा जी लता जी की गजलें बहुत सुनते थे। उन्हें संगीतकार मदन मोहन जी बहुत पसंद थे। मैं छोटा था तो मैंने पूछा पापा जी मेरा नाम ये क्यों रखा, तो उन्होंने कहा संगीतकार मदन मोहन जी का संगीत उन्हें बहुत पसंद है इसलिए तुम्हारा नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा है। आज मेरे पिताजी को गुजरे 46 बरस हो गए हैं लेकिन उनकी चॉइस पर मुझे गर्व है। बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिखती है कि नवरस, नवकल्पना, नवरूप, सज्जित, नवीन, नामकरण युक्त गीत भरी इबारत स्वागत योग्य है। और आप लिखते हैं कि कुछ नाम गीत और व्यक्तित्व की अमिट छाप छोड़ जाते हैं। इन्हीं भांति भांति के नामों से पिरोई हुई संगीतमय सुरीला सफर का आज आपको इंतजार है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज नाम पर आधारित कार्यक्रम होगा, इसमें भी व्यक्ति दो दो विचार चलते हैं। कोई कहता है कि नाम में क्या रखा है, गुलाब का कुछ नाम रखने पर भी वो खुशबू तो देगा ही, तो कोई कहता है नाम ही आदमी की पहचान है, जैसे कि सुहाना सफर। अब कार्यक्रम में मित्रों के विविध विचार और आपके विचार भी लिए जाएंगे, देखें क्या निर्णय लिया जाता है। तो आज के सवाल आप चाहें तो नोट कर सकते हैं और उनका जवाब दें तो मजा आएगा। हाँ, हमने आज आपसे जानना चाहा है कि आपके पसंदीदा फिल्मी किरदार का नाम क्या है। जैसे अमिताभ बच्चन साहब का बहुत फिल्मों में नाम विजय

था, तो ये नाम बड़ा अच्छा लगता था हमें, या चांदनी, ये नाम भी बहुत फेमस हुआ। तो आप की फिल्म, जो फिल्मी किरदार हैं, उनमें आपको कौन सा नाम सबसे ज्यादा पसंद है? कई बार आपका नाम उनके नामों से मिलता जुलता भी हो सकता है, इसलिए भी हमें वो नाम पसंद आता है ना? तो बताइएगा कि आपको कौन सा फिल्मी किरदार का नाम बहुत पसंद है आज तक। और हमारा दूसरा सवाल है, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा या मोगेम्बो खुशवा, इस तरह के जो किरदार मशहूर हुए हैं फिल्मी दुनिया में, फिल्मों में, और हम उनका यदाकदा प्रयोग भी कर देते हैं, आपको ऐसे तकिया कलाम वाले कौन से किरदार आज तक याद हैं और आप अक्सर उन्हें गुनगुनाते हैं या पसंद भी करते हैं? जैसे ही वो फिल्म हम देखते हैं और कलाकार हमारे सामने कहता है कि मोगेम्बो खुशवा, तो हम कितने खुश हो जाते हैं। तो ऐसा ही कोई किरदार आपके मन पे अंकित हुआ होगा, उसका भी जिक्र आप करें, किसी एक किरदार का, बहुत सारे किरदार नहीं, फिर हम उसे शामिल नहीं कर पाते हैं क्योंकि समय का अभाव रहता है, किसी एक किरदार जो आपकी पसंद से जुड़ा है उसका जिक्र आपको करना है। आगे बढ़ते हैं, मदन मोहन के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत सुनते हैं, स्वर किशोर कुमार और लता मंगेशकर के, फिल्म का नाम है भाई भाई। बहुत ही प्यारा गीत है, ध्यान से सुनिएगा। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की जुगलबंदी बड़ी मजेदार है।

मेरा बाल बच्चा खाक देखो वेरी वेरी गुड मेरा चार्ली बादाम पिस्ता। मेरा नाम अब्दुल रहमान पिस्ता वाला मैं हूँ पठान खाने वाले का दिल होता गुल गुल बार बार।

अल्लाह का नाम। मेरा नाम अब्दुल रहमान, रिश्ता वाला मैं हूँ पठान, खाने वाले का दिल होता गुलगुल बार बार बाबा। मेरा नाम अब्दुल रहमान, रिश्ता वाला मैं हूँ पठान, खाने वाले का दिल होता गुलगुल बार बार बाबा।

तो बड़ा ही खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। एक श्रोता लिखती है कि वर्ष 1956 में आई प्रसिद्ध फिल्म भाई भाई का सदाबहार गीत मेरा नाम अब्दुल रहमान वास्तव में भारतीय सिनेमा का एक अनमोल रत्न है। इस गीत को लॉन्च किया गया था महान संगीतकार मदन मोहन के संगीत निर्देशन में और इसके जादुई बोल राजेन्द्र कृष्ण ने लिखे थे। मेरा नाम अब्दुल रहमान सिर्फ एक मनोरंजक फिल्मी गाना नहीं बल्कि ये मदन मोहन का बेजोड़ संगीत और किशोर कुमार और लता मंगेशकर की अमर गायकी का एक ऐसा उत्सव है जो हर पीढ़ी को पसंद आता है। बिल्कुल आपने सही लिखा, वाकई ये गीत बेजोड़ है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि नाम की भी अपनी एक अद्भुत दुनिया होती है जहां शब्दों से अधिक भावनाएं बोलती हैं और अक्षरों से अधिक यादें सांस लेती हैं। कितना अनोखा है किसी का नाम हमारी जबान पर आते ही उसका चेहरा आंखों के सामने उभर आता है। नाम अक्षरों में भले ही सीमित हो लेकिन उसके एहसास की कोई सीमा नहीं होती। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि नाम केवल अक्षर का समूह नहीं बल्कि मनुष्य के अस्तित्व पहचान और सामाजिक अस्मिता का आधार है। जहां नाम संज्ञा होती है वहां एक निराकार चेतना से साकार पिंड तुम्हें बदल जाता है। जैसे तुलसीदास जी ने राम लिखा तो वो केवल एक शब्द नहीं मर्यादा और मानवीय आदर्शों की साक्षात प्रतिमूर्ति बन गया। और जब नाम के अहंकार का विसर्जन सर्वनाम यानी मैं से उठकर हम या तुम पर आता है तो वो समष्टि से जुड़ जाता है। नाम तब तक मात्र कोरी स्लेट रहता है जब तक कि विशेषण उसे अपने रंगों से नहीं भरता, क्योंकि नाम की पहचान उसके गुण दोषों से जुड़ी होती है। वैसे ही राजा हरिश्चंद्र का नाम के साथ सत्यवादी जगते ही ये एक शाश्वत मूल्य यानी सिद्धांत बन जाता है। नाम का चरम लक्ष्य अवयव हो जाना है। जब कोई नाम इतिहास काल मृत्यु और युगों के थप्पड़ों के बाद भी नहीं बदलता तो वो अवयव बन जाता है, जैसे स्वामी विवेकानंद जी या सुभाष चंद्र बोस। समय बीतने पर भी इनकी चमक और प्रासंगिकता अपरिवर्तित बनी हुई है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर तरीके से आपने अपनी बात लिखी और आपने हमारा मन जीत लिया। वाकई चलिए तो हमारे सवाल एक बार फिर से दोहरा देते हैं। आपने नोट कर लिए हैं ना? वैसे तो कुछ श्रोताओं ने जवाब देना शुरू भी कर दिया है लेकिन चलिए एक बार सवाल फिर से दोहरा देते हैं कि आपके पसंदीदा फिल्मी किरदार का नाम क्या है। जैसे अमिताभ बच्चन साहब का कितनी फिल्मों में नाम विजय था और चांदिनी ओ मैं तेरी चांदिनी ये नाम भी हमें बड़ा अच्छा लगा। तो ऐसे बहुत सारे फिल्मी किरदारों के नाम दर्शकों के दिलों में बस गए, वो कौन सा नाम है जो आपको आज भी पसंद है? तो हमारा दूसरा सवाल था प्रेम नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा और मोगेम्बो खुश हुआ। इस तरह के किरदार हम अक्सर अपने घर में गुनगुनाते हैं जब फिल्म देखकर आते थे। बहुत पहले तो यही होता था कि ये नाम ये किरदार हमारे होठों पे हर वक्त रहा करते थे। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। कौन से है वो मशहूर किरदार जो आज भी आपके दिल से नहीं निकले हैं? उनका जिक्र आपको किसी एक किरदार का जिक्र करना है। आगे बढ़ते हैं एक और गीत के साथ। आशा भोसले की आवाज, फिल्म का नाम कटी पतंग, आनंद बख्शी के बोल और राहुल देव बर्मन की धुन। ये भी एक नायाब गीत।

0: गीत है जिसे गाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है।
1: शबनम, प्यार से लोग मुझे कहते हैं शबो।

पहचान ना, मिले थे कभी उस रात को? डरो नहीं, बात है वो राज की, पर राज राज ही रहेगा। मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मीना, मीना, अंजू या मंजू? मीना, मीना, अंजू, मंजू या मधु।

रोज रात भर शहनाई बजती रही, मैं थी तुम थी और वो शर्मा नहीं घबराओ नहीं, कहूंगी किसी से नहीं। जानते हो मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मीना, मीना, अंजू या मंजू? मीना, मीना, अंजू, मंजू या

हमारे श्रोता ने लिखा है कि नाम केवल कुछ अक्षरों का संयोजन नहीं होता, बल्कि ये हमारी पहचान है जो जीवन भर हमारे साथ चलती है। और जन्म के साथ ही हमें नया नाम मिलता है, लेकिन उस नाम का अर्थ हमारे कर्म, हमारा व्यवहार और हमारे व्यक्तिगत व्यक्तित्व वो हमें प्रदान भी करता है। वहीं एक श्रोता का कहना है कि नाम केवल संबोधन नहीं, हमारी पहचान का वो अक्षर है जिसमें स्मृतियों की सुगंध और व्यक्तित्व की आभा समाहित होती है। आज नामों की इस दिलचस्प महफिल में शब्दों ने मुस्कुराना सीखा है और सुरों ने संवाद करना। सचमुच जब साहित्य की शालीनता में हास्य का रस घुल जाए और संगीत की स्वर लहरियां साथ चले तो साधारण सी बातचीत भी एक अविस्मरणीय महफिल बन जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हम ये जो कार्यक्रम लेकर आते हैं एक मनोरंजक कार्यक्रम है ये आप सभी के लिए, और इसमें हमारा उद्देश्य हमेशा यही रहता है कि हम ऐसी महफिल सजाएं कि आपको याद रहे वो महफिल, है ना, और यही एक प्रयास हर उद्घोषक का होता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कई बार आम जिंदगी में सिनेमा, टीवी या साहित्य की दुनिया में किसी कलाकार का निभाए हुआ किरदार या मिला हुआ उपनाम इतना मशहूर हो जाता है कि लोग उनका असली नाम भूल जाते हैं। समीर खाकर को लोग उनके असल नाम से कम और टीवी सीरियल नुक्कड़ के किरदार खोपड़ी के नाम से ज्यादा जानते थे। इसी तरह कलाकारों को इंडस्ट्री में काम करने के लिए अपने असली नाम बदलने पड़ते थे या नए नाम मिलते ही वो जैसे ही मैन, बिग बी, गब्बर सिंह, बसंती, ये नाम आपको पसंद आते हैं। बिल्कुल यही सवाल हमने किया था कि कौन से नाम आपको पसंद हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज नाम की इतनी बोलबाला है, पर भारत का एक गांव ऐसा भी है वहां किसी का नाम नहीं है। मेरा इशारा भारत के उस अनोखे गांव की तरफ है जहां लोगों को पारंपरिक नामों

के बजाय सीटी बजाकर पुकारा जाता है। इस गांव का नाम है कोंगथोंग, जो मेघालय राज्य में स्थित है। मेघालय की खासी हिल्स में बसे कोंगथोंग गांव को विस्लिंग विलेज या एशिया का म्यूजिकल विलेज भी कहा जाता है, जहां अब भी जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी माँ उसके लिए खास और अनोखी सीटी की धुन यानी ट्यून तैयार करती है। वही धुन जीवन भर के लिए उस व्यक्ति की पहचान या नाम बन जाती है। गांव के लोग एक दूसरे को बुलाने या आवाज देने के लिए इतनी सीटी की धुन का इस्तेमाल करते हैं। यहां हर व्यक्ति की धुन बिल्कुल अलग होती है। अरे, आपने एक नई जानकारी हमें दी और हमें लगता है कि ये गांव क्या है, इसके बारे में हम भी जानना चाहेंगे, शुक्रिया। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि नाम पहचान एक जरिया है। इस संसार में जब कोई मनुष्य जन्म लेता है तो उसे सबसे पहले जो उपहार मिलता है वो है उसका नाम। नाम केवल कुछ अक्षरों का समूह नहीं, बल्कि वो किसी भी व्यक्ति के अस्तित्व, उसके गौरव, उसकी सामाजिक पहचान का सबसे महत्वपूर्ण जरिया है। बिल्कुल सही कहा आपने।

जब नामों की बात चली तो अगला गीत जो हम आपको सुनवा रहे हैं वो बहुत ही प्यारा गीत है, शायद बहुत कम सुना है हमने, लेकिन जो हमारे असली श्रोता हैं जो एक एक गीतों की पहचान रखते हैं वो समझ जाएंगे कि हाँ ये गीत तो हमने कई बार सुना है। शंकर जयकिशन के बोल हैं, हसरत जयपुरी की रचना, आवाज लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम अप्रैल फूल।

लगता है। और एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे तो वीबीएस के सभी उद्घोषकों के नाम बहुत ही पसंद है। अच्छा वही एक श्रोता को राधा नरगिस, राधा वैजंती माला, ये नाम बहुत पसंद आते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि नाम को लेकर दो मुहावरे ज्यादा प्रचलित हैं, आंख का अंधा नाम नयनसुख, नाम लिया और शैतान हाजिर, ये आपने मुहावरे लिखे हैं। वही एक श्रोता को शाकाल नाम जो है बहुत पसंद आता है, कुलभूषण खरबंता शायद शाकाल की भूमिका में काफी प्रसिद्ध हुए। और एक श्रोता लिखते हैं कि विजय दीनानाथ चौहान, ये नाम बहुत पसंद है, जो अमिताभ बच्चन साहब कहते हैं विजय दीनानाथ चौहान नाम है हमारा और वैसे उन्हें फिल्मों में विजय के नाम से भी बहुत जाना गया है, आप लिखते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप हैं, नाम है शहंशाह, ये बहुत अच्छा लगता है। और एक लिखते हैं कि किसी एक फिल्म में उत्पल दत्त को धुरंधर भटावटेकर पसंद आई थी, जोरू का गुलाम में गोविंदा ने फिल्म में अपने मामा को पीके गिरपड़े नाम भी दिया था, वो मजेदार था। एक श्रोता लिखती है कि स्कूल कॉलेज में तरह तरह के नामकरण होते रहते हैं, कुछ नाम को हम बिगाड़कर ही अपने दोस्तों को बोलते थे। आठवीं में क्लास में एक लड़की थी सतवंत कौर, जिसे हम प्यार से सेऊ से सत्तू बोलते थे। उसे समय बिहार में सत्तू अच्छे भजन में नहीं गिना जाता था, पता नहीं कैसे क्लास टीचर को पता लगा और हम जितनी लड़कियां उसे सत्तू बोलते थे सभी को सजा मिली। सत्तू खूबसूरत लड़की और पढ़ने में बहुत तेज थी, बाद में वो एमबीबीएस डॉक्टर बनी और अपने कार्यक्षेत्र में बहुत सफल रही, अब तो रिटायर होकर अपना जीवन गुजार रही हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि शाहरुख खान जी का जो नाम था राहुल, वो बहुत ज्यादा होता है फिल्मों में, ये नाम उन्हें बहुत पसंद है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि चंद्रमुखी जो फिल्म चंद्रमुखी से है, नैन के चैन चुरा के ले गई चंद्रमुखी, ये नाम इन्हें बेहद पसंद आता है। और एक श्रोता लिखते हैं कि बॉन्ड, माय नेम इज जेम्स बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड का किरदार 6 कलाकारों ने निभाया पर नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। बिल्कुल सही कहा आपने, और अगर किसी कलाकार से पूछा जाए तो जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाना चाहता भी है। एक श्रोता लिखते हैं कि पसंदीदा हीरो नाम है मोगेम्बो और हीरोइन में मोना डार्लिंग वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि भारत नाम पसंद है, क्योंकि भारत यानी अपने देश की याद करवाते हैं मनोज कुमार जी, और फिल्मों में वो इसे यूज करते हैं, उनका नाम भारत रखा जाता है, वो इन्हें बेहद अच्छा लगता है। और वही कि प्रेम नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा, जब वो बोलते हैं तो वो बहुत पसंद आता है। जी तो सवाल फिर से दोहरा देते हैं, जिन्होंने अभी अभी रेडियो सेट ट्यून किया है, हो सकता है किसी काम से श्रोता समय पर इस सफर में नहीं आ पाते हैं, तो हमारे सवाल ये हैं कि आपके पसंदीदा फिल्मी किरदार का नाम क्या है। जैसे अभी हमने बहुत से श्रोताओं के जवाब पढ़े और उन्हें अच्छा लगा जो नाम उन्होंने बताया, तो आपको भी बताना है कि जैसे विजय नाम बहुत था फिल्मों में, चांदनी, ऐसे जो नाम है जो हमें बहुत पसंद आए उनको आपको बताना है। और वहीं जैसे हमारा दूसरा सवाल था कि प्रेम नाम है प्रेम चोपड़ा और मोगेम्बो खुशवा, इस तरह के जो किरदार मशहूर हो गए और आज भी हमारे दिल में घुसे हुए हैं, उनका जिक्र आपको करना है, किसी एक किरदार का और किसी एक नाम को पसंद करना है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म का नाम है स्वर्ग नरक, गीतकार आनंद बख्शी हैं, संगीतकार हैं राजेश रोशन।

हमारे श्रोताओं ने सवाल के जवाब देने शुरू कर दिए हैं। एक लिखते हैं कि सलमान खान का नाम जो प्रेम है वो उन्हें बेहद पसंद आता है, वहीं किसी को राजू नाम बहुत प्यारा

हमारे श्रोता अपनी पसंद के नाम हमें बराबर लिख रहे हैं। एक लिखती हैं कि बाजीराव सिंघम लिखा है इन्होंने, आता माजी सटक ले। ये बहुत अच्छा लगता है डायलॉग अजय देवगन का फिल्म सिंघम से। और वहीं एक श्रोता को गब्बर का नाम पूरा मिट्टी में मिला दिए हैं, ये डायलॉग बहुत अच्छा लगता है। और एक श्रोता ने कहा है कि मुझे मनोज कुमार जी का नाम हमेशा बहुत ही पसंद रहा है, आज भी है भारत गीत तो पूर्व पश्चिम का गीत, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं, ये अच्छा लगता है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अमरीश पुरी साहब तो मोगम्बो के नाम से घर घर में मशहूर हो गए और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, आगे बढ़ते गए, बहुत ही अच्छे विलन के रूप में उन्होंने ख्याति प्राप्त की। बिल्कुल, उनका चेहरा देखकर ही डर लगता था जब वो कहते थे मोगम्बो खुश हुआ, है ना, कितना अजीब सी घबराहट होती थी। वहीं एक श्रोता को शत्रुघ्न सिन्हा का नाम जो कहते कि नाम चीनू कहते हैं मुझे, बहुत अच्छा लगता है। तो शत्रुघ्न सिन्हा का अगर ये डायलॉग आपको पसंद है तो एक डायलॉग और अच्छा लगता होगा, खामोश, जो अक्सर उनके साथ जुड़ता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे राज अनिल जय ये नाम बहुत पसंद है। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है, ये बहुत अच्छा लगता है। और करण अर्जुन फिल्म में अमरीश पुरी का नाम ठाकुर है जो इन्हें पसंद आता है एक श्रोता को। एक श्रोता ने कहा है कि अमजद खान का शोले में गब्बर सिंह का नाम भूले से भुलाया नहीं जाता, बिल्कुल सही कहा, वो तो नाम इतिहास में लिख दिया गया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गुजराती फिल्मों के कलाकार फिरोज ईरानी जो कि विलेन का रोल करते थे कई फिल्मों में, उनका प्रेम चोपड़ा के जैसा ही डायलॉग होता था, गुलाब गुलाबनी बात गुलाब जेबी, अच्छा। और वहीं एक श्रोता को विजय और रवि नाम ही पसंद है। एक श्रोता लिखती है कि रेखा और हमारा ही नाम हमें ज्यादा पसंद है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे याद नहीं आ रहा कि किसी फिल्मी चरित्र को मेरे वाला नाम

अब तो हुआ होगा। हाँ तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हमें क्या करना है। ये कोई जरूरी थोड़ी कि हमारा नाम किसी फिल्मी चरित्र से मिले। हमने तो ये पूछा, ऐसा हो सकता है कई बार हमारा नाम कहीं आया हो और हमें याद हो। वहीं एक श्रोता को मनोज कुमार का भारत कुमार, प्रेम नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा, मोगेम्बो खुशवा, ये बहुत पसंद है। और वहीं एक श्रोता को देवानंद साहब का जो है हीरा नाम, हीरा पन्ना फिल्म में हीरा नाम था, वो बेहद पसंद है। तो चलिए अगला गीत सुनते हैं, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें। फिल्म का नाम है नाइट इन लंदन, गीत रचना आनंद बख्शी की, संगीत रचना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, और ये गीत भी बहुत कम सुना गया है। बताइएगा ये गीत आपने सुना था बहुत पहले कभी।

अच्छा बताइए ना, ये गाना आप में से कितने लोगों ने सुना था, मेरा नाम है जमीला, बताइएगा। हाँ, हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि नाम रूप और गुण से ही तो भरी हुई है दुनिया और उसमें अपने अपने व्यवहार की फलश्रुति है। वैसे उस एक के अनेक संज्ञा स्वरूप ही नहीं अपितु गुण रूप ज्ञापक सहस्त्र नाम तो केवल निर्दर्शन परख ही है, अन्यथा वो विष्णु सहस्त्र नाम का एक तो अनाम होते हुए रूप गुण धाम से परे भी स्वयं के सच्चिदानंद स्वरूप में भी प्राप्य है और वही प्रिय भी है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ओ जूली, ओ शीला और रानी जमालो, ये गाना जो है इन्हें बेहद पसंद आता है क्योंकि इसमें बहुत सारे नाम आते हैं। और एक श्रोता ने कहा कि पहले एक बार नाम पर ही एक प्रोग्राम हुआ था, याद नहीं। अच्छा, उसमें एक सवाल आया था कि क्या आपका नाम कोई गीत में आता है। अच्छा, ऐसा कोई कार्यक्रम था। वहीं एक श्रोता का कहना है कि बच्चन साहब पर अमिताभ बच्चन बहुत ही कम लोग कहते हैं, या तो बिग बी या अब एक नया नाम आ गया है करोड़पति अंकल। एक श्रोता लिखते हैं कि अमर अकबर एंथनी फिल्म में विनोद खन्ना, ऋषि कपूर और अमिताभ बच्चन अमर अकबर एंथोनी बनते हैं, ये नाम इन्हें पसंद है। एक श्रोता ने लिखा है कि कहते हैं कि व्हाट इज द नेम, बट सब कुछ नाम में ही है और सब भागते भी नाम के लिए, पहचान भी नाम से ही है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हमें गैम्बलर पिक्चर का गाना जो देवानंद साहब और जाहिदा गाते हैं, मेरा मन तेरा प्यासा पूरी कब होगी आशा, अच्छा लगता है। और बातों बातों में हम कहते हैं कि हमारा नाम सूरमा भोपाली, ये सूरमा भोपाली नाम इन्हें बेहद पसंद आया जो कि फिल्म शोले में जगदीप साहब बोलते हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आप मुझे लिखते हैं कि आप एक नाम तो भूल ही गई हैं, मेरा नाम है चमेली, मैं हूं मालन अलबेली। बिल्कुल नहीं भूले जनाब, पिछले कार्यक्रम में इस गाने को हमने शामिल कर लिया था, इसलिए इस बार इस गाने को हमने नहीं लिया। वहीं एक श्रोता को मेरा नाम है लखन, राम लखन बहुत पसंद आता है। और एक श्रोता कहते हैं कि आज तो नामों की भरमार रहेगी, नाम करने के लिए सब कोशिश करते हैं, कुछ कामयाब हो जाते हैं, कुछ नहीं। रही बात फिल्मी नामों की तो वो तो सर चढ़कर बोलते हैं, जैसे मेरा नाम राजू, घराना अनाम, जूली, आई लव यू, लीना उलीना, मिली, ये सभी गाने पसंद हैं या नाम पसंद हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर सुनने में बहुत अच्छा लगता है और मैं खो सी जाती हूँ, संगीत में इतनी शक्ति होती है कि हर दुख दर्द आदमी भूल जाता है। ऐसा ही इंसान की भी फितरत होनी चाहिए, उसके बोली में इतनी सच्चाई और अपनापन होना चाहिए कि राह चलता आदमी भी अपना बन जाए। क्या बात है। कार्यक्रम का अगला गीत रविंद्र रावल का लिखा हुआ, राम लक्ष्मण का संगीतबद्ध किया हुआ है, आवाजें उषा मंगेशकर और साथियों की, फिल्म का नाम है तराना।

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि नाम अब्दुल है मेरा शान, फिल्म का ये गाना हमें बहुत अच्छा लगता है, जो अब अगला गीत है। बिल्कुल हाँ, रफी साहब की खनकती आवाज में आप सुनना चाहते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पड़ोसन में सुनील दत्त का नाम भोला और किशोर कुमार का गुरु इतना लोकप्रिय हुआ कि वे दोनों कलाकार जीवन पर्यंत एक दूसरे को गुरु और भोला कहकर बुलाते रहे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपने जो अभी पूछा जमीला वाला गाना, हमने ये पहली बार सुना है। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि मेरा नाम है जमीला, ये गाना उन्होंने पहली बार सुना है। चलिए, अच्छा लगा ना आपको ये गाना। वहीं श्रोता लिखते हैं कि सच कह रहा हूं, मेरा नाम किसी एक्टर का फिल्म में वही होता है जो मैं खुश होता हूं, या किसी गीत में या कृष्ण जी के किसी भजन में मेरा नाम आता है तो खुशी होती है, क्योंकि कृष्ण जी का पर्यायवाची ही मेरा नाम है। क्या बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे अमृता सिंह का रूबी नाम पसंद है, क्योंकि मेरा घर पर पुकारने वाला नाम यही है, सब मुझे कहते हैं सुन रूबिया। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। अच्छा लगता है जब हमें इस तरह से नामों से चढ़ाया जाता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि क्या अभी तक किसी ने मुगले आजम और सलीम और अनारकली को याद नहीं किया। और वहीं एक श्रोता को कटी पतंग का बिंदु का गीत बहुत पसंद है, जो अभी हमने आपको सुनवाया। और एक नाम मैं आपको याद दिलवाना चाहती हूँ, बसंती, बसंती नाम है मेरा, ये भी किसी ने याद नहीं किया। चलिए, कार्यक्रम के आखिरी सोपान पर हम पहुंच चुके हैं, जहां शान फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में सुनवा रहे हैं गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार राहुल देव बर्मन।

0: मेरा क्या, हाँ नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर
1: जी, सबकी खबर आप रखें ना रखें, लेकिन अपनी खबर, अपने लोगों की खबर आपको जरूर रखनी है, अपने नाम को बचाए रखना है। और इसी उम्मीद के साथ आज का सुरीला सफर समाप्त करने की मंदाकिनी जोशी को दे दें इजाजत। फिर मिलूंगी ना अगले किसी कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।

0: सखी सहेली सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को और दीपा आपको सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार।
1: सोनाली तुम्हें और हमारे सभी सखियों सहेलियों श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
0: मैं समझ गई आपका हेल्दी नमस्कार होगा। और भी नवरात्रि का त्योहार
1: बिल्कुल
0: बड़ी जोर शोर से पूरे देश में मना रहे हैं और बहुत सारी महिलाएं जो है व्रत भी करती हैं,
1: बहुत तो सारे भाई भी करते हैं, बहुत और बच्चे भी करते हैं, युवा को भी बहुत देखा है करते हैं। और ऐसे में अपनी सेहत का ध्यान रखना तो
0: बहुत जरूरी है। कुछ लोग जो है बिल्कुल भी यानी सिर्फ पानी पर रहते हैं या फिर बहुत ही कम खाते हैं, या कुछ लोग जो है बहुत सारे गरिष्ठ चीजों का सेवन करते हैं, तो हमें अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा। और बहुत तरह के व्यंजन बनते हैं इन दिनों में, उपवास के और फलहार बनाया जाता है। कई सारी जगह पे कई लोग अलग अलग रेसिपीज शेयर भी करते हैं अपने, और इसी तारतम्य में हमने सोचा चलिए शकरकंद के आपको अलग अलग व्यंजन बताया जाए।
0: शकरकंद जो है बहुत हेल्दी होता है, बहुत पौष्टिक होता है, उपवास में खाया जाता है। तो शकरकंद के जो व्यंजन है वो आज हमारे बहुत सारे सखियों ने, हमारे श्रोताओं ने ऑलरेडी लिख भेजे हैं, वे भी हम शामिल करेंगे। और भी अगर आप कुछ अलग शकरकंद के व्यंजन बनाते हैं तो वो जरूर हमसे शेयर कीजिएगा।
1: बिल्कुल। अच्छा, नवरात्र के दिन हो और तरह तरह के परिधान हम पहनते हैं, साड़ियों का तो देखो सदा बाहर मौसम रहता है, जब पहनिए तब अच्छा लगता है
0: जी।
1: तो अलग अलग हम प्रदेशों की साड़ियों को उसकी जानकारी हम बताना चाहते हैं आपको। तो आज तेलंगाना की पोचमपल्ली इक्कत साड़ी जो है उसके बारे में हम जानकारी देंगे। बहुत सारे संदेश भी आए हैं और ऐसा लग रहा है हमारी सहेलियों को ये वाली साड़ी बहुत पसंद है,
0: और हम पूछ भी लेते हैं ना अपनी सहेलियों से कि उनके पास में ये साड़ी है कि नहीं। और बहुत सारे हमारे श्रोता भाइयों से भी पूछते हैं कि आपने अपनी पत्नी जी के लिए पोचमपल्ली साड़ी दिलवाई है, उन्हें गिफ्ट दी है या नहीं।
1: और अगर ना दी होगी ना तो आज की जितनी जानकारियां हैं वो सुनने

0: के बाद जरूर दिलवाइएगा।
1: साथ ही आज जो है एक खास दिन है, विश्व मानव दिवस है
0: जी,
1: उस विषय पर भी हम बातचीत करेंगे। और एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है दीपा, कि वैवाहिक जिम्मेदारी से बचते युवा।
0: बिल्कुल, जो आज का युवा है 26 के बाद घरों में, आम तौर पे भारतीय घरों में ये होने लगता है कि भाई शादी करनी है हम तुम्हारे लिए, लड़का देखें या लड़की देखें, इस तरह की बातचीत शुरू हो जाती है। वहां फिर देखिए हमारे बच्चों को लगता है अभी नहीं करनी, अभी हम सेटल नहीं हुए हैं, अभी तो ये वक्त ही नहीं है, अभी हमारी नौकरी प्रॉपर नहीं है, इस तरह की सारी बातें शुरू हो जाती है। कोई स्टार्टअप लेके बैठा है तो कहता है अरे भाई स्टार्टअप लेके हम बैठे हैं, कहां हम ये शादी और इन सबके झमेलों में हमें मत डालिए मम्मी पापा। इस तरह के घर में बातचीत शुरू हो जाती, कहीं कहीं तो बहस भी हो जाती है।
1: और पहले ये बातें जो हुआ करती थी ना दीपा, ये सिर्फ लड़के करते थे, पर आजकल लड़कियां भी इस तरह की बातें करने लगी।
0: जी
1: सही बात है, उन्होंने भी बड़ी मेहनत से अपने करियर को सजाया सवारा है, पर हर चीज का एक वक्त होता है। शादी अगर बहुत एक वक्त होने के बाद में अगर शादी हो तो बहुत सारी आगे जाके दिक्कतें आ सकती है।
0: बिल्कुल, तो हम इस बातों पे विचार विमर्श तो करेंगे ही, और चाहते हैं कि आप सब भी, आपको क्या लगता है कितना सही है कितना गलत, आपके क्या अनुभव है घर में
1: जी,
0: तो आप जरूर शेयर कीजिए।
1: और हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखे हैं, मनवी जैसे बोलते हैं ना कि सोशल मीडिया के जो मैसेजेस हैं वो कॉपी पेस्ट किए हुए हैं, तो अपने विचार लिखिए कि इस बारे में आपके विचार क्या है।
0: घर में कोई ऐसी बात हुई है या नहीं हुई है, या कुछ चल रही है इन दिनों, या आप अपने बच्चे को या पोता पोती को किसी को समझा रहे हैं और वो ना मान रहे हैं, अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो जरूर बताइएगा।
1: और एक खास और एक और सेगमेंट है, ये है कि शब्द हमारा विचार आपके
0: जी,
1: इसके अंतर्गत आज का शब्द चुना है प्रार्थना, जिसको तो सुनते ही सुकून हमें महसूस होता है।
0: तो चलो शब्द बात की है प्रार्थना की, तो एक प्रार्थना ही सुने
1: जी, सुनते हैं।

0: तो दीपा अम्बे माँ को हम यही प्रार्थना करेंगे कि हम सभी के जीवन में खुशहाली हो और इस आनंद के साथ हम जिंदगी गुजारें।
1: बिल्कुल सही कहा। और देखो भक्तिपूर्ण माहौल हो गया है, प्रार्थना भी हमने कर ली है और आगे भी करेंगे, ऐसा नहीं, और जिंदगी भर करते ही रहना चाहिए। हम जिस चीज को मानते हैं, जिस भी बात पे आस्था है, उसे हमें बनाए रखना चाहिए। और देखिए बहुत सारे हम विशेष दिनों की बातें करते हैं, तो आज है विश्व मानक दिवस, जो हर साल आज के दिन यानी 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के महत्व को समझाने के लिए और उन विशेषज्ञों को उन्हें योगदान, उनके योगदान का सम्मान उन्हें हो सके, उनको समर्पित किया जाता है ये दिन। तो जो वस्तुएं होती है ना, सेवाओं और तकनीकी प्रणालियों के लिए एक मानक तैयार करते हैं। मानक हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम प्रतिदिन अनेक ऐसी वस्तुओं का उपयोग भी करते हैं सोनाली, जिनकी गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने में मानकों की अहम भूमिका होती है।
0: ये बात आपने बहुत सही कही दीपा। और चाहे मोबाइल फोन हो, बिजली के उपकरण हो, खाद्य पदार्थ हो या दवाइयां हो, हर क्षेत्र में मानकों का विशेष महत्व है। और विश्व मानक दिवस मनाने की शुरुआत वर्ष 1970 में हुई थी। 14 अक्टूबर 1946 को लंदन में 25 देशों के प्रतिनिधि एकत्र हुए थे और इस बैठक में अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक संगठन स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। आगे चलकर इसी प्रयास से अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन यानी आईएसओ की स्थापना हुई।
1: बिल्कुल। और वर्ष 1970 में आईएसओ के तत्कालीन अध्यक्ष जो थे उस वक्त फेरुक सुंटर, इन्होंने 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस के रूप में मनाने की पहल की और इस दिवस का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में मानकों के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।
0: और इस वर्ष की जो थीम है ना दीपा, 2026 की, वो है बेहतर दुनिया के लिए साझा दृष्टिकोण, सतत विकास लक्ष्य पर विशेष ध्यान, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, इस वर्ष का संदेश है।
1: बिल्कुल।
0: प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षित, भरोसेमंद, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने में अंतर्राष्ट्रीय मानक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब मानक क्या होते हैं? मानक यानी किसी वस्तु, सेवा या प्रक्रिया की गुणवत्ता, सुरक्षा, आकार, माप और कार्यक्षमता के लिए निर्धारित नियम या दिशा निर्देश है। अब उदाहरण के लिए खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा, बिजली के उपकरणों के सुरक्षित उपयोग के नियम और मोबाइल और इंटरनेट उपकरणों के बीच तालमेल, वजन और माप में एकरूपता, जैसे 1 किलोग्राम और 1 मीटर का समान माप।
1: बिल्कुल। और इसी तरह से इमारत और जो पुल होती है उनकी सुरक्षा से संबंधित भी नियम होते हैं। तो इन मानकों से उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ता है और उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखने में भी सहायता मिलती है। तो आईएसओ जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन है। ये संगठन अलग अलग उद्योग या सेवाएं या प्रक्रियाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक विकसित करता है। और इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग यानी आईईसी, ये विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक और संबंधित तकनीकों के मानकों पर काम करता है। और इसी तरह से फिर एक और है आईटीयू, अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ का ये इसका फुल फॉर्म है। ये दूर संचार और संचार नेटवर्क और डिजिटल तकनीक के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के विकास में योगदान देता है। अब ये तीनों जो संस्थाएं मिलकर विश्व मानक दिवस के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
0: और भारत में भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS राष्ट्रीय मानक तैयार करने और उत्पादों की गुणवत्ता और अनुरूपता से संबंधित कार्य करने वाली प्रमुख संस्था है। हमारे दैनिक जीवन में मानकों के महत्व को इन उदाहरणों से समझ सकते हैं, जैसे सोने के आभूषण खरीदते समय हॉलमार्क देखना, निर्धारित गुणवत्ता वाले बिजली के उपकरण चुनना, उत्पादों पर ISI चिन्ह और अन्य लागू प्रमाणन चिन्हों की जांच करना, वस्तुओं की पैकिंग पर दी गई जानकारी और गुणवत्ता संबंधी विवरण पढ़ना, हर उत्पाद पर एक चिन्ह लागू नहीं होता, हर उत्पाद पर हर चिन्ह लागू नहीं होता है, हर उत्पाद पर एक ही चिन्ह लागू नहीं, इसलिए खरीदारी करते समय संबंधित उत्पाद के लिए लागू मानक और प्रमाणन देखना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल। तो हमें लगता है अब सखियां हमारी सच में इस जो जानकारी है इससे और सचेत हो जाएंगी और हमेशा मानक की महत्व
0: चिन्ह देखकर ही
1: खरीदारी करेंगे।
0: अब जैसे कोई सोने के गहने खरीदते हैं तो उसमें भी मानक हमें देखना है, चिन्ह देखना है, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है, कोई भी चीजें हैं तो उसे उसका चिन्ह देखकर ही हमें खरीदारी करना चाहिए।
1: फिलहाल अभी क्या करना चाहिए,
0: ये सुनना चाहिए।
1: चलिए

0: सपनों का रंग देखो कभी कभी परिधानों पे भी आ जाता है
1: और कभी कभी डरा भी देता है।
0: कैसे?
1: जैसे हमेशा एक ही सपना आता है कि हम परीक्षा में लिखने बैठे हैं और हमें कुछ याद ही नहीं आ रहा है, हमें कुछ लिखना ही नहीं आ रहा है, या फिर हम दौड़े जा रहे हैं और रेगिस्तान में हमारे पैर ही उठ रहे हैं।
0: ऐसा होता है। अच्छा, कभी कभी कोई साड़ी खरीदने की इच्छा होती है ना, तो आप देखिएगा कितनी सारी हमारी सखियां इस बात से सहमत भी होंगी, वो सपने में आने लग जाती है।
1: हाँ, आपकी आती है?
0: आती है। हाँ? बिल्कुल, सच में ऐसी इच्छा है कि कभी हम जाएं ऐसी बर्फीली पहाड़ियों पे, हम भी कोई ऐसे शिफॉन की साड़ी लहरा करके एक बढ़िया सा कुछ वीडियो बनवाएं।

0: जैसे फिल्मों की हीरोइने,
1: हाँ जैसे फिल्मों की हीरोइने करती हैं, हीरोइंस करती हैं भाई। अभिनेत्री हर महिला अपने जीवन की अभिनेत्री तो होती है ना, और साड़ी उनका वही खूबसूरत परिधान है। और ये सिर्फ परिधान नहीं है, हमारे देश की कला संस्कृति और परंपराओं को अपने आंचल में समेटे हुए एक खूबसूरत विरासत है। देश के अलग अलग हिस्सों की साड़ियों की अपनी अलग पहचान होती है ना सोनाली। इन्हीं में से एक जो हम आज बात कर रहे हैं ना, पोचमपल्ली इक्कत, जिसे अपने जिसमें उसमें बड़े अट्रैक्टिव ये होते हैं
0: डिजाइन,
1: ज्योमेट्रिक डिजाइन होते हैं, हिंदी में अपन ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं, और उसकी अनोखी बुनाई होती है जो कि दुनिया भर में जानी जाती है।
0: और पोचमपल्ली तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिरी जिले में स्थित एक कस्बा है। यहाँ पीढ़ियों से बुनकर परिवार इक्कत की कला को संजोते आए हैं, और पोचमपल्ली इक्कत को भारत की पारंपरिक हाथकरघा कलाओं में विशेष स्थान प्राप्त है। इसे जीआई यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी मिला हुआ है। जीआई टैग यानी मानक की जो बात की,
1: हाँ, मानक की बात की
0: है, तो इसे भी जीआई टैग मिला हुआ है।
1: जी। अब इस साड़ी में ऐसा क्या खास है? तो असल में इक्कत की सबसे बड़ी विशेषता इसकी रंगाई और बुनाई की तकनीक है। सामान्य साड़ी में अक्सर कपड़ा बुनने के बाद उस पर डिजाइन बनाया जाता है, लेकिन इक्कत में धागों को बुनने से पहले एक खास तरीके से बांधकर उनमें रंग भरा जाता है। यानी डिजाइन कपड़े पर बाद में नहीं बल्कि जब बुनाई होती है ना तो धागे में पहले से ही तैयार किया जाता है।
0: और इस प्रक्रिया को समझना भी बहुत दिलचस्प है। ताने या बाने के धागों के जिन हिस्सों को किसी खास रंग से बचाना होता है उसे कसकर बांध दिया जाता है, फिर धागों को रंगा जाता है। बांधे गए हिस्सों पर रंग नहीं चढ़ता, इसके बाद अलग अलग हिस्सों को खोलकर दूसरे रंगों में रंगा जाता है, और अंत में इन्हीं रंगे हुए धागों को करघे पर बुनकर मनमोहक पैटर्न तैयार किया जाता है। इसी वजह से इक्कत के डिजाइनों में हल्का सा धुंधलापन या धागों के मिलने का प्रभाव दिखाई देता है, जो इसकी खूबसूरती और पहचान दोनों है।
1: बिल्कुल। अब हमारी जिन सखियों ने ये साड़ी खरीदी होगी या जिन्हें पसंद है, तो वो जानती हैं कि इसमें ज्योमेट्रिकल डिजाइन आपको देखने को मिलेगी, जैसे हीरे वाला जो पैटर्न है ना, हीरे का आकार या चौकर डायमंड शेप या चौकर पैटर्न होंगे, धारियां मिलेंगी या फिर पारंपरिक मोटिफ दिखाई देते हैं। कलर की बात करें तो लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, काला, ऐसे सारे चटक रंग इस्तेमाल होते हैं इनमें। और आज के समय में बुनकर पारंपरिक रंगों के साथ कुछ पेस्टल और आधुनिक रंग, ये उसका भी कॉम्बिनेशन बनाते हैं, वो तैयार करते हैं, वैसी साड़ियां भी पसंद की जा रही हैं।
0: और पोचमपल्ली इक्कत की परंपरा का इतिहास कई पीढ़ियों पुराना है। यहाँ के बुनकरों ने इस कला को अपने परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया है। कभी ये कला मुख्य रूप से स्थानीय और पारंपरिक जरूरतों से जुड़ी थी, लेकिन समय के साथ पोचमपल्ली इक्कत ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। आज साड़ी के अलावा इक्कत से दुपट्टे, कुर्ते, स्टोल, शर्ट और घर की सजावट से जुड़ी वस्तुएं भी बनाई जाती हैं।
1: अब भाई बात होगी कि चलिए आपकी इतनी सारी जानकारी से अब हमारी तो इच्छा जागृत हो गई कि हमें साड़ी खरीदनी है।
0: इसमें शर्ट का जिक्र किया है तो हमारे पुरुष जो भाई हैं
1: वो भी खरीद
0: सकते हैं इक्कत का शर्ट।
1: अब वो जानेंगे भाई मैं शर्ट लूं उससे पहले मुझे घर में जो महिलाएं उनको दिलाना पड़ेगा, तो कीमत क्या है इन साड़ियों की? तो कीमत जो है उसके कपड़े, धागे, डिजाइन, बुनाई की जो जटिलता है या हस्तकरघा का काम या पावरलूम पर बन रही है उस पे बहुत कुछ निर्भर करती है। अब अगर आप मिक्स्ड फैब्रिक का, मिक्स्ड कपड़े का लेते हैं ना इक्कत की साड़ियां, तो 1500 से 2000 या 2500 तक की भी मिल सकती है शुरुआती उसके जो रेट हैं। और आप बहुत अच्छी क्वालिटी के कॉटन की लेते हैं या सिल्क कॉटन साड़ियां तो लगभग 3000 से 7000 के बीच में ये मिल जाती हैं। और वहीं शुद्ध रेशम से की हाथ से बनी हुई जटिल डिजाइन वाली और एकदम प्रीमियम पोचमपल्ली इक्कत साड़ियों की कीमत अगर आप जानना चाहें तो 10,000 से 25,000 तक या उससे ऊपर भी हो सकती है। अब अगर उसमें जितने ये है कि कितना बारीक काम है उस पर निर्भर करता है इसका रेट, और हाँ फैब्रिक पर भी कि किस तरह का आपने कपड़ा चुना है।
0: जी। और इसलिए जब अगली बार आप किसी पोचमपल्ली इक्कत साड़ी को देखें तो सिर्फ उसके रंग और डिजाइन पर नजर मत डालिएगा, उसके पीछे छिपी उस मेहनत को भी महसूस कीजिएगा जिसमें एक एक धागे को बांधा जाता है, रंगा जाता है, फिर करघे पर बड़ी कुशलता से बुना जाता है। यही तो भारतीय हथकरघे की खूबसूरती है। कपड़ा केवल बुना नहीं जाता, उसमें हमारी परंपराएं, कारीगरों की मेहनत और पीढ़ियों की कला भी बुनी जाती है।
1: सही बात है। और ये जो सपनीली दुनिया है इसको बुनने के लिए क्या सबसे खूबसूरत साधन है?
0: गीत।

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर।
2: सोनाली, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि हम नहीं सुनेंगे पोचमपल्ली की जानकारी क्योंकि बजट हमारा बिगड़ जाएगा। तो ऐसा नहीं है, देखिए हर रेंज की साड़ियों के बारे में आपको बताया। आप अगर चाहिए तो मिक्स्ड फैब्रिक, जिसमें कि
3: कॉटन भी ले सकते हैं,
2: कॉटन में भी इकत की जो वीविंग वाली साड़ी आती है, और अगर आप वीविंग वाली भी नहीं लेना चाहें तो प्रिंट वाली भी आती है। तो आप एक बार अपनी मर्जी से बिना उनसे पूछे, घर में बगैर पूछे लेके तो जाइए और ये तोहफा देके बताइए, और उसके बाद यहाँ आकर

0: करके बताइएगा इसी मंच पर कि वो उनका चेहरा खुशी से देखिए खूबसूरती उनकी बढ़ी या नहीं।
1: बिल्कुल, और महिलाएं जो है ना दीपा, वो तो अपनी जो है ना परिवार की सलामती के लिए हमेशा प्रार्थना करती है, तो घर की महिलाएं अगर खुश हो जाए फिर भला ही वो साड़ी के माध्यम से हो या छोटे के तोहफे से माध्यम से हो तो कितनी बड़ी बात होगी।
0: सच में छोटी छोटी बात है, और कोई साड़ी लेना भी जरूरी नहीं, आप छोटी सी चीज भी लेकर जाएंगे ना, बस यूं ही जाते हुए घर दफ्तर से घर आते हुए अगर आप एक गुलाब का फूल भी लेके जाते हैं, वो फूल देखकर भी बहुत खुश हो जाती है कि अरे मुझे याद किया, क्या बात है,
1: या उनकी पसंद की कोई चीज है ना, भले ही वो छोटी सी चॉकलेट क्यों ना हो। और अब वक्त हो चुका है एक ब्रेक का,

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं।
1: कार्यक्रम है सखी सहेली। इतने सारे संदेश आए हैं ना कि वो ब्रेक खत्म होने का भी इंतजार नहीं हो रहा था। हमारी एक सखी ने लिखा कि कुछ महीने पहले मेरे भतीजी की शादी के एक कार्यक्रम में मैंने पोचमपल्ली साड़ी खरीदी थी और अच्छा उनका अनुभव रहा, ऐसा वो कहती हैं। तो सच में अलग अलग हथकरघा या आप अलग अलग प्रदेशों की साड़ियां जब आप पहनते हैं अलग अलग हमारे अनुभव होते हैं। और सच में बहुत जो आपस में जो ये जो कहते हैं ना महिलाओं वाली बातें, उसमें साड़ियों का जिक्र तो निकलता ही है।
0: वैसे प्रार्थना की बात चली है तो हमारे बहुत सारे साथियों ने, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने भर भर के कमेंट्स लिखे हैं। एक हमारे साथी लिखते हैं कि हमारे स्कूल में शुरुआत में सभी स्टूडेंट और टीचर प्रिंसिपल एक साथ इकट्ठा होकर प्रार्थना करते थे। वे प्रार्थना आज भी याद है। कुछ खास बात प्रिंसिपल को कहनी होती तो उसी समय कहते थे। प्रार्थना का असर क्या होता था पता नहीं, पर मन बहुत शांत हो जाता था। मैं रोज सुबह नहाने के बाद 10 मिनट के लिए प्रार्थना के लिए बैठती हूँ। उस समय जो भी भगवान से जो कहना होता वो कह लेती हूँ। आखिरकार उस परम पिता की कोई तो शक्ति है जो इतनी बड़ी दुनिया को चला रहा है। प्रार्थना से शांति तो मिलती ही है।
1: बहुत सही कहा, बिल्कुल सही। और इसी तरह से विचार हमारे एक श्रोता के कहते हैं, हमारे विचार से प्रार्थना करने से हमारे मन, मस्तिष्क और जीवन पर कई सकारात्मक और आध्यात्मिक प्रभाव पड़ता है। ये तभी संभव है जब सच्चे दिल से प्रार्थना की गई हो। नियमित प्रार्थना करने से अहंकार दूर होता है, स्वभाव विनम्र बनता है, जिससे आंतरिक बल और उत्साह के साथ जीवन में आगे बढ़ने की ऊर्जा मिलती है, मानसिक शांति मिलती है, जीवन से जुड़ी समस्याओं और उलझनों का समाधान मिलता है। आगे कहते हैं, घबराए जब मन अनमोल और हृदय हो डावाडोल, तब है मानव तू प्रार्थना कर, ईश्वर से प्रार्थना कर।
0: एक साथी कहते हैं, प्रार्थना केवल कुछ शब्दों को दोहराना या हाथ जोड़कर घुटने टेकना नहीं है, बल्कि आत्मा की वे गहरी पुकार है जो सीधे उस परम चेतना तक पहुंचती है जिसे हम ईश्वर, प्रकृति या ब्रह्मांड कहते हैं। जब हम कहते हैं शब्द हमारा विचार आपके, तो इसका अर्थ है कि यह शब्द केवल एक माध्यम है, लेकिन उनके पीछे की भावना, गहराई और चिंतन पूरी तरह से आपका अपना होना चाहिए। प्रार्थना हमारे जीवन में एक ऐसा सेतु है जो हमें अशांति से शांति की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है।
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा। और संदेश अगला कहता है कि पूजा उपासना के जितने प्रकार हैं उनमें सबसे अधिक सर्व सुलभ प्रकार है प्रार्थना। यह मनुष्य की नितांत व्यक्तित्व आनंद प्राप्ति का रास्ता है। प्रार्थना से मनुष्य झुकना सीखता है, नम्रता और विनम्रता सीखता है। जैसे व्यायाम से शरीर स्वस्थ रहता है, वैसे ही प्रार्थना से मन प्रसन्न रहता है।
0: एक साथी कहते हैं, प्रार्थना हृदय का गीत है। चाहे आप शब्दों का प्रयोग करें या मौन रहकर केवल अपने मन के भावों को अर्पित करें, यदि उसमें सच्चाई और श्रद्धा है तो ईश्वर तक अवश्य पहुंचती है। जब मनुष्य अपने अहंकार को भूलकर उस परम शक्ति के सामने नतमस्तक होता है, तब उसके भीतर क्षमा, करुणा और प्रेम जैसे मानवीय गुणों का विकास होता है। प्रार्थना हमारे जीवन को सुंदर, अनुशासित और उद्देश्य पूर्ण बनाने का सबसे सरल माध्यम है। यह हमारे भीतर

0: भी असीम शक्तियों को जगाने और ईश्वर के साथ एक अटूट व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने का जरिया है। शब्द चाहे कोई भी हो, यदि आपके विचार और भावनाएं शुद्ध हैं, तो आपकी हर प्रार्थना स्वीकार्य है। कितनी सुंदर बात, कितने सुंदर विचार लिखे हैं हमारे सभी।
1: सही कहा सोनाली। हमारे एक श्रोता ने कुछ फिल्मों में दिखाए गए प्रार्थनाओं के बारे में जिक्र किया है, जैसे कि हे प्रभु आनंद दाता, ऐ मालिक तेरे बंदे हम, इतनी शक्ति हमें देना दाता, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। ये सारे फिल्मों में प्रार्थना के रूप में इन्हें जो गीतों को दिखाया है, आज भी हम बेहद पसंद करते हैं और प्यार करते हैं। प्रार्थना का अर्थ है ईश्वर या किसी उच्च शक्ति के प्रति आभार, सम्मान और मार्गदर्शन व्यक्त करना, जो मन को शांति और एकाग्रता प्रदान करती है। आगे लिखते हैं कि स्कूल में पढ़ाई शुरू होने से ठीक पहले प्रार्थना करवाया जाती था, पहले हमारे समय में, और एक स्वस्थ और अच्छी दिनचर्या मानी गई है सुबह की प्रार्थना। बच्चों के मन को शांत करती है और दिन भर की पढ़ाई के लिए उनका ध्यान केंद्रित रखती है। और आगे कहते हैं कि कतार में खड़े होकर साथ में प्रार्थना करने से बच्चों में अनुशासन, नियम और समय की पाबंदी की जो आदत है, ये विकसित होती है।
0: एक साथी कहते हैं, पूजा उपासना के जितने प्रकार हैं, उनमें सबसे अधिक सर्व सुलभ प्रकार है प्रार्थना। यह मनुष्य की नितांत व्यक्तिगत आनंद प्राप्ति का रास्ता है। प्रार्थना से मनुष्य झुकना सीखता है, नम्रता और विनम्रता सीखता है। जैसे व्यायाम से शरीर स्वस्थ रहता है, वैसे प्रार्थना से मन प्रसन्न रहता है।
1: एक और कहते हैं कि प्रार्थना शब्द सुनते ही वो स्कूल की सुबह की प्रार्थना याद आ जाती। छोटा सा ढोलक और एक खंजरी बजाकर तीन लड़कियां सामने बैठकर गाती थी और उनके पीछे सब गाते थे। हर दिन एक नई प्रार्थना गाई जाती थी, हमें बड़ा मजा आता था।
0: एक कहते हैं, प्रार्थना दुखी मन को न केवल शांति प्रदान करता है, अपितु हृदय में धैर्य भी भरता है, और इस दृष्टिकोण से प्रार्थना करते हुए जीवन को सुखमय बनाया जा सकता है।
1: एक अगला संदेश कह रहा है कि प्रार्थना ईश्वर से कुछ मांगने के लिए नहीं, बल्कि जो मिला है उसका धन्यवाद करने के लिए भी होना चाहिए। किसी असहाय की मदद करना, भूखे को भोजन कराना, दुखी को सांत्वना देना जैसे काम भी प्रार्थना के ही रूप हैं।
0: एक साथी कहते हैं, हम सभी लगभग प्रार्थना करते ही हैं, परंतु अगर हम संसार के रचयिता से सच्चे मन से भगवान से जुड़कर प्रार्थना करते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारी प्रार्थना स्वीकार न हो। जरूरी होती है, ये मेरा खुद का अनुभव है। सुख और दुख दोनों में प्रार्थना कर जगत के पालनहारी से प्रार्थना करें। और अब
1: गीत सुनते हैं।

0: प्रार्थना से देखिए, सच में कहा ना, सभी हमारी जैसे सखियां बता रही थी कि मन में एक सुकून आ जाता है और शांति आ जाती है, है ना। और सबके लिए ऐसा लगता है एक शुभ कामनाएं निकलती हैं दिल से कि इसका भी अच्छा हो, इसका भी अच्छा हो, परिवार का अच्छा हो, जो हमारे संबंधी हैं उन लोगों का सबका अच्छा हो, है ना।
1: और जो माताएं होती, जो मम्मियां होती है जिनके युवा शादी नहीं करते, तो वो भी प्रार्थना करती कि जल्दी से हमारे बहू रानी आ जाए या फिर हमारे घर में दामाद आ जाए। हमेशा हाथ जोड़ के कहती कि भाई हमारे बच्चों को अब इस तरह की इच्छा जागृत हो कि वे जल्दी से शादी के लिए हाँ कह दे।
0: बिल्कुल। लेकिन आज के जो बदलते सामाजिक परिवेश है ना सोनाली, उसमें जो युवा है, यूथ जो है, उनकी सोच, जीवन शैली और उनकी जो प्रायोरिटीज यानी प्राथमिकताएं हैं वो बहुत बदल गई हैं आजकल। एक समय था जब विवाह को जीवन का एक स्वाभाविक हम पड़ाव मानते थे कि हाँ अब इस एज के बाद तो ये शादी होनी है, पढ़ाई पूरी करना, नौकरी पाना, विवाह करना और परिवार बसाना, ये जीवन का एक सामान्य रूपरेखा हुआ करती थी। लेकिन आज जो युवा है वो विवाह करने और उसके साथ आने वाली जिम्मेदारियों को स्वीकार करने में जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं।
1: इसके पीछे अनेक कारण हैं दीपा, कि जैसे उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हमने शादी कर ली तो फिर हमारे करियर में, खासकर महिलाओं को, युवतियों को ऐसा लगता है कि हमारे करियर में बाधा आ जाएगी, या फिर हमने इतना बड़ी मेहनत से हमने इतनी पढ़ाई की है, हमने अपने करियर को इतना अच्छा जाया सवारा है, और अगर हम शादी के बाद में उसमें बाधा आ जाएगी, हम पीछे हो जाएंगे, हमें प्रमोशन नहीं मिलेगा। तो ये वैवाहिक जिम्मेदारी से बचते युवा, तो इस विषय पर हमारे श्रोताओं से भी कहेंगे कि आपके क्या विचार है, आपको ऐसा लगता है क्या पुराने जमाने में भी करियर भी हुआ करते थे, शादियां भी हुआ करती थी, तब हमारे मन में विचार नहीं आता था, पर आजकल के युवाओं के मन में ये विचार क्यों आने लग गए?
0: आपकी क्या राय है आप जरूर बताइएगा। हम भी यहां पर से अपनी तरफ से इस बातों को, इस विचार विमर्श को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ये समझना आवश्यक है कि विवाह का अर्थ स्वतंत्रता का अंत नहीं है। सबको लगता है कि अरे भाई शादी हो गई ना, सारी आजादी खत्म, बस एक शब्द बोला जाता है, बल्कि दो व्यक्तियों के बीच समझदारी, सहयोग और आपसी सम्मान का ये रिश्ता है। और आज के युवा पहले अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, अच्छी नौकरी, आर्थिक स्थिरता, फिर अपना घर, सुरक्षित भविष्य, और ये सब उनकी प्राथमिकताएं हैं। वो चाहते हैं कि विवाह से पहले उनका करियर स्थापित हो जाए ताकि वे अपने जीवन साथी के साथ एक आर्थिक तनाव के बिना जीवन बिता सकें।
1: और जैसे दीपा मैंने भी कहा था कि इसके पीछे कारण क्या है, क्यों युवा ये बात को सोचने पे मजबूर हो गए, उसके

0: पीछे एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि माता पिता के बीच लगातार होने वाले झगड़े भी बच्चों के मन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि बड़े होकर वे भी इसी प्रकार के वैवाहिक जीवन से बचना चाहेंगे। हालांकि हर विवाह का अनुभव एक जैसा नहीं होता है। स्वस्थ संवाद, आपसी सम्मान और समस्याओं को मिलकर सुलझाने की इच्छा रिश्ते को मजबूत बनाती है।
1: बिल्कुल। और अपने आसपास शादियों का जो टूटना देखते हैं ना, पारिवारिक विवाद भी देखते हैं, घरेलू तनाव और रिश्तों में कड़वाहट देखने वाले युवाओं के मन में भी एक विवाह को लेकर ना थोड़ी एक डाउट डर आ जाती है, डाउट सा बनने लग जाता है। वे सोचते हैं कि यदि विवाह के बाद जीवन में शांति के बजाय अगर ये तनाव इस तरह मिलना है तो ऐसा रिश्ता बनाने का क्या लाभ है।
0: अब देखिए, दोस्ती के बीच में भी जब हम दोस्ती बनाते हैं ना किसी से, तब भी हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है।
1: ये बात
0: कि हमारे हाथों की पांचों उंगलियां एक समान
1: वो
0: नहीं
1: भी
0: होता,
1: एक समान
0: तो हर इंसान कैसे एक समान।
1: अरे भाई, घर में भाई बहन जो होते हैं, एक ही माता पिता के बच्चे, वो भी तो सब अलग अलग तरह से होते हैं।
0: हमें एडजस्ट करना बहुत जरूरी है। और सबसे जरूरी बात है कि लड़का हो या लड़की हो, एक दूसरे को सम्मान देना बहुत जरूरी है।
1: हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही कही। और देखो, एडजस्ट करने की जो यहाँ पे बात कर रहे हो ना सोनाली, हम आजकल अपने बच्चों को थोड़ा कम समझाते हैं कि थोड़ा सा आप संभल के चलिए, या थोड़ा सा आपस में एक कोई अगर एक या हम कोई एक दो में से कोई एक में अगर हमने ही पहले थोड़ा सा झुक गए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं हमारा क्या वो हमारा अहंकार है जो आड़े आ जाता है कि मैं क्यों झुकूं, मैं भी तो इतनी पढ़ी लिखी हूं या मैं इतना पढ़ा लिखा हूं तो मैं क्यों झुकूं। ये बात, ये अहम की भावना कहीं पहले आके दीवार बना देती है
0: और रिश्ते टूट जाते हैं, अच्छे अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं। वे हमारे साथियों ने भी लिखी है कुछ बातें। हमारे एक साथी कहते हैं कि वैवाहिक जिम्मेदारी से बचते युवा बड़ा रोचक मुद्दा है। नई शादी होने के बाद युवक और युवती अपनी जिम्मेदारी से बचते हैं। युवक त्योहार उत्सव में जाना बड़ा आनंद लेते हैं, बच्चों को विद्यालय छोड़ना, फिर काम पर जाना, अभी हम सेटल नहीं हुए, अभी हम पढ़ रहे हैं, इस जंजाल में युवा फंसे होते हैं। हमारी माँ तो कहती है प्रभु ही शादी कराएगा, असल में प्रभु ही इनकी शादी करवाएगा, ऐसी उन्हें चिंता लगी रहती है।
1: एक संदेश ये भी कह रहा है कि भाई, जहां तक वैवाहिक जवाबदारी से बचने की बात है, जवाब कम है, दुनियादारी ज्यादा है। आजकल के युवा 21वीं सदी के हैं जो कह रहे हैं हम लोग हैं ऐसे दीवाने, दुनिया को झुकार कर मानेंगे, मंजिल की धुन में आए हैं, मंजिल को पाकर मानेंगे, वो मंजिल है नौकरी या कोई बिजनेस, फिर बाद में बाद में कहते हैं बाद में छोकरी, मतलब ये गुजराती में शायद उन्होंने लिखा है कि भाई वो कहते हैं कि सब सेटल हो जाए, हम उसके बाद ही विवाह करना चाहेंगे। अच्छा, माता पिता के बीच भी लगातार होने वाले झगड़ों में भी बच्चों का मन, ये अगर घर में कुछ ऐसा माहौल है ना कि माता पिता के बीच में बहसबाजियां अगर बच्चों ने देख रखी है तो उनका बहुत गहरा प्रभाव पड़ जाता है, फिर वो बड़े होकर उसी प्रकार के वैवाहिक जीवन से बचना चाहते हैं। हालांकि अब ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हर विवाह का अनुभव एक जैसा होता भी नहीं है। स्वस्थ संवाद होते हैं, आपसी सम्मान और समस्याओं को मिलकर सुलझाने की इच्छा रिश्ते को मजबूत बना सकती है। अब ये भी बात है सोनाली कि विवाह केवल दो व्यक्तियों का साथ नहीं है ना, इसके साथ हम इमोशनल तरीके से भी जुड़ते हैं, फिर घर की व्यवस्था भी देखनी होती है, आर्थिक योजना क्या है, या परिवार के प्रति संवेदनशीलता और भविष्य से जुड़े निर्णय भी आ जाते हैं।
0: और अब क्या किया जाए,
1: एक गीत सुना जाए,
0: सुनते हैं गीत।

0: सोनाली, बच्चे कहते हैं आजकल कि हमें ये तो यकीन है कि अभी शादी हमें नहीं करना है, और एक संदेश ये कहता है कि विगत सालों से सोशल मीडिया और खबरों ने शादी विवाह के मामले में ऐसा दहशत फैला दिया है कि लड़के लड़कियां क्या माँ बाप भी बेहद सहम गए हैं। बच्चों की शादियों की बातों से वो भी डरने लगे हैं। लव मैरिज हो या अरेंज्ड मैरिज हो, सभी की कहानी एक समान होती जा रही है। कई सालों तक साथ रहने के बाद भी वैवाहिक जीवन का जो सुनहरा रंग है वो बदलता जा रहा है। यहां पर दबाव की ही नहीं, यहां बातचीत करके किसके दिमाग में क्या बैठा हुआ है उसे बदला जाए या उसके लिए कुछ अच्छा किया जाए, तो अच्छे लोग और अच्छे विचारों का साथ होना बहुत जरूरी है। एक दिन में ये तय नहीं होता है, बहुत जरूरी है कि शुरू से ही लड़के लड़कियों के दिमाग में बैठाना होगा कि वैवाहिक सूत्र दाम्पत्य जीवन एक पवित्र रिश्ता होता है। इसमें दो परिवार बनते हैं, दो लोग मिलते हैं, परिवार बढ़ता है और कई तरह की जिम्मेदारियां भी बढ़ती है, तो ये जिम्मेदारियां तो बढ़ेगी ही।
1: एक हमारे साथी ने कहा है, आज के युवा वैवाहिक जीवन से ज्यादा करियर पर ज्यादा जोर देने लगे हैं। वे मानते हैं कि शादी कर लेने से घर गृहस्थी संभालनी पड़ेगी और करियर खत्म हो जाएगा। अभी कुछ कमा कर पग भर हो जाए तभी शादी तो बाद में होगी। मेरे घर में भी मेरी बेटी 29 साल की हो गई पर शादी से मना कर रही है और नौकरी के साथ साथ एग्जाम भी दे रही है ताकि और बेहतर नौकरी कर पाए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मेहनत कर रही है पर शादी की ओर भी उन्हें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक उम्र के बाद में ना बहुत कुछ बदलाव आ जाते हैं, शारीरिक बदलाव आ जाते हैं, मानसिक बदलाव आ जाते हैं। फिर वो एक उम्र के बाद में ना जो महिला है या पुरुष यानी लड़के लड़के कोई भी एक दूसरे साथ एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं होते।
0: बिल्कुल सही कहा। और इसी तरह की सोच की एक और संदेश है कि आज के युवा, उन्होंने लिखा है, दोनों महिला और पुरुष अपने करियर और वित्तीय स्थिरता को पहली प्राथमिकता देते हैं। वे शादी से पहले एक मजबूत बैकग्राउंड बनाना चाहते हैं जिसके कारण विवाह में देरी होती है या युवा इससे बचते हैं। और एक और संदेश कहता है कि आधुनिक युवा अपनी जीवन शैली, प्राइवेसी और आजादी से समझौता नहीं करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि शादी के बाद पारिवारिक जिम्मेदारियां उनके व्यक्तिगत विकास और सपनों में बाधा बन सकती है। बढ़ते तलाक के मामले और रिश्तों में अस्थिरता, समाज में टूटते हुए परिवारों और कोर्ट कचहरी के मामलों को देखकर युवाओं के मन में विवाह जैसी संस्था के प्रति एक अदृश्य डर बैठ गया है। ये बात सही है कि कभी कभी अगर ये मामला कोर्ट कचहरी तक चला जाता है तो जो बच्चे जिनकी शादी होने वाली होती है तो वो बहुत डर जाते हैं। और अगर घर में ही कुछ, आपके घर में इस तरह का कोई आपने किस्सा देख लिया हो या आपके रिश्तेदारों में, तो और डर बैठ जाता है कि अरे भाई हमें अभी शादी नहीं करनी, अभी हमें थोड़ा वक्त दीजिए।
1: अभी जो आज का जो मुद्दा है ना, थोड़ा सा ज्वलंत मुद्दा, थोड़ा सा हमारा मन भी भारी हो गया बात करते करते, क्यों ना व्यंजन की ओर बढ़ा जाए।
0: हाँ बिल्कुल,
1: शक्करकंद के व्यंजन। तो एक हमारे साथी ने लिखा है, शकरकंद को उबालें, स्टीम कर लें, ठंडा होने पर इन्हें मोटे मोटे टुकड़ों में काट लें, भुनी हुई मूंगफली, हरी मिर्च, अदरक को मोटा दरदरा कूट लें। अगर फलाहार बनाना है तो इसमें सेंधा नमक और नींबू, कूटी मूंगफली के मसाले मिलकर चटपटा शकरकंदी तैयार है। और इसे मीठा भी बना सकते हैं ना, तो उसे

0: मीठे को उबाल के उसको छोटे यानी मीठा भी खा सकते हैं। तो उबले शकरकंद को टुकड़ों में काट ले, थोड़ा सा घी में भून ले, कढ़ाई में गुड़ को पिघला ले, उसमें शकरकंद के टुकड़े डालकर उलट पलट कर सुखा ले, मीठे शकरकंदी तैयार है। आप इसे घी में भुनना नहीं चाहते तो ऐसे भी गुड़ में बना सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। और अब एक गीत
1: सुन सकते हैं।

0: हम तो ये कहेंगे अपनी हमारे श्रोताओं से कि जिन परिवार में बच्चे नहीं सुन रहे उन्हें ये गीत सुनाइए जहाँ पे उन्हें बताइए कि एक छोटा सा बंगला बनाकर एक नई दुनिया बसाए जो बहुत खूबसूरत है।
1: और अब इजाजत लेने का वक्त आ चुका है। आप सभी को सोनाली पाठक
0: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक
2: की सहेली।

0: ये है विविध भारती।
1: विविध भारती देश का रेडियो।
2: ओ मेरे पिया दे रंग पिया है वहाँ से टेली।
3: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी।
4: मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर।
1: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
5: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छपकर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब और नरगिस जी।
3: विविध भारती पर हर पल है खास।
1: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
6: आज के फनकार।
3: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
6: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
1: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर। संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें।

0: इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
4: मैं निकला ओ गडले,
3: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
5: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
6: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
3: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
7: चिट्ठी न कोई संदेह।
3: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे